यह आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र एफएम 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 17वीं तिथि, तदनुसार 8 जुलाई सन 2026। इस समय सुबह के 5:56 और 40 सेकंड हुए हैं। अब आकाशवाणी शिवपुरी से प्रसारण आरंभ होता है।

0: समाचार सुनेंगे। इसका अनुप्रसारण हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से कर रहे हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत इंडोनेशिया रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों की समृद्धि बढ़ेगी और क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति भी बनी रहेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करता है और विस्तारवाद नहीं, विकास मार्ग पर चलता है।
2: भारत विस्तारवाद नहीं, विकासवाद की नीति पर चलता है और इसलिए हम भारत में कहते हैं सबका साथ सबका विकास। आज मैं यही मंत्र, यही भावना लेकर इंडोनेशिया के आप सभी सांसद सदस्यों के बीच आया। भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र ताजा भविष्य का केंद्र है।
1: जकार्ता में इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच संबंध सदियों पुराने हैं और दोनों देशों में समान लोकतांत्रिक मूल्य, आपसी विश्वास और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विकास, शांति, स्थिरता और समृद्धि में विश्वास रखता है। श्री मोदी ने आतंकवाद और क्षेत्रीय सुरक्षा को कमजोर करने वाली एक तरफा कार्रवाइयों के खिलाफ सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई। श्री मोदी ने इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने पर आभार व्यक्त किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM बेंगलुरु को इंडोनेशिया में एक विदेशी परिसर स्थापित करने की अनुमति मिलने से भारत के शिक्षा क्षेत्र में एक नया अध्याय जुड़ गया है। इस प्रस्ताव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया यात्रा के दौरान मंजूरी दी। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत बहरीन सहयोग लगातार मजबूत हो रहा है। श्री जयशंकर ने कल अपनी दो दिन की बहरीन यात्रा समाप्त की। यात्रा के दौरान डॉक्टर जयशंकर ने बहरीन के राजा हमद बिन ईसा अल खलीफा और क्राउन प्रिंस तथा प्रधानमंत्री सलमान बिन हमद अल खलीफा से मुलाकात की। इस दौरान विदेश मंत्री ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन व्यक्त किया। प्रधानमंत्री कार्यालय ने अल नीनो के संभावित प्रभाव और तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की। यह बैठक प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉ. पीके मिश्रा की अध्यक्षता में सेवा तीर्थ में हुई। बैठक में 15 से अधिक मंत्रालयों के सचिव और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। श्री मिश्रा ने निर्देश दिया कि स्थिति की निरंतर निगरानी की जानी चाहिए और संवेदनशील जिलों पर मानसून या विलंबित मानसून के प्रभाव का आकलन राज्यों के समन्वय से किया जाना चाहिए, जिससे आवश्यकता पड़ने पर सुधारात्मक कार्रवाई की जा सके। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतें स्थिर रहती हैं या घटती हैं, तो घरेलू पेट्रोल और डीजल की कीमतों में सकारात्मक वृद्धि होने की उम्मीद है। नई दिल्ली में आयोजित विकसित भारत सम्मेलन 2026 में श्री पुरी ने कहा कि भारत ने राजनयिक जुड़ाव, यथा समय नीतिगत हस्तक्षेप, घरेलू उत्पादन में वृद्धि और आयात में विविधता के माध्यम से हाल के दशकों में सबसे चुनौतीपूर्ण वैश्विक ऊर्जा संकटों में से एक का सफलतापूर्वक सामना किया। प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस के कुछ बैंक खातों से कथित वित्तीय लेन देन, अवैध रूप से धन संग्रह और संदिग्ध धन के हस्तांतरण के संबंध में कोलकाता और उसके आसपास के 5 परिसरों पर तलाशी ली है। ये तलाशी विमानन क्षेत्र में कार्यरत निजी कंपनी केयरवेल समूह की कंपनियों, उसके निदेशकों और एक कथित चुनावी ट्रस्ट से जुड़े परिसरों पर की गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन

हम आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से बोल रहे हैं FM 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय सुबह के 6:05 हुए हैं। आकाशवाणी शिवपुरी से प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। श्रोताओ, कार्यक्रम का आरंभ कर रहे हैं मातृ वंदना से। हम अपनी मातृभूमि को सादर प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं और देश की

श्रोताओं, समूह स्वर में भी आप सुन रहे थे ये मातृवंदना। आकाशवाणी शिवपुरी से इस समय आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। अब हम आपको सुनवा रहे हैं एक भजन, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्न कुरु मे देव सर्व कार्येषु।

उस्ताद अहमद हुसैन और उस्ताद मोहम्मद हुसैन की आवाज में भी आप सुन रहे थे ये भजन। श्रोताओं, भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना इस समय आप आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से सुन रहे हैं। तापसी नागराज की आवाज में एक भजन आपको सुनवा

तापसी नागराज की आवाज में अभी आप सुन रहे थे ये भजन। श्रोताओं, भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना इस समय आप आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से सुन रहे हैं। ब्रह्मदेव नारायण सिंह की आवाज में एक भजन आपको सुनवा रहे हैं। आपको बता दें कि ये भजन संत मलुकदास ने लिखा है। लीजिए सुनिए।

संत मलूकदास का लिखा ये भजन अभी आप सुन रहे थे ब्रह्मदेव नारायण सिंह की आवाज में। श्रोताओं, भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना इस समय आप आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से सुन रहे हैं। कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति इस आरती के साथ।

0: महेंद्र कपूर और साथियों की आवाज में अभी आप सुन रहे थे ये आरती, और इसके साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना अब यहीं संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से बोल रहे हैं FM 100.2 MHz पर। श्रोताओं, समय है कार्यक्रम चिंतन का, और चिंतन कार्यक्रम में आज का विषय है इंसानियत की सीख। चिंतक है अंजू पंगती, लीजिए सुनिए।
1: जंगल में मीठे पानी की नदी के किनारे एक संत की कुटिया थी। संत के प्रवचन सुनने प्रतिदिन कई भक्त आया करते थे। भक्तगण प्रवचन सुनने के बाद नदी का मीठा जल पीकर लौट जाया करते थे। एक दिन संत की कुटिया पर कोई भी भक्त प्रवचन सुनने न आया, क्योंकि आसमान की बिजलियां चमक रही थी और रुक रुक कर वर्षा हो रही थी। ऐसे माहौल में संत चुपचाप एक आसन पर बैठ भगवान का स्मरण कर रहे थे। तभी घोड़े पर सवार एक डाकू आया और घोड़े से उतरकर संत को मारने के लिए कुटिया में प्रवेश किया। डाकू का आक्रोश भरा चेहरा देखकर संत मधु मुस्कान के साथ बोले, बंधु, तुम मुझे मारना चाहते हो? यदि तुम मुझे मारने से पहले मेरी एक इच्छा पूरी कर दो तो तुम्हारा बड़ा भला होगा। डाकू ने अकड़ कर पूछा, आखिर तुम्हें मुझसे क्या काम है? संत मुस्कुराते हुए बोले, इस कुटिया के सामने जो आम का वृक्ष दिखाई पड़ रहा है, उसकी एक छोटी सी शाखा मुझे काट कर ला दो। ये सुनकर डाकू मन ही मन संत पर बहुत हंसा। नाम का संत है लेकिन अक्ल का बिल्कुल मूर्ख है। भला पेड़ की शाखा भी कोई मांगने की चीज है? प्राणदान भी तो मांग सकता था। डाकू ने तुरंत तलवार निकाली और पेड़ की छोटी सी एक शाखा काटकर संत को लाकर दे दी। कटी शाखा को देखकर संत ने डाकू से कहा, प्रिय बंधु, तुमने मेरा आधा कार्य तो कर दिया, और आधा कार्य और कर दो तो तुम्हारी बड़ी कृपा होगी। इस शाखा को वापस वहीं वृक्ष पर जोड़ आओ। ये सुनकर तो डाकू का गुस्सा सातवें आसमान पर जा पहुंचा। बोला, बाबा, तुम तो निरे पागल हो। भला टूटी हुई शाखा को जोड़ना भी कहीं संभव है? ये तो अब कभी जुड़ ही नहीं सकती। कुछ और मांग लो। अब संत ने हंसते हुए कहा, बंधु, मुझे तो और कुछ नहीं चाहिए, लेकिन तुम इस बात को अच्छी तरह समझ लो, जो तोड़ता है वो कमजोर है और जो जोड़ता है वो शक्तिशाली है। हाँ, अगर अब तुम चाहो तो मुझे जान से खुशी खुशी मार सकते हो। मैं मरने को बिल्कुल तैयार हूँ। संत के मुख से ऐसी बातें सुनकर डाकू घोर सोच में पड़ गया। मैंने तो कितने ही मासूम बच्चों और लोगों को काट डाला, जोड़ तो मैं किसी को भी नहीं सकता। वो संत के चरणों में गिर पड़ा और अपनी करनी पर बहुत पछताने लगा। संत ने डाकू को उठाकर गले से लगाया, उसे क्षमा कर कहा, जाओ आज से इंसानियतों से रिश्ता जोड़ो और जीवन का सही आनंद उठाओ। यही मानव समाज के प्रति सच्ची सेवा और मानवता है।
0: इंसानियत की सीख। श्रोताओं, इस विषय पर अभी आप सुन रहे थे आज का चिंतन। चिंतक थी अंजू पंगती। हम आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से बोल रहे हैं, लीजिए सुनिए श्री रामचरित मानस पाठ। स्वर दे रहे हैं अनूप जलोटा।

रूपक रूप दिया है जिसके चार मनोहर घाट हैं। घाट की संज्ञा उन संवादों को दी है जिनकी रचना काकभुशुंडी गरुड़, शिव पार्वती, याज्ञवल्क भरद्वाज तथा स्वयं तुलसी सरीखे अन्य संतों ने की है। रामायण के सात कांड इस सरोवर की सात सीढ़ियां हैं तथा श्री राम की महिमा उसकी अतल गहराई है। श्री राम और सीता का सुयश इसका निर्मल जल है और उपमा अलंकार उसकी मनोहर तरंगे हैं। रामचरितमानस की चौपाइयों में कमलिनी का विस्तार है और उसके छंद सोरठे तथा दोहे कमल के बहुरंगे फूलों की सुषमा लिए हुए हैं। इनमें वर्णित ज्ञान वैराग्य और विचारों की तुलना हंसों से की गई है। काव्य की ध्वनि वक्रोक्ति तथा प्रभावशाली गुण मानस सरोवर की मछलियां हैं। धर्म अर्थ काम मोक्ष ज्ञान विज्ञान का विचार वर्णन काव्य के नौरस जप तप योग और वैराग्य अन्य जलचर प्राणी हैं।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस पाठ, स्वर दे रहे थे अनूप जलोटा। आकाशवाणी का ये शिवपुरी केंद्र एफएम 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, कृषि समय की कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं जल संग्रहण की आधुनिक विधियां। इस विषय पर डॉक्टर शैलेंद्र सिंह कुशवाहा से जानकारी लीजिए, सुनिए।
1: जल का संरक्षण वर्तमान की महती आवश्यकता है। हमारी पृथ्वी पर उपलब्ध कुल 1384 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी में 97% पानी खारा है, जो कि समुद्रों में है एवं हमारे लिए अनुपयोगी है, एवं कुल 2.6% पानी पीने योग्य उपयोगी है। इसमें भूगर्भीय जल 0.58%, ध्रुवीय बर्फ के रूप में 2.01%, नदियों एवं झीलों में 0.016% शामिल है।

0: भारत में पीने योग्य पानी का 77% भाग सिंचाई में, 4.6% भाग घरेलू उपयोग में, 12% उद्योगों में और 11.4% अन्य विविध क्षेत्रों में प्रयुक्त हो रहा है। दिनों दिन बढ़ रही जनसंख्या एवं गिरते वनाच्छादित क्षेत्र से जल उपलब्धता का संकट हम सभी के सामने है। ऐसी स्थिति में हम सभी का दायित्व है कि जल का अपव्यय न करें एवं जल संरक्षण के प्रति जागरूक हों। वर्षा जल का यदि हमने संरक्षण कर लिया तो एक ओर भूमि कटाव या मृदा अपरदन की समस्या का समाधान होगा, वहीं दूसरी ओर गिरते भू जल स्तर को सुधारने में हमें सफलता मिलेगी। ग्रामों में पानी रोकने और संग्रहण के लिए जो संरचनाएं बनाई जाती हैं उन्हें रिच टू वैली यानी ऊपर से नीचे के सिद्धांत पर कार्यान्वित करें। खेतों में भी जल संग्रहण किसान भाई कर सकते हैं, इसमें कुंडी का निर्माण, डबरी, डग आउट पोंड का निर्माण और कुइया खेत तालाब योजना, इनका लाभ लेते हुए किसान भाई इन संरचनाओं का निर्माण अपने खेतों में कर सकते हैं। और खेत में ऐसे स्थान का चयन करना चाहिए जो कि खेत के ढलान वाले स्थान पर हो, वहां पर खेत तालाब कुंडी डबरी इत्यादि का निर्माण करना चाहिए। इससे फसल को भी जल उपलब्धता सुनिश्चित होती है और साथ ही भूमि जल का संवर्धन भी होता है और जो हमारे ट्यूबवेल और कुएं जो सूख रहे हैं उनमें पानी का बहाव प्रारंभ होता है, पानी में अभिवृद्धि होती है। नदी नालों पर पानी रोकने वाली संरचनाओं का निर्माण भी किया जाता है जिसमें नाला बंधान, बोरी बंधान, नाला बियर, मिट्टी बंधान, स्लाप डैम, भूमिगत बंधान जैसे डाइक कहते हैं और चेक डैम, इनका निर्माण जो नदी नाले जो कि पानी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले आते हैं उस पानी को हम यूं ही बहने नहीं देते बल्कि उनको हम अवरुद्ध कर पानी को रोकने का प्रयास करते हैं, काफी सहायक संरचनाएं होती हैं। बोरी बंधान बहुत ही सस्ता आसानी से अपनाया जाने वाला संरचना है। इस संरचना में बोरियां होती हैं, प्लास्टिक की बोरी हो या जूट की बोरी हो, इसमें आप रेत इत्यादि को भरकर जहां पानी का बहाव है उसके अवरुद्ध एक दीवार की तरह नीचे से ऊपर की ओर आते हुए जमा दी जाती है। इससे पानी का बहाव अवरुद्ध होता है और नाले के ऊपरी भाग में पानी एकत्रित होने लग जाता है। इस पानी का उपयोग हम फसलों में जीवन रक्षक सिंचाई के रूप में भी उपयोग कर सकते हैं और साथ ही इसके बनने से पानी जो भरा रहता है उसकी वजह से भूमि का जल संवर्धन होता है। कृत्रिम जल भरण हेतु संरचनाएं भी आजकल हमारे क्षेत्रों में अपनाई जाना चाहिए। उनमें एक तो गर्त या कूपक विधि है, दूसरा खाई का निर्माण है, फिर नलकूप रिचार्ज और कुएं द्वारा जल भू जल रिचार्ज एवं सोखता गड्ढा, ये प्रमुख विधियां हैं जिनके माध्यम से हम कृत्रिम रूप से मृदा के अंदर या भूमि के अंदर जल का संवर्धन कर सकते हैं। और ऐसी जल संवर्धन संरचनाओं के बनने से हमारी भूमि में जल स्तर में सुधार होता है। कृत्रिम जल भरण संरचनाओं में कुओं में भू जल रिचार्ज, सोखता गड्ढा निर्माण और नलकूप रिचार्ज अत्यंत महत्वपूर्ण है जिन्हें ग्रामीणों द्वारा अपनाया जाना चाहिए। कुओं में भूजल रिचार्ज के लिए वर्षा जल को मोड़कर कुएं के पास लाया जाता है। कुएं से लगभग 3 मीटर दूर जमीन में हम 3 मीटर गहरा गड्ढा खोदकर तली में लगभग 1 मीटर मोटी बोल्डर की परत, उसके ऊपर बजरी 0.75 मीटर पौन मीटर के आसपास हम बजरी की परत लगाएंगे, उसके बाद रेत की परत 0.6 मीटर बिछाई जाती है। इससे छने हुए वर्षा जल को गड्ढे की तली से एक पाइप की मदद से कुएं के अंदर प्रवेश कराकर पहुंचा दिया जाता है। इस प्रकार यह जल भूजल भंडारों को संवर्धित करता है। एक और तकनीक है नलकूप रिचार्ज, इसके लिए नलकूप के चारों ओर 27 घन मीटर या सुविधाजनक अन्य साइज का गड्ढा बनाया जाता है। इसमें नारियल रस्सी लिपटा छिद्रित केसिंग पाइप डालकर उसके चारों ओर नीचे से ऊपर क्रमशः बोल्डर या पेबल और बजरी एवं उसके बाद रेत बिछाई जाती है, जिससे वर्षा जल का रिसाव फिल्टर होने के बाद आसानी से होता है व भू जल की वृद्धि होती है। आओ हम सब मिलकर करें जतन, क्योंकि जल है अनमोल रतन।
1: जल संग्रहण की आधुनिक विधियां। श्रोताओं, इस विषय पर अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर शैलेंद्र सिंह कुशवाहा से जानकारी और इसके साथ ही कृषि समय की कार्यक्रम अब यहीं संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से बोल रहे हैं FM 100.2 MHz पर। श्रोताओं, समय है कार्यक्रम विवरण का, जानकारी लीजिए हमारे केंद्र से प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। सबसे पहले हम आपको जानकारी दे रहे हैं हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। श्रोताओं, आज सुबह 7:05 पर आप सुनेंगे जल संरक्षण विषय पर लघु वार्ता। आज सुबह 7:20 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत। आज सुबह 7:45 पर आप सुनेंगे आकाशवाणी शिवपुरी का विशेष सूचना परक दैनिक कार्यक्रम नमस्कार शिवपुरी। आज सुबह 8:30 पर आप सुनेंगे फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश। आज सुबह 9:00 लोक संगीत के कार्यक्रम लोक रंग में हम आपको सुनवाएंगे ममता गोस्वामी और छोटेलाल प्रजापति और

0: साथियों के गाए कुछ लोकगीत। आज सुबह 9:30 पर आप सुनेंगे फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश। आज सुबह 10:05 पर कार्यक्रम होगा सुगम संगीत। श्रोताओं, इसमें आज कलाकार होंगे मुश्ताक हुसैन। हम मुश्ताक हुसैन की गाई कुछ सुप्रसिद्ध गजलें आपको सुनवाएंगे। आज सुबह 10:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत। श्रोताओं, आज शाम 7:21 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम चौपाल। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, दूषित जल के सेवन से बचें और डायरिया से करें बचाव, बायोगैस एक लाभ अनेक। श्रोताओं, इन विषयों पर बातचीत सुनी जा सकती है। इसके अलावा आज हम आपको सुनवाएंगे एक विशेष भेंटवार्ता। विषय ध्यान से सुनिएगा, सर्पदंश भ्रांतियां और निदान। सर्पदंश भ्रांतियां और निदान, इस विषय पर डॉक्टर विवेक बिमल से डॉक्टर समर्थ अग्रवाल की बातचीत। श्रोताओं, ये रूपरेखा हुई हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की, और अब उन कार्यक्रमों की जानकारी जिनको हम अनुप्रसारित करेंगे। श्रोताओं, आज सुबह 7:00 आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। प्रादेशिक समाचार सुनिएगा आज सुबह 7:10 पर। समाचार प्रभात सुबह 8:00 और 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज। जिले की चिट्ठी आप सुनेंगे आज सुबह 10:00। आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रम सुनिएगा दिन में 11:00 से। श्रोताओं, आज दिन में 1:00 आप सुनेंगे महिला कार्यक्रम, 1:30 पर लोक संगीत और दिन में 1:45 पर सुगम संगीत। शाम 5:00 कार्यक्रम युववाणी। आपको बता दें कि महिला कार्यक्रम, लोक संगीत, सुगम संगीत और कार्यक्रम युववाणी, ये आकाशवाणी ग्वालियर केंद्र की प्रस्तुति होगी, जिसे हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से रिले करेंगे। श्रोताओं, आज शाम 6:10 से लेकर 6:30 तक आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से रिले कार्यक्रम, और रात 8:00 से 8:42 तक आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रम, और इसके बाद रात 9:00 से लेकर रात 11:10 तक आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रम सुने जा सकते हैं। कार्यक्रम विवरण संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से बोल रहे हैं FM 100.2 MHz पर। इस समय सुबह के 6:55 होने को है। कुछ ही पलों में आप संस्कृत में समाचार सुनेंगे।
1: एम आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचिका रचा झा। अथ वार्ता। भारत इंडोनेशिया रणनीतिक सहभागित्वस्य सुदृढ़ाह्वानं कुर्वन् प्रधानमंत्री मोदी अवदत् यत् एतत् न केवलं द्वयोः देशयोः समृद्धौ अपितु क्षेत्रीय वैश्विक शान्ति स्थिरतासु च योगदानं प्रदास्यति इति। जकार्ता नगरे इंडोनेशिया देशस्य संसदं संबोधयन् श्रीमोदी अवदत् यत् भारतं विकासस्य मार्गं अनुसरति न तु विस्तारवादस्य।
2: भारत विस्तारवाद नहीं, विकासवाद की नीति पर चलता है, और इसलिए हम भारत में कहते हैं सबका साथ सबका विकास। आज मैं यही मंत्र, यही भावना लेकर इंडोनेशिया के आप सभी सांसद सदस्यों के बीच आया। भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र ताजा भविष्य का केंद्र है।
1: श्री मोदी द्वयोः देशयोः जनानां लाभाय UPI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप इत्येतान्, शिक्षां नवानवेषणं च समेत्य आंकिकीय सार्वजनिक अवसंरचनायां सहयोगस्य वर्धनाय अपि बलं प्रदत्तवान्। तत्पूर्वं प्रधानमंत्री मोदी जकार्ता नगरे इंडोनेशिया देशस्य राष्ट्रपतिना प्रबोवो सुबियांतो इत्यनेन सह प्रतिनिधिमंडलस्तरीय वार्तां कृतवान्। उभय नेतृभ्यां परस्पर हितस्य क्षेत्रेषु सहयोगं वर्धयितुं ज्ञापनपत्राणां आदान प्रदानमपि कृतम्। श्रीमोदी वर्याय एकस्मिन् समारोहे राष्ट्रपतिना प्रबोवो सुबियांतो इत्यनेन इंडोनेशिया गणराज्यस्य सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारं बिन्तांग आदिपूर्णा इति प्रदत्ता। शिलातैल प्राकृतिक वातेन्धन मंत्री हरदीप सिंह पुरी अवदत् यत् यदि अन्ताराष्ट्रिय स्तरे अशोधित तैलस्य मूल्यानि स्थिरानि उत वा न्यूनानि भवन्ति तर्हि आन्तरिक पेट्रोल

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत इंडोनेशिया रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देश समृद्ध होंगे और क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति भी बनी रहेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करता है और विस्तारवाद नहीं बल्कि विकास के मार्ग पर चलता है।
1: भारत विस्तारवाद नहीं विकासवाद की नीति पर चलता है और इसलिए हम भारत में कहते हैं सबका साथ सबका विकास। आज मैं यही मंत्र यही भावना लेकर इंडोनेशिया के आप सभी सांसद सदस्यों के बीच आया। भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र ताजा भविष्य का केंद्र है।
0: श्री मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करते हुए कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच सदियों पुराने संबंध समान लोकतांत्रिक मूल्य आपसी विश्वास और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण पर आधारित हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद और क्षेत्रीय सुरक्षा को कमजोर करने वाली एक तरफा कार्रवाइयों के खिलाफ सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि भारतीय प्रबंधन संस्थान बेंगलुरु को इंडोनेशिया में परिसर स्थापित करने की अनुमति मिलने से भारत के शिक्षा क्षेत्र में नया अध्याय जुड़ गया है। इस प्रस्ताव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया यात्रा के दौरान मंजूरी दी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत बहरीन सहयोग लगातार मजबूत हो रहा है। श्री जयशंकर की बहरीन यात्रा कल संपन्न हो गई। यात्रा के दौरान डॉक्टर जयशंकर ने बहरीन के सुल्तान हमद बिन ईसा अल खलीफा और शहजादे तथा प्रधानमंत्री सलमान बिन हमद अल खलीफा से मुलाकात की। इस दौरान विदेश मंत्री ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शुभकामनाएं प्रेषित की। प्रधानमंत्री

0: मंत्रालय ने अल नीनो के संभावित प्रभाव और तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की। ये बैठक प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्र की अध्यक्षता में सेवा तीर्थ में हुई। बैठक में 15 से अधिक मंत्रालयों के सचिव और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। श्री मिश्र ने निर्देश दिया कि स्थिति की निरंतर निगरानी की जानी चाहिए और संवेदनशील जिलों पर मॉनसून या विलंबित मॉनसून के प्रभाव का आकलन राज्यों के समन्वय से किया जाना चाहिए। इससे आवश्यकता पड़ने पर सुधारात्मक कार्रवाई की जा सकेगी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतें स्थिर रहती हैं या घटती हैं, तो घरेलू पेट्रोल और डीजल की कीमतों में सकारात्मक वृद्धि होने की उम्मीद है। नई दिल्ली में आयोजित विकसित भारत सम्मेलन में श्री पुरी ने कहा कि भारत ने राजनयिक जुड़ाव, यथासमय नीतिगत हस्तक्षेप, घरेलू उत्पादन में वृद्धि और आयात में विविधता के माध्यम से हाल के दशकों में सबसे चुनौतीपूर्ण वैश्विक ऊर्जा संकटों में से एक का सफलतापूर्वक सामना किया है। प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस के कुछ बैंक खातों से कथित वित्तीय लेनदेन, अवैध धन संग्रह और संदिग्ध धन के हस्तांतरण के संबंध में कोलकाता और उसके आसपास के 5 परिसरों पर तलाशी ली। ये तलाशी विमानन क्षेत्र में कार्यरत निजी कंपनी केयरवेल समूह की कंपनियों, उसके निदेशकों और एक कथित चुनावी ट्रस्ट से जुड़े परिसरों पर की गई। अमेरिका ने ईरान पर ताजा हमले किए हैं। ये हमले होर्मुज जलडमरू मध्य में 3 व्यापारिक जहाजों पर हुई कार्रवाई के बाद किए गए। अमेरिका ने कहा कि होर्मुज में ईरान का वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बनाने के बाद ये हमले किए गए। फीफा फुटबॉल विश्व कप में अंतिम 16 में स्विट्जरलैंड ने कोलंबिया को हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। वैंकूवर में दोनों टीम निर्धारित समय में कोई गोल नहीं कर सकी। इसके बाद स्विट्जरलैंड ने पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से जीत दर्ज की। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिन तक उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, सौराष्ट्र, कच्छ, विदर्भ, राजस्थान और पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ भागों में भारी वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दक्षिण पश्चिम मानसून गुजरात के शेष भागों और राजस्थान तथा हरियाणा के कुछ और क्षेत्रों में पहुँच गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से बोल रहे हैं FM 100.2 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय सुबह के 7:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए जल संरक्षण विषय पर लघु वार्ता। श्रोताओं, कुछ ही लोग होते हैं जो बारिश में गीले होते हैं, बाकी तो सब देखकर ही बारिश का आनंद लेते हैं। श्रोताओं, बात बहुत गहरी है, क्योंकि कई बार कोई बात कहने, समझाने और बताने के लिए हमें बार बार कहनी पड़ती है, बार बार यह बताना पड़ता है कि हमें ऐसा करना चाहिए, हमें अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखना चाहिए, संरक्षित करना चाहिए, हमें आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए और अपने अंदर की आत्मीय शक्ति को राष्ट्रहित में उपयोग करना चाहिए। ऐसे ही कुछ बात है जल संरक्षण की। श्रोताओं, हमारे देश में ही नहीं, जल का संकट इस समय, इस आधुनिक विश्व में, वर्तमान युग में, पूरे विश्व में है। मैं आपको एक चीज बताऊं जो शायद बहुत कम लोग जानते हैं। यूरोप के लगभग 23 देशों में इस समय जल का संकट चल रहा है, और विशेष रूप से वहां क्या हुआ है यह भी बताऊं आपको कि यूरोप के लगभग 23 देशों में रिकॉर्ड ब्रेकिंग हीट वेव हुई है, और इस हीट वेव से अप्रत्याशित रूप से, मैं आपको बताऊं कि 20,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। श्रोताओं, यह हाल मैं आपको यूरोप का बता रहा हूं, जहां बड़े बड़े विकसित देश शामिल हैं, और उसका प्रमुख कारण है जल का संकट। और जल का संकट कब पैदा होता है? जब प्राकृतिक रूप से हम पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं,

क्योंकि ये पेड़ पौधे ही, क्योंकि जो जल है ना, ये हमें सीधे सीधे वर्षा के जल से प्राप्त होता है, वर्षा के रूप में प्राप्त होता है, क्योंकि जल एक प्राकृतिक स्रोत है और इसका सबसे बड़ा और प्राथमिक स्रोत जो है वो है वर्षा। भारत में इस समय वर्षा काल चल रहा है और जहां जहां वर्षा हो रही है, हम चाहते हैं कि हम इस वर्षा जल को संरक्षित करने में सफल रहें। हमने इस लघु वार्ता के शुरू में एक बात कही थी कि कुछ ही लोग होते हैं जो बारिश में चल पाते हैं, बाकी तो सब केवल गीले होते हैं। श्रोताओ, आपने भी अक्सर देखा होगा कि जब बारिश हो रही होती है तो हम सब लोग किसी सुरक्षित स्थान पर खड़े हो जाते हैं अपने आप को बारिश से बचाने के लिए। लेकिन इसी बीच हम देखते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उस बारिश में भी निकलते चले जाते हैं, भीगते हुए चले जाते हैं, गीले होते हुए चले जाते हैं। हम पर तो सिर्फ फुहार आती है, हम सिर्फ देखते ही रह जाते हैं कि यह क्या हुआ। श्रोताओ, अपने मन में इस बात का दृढ़ विश्वास लाइए, क्योंकि जल एक ऐसा प्राकृतिक स्रोत है, जल एक ऐसा आवश्यक तत्व है जो हमें इस पृथ्वी पर, इस वायुमंडल में एक ऐसे आवश्यक तत्व के रूप में सम्मिलित है जो हमें जीवन देता है। और जो जीवन जीने के लिए सबसे आवश्यक जो ऑक्सीजन गैस है वह हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होती है, और पेड़ पौधों के लिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए सूर्य का प्रकाश और जल एक प्रमुख आवश्यक तत्व है। इसलिए हम बार बार अनुरोध करते हैं कि यदि पृथ्वी पर जीवन है तो जल है तो कल है, इसलिए जल को आवश्यक रूप से संरक्षित करिए, यही हमारा अनुरोध है। श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे जल संरक्षण विषय पर लघु वार्ता। हम आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय सुबह के 7:10 होने को हैं। कुछ ही पलों में आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे।

0: महात्मा गांधी एक नाम नहीं, एक विचारधारा है जिसके बिना हमारा जीवन, हमारी नैतिकता और हमारे मूल्य शून्य है।
1: सबको सम्मति दे भगवान।
0: आइए चलें उस राह जो राह दिखाई बापू ने।
2: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशियाई संसद के संयुक्त सत्र को किया संबोधित। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज धार जिले के पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र में करेंगे भूमि पूजन। प्रदेश में मानसूनी बारिश का सिलसिला जारी, कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। और T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में इंग्लैंड ने भारत को 125 रनों से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल इंडोनेशियाई संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए दोनों देशों के हजारों वर्ष पुराने सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और समुद्री संबंधों को रेखांकित किया। श्री मोदी ने द्विपक्षीय साझेदारी के लिए गंगा महाकाम विजन प्रस्तुत करते हुए कहा कि इस विजन के 5 प्रमुख स्तंभ सभ्यतागत जुड़ाव, साझा विकास, सुरक्षा, समुद्री समृद्धि और ग्लोबल साउथ की मजबूत आवाज है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और इंडोनेशिया तीसरा सबसे बड़ा लोकतंत्र है और दोनों का अनुभव वैश्विक स्तर पर प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने इंडोनेशिया के एमास 2045 विजन और भारत के विकसित भारत

0: 2047 संकल्प को एक दूसरे का पूरक बताया। प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के बीच स्पेस टेक्नोलॉजी, सैटेलाइट लॉन्च, समुद्री सुरक्षा और डिजिटल क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। पीएम मोदी ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की वकालत की और ब्रिक्स में इंडोनेशिया की सदस्यता का स्वागत करते हुए कहा कि दोनों देश मिलकर ग्लोबल साउथ और भारत प्रशांत क्षेत्र को एक नई दिशा देंगे। श्री मोदी ने कहा,
1: आज भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की ग्रोथ को ड्राइव करने में बड़ी भूमिका निभा रही। जब दुनिया पर कोरोना का इतना बड़ा

0: ग्रोथ में जो स्पीड और स्केल है उसको एक लाइन में बताना हो तो मैं कहूंगा 1.4 बिलियन एस्पिरेशंस इन मोशन।
1: देश में सहकारी संघवाद को मजबूत करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल की गरिमामय उपस्थिति में दशकों पुराने नर्मदा जल विवाद का कल सौहार्दपूर्ण समाधान हो गया। नई दिल्ली में आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए। ये समझौता सरदार सरोवर परियोजना की निर्माण लागत साझा करने से जुड़े लंबित भुगतानों का वन टाइम सेटलमेंट करता है। गृह मंत्री श्री शाह ने कहा इसे जल सुरक्षा की दिशा में मील का पत्थर है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार के कारण राज्यों में आपसी समझ पड़ी है जिससे राष्ट्रीय नुकसान को रोका जा सका है। इससे पहले अपने दिल्ली दौरे के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कल रक्षा, रेल और कृषि मंत्रियों से भी मुलाकात कर राज्य के विकास पर चर्चा की। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज धार जिले के पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र में बहुराष्ट्रीय कंपनी लियोगोंग इंडिया के नए विनिर्माण संयंत्र का भूमि पूजन करेंगे। चीन की प्रमुख निर्माण उपकरण निर्माता कंपनी की भारतीय इकाई द्वारा 20 एकड़ क्षेत्र में विकसित किए जा रहे इस नए संयंत्र में 272 करोड़ रुपए का निवेश किया जा रहा है। प्रारंभिक चरण में यहाँ प्रतिवर्ष 6,500 निर्माण उपकरणों का उत्पादन होगा जिससे आयात पर निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। आपको बता दें कि गोंग वर्ष 2008 में पीथमपुर में 2008 से पीथमपुर में कार्यरत है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में यह विस्तार मध्य प्रदेश को देश का प्रमुख औद्योगिक निवेश और विनिर्माण केंद्र बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। आपातकालीन ऋण गारंटी योजना के पांचवें चरण के अंतर्गत 4 लाख से अधिक गारंटियां जारी की जा चुकी हैं और गारंटीकृत राशि 1,55,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गई है। हमारी संवाददाता ने बताया कि इस साल मई में शुरू की गई इस योजना से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई सबसे अधिक लाभान्वित हुए हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
2: वित्त मंत्रालय ने कहा कि यह योजना पश्चिम एशिया की भू राजनीतिक स्थिति से प्रभावित व्यवसायों को तेजी से और बड़े पैमाने पर सहायता प्रदान कर रही है। मंत्रालय ने बताया कि योजना ऋण देने वाली संस्थाओं को उधारकर्ताओं को अतिरिक्त ऋण देने के लिए जोखिम कम करने हेतु बनाई गई है। इससे व्यवसायों को नकदी प्रवाह में व्यवधान से उबरने और संचालन जारी रखने में मदद मिलती है। इसने वित्तीय संस्थानों को अधिक आत्मविश्वास के साथ ऋण देने में भी सक्षम बनाया है। इससे एमएसएमई के लिए अतिरिक्त ऋणों पर 100% और अन्य व्यावसायिक क्षेत्रों के लिए 90% गारंटी कवरेज प्रदान करके जरूरतमंद क्षेत्रों तक तरलता पहुंच सुनिश्चित होगी। वित्तीय सेवा विभाग ने योजना के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए देश भर में एक अभियान भी चलाया है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
1: ब्रेकिंग बस समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर, SI और सूबेदार के पदों पर भर्ती का इंतजार खत्म हो गया है। विभाग द्वारा कुल 500 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया था जिसमें से योग्यता के आधार पर 436 उम्मीदवारों को अंतिम रूप से चुन लिया गया है। इस प्रतिष्ठित परीक्षा में संजय परमार ने टॉप कर पहला स्थान हासिल किया है। इस बड़ी कामयाबी और भर्ती प्रक्रिया के पूरा होने पर DGP कैलाश मकवाणा ने खुशी जताई है। प्रदेश में मानसूनी बारिश का सिलसिला चल रहा है। कई जगहों पर खूब पानी बरस रहा है तो कुछ स्थानों में पानी की कमी बनी हुई है। पिछले 24 घंटों

में भोपाल, नर्मदापुरम, उज्जैन, जबलपुर और सागर सहित अधिकांश संभागों में झमाझम बारिश दर्ज की गई है। झाबुआ जिले में मानसून की सक्रियता से बारिश का दौर जारी है, जिससे किसानों के चेहरे खिल गए हैं। उधर मंडला जिले में लगातार हो रही वर्षा को देखते हुए कलेक्टर राहुल धोटे ने नर्मदा घाटों और शहर के जलभराव वाले इलाकों का औचक निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करने के निर्देश दिए हैं। खंडवा जिले में कलेक्ट्रेट परिसर में 24 घंटे सक्रिय रहने वाला जिला स्तरीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है, जिसका हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। वहीं गुना जिले में 1 जून से कल तक कुल 232.8 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की जा चुकी है। आज बड़वानी, धार, गुना सागर, विदिशा, रायसेन, सीहोर, राजगढ़ सहित कुछ जिलों में अति भारी बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की गई है। कल रात नॉटिंघम के ट्रेंट ब्रिज में खेले गए तीसरे टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में इंग्लैंड ने भारत को 125 रनों से हरा दिया। बता दें कि शनिवार को मैनचेस्टर में खेले गए दूसरे टी20 मैच में इंग्लैंड ने भारत को 4 विकेट से हराया था। दोनों टीमों के बीच पहला टी20 मैच बारिश की वजह से बिना किसी नतीजे के खत्म हुआ। सीरीज के आखिरी 2 मैच ब्रिस्टल और साउथहैम्पटन में खेले जाएंगे। इसके बाद भारत 3 मैचों की वनडे सीरीज में इंग्लैंड का सामना करेगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। रायसेन जिले में आधुनिक सुविधाओं से लैस सांची के नवनिर्मित रेलवे स्टेशन का 11 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन करेंगे। खंडवा जिले में सेफ क्लिक 2.0 अभियान के तहत मैराथन और साइबर रन का आयोजन कर नागरिकों को ऑनलाइन धोखाधड़ी और सुरक्षा ऐप के प्रति जागरूक किया गया। आगर मालवा जिले में आगामी सिंहस्थ महापर्व को देखते हुए कलेक्टर ने उद्यानिकी विभाग को अधिक से अधिक किसानों को फूलों की खेती के लिए प्रेरित करने के निर्देश दिए। डिंडौरी जिले में युवाओं और नए उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए आज 1 दिवसीय तेजस कार्यशाला का आयोजन कर स्टार्टअप इकोसिस्टम और फंडिंग पर मार्गदर्शन दिया गया। इंदौर जिले में आयोजित रोजगार मेले में 12 प्रतिष्ठित निजी कंपनियों द्वारा 300 युवाओं को विभिन्न पदों पर नौकरी के लिए चयनित कर रोजगार दिया गया। मंडला जिले में एमएसएमई उद्यमियों की क्षमता बढ़ाने के लिए 2 दिवसीय कंपोजिट वर्कशॉप का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सरकारी योजना और डिजिटल कॉमर्स पर लाइव सेवाएं मिलेंगी। भोपाल जिले में नगर निगम ने जिला प्रशासन के सहयोग से बड़ी कार्रवाई करते हुए शहर के विभिन्न क्षेत्रों से अवैध अतिक्रमण हटाए और 5 जर्जर मकानों को जमींदोज किया। सिंगरौली जिले में बलिया नाला में कोयला युक्त दूषित पानी बहाने पर कलेक्टर के निर्देश पर बड़ी कार्रवाई करते हुए खदान प्रबंधन पर 63 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। गुना जिले में समर्थन मूल्य पर ग्रीष्मकालीन मूंग और उड़द खरीदी के लिए 4 उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं, जहां नोडल अधिकारियों की निगरानी में पारदर्शी व्यवस्था रहेगी। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10

0: ये आकाश,
1: यह आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र FM 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर इस समय सुबह के 7:21 हुए हैं। श्रोताओं, प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम का आरंभ कर रहे हैं इस गीत से।

चिराग फिल्म में भी आप सुन रहे थे लता जी और साथियों को। गीत मजरूह सुल्तानपुरी का था और श्रोताओ आपको बता दें कि इस गीत को कंपोज किया था मदन मोहन साहब ने। फिल्म संगीत इस समय आप आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से सुन रहे हैं। श्रोताओ, उत्तम जगदीश के संगीत निर्देशन में हम आपको सुनवा रहे हैं लता जी के साथ सुरेश वाडकर का गाया गीत। गीत वर्मा मलिक का है, फिल्म का नाम है वारिस।

0: बारिस फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे, लता जी के साथ सुरेश वाडकर को, गीत वर्मा मलिक का था और संगीत उत्तम जगदीश का। श्रोताओं, फिल्म संगीत इस समय आप आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से सुन रहे हैं, एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।
1: बदलो बदलो, आदत बदलो।
2: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
1: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में श्रोताओं, एक बार फिर आपका स्वागत है। आपको बता दें कि फिल्म संगीत इस समय आप आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से सुन रहे हैं। श्रोताओं, बंदनी फिल्म का एक गीत आपको सुनवा रहे हैं, रफी साहब के साथ हैं आशा जी। गीत साहिर लुधियानवी का, संगीत रोशन का।

बंदनी फिल्म का यह गीत अभी आप सुन रहे थे रफी साहब के साथ आशा जी को। गीत साहिर लुधियानवी ने लिखा था और इस गीत को संगीतबद्ध किया था रोशन ने। श्रोताओं, फिल्म संगीत इस समय आप आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से सुन रहे हैं। बूट पॉलिश फिल्म का एक शास्त्रीय गीत आपको सुनवा रहे हैं मन्ना डे साहब की आवाज में। श्रोताओं, आपको बताएं कि मन्ना डे साहब शास्त्रीय गायन के एक अप्रतिम कलाकार हैं, एक अप्रतिम गायक हैं। और एक बार कुछ रफी साहब और मन्ना डे साहब के बीच में कुछ ऐसा प्रसंग चला कि शास्त्रीय गायन की परिकल्पना में यदि हम किसी गायक को देखें तो कौन से ऐसे गायक हैं, तो दो गायकों को इस श्रेणी में रखा गया, एक रफी साहब और दूसरे मन्ना डे साहब। मन्ना डे साहब कहते थे कि रफी साहब ज़्यादा अच्छा गाते हैं, रफी साहब कहते थे कि मन्ना डे साहब का शास्त्रीय गायन में कोई मुकाबला नहीं है। तो ये महानता होती है, और श्रोताओ, गायकी की महानता या किसी कलाकार की महानता यही होती है कि वो अपने आप को कुछ नीचे पायदान पर रखकर किसी को या अपने से आदरणीय व्यक्ति को उच्च पद प्रदान करते, उच्च श्रेणी प्रदान करते। यही इस जीवन की सुंदरता है और यही इस जीवन की कला है।

लपक झपक तू आरे बदरवा और लपक झपक तुम बरसो। श्रोताओ, ये शास्त्रीय गायन अभी आपने सुना मन्नाडे साहब की आवाज़ में। मैं समझता हूँ आपको आनंद आ गया होगा इस गीत में, क्योंकि इस शास्त्रीय गायन की कला यही है कि जब हम किसी चीज़ को आह्लादित करते हैं तो वह अपने आप उस गायकी के प्रभाव से उत्पन्न होने लगती है। ये बारिश भी उसी का एक परिणाम है। तो श्रोताओ, अब अपने रेडियो मित्र को आज्ञा दीजिए इस फिल्म संगीत के कार्यक्रम से। नमस्कार श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम फिल्म संगीत। हम आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से बोल रहे हैं FM 100.2 MHz पर। इस समय सुबह के 7:45 हुए हैं। लीजिए सुनिए आकाशवाणी शिवपुरी का विशेष सूचना परक दैनिक कार्यक्रम।

नमस्कार शिवपुरी कार्यक्रम सुन रहे सभी श्रोताओं का इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और श्रोताओं, आज मैं हूं आपके साथ आपका रेडियो मित्र योगेंद्र सिंह यादव। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि हम कार्यक्रम की शुरुआत एक पॉजिटिविटी के साथ करते हैं, एक सकारात्मक सोच के साथ हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आपको बताते हैं कि जीवन जीने की कला क्या है, जीवन को किस तरह से जीवन को जीना चाहिए और किस तरह से हमें अपने जीवन को आनंदित भी बनाना चाहिए। श्रोताओं, आज हम बात कर रहे हैं आधुनिक समय की। आधुनिक समय की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि हम लोगों के पास, यानी हम कहें कि मनुष्य के पास सुख सुविधाओं के सभी साधन हैं, लेकिन फुर्सत नहीं है। सुबह से लेकर रात तक व्यस्तता है। आखिर ऐसा क्या है जो हम लगातार दौड़ रहे हैं, एक ऐसी अदृश्य दौड़ रहे हैं, एक ऐसी अदृश्यता में दौड़ रहे हैं जिसका ना कोई अंत है ना कोई सिरा है। श्रोताओं, ये व्यस्तता आज के युग का एक स्टेटस सिंबल बन गई है। हम लोगों के बीच एक स्टेटस सिंबल है कि नहीं, मैं बहुत व्यस्त हूं, मेरे पास समय नहीं है। और लेकिन मैं आज आपको एक ऐसा उदाहरण दे रहा हूं। आपको एक प्राचीन काल में, या जब भी कभी दादी नानी या दादा दादी या नाना नानी ने आपको कभी बताया हो कि किसी जीवन की उपलब्धता को समझने के लिए, एक बहुत पुराना उदाहरण है बरनी का। कांच की बरनी होती है, कांच की बरनी का उदाहरण बहुत प्रसिद्ध है, जो आज भी हमारे जीवन की प्राथमिकताएं तय करने के लिए उतनी ही प्रासंगिक है। अब मैं आपको इस कांच की बरनी की कहानी सुनाता हूं, ध्यान से सुनिएगा। एक दिन एक कक्षा में प्रोफेसर साहब ने मेज पर कांच की एक बड़ी कांच की बरनी रखी।

और उसमें बड़े बड़े पत्थर भरे और विद्यार्थियों से पूछा कि क्या ये बरनी भर गई। विद्यार्थियों ने एक स्वर में कहा, जी सर भर गई। इसके बाद प्रोफेसर ने छोटे छोटे कंकड़ों को बरनी में डालना शुरू किया। कंकड़ पत्थरों के बीच की खाली जगहों में समा गए। फिर उन्होंने फिर पूछा बच्चों से, तो बच्चे फिर बोले कि हां सर भर गई। विद्यार्थी आश्चर्य से बोले, हां अब तो पूरी तरह भर गई। लेकिन फिर तीसरे चरण में प्रोफेसर साहब ने उसमें रेत डाल दी, जो सबसे छोटी छोटी जगह में भी भर गई। और अंत में उन्होंने क्या किया कि अंत में उन्होंने, उस प्रोफेसर साहब ने उसमें एक जग पानी उड़ेल दिया जो रेत में समा गया, और अब बरनी सचमुच पूरी तरह से भर चुकी थी। और यह कांच की बरनी हमारे जीवन की तरह है। यदि हमने सबसे पहले उसमें रेत भर दी होती तो बड़े पत्थरों के लिए कोई जगह नहीं बचती। जीवन भी ऐसा ही है। यदि हम अपना सारा समय और ऊर्जा छोटी छोटी अनावश्यक बातों में खर्च कर देंगे तो जो वास्तविकता में महत्वपूर्ण है उसके लिए कभी समय नहीं बचेगा। यहां बड़े पत्थर जो हैं वो स्वास्थ्य, परिवार, मित्र और आध्यात्मिकता का प्रतीक है। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि मित्रों को हमेशा अपने पास संजो कर रखिए, परिवार के लोगों को अपने साथ संजो कर रखिए, अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिए। अब जो बरनी में कंकड़ भरे गए थे वो कंकड़ क्या हैं? हम आपको बताएं कि वो कंकड़ हैं नौकरी, व्यवसाय, घर या गाड़ी जैसी भौतिक आवश्यकताओं के प्रतीक हैं। रेत क्या है? रेत एक सोशल मीडिया पर हमारी उपस्थिति जैसी बातों का प्रतीक है। और अंत में डाला गया पानी क्या है? पानी हमारे जीवन में हंसी और आनंद का प्रतीक है। और श्रोताओ, जीवन चाहे जितना भी गंभीर हो, व्यस्त क्यों ना हो, उसमें स्वयं को आनंदित रहने और दूसरों को आनंदित रखने के लिए स्थान होना ही चाहिए। और पानी उस पूरी वर्णी में वह स्थान है। पानी वही एक ऐसा माध्यम है जो हमें जीवन में आनंदित करता है। श्रोताओ, हम अपने भौतिक सुखों के कंकड़ तो बहुत इकट्ठा करते हैं, लेकिन स्वास्थ्य और शांति जैसे बड़े पत्थर खो बैठते हैं। अपनी प्राथमिकताएं बदलिए। दिन की शुरुआत प्रार्थना और सकारात्मक विचारों से कीजिए। दिन भर ईमानदारी से काम कीजिए, लेकिन शाम को घर लौटने पर परिवार के साथ प्रेमपूर्ण संवाद करना बिल्कुल मत भूलिएगा। श्रोताओ, यही प्रेमपूर्ण संवाद आपको जीवन में सकारात्मक बनाए रखेगा। यही बात होती है श्रोताओ। यहां मैं आपको एक बहुत लेटेस्ट एक उदाहरण देना चाहता हूं, जो बिल्कुल लेटेस्ट है। शायद कल के दिन, यानी बीते हुए कल ही किसी को पता हो तो पता हो, वरना मैं आपको बता रहा हूं। बहुत ध्यान से सुनिए इसी बात का उदाहरण कि किस तरह से जीवन के बीच में लोग अपने आप को सफल बना देते हैं। श्रोताओ, एक शादीशुदा महिला जीवन में घर की जिम्मेदारी, बच्चों की परवरिश और परिवार को संभालने में महिलाओं की पूरी उम्र गुजर जाती है। लेकिन इन सब के साथ एक महिला ने एक मिसाल ऐसी कायम कर दी। आप ध्यान से सुनिए, उस महिला का नाम है रुचि रानी। रुचि रानी ने बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा में 260वीं रैंक हासिल करके बिहार प्रशासनिक सेवा में एसडीएम के पद पर सिलेक्शन किया है। श्रोताओ, आप सोच सकते हैं ये रुचि रानी कौन है। रुचि रानी दो बच्चों की मां है और 4.5 साल पहले उन्होंने अपने मन में ठान लिया था कि मैं राज्य लोक सेवा आयोग की इस परीक्षा को पास करके ही दम लूंगी। एक उदाहरण बताता हूं। जब वो किचन में काम कर रही होती थी तो करंट अफेयर्स गुनगुनाती थी, करंट अफेयर्स मन में लाती थी और करंट अफेयर्स को बड़े ध्यान से सुनती थी। और इस बीच उन्होंने बताया कि रेडियो की जो न्यूज आती है, रेडियो पर जो न्यूज प्रसारित होती है, उस न्यूज को मैंने बहुत ध्यान से सुना है। श्रोताओ, क्या होता है कि कई बार सुनी हुई बात बहुत समय तक आपके मन और मस्तिष्क में बनी रहती है। आप कहते भी है ना कि मैंने ऐसा सुना था, मैंने ऐसा सुना है। तो यही बात होती है।

0: श्रोताओं, हमने अभी आपको जो कहा ना कि जीवन में जब आप सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते हैं तो दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप नहीं कर सकते। श्रोताओं, जानकारियां तो बहुत है मेरे पास, लेकिन समय कम होता है, और लेकिन इस समय मैं एक ब्रेक के लिए रुक रहा हूं।
1: बदलो बदलो, आदत बदलो।
2: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
1: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: ब्रेक के बाद इस कार्यक्रम में श्रोताओं एक बार फिर आपका स्वागत है। श्रोताओं, इस समय चल रहा है फीफा वर्ल्ड कप, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि T20 में इंग्लैंड ने भारत को 125 रनों से हरा दिया है। और श्रोताओं, ये खेल है, हार जीत चलती रहती है। कभी हारे हुए व्यक्ति को ये नहीं सोचना चाहिए कि वो जीत नहीं सकता। एक बहुत बड़े विद्वान ने कहा था, जो मैं आपको भी बोल रहा हूं, कि जब आप हार जाएं तो समीक्षा कीजिए, और जब आप जीत जाएं तो उसे दुनिया पर छोड़ दीजिए। बस यही जीवन है और यही विश्वसनीयता है। श्रोताओ, फीफा विश्व कप फुटबॉल में कल रात्रि खेले गए एक रोमांचक मैच में, अंतिम 16 का ये रोमांचक मैच था स्विट्जरलैंड और कोलंबिया के बीच, जो निर्धारित समय अवधि थी और उसके बाद जो अतिरिक्त समय दिया गया, खेल का रोमांच बढ़ता ही चला गया क्योंकि बराबरी पर खेल समाप्त हो रहा था। इसके बाद मामला पेनल्टी शूट आउट में गया, और पेनल्टी शूट आउट में क्या हुआ आपको पता है? स्विट्जरलैंड ने कोलंबिया को पेनल्टी शूट आउट में 4-3 से हरा दिया, यानी कि स्विट्जरलैंड कोलंबिया को हराकर अंतिम 16 में अपनी जगह उसने पक्की कर ली। तो श्रोताओं, ये फीफा विश्व कप की बात कर रहे थे, और अधूरे सपने के साथ विश्व कप से विदा हुए रोनाल्डो विदा हुए, और उधर कौन? नेमार, ब्राजील के खिलाड़ी। श्रोताओं, ब्राजील के सुप्रसिद्ध खिलाड़ी नेमार ने भी आखिरी बार उस कहा, और जब वो एक बहुत छोटी सी टीम थी नॉर्वे ने ब्राजील को जिस तरह से हरा दिया, वो आश्चर्यचकित करने वाला मैच था। और उस मैच को यदि जिस लोगों ने भी देखा, जिस श्रोता ने इस मैच को देखा, अति मतलब कहना चाहिए ना कि जब आप अपने ही गलती से, अपनी ही चूक से यदि आप हार जाएं तो आप क्या करेंगे, तो यही चूक हो गई। और अंततः सुप्रसिद्ध खिलाड़ी नेमार ने, जो कि ब्राजील से आते हैं, नेमार ने उस फुटबॉल स्टेडियम पर अपना सिर झुका दिया, झुककर बैठ गए। बहुत उदासी थी मन में, दिल में और चेहरे पर, लेकिन उन्होंने उसके बाद संन्यास की घोषणा कर दी। एक बहुत बड़ा खिलाड़ी इस फुटबॉल की दुनिया को अलविदा कह गया। श्रोताओं, ऐसे ही जब यह विश्व कप शुरू हुआ था, तब रोनाल्डो पुर्तगाल के खिलाड़ी हैं, पुर्तगाल से आते हैं, पुर्तगाल के विश्व प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं, विश्व फुटबॉल के बहुत बड़े खिलाड़ी हैं रोनाल्डो। तो उन्होंने इस विश्व कप की शुरुआत में कह दिया था कि यह मेरा आखिरी विश्व कप होगा। लेकिन श्रोताओं, स्पेन ने राउंड ऑफ 16 मुकाबले में पुर्तगाल को 1-0 से हराकर पुर्तगाल को बाहर कर दिया, और इस तरह से रोनाल्डो की जो विदाई थी वो विदाई इस मैच के साथ खत्म हो गई। श्रोताओं, भारत में है दुनिया का सबसे बड़ा ग्रामीण महिला नेटवर्क। ये आपको अजीब जरूर लगेगा, लेकिन बहुत ध्यान से सुनिए। भारत की दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के तहत देश भर में 10 करोड़ से ज्यादा महिलाएं स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हुई है। ये दुनिया का सबसे बड़ा ग्रामीण महिला नेटवर्क माना गया है, और भारत विश्व का सबसे बड़ा मिलेट उत्पादक देश भी है। दुनिया के 38% से 40% मोटे अनाज भारत में उगाए जाते हैं। विश्व बैंक ने भारत के आधार, जनधन और UPI मॉडल को ग्रामीण वित्तीय समावेशन का वैश्विक उदाहरण बताया है। साथ ही भारत की सार्वजनिक वितरण प्रणाली को दुनिया की सबसे बड़ी खाद्य सुरक्षा व्यवस्थाओं में गिना है, और भारत दुनिया का सबसे बड़ा सरकार

0: सरकारी आवास कार्यक्रम चला रहा है। 11 वर्षों में ग्रामीण परिवारों को 3,70,00,000 ग्रामीण परिवारों को मकान मिले हैं। श्रोताओं, ये भारत नहीं, ये पूरी दुनिया का सबसे बड़ा ग्रामीण नेटवर्क है। और अब आधार से जनरेट होगा यूएएन। यूएएन ईपीएफओ का एक अकाउंट नंबर होता है श्रोताओं, अब ये आधार से जनरेट होगा। ईपीएफओ पोर्टल अपग्रेडेशन के बाद इसे अब शुरू कर दिया गया है। और श्रोताओं, उच्च शिक्षा के लिए कुछ सरकार की छात्रवृत्ति योजनाएं हैं, मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना। और इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के मेधावी छात्रों को इंजीनियरिंग, मेडिकल, लॉ और अन्य उच्च शिक्षा की फीस में सहायता मिलती है। और निर्धारित शैक्षणिक योग्यता और आय संबंधी यदि आप शर्तें पूरी करते हैं तो आप जो है आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। श्रोताओं, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की ये अंतिम तिथि 31 जुलाई है। हम आपको अगले किसी कार्यक्रम में आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की बहुत विस्तार से जानकारी देंगे। और चलते चलते आपको बता दें कि इस समय जो बिजली बिल से संबंधित जो मामला है, टीओडी जो व्यवस्था लागू की गई है, उसमें मैं आपको बता दूं कि दिन में यदि आप बिजली इस्तेमाल करते हैं तो बिजली सस्ती होगी, लेकिन रात यानी कि शाम 6 बजे से रात 10 बजे के बीच बिजली महंगी होगी। इन सभी सूचनाओं के साथ आप अपने रेडियो मित्र योगेंद्र सिंह यादव को कार्यक्रम समाप्त करने की अनुमति दीजिए। नमस्कार।
1: नमस्कार शिवपुरी।
0: अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी शिवपुरी का विशेष सूचना परक दैनिक कार्यक्रम नमस्कार शिवपुरी। यह आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है। इस समय सुबह के 8 बजने को है। कुछ ही पलों में आप समाचार प्रभात सुनेंगे दिल्ली केंद्र से।
2: पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
3: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत और इंडोनेशिया ने आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। इस खतरे से निपटने के लिए निर्णायक और समन्वित अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का आह्वान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी मजबूत करने पर बल दिया। प्रधानमंत्री कार्यालय ने अल नीनो के प्रभाव की समीक्षा की। केंद्रीय मंत्रालयों से राज्यों के साथ मिलकर काम करने को कहा। प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस से जुड़े बैंक खातों में वित्तीय अनियमितताओं के सिलसिले में कोलकाता में कई स्थानों पर छापेमारी की। होर्मुज जल डमरू मध्य में जहाजों पर हमलों के बाद अमेरिका ने ईरान पर हमले किए। ईरानी तेल पर प्रतिबंधों में छूट भी वापस ली। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। भारत और इंडोनेशिया ने आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की है। दोनों देशों ने अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार आतंकवाद से निपटने के लिए निर्णायक और समन्वित प्रयासों का आह्वान किया है। जकार्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोयो सुबियांतो के बीच द्विपक्षीय वार्ता के बाद संयुक्त वक्तव्य में दोनों नेताओं ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अंतर्गत नामित आतंकवादियों और आतंकी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह किया। एक रिपोर्ट।
5: दोनों नेताओं ने आतंकवाद और अक्सर उग्रवाद की रोकथाम और इसका मुकाबला करने में सहयोग को और गहरा करने पर सहमति व्यक्त की। इसमें आतंकवाद के वित्त पोषण पर अंकुश लगाने, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धन शोधन विरोधी और आतंकवाद के वित्त पोषण का मुकाबला करने वाले मानकों के कार्यान्वयन को मजबूत करने, आतंकवादी समूह द्वारा उभरती प्रौद्योगिकियों का दुरुपयोग को रोकने और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से नफरत फैलाने से निपटने के उपाय शामिल है। उन्होंने आतंकवाद विरोधी सहयोग पर समझौता ज्ञापन के शीघ्र संपन्न होने का भी स्वागत की। इस पर जल्दी हस्ताक्षर होने का उम्मीद है। दोनों देश ने आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय अपराधी का रोकथाम, साइबर सुरक्षा, उभरती प्रौद्योगिकियों, रक्षा उद्योग

0: समुद्र सुरक्षा और अंतरिक्ष क्षेत्र में दोनों नेताओं ने विकसित भारत 2047 विजन और सहयोग बढ़ाने के लिए तीसरे भारत इंडोनेशिया सुरक्षा संवाद का स्वागत किया। इंडोनेशिया के इंडोनेशिया इमास 2045 एजेंडा के बीच समानताओं का भी उल्लेख किया। संदीप अंदाज गुप्ता, जकार्ता, इंडोनेशिया।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं। जकार्ता में इंडोनेशिया के सांसदों को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने साझा सभ्यतागत विरासत, लोकतांत्रिक मूल्यों और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण पर आधारित द्विपक्षीय संबंधों के एक नए युग का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने भारत को लोकतंत्र की जननी बताते हुए कहा कि भारत इंडोनेशिया के साथ लोकतांत्रिक संबंध मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने भारत की विकास यात्रा और 2047 तक विकसित भारत तथा 2045 तक स्वर्णिम इंडोनेशिया की परिकल्पनाओं के बीच तालमेल का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने व्यापार, निवेश, खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना और उभरती प्रौद्योगिकियों में सहयोग बढ़ाने का भी आह्वान किया।
2: यहाँ इंडोनेशिया में आप एमास 2045 के महत्वाकांक्षी विजन पर चल रहे हैं और भारत में हम विकसित भारत 2047 का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं। अपने इन लक्ष्यों को हासिल करने में हम एक दूसरे के पूरक बन सकते हैं। हम दुनिया की सबसे यूथफुल सोसाइटीज हैं। हम दुनिया की सबसे तेजी से आगे बढ़ रही बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में है। हम दोनों मेजर मैरिटाइम पावर्स है। हम ग्लोबल साउथ की मजबूत आवाज है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के साथ योग्याकार्ता में प्रम्बानन मंदिर का दौरा करेंगे। 9वीं शताब्दी में निर्मित प्रम्बानन मंदिर इंडोनेशिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर परिसर है और दक्षिण पूर्व एशिया की उत्कृष्ट स्थापत्य कलाकृतियों में से एक है। मूल रूप से इस परिसर में भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शिव को समर्पित 240 छोटे छोटे मंदिर हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री अपनी तीन देशों के दौरे के दूसरे चरण में आज मेलबर्न पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी अपने तीन दिन के दौरे के दौरान ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी प्रवासी भारतीयों की एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री माननीय एंथनी अल्बनीज के बीच होने वाली द्विपक्षीय वार्ता से दोनों देशों के संबंधों को नई गति मिलने की उम्मीद है। व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी और रणनीतिक सहयोग जैसे कई प्रमुख क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति की संभावना है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वस्तुओं और सेवाओं का द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2025 में 33 अरब अमरीकी डॉलर का आंकड़ा पार कर चुका है। अब दोनों देशों ने वर्ष 2030 तक इसे बढ़ाकर 100 अरब अमरीकी डॉलर तक पहुंचाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़ते हुए दोनों देशों की साझेदारी अब डिजिटल और उभरती प्रौद्योगिकियों पर भी केंद्रित हो रही है। इसका प्रमुख उदाहरण एयरट्रक द्वारा भारत में AI तैयार डेटा सेंटरों के विकास के लिए 30 अरब अमरीकी डॉलर के निवेश की प्रतिबद्धता है। वहीं 4.5 अरब अमरीकी डॉलर की प्रोजेक्ट सेरेस उर्वरक परियोजना मेक इन इंडिया और मेक इन ऑस्ट्रेलिया के सफल तालमेल का सशक्त उदाहरण है। मेलबर्न से सुहास की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं नवीन सक्सेना।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
2: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने अल नीनो के विभिन्न क्षेत्रों पर संभावित प्रभाव और तैयारियों की समीक्षा के लिए कल उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्र की अध्यक्षता में ये बैठक सेवा तीर्थ में हुई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में 15 से अधिक मंत्रालयों के सचिव और वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।
2: डॉक्टर पीके मिश्रा ने कहा कि स्थिति की लगातार निगरानी की जानी चाहिए और संवेदनशील जिलों पर मॉनसून या विलंबित मॉनसून के प्रभाव का आकलन राज्यों के समन्वय से किया जाना चाहिए, जिससे कि आवश्यकता पड़ने पर कार्रवाई की जा सके। उन्होंने कहा कि पशु चारे की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए भी कदम उठाए जाएं। संवेदनशील जिलों में पेयजल की पर्याप्त उपलब्धता पर भी श्री मिश्रा ने बल दिया। बैठक के दौरान मौसम विभाग के अधिकारियों ने कल तक जून और जुलाई में हुई कुल वर्षा की जानकारी दी। कृषि मंत्रालय के सचिव ने खरीफ मौसम के दौरान अल नीनो के संभावित प्रभाव से निपटने की तैयारियों की विस्तृत जानकारी दी। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने जिलों में स्थित कृषि विज्ञान केंद्रों के लिए अल नीनो के जोखिमों के प्रबंधन के लिए मानक संचालन प्रक्रियाएं जारी की हैं। संवेदनशील राज्यों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और किसान क्रेडिट कार्ड कवरेज के लिए अभियान शुरू किए गए हैं और कृषि वित्तीय सेवा और सहकारिता विभागों को समयबद्ध तरीके से अधिकतम लाभ निश्चित करने का सुझाव दिया गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ने लू, उच्च आर्द्रता और डेंगू के प्रकोप की निगरानी के लिए सलाह जारी की है। उपभोक्ता मामलों के विभाग ने चावल, गेहूं और दालों के खुदरा मूल्यों और बफर स्टॉक की पर्याप्तता की स्थिति की जानकारी दी। ग्रामीण विकास विभाग ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन के तहत पहली जुलाई से शुरू किए गए कार्यों की जानकारी दी। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस के कुछ बैंक खातों से संबंधित वित्तीय लेनदेन, अवैध रूप से धन संग्रह और संदिग्ध धन के हस्तांतरण के संबंध में कोलकाता और उसके आसपास के 5 परिसरों पर छापेमारी की है। एक रिपोर्ट।
3: प्रवर्तन निदेशालय की शुरुआती जांच के अनुसार संदिग्ध गतिविधियों के लिए विमानन और यात्रा कंपनियों के जरिए से 1.5 करोड़ रुपए से अधिक का हस्तांतरण किया गया। ईडी ने बताया कि अप्रैल 2023 से जून 2026 के बीच तृणमूल कांग्रेस के खातों से निजी विमानन कंपनी और उसकी संबद्ध इकाई को लगभग 160 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए गए। निजी कंपनी ने 2023 से इस वर्ष के बीच एक अन्य नवगठित संबद्ध इकाई को 82 करोड़ से अधिक का हस्तांतरण भी किया। ईडी ने कहा कि एम्ब्रियर लेगेसी 600 विमान और अगस्ता 109 SP हेलीकॉप्टर की खरीद के लिए निजी कंपनी की एक संबद्ध इकाई को बड़ी राशि हस्तांतरित की गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि इन खरीदों के लिए 112 करोड़ रुपए खर्च किए गए। ईडी ने आरोप लगाया कि अगस्ता हेलीकॉप्टर की खरीद के लिए कुछ विदेशी धन का भी उपयोग किया गया, जबकि अधिकांश धनराशि सीधे तृणमूल कांग्रेस के खातों से प्राप्त की गई। मामले की जांच जारी है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
1: अमरीका ने ईरान पर फिर हमले किए हैं। ये हमले होर्मुज जलडमरू मध्य में 3 व्यापारिक जहाजों पर ईरान की कार्रवाई के बाद किए गए। अमरीका ने कहा कि होर्मुज में ईरान का वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बनाने के बाद ये हमले किए गए हैं।
4: अमरीका के एक अधिकारी ने बताया कि अमरीका की सेना ईरान की वायु रक्षा प्रणालियों, तटीय निगरानी प्रणालियों, मिसाइलों और ड्रोन प्रक्षेपण स्थलों को भी निशाना बना रही है। ईरान में बंदरगाह सुविधाओं को भी निशाना बनाया जा रहा है। ईरान के उपविदेश मंत्री काजिम गरीब आबादी ने कहा कि अमरीका के ये ताज़ा हमले समझौते का उल्लंघन है। अमरीका ने शत्रुता समाप्त करने के लिए हुए अंतरिम समझौते के तहत ईरानी तेल की बिक्री को अधिकृत करने वाला लाइसेंस भी रद्द कर दिया है। एक अमरीकी अधिकारी ने कहा कि लाइसेंस इसलिए रद्द किया गया क्योंकि होर्मुज में ईरान की कार्यवाही अस्वीकार थी। ईरान के विदेश मंत्रालय ने लाइसेंस रद्द करने के अमेरिका के कदम की निंदा करते हुए कहा कि यह अंतरिम समझौते का उल्लंघन है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। वैंकूवर में स्विट्जरलैंड और कोलंबिया अतिरिक्त समय के समाप्त होने तक कोई गोल नहीं कर सके। इसके बाद पेनल्टी शूटआउट में स्विट्जरलैंड ने 4-3 से जीत दर्ज की। अंतिम 16 के एक अन्य मैच में अर्जेंटीना ने मिस्र को 3-2 से हरा दिया। मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिन में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के उत्तरी अरब सागर, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के शेष हिस्सों में पहुंचने की संभावना व्यक्त की है। उप हिमालयी पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों सिक्किम महाराष्ट्र तटीय कर्नाटक पूर्वी राजस्थान गुजरात कोंकण और गोवा तथा दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
5: धन्यवाद मुकेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंडोनेशिया की संसद में संबोधन सभी अखबारों में प्रमुखता से है। जनसत्ता के अनुसार विकास का मार्ग अपनाता है भारत, विस्तारवाद का नहीं। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, इंडोनेशिया के तर्कश में सजेंगे भारत के अस्त्र, ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइलें खरीदने का समझौता हुआ। देशबंधु के अनुसार मोदी को मिला इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान। हिंदुस्तान ने साक का सवाल शीर्षक से संपादकीय में दिया है कि श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से महासचिव चंपत राय और अनिल मिश्र की विदाई देर से ही सही पर एक दुरुस्त फैसला है। जो घटित हो चुका है उसका फैसला अब कानून और अदालत को करना है, मगर जो आगत है उसे निष्कलुष रखने का दायित्व ट्रस्ट के कंधों पर ही रहेगा। दैनिक जागरण का शीर्षक है, अहमदाबाद सिलसिलेवार बम धमाकों के 38 दोषियों की मौत की सजा बरकरार, गुजरात हाईकोर्ट ने विशेष कोर्ट का फैसला सही ठहराया, उम्र कैद पाए दोषियों को भी राहत नहीं। पंजाब केसरी के अनुसार गृह मंत्री अमित शाह ने किया 70 लाख पौधारोपण का आगाज, दिल्ली बनेगी और हरी भरी, 300 इलेक्ट्रिक बसों को दिखाई हरी झंडी, एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत गृह मंत्री ने किया दिल्ली रिज के पुनर्जीवन का शुभारंभ। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, क्रायोजेनिक इंजन का इसरो ने सफल परीक्षण किया, गगनयान में भी होगा इस्तेमाल। परीक्षण का उद्देश्य इंजन की उड़ान के लिए पूरी तरह तैयारी का पता लगाना था। अमर उजाला की सुर्खी है, भारी बारिश, दिल्ली जयपुर हाईवे पर सड़क धंसी, 12 किलोमीटर तक लंबा जाम, दोपहर 11:30 बजे 47.5 डिग्री जैसी तपिश। आसमान से राहत बरसते ही शिमला की तरह सुहानी होती गई दिल्ली की शाम।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, भारत और इंडोनेशिया ने आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की, इस खतरे से निपटने के लिए निर्णायक और समन्वित अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का आह्वान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने, दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी मजबूत करने पर बल दिया। प्रधानमंत्री कार्यालय ने अल नीनो के प्रभाव की समीक्षा की, केंद्रीय मंत्रालयों से राज्यों के साथ मिलकर काम करने को कहा, और फीफा फुटबॉल विश्व कप में अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. India and Indonesia strongly condemn terrorism in all its forms and call for decisive and coordinated international efforts to combat this menace. Prime Minister Narendra Modi becomes first Indian Prime Minister to address Indonesian Parliament, calls for deeper strategic partnership between the two countries. Prime Minister's office reviews El Nino impact, asks central ministries to work with states on preparedness measures. ED conducts searches at multiple locations in Kolkata in connection with financial irregularities involving bank accounts linked to Trinamool Congress. US launches strikes against Iran after attacks on vessels in Strait of Hormuz, also revokes its sanctions relief on Iranian oil. And in football, Argentina and Switzerland enter quarterfinals of FIFA World Cup. India and Indonesia have strongly condemned terrorism in all its forms and called for decisive, coordinated international efforts to combat the threat in accordance with international law. In a joint statement issued after bilateral talks between Prime Minister Narendra Modi and Indonesian President Prabowo Subianto in Jakarta, the two leaders urged action against globally proscribed terrorists and terrorist organizations, including those designated under the UN Security Council's 1267 Sanctions Committee. We have more from a correspondent.
7: The two leaders agreed to deepen cooperation in preventing and countering terrorism and violent extremism conducive to terrorism. The cooperation will include measures to curb terror financing, strengthen implementation of internationally agreed anti-money laundering, and countering the financing of terrorism standards, prevent the misuse of emerging technologies by terrorist groups, and tackle online radicalization and recruitment through digital platforms. Reaffirming a zero-tolerance approach to terrorism, the two sides pledged to continue disrupting terror financing networks and enhance bilateral and multilateral cooperation, including through the United Nations and the Financial Action Taken Force, FATF. Recognizing the links between terrorism and transnational organized crime, India and Indonesia agreed to strengthen information sharing and exchange of best practices in line with their domestic laws and international obligations. They also welcomed the early conclusion of Memorandum of Understanding on Counter-Terrorism Cooperation, which is expected to be signed soon. The two countries welcomed the planned third India-Indonesia Security Dialogue as a platform to expand cooperation in counter-terrorism, transnational crime, cyber-security, emerging technologies,

सूरत आपकी सुहाना ला, डम डम डीगा डीगा। श्रोताओं, छलिया फिल्म का ये बेहतरीन गीत आप सुन रहे थे मुकेश की आवाज़ में। और आपको बता दें कि फरमाइशी फिल्म गीत इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से। ये जो गीत अभी आपने सुना, इस गीत को सुनने की फरमाइश की थी 40 नंबर कोठी पुरानी शिवपुरी से राशिद खान, बेगम सूफिया बानो, फुद्दन भाई और उनके तमाम पारिवारिक मित्रगण, फिजिकल रोड शिवपुरी से सादिक खान मेवाती और उनके सभी पारिवारिक मित्रगण, हाजी सन्नू मार्केट ए बी रोड शिवपुरी से जाहिद खान, बसीमा खान और उनके सभी पारिवारिक मित्रगण, रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, कनेरा मोहल्ला पटियाला से बत्ता परिवार के लोग हैं, मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन, पलक, करण, जीतू, निहारिका, हार्दिक और वंश बत्ता। श्रोताओं, अब हम आपको जो गीत सुनवाने जा रहे हैं उस गीत को सुनने की फरमाइश की है छत्रपति संभाजी नगर से राजेश सावले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, शीतल राजेश, प्रियदर्शनी कॉलोनी शिवपुरी से योगेंद्र प्रताप सिंह यादव, कृष्ण कुमार शर्मा, इप्सिता और स्नेहा झा। इन सब की फरमाइश पर लीजिए सुनिए अलका याग्निक की आवाज में ये गीत। गीत अनजान का है, संगीत बप्पी लहरी का। श्रोताओं, आपको बता दें कि ये अनजान साहब कौन है। इस वर्तमान युग के सुप्रसिद्ध गीतकार समीर के पिता हैं अनजान। इनका लिखा, अलका याग्निक का गाया ये गीत।

कब तक चुप रहूंगी। श्रोताओं, इस फिल्म में भी आप सुन रहे थे अलका याग्निक को। गीत अंजान साहब का था और संगीत बपी लहरी का। आपको बता दें कि फरमाइशी फिल्मी गीत इस समय आप आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से सुन रहे हैं। तराना फिल्म का एक गीत आपको सुनवा रहे हैं। शैलेंद्र सिंह के साथ हैं उषा मंगेशकर। तिलक राज थापर ने इस गीत को लिखा है और राम लक्ष्मण का संगीत है और इस गीत को सुनने की फरमाइश की है। नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका, नूपो, ऋषिका और रॉबिन। गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव, मीका, बलविंदर बिरक, जीतेक बिरक और मीका बिरक। मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवाहणकर, सरिता गवाहणकर, प्रिंस एकांश गवाहणकर। बदलापुर मुंबई से सिद्धांत गवाहणकर, प्रणीता गवाहणकर, अर्जुन गवाहणकर। और आकाश हाइट्स बहादुरपुरा नागपुर से वैशाली, शैलेश गवाहणकर, सुमित गवाहणकर और कुमारी ध्वनि गवाहणकर। इन सबकी फरमाइश पर तराना फिल्म का ये गीत लीजिए, सुनिए।

तराना फिल्म में भी आप सुन रहे थे शैलेंद्र सिंह के साथ उषा मंगेशकर को, गीत तिलकराज थापर का था और संगीत राम लक्ष्मण का। फरमाइशी फिल्मी गीत इस समय आप आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से सुन रहे हैं। श्रोताओं, फूल और कांटे इस फिल्म का एक गीत आपको सुनवा रहे हैं कुमार शानू के साथ अनुराधा पौडवाल को। गीत रानी मलिक ने लिखा है और संगीतबद्ध किया है नदीम श्रवण ने और इस गीत को सुनने की फरमाइश की है। सदर बाजार टेकरी रोड शिवपुरी से यशवंत जैन, सुनील जैन, अक्षत जैन, पंकज जैन, प्रदीप शुक्ला, विनोद कुमार शर्मा, सुनील शर्मा, राजेश भार्गव और उनके तमाम मित्रगण। इसी गीत को सुनने की फरमाइश की है सकतपुर रोड पुरानी छावनी जिला गुना से कमल सिंह कुशवाहा, राजकुमार कुशवाहा, गोलू, कृष्णा, शिवा, वर्षाबाई, पूनमबाई, सुमन, निकिता और मोहिनी कुशवाहा। अंबेडकर चौक खुरई से राम सखी, परमानंद, सौरव, गौरव, एलपी रोहित, लल्लू राम, पूरन रोहित, छोटू, डुंडुन और इनके पारिवारिक मित्रगण। अमरपुर पेंडरा रोड छत्तीसगढ़ से दीपक कुमार, रोशन कुमार, बंशीलाल और दिव्यांश श्रीवास्तव। इन सब की फरमाइश पर लीजिए सुनिए फूल और कांटे फिल्म का।

फूल और कांटे। श्रोताओं, इस फिल्म में भी आप सुन रहे थे कुमार शानू के साथ अनुराधा पौडवाल को। गीत रानी मलिक का था और संगीत नदीम श्रवण का। फरमाइशी फिल्म गीत इस समय आप आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से सुन रहे हैं। आपको पहले भी कहीं देखा है, श्रोताओं, यह है फिल्म का नाम और इसमें हम आपको सुनवा रहे हैं उदित नारायण और साथियों का गाया गीत। गीत आनंद बख्शी ने लिखा है और संगीतबद्ध किया है निखिल वेने ने, और इस गीत को सुनने की फरमाइश की है। 40 नंबर कोठी पुरानी शिवपुरी से राशिद खान, बेगम सूफिया बानो और फुद्दन भाई, फिजिकल रोड शिवपुरी से सादिक खान मेवाती और उनके सभी पारिवारिक सदस्यगण, हाजी सनू मार्केट एबी रोड शिवपुरी से जाहिद खान, बसीमा खान और उनके सभी पारिवारिक मित्रगण, इसी गीत को सुनने की फरमाइश की है। प्रियदर्शिनी कॉलोनी शिवपुरी से योगेंद्र प्रताप सिंह यादव, कृष्ण कुमार शर्मा, इप्सिता और स्नेहा झा और इनके तमाम मित्रगण, छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, जावेंद्र कुमार वर्मा, इन सब की फरमाइश पर लीजिए सुनिए ये गीत।

आपको पहले भी कहीं देखा है। श्रोताओं, इस फिल्म में भी आप सुन रहे थे उदित नारायण की आवाज में ये गीत। गीत आनंद बख्शी का था और संगीत निखिल वेने का। फरमाइशी फिल्म गीत इस समय आप आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से सुन रहे हैं। श्रोताओं, काला बाजार फिल्म का एक गीत आपको सुनवा रहे हैं रफी साहब के साथ गीता दत्त को। गीत शैलेंद्र का, संगीत SD बर्मन का। कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति लीजिए

कालाबाजार फिल्म में रफ़ी साहब के साथ गीता दत्त के गाए इस गीत के साथ ही फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम अब यहीं संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से बोल रहे हैं FM 100.2 MHz पर। इस समय सुबह के 9 बजे हैं। आकाशवाणी शिवपुरी से प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम लोक रंग। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में आज हम आपको ममता गोस्वामी के अलावा छोटेलाल प्रजापति और साथियों के गाए लोकगीत सुनवाएंगे। कार्यक्रम का आरंभ कर रहे हैं ममता गोस्वामी के गाए इस गीत से। लीजिए, सुनिए।

ममता गोस्वामी की आवाज में भी आप सुन रहे थे ये लोकगीत। श्रोताओं, आपको बता दें कि लोक संगीत का कार्यक्रम लोक रंग इस समय आप आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से सुन रहे हैं। ममता गोस्वामी की आवाज में सुनिए एक और लोकगीत।

ममता गोस्वामी की आवाज में भी आप सुन रहे थे ये लोकगीत। श्रोताओ, लोक संगीत का कार्यक्रम लोक रंग इस समय आप आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से सुन रहे हैं। ममता गोस्वामी की आवाज में एक और लोकगीत आपको सुनवा रहे हैं, लीजिए।

ममता गोस्वामी की आवाज में अभी आप सुन रहे थे ये लोकगीत। श्रोताओं, लोक संगीत का कार्यक्रम लोकरंग इस समय आप आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से सुन रहे हैं। श्रोताओं, अब हम आपको सुनवा रहे हैं छोटे लाल प्रजापति और साथियों के गाए लोकगीत।

छोटेलाल प्रजापति और साथियों की आवाज में अभी आप सुन रहे थे ये लोकगीत। श्रोताओं, लोक संगीत का कार्यक्रम लोकरंग इस समय आप आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से सुन रहे हैं। छोटेलाल प्रजापति और साथियों की आवाज में आपको सुनवा रहे हैं ये दादा।

छोटेलाल प्रजापति और साथियों की आवाज में अभी आप सुन रहे थे ये लोकगीत। लोक संगीत का कार्यक्रम लोकरंग इस समय आप आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से सुन रहे हैं। कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति लीजिए, सुनिए।

छोटेलाल प्रजापति और साथियों के गाए इस लोकगीत के साथ ही लोक संगीत का कार्यक्रम लोकरंग अब यहीं संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से बोल रहे हैं FM 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय सुबह के 9:30 हुए हैं। आकाशवाणी शिवपुरी से प्रस्तुत है फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश। इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है और श्रोताओं आज मैं हूं आपके साथ आपका रेडियो मित्र योगेंद्र सिंह यादव। कार्यक्रम की शुरुआत करें इस गीत से।

आग और शोला। श्रोताओं, इस फिल्म में भी आप सुन रहे थे मनहर उदास के साथ अनुराधा पौडवाल को। गीत आनंद बख्शी ने लिखा था और संगीतबद्ध किया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। इस गीत को सुनने की फरमाइश की थी हाजी सन्नू मार्केट एबी रोड शिवपुरी से जाहिद खान, वसीमा खान और उनके सभी पारिवारिक सदस्यगण। फिजिकल रोड शिवपुरी से सादिक खान मेवाती और उनके सभी पारिवारिक मित्रगण। 40 नंबर कोठी पुरानी शिवपुरी से राशिद खान, बेगम सूफिया बानो, फुद्दन भाई और उनके सभी पारिवारिक सदस्य। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा और उनके बहुत सारे मित्रगण। अंबेडकर चौक खुरई से राम सखी, परमानंद, सौरव, गौरव, एलपी रोहित, लल्लू राम, पूरन रोहित, छोटू, डुंडुन और इनके पारिवारिक मित्रगण। इन सब की फरमाइश पर अभी आप सुन रहे थे आग और शोला फिल्म में मनहर उदास के साथ अनुराधा पौडवाल को। श्रोताओं, फरमाइशी फिल्मी गीत इस समय आप आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से सुन रहे हैं। लम्हाई फिल्म का एक गीत आपको सुनवा रहे हैं। लता जी के साथ है ईला अरुण और साथी। गीत आनंद बख्शी का, संगीत शिव हरि का और इस गीत को सुनने की फरमाइश की है। छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, झावेंद्र कुमार वर्मा और महादेव घाट अम्बलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारणी ठाकुर, सूरज ठाकुर, सुजला, ज्योति और रियांश ठाकुर। नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नूपुर, ऋषिका और रॉबिन। इन सब की फरमाइश पर लीजिए सुनिए लम्हे फिल्म में लता जी के साथ ईला अरुण और

0: लम्हे फिल्म में भी आप सुन रहे थे लता जी के साथ ईला अरुण और साथियों को। गीत आनंद बख्शी का था और संगीत शिव हरि का। फरमाइशी फिल्म गीत इस समय आप आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से सुन रहे हैं। श्रोताओं एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।
1: भाई एक शेर के चेहरे का टैटू बना दो यहाँ शोल्डर पे।
2: अरे रुको रुको, पहले चेक तो कर लो कि निडल नई और डिस्पोजेबल है या नहीं।
1: मतलब
2: ये कि संक्रमित सुई से टैटू बनवाने या किसी और तरह की निडल शेयरिंग से HIV एड्स और अन्य संक्रमक बीमारियों के संक्रमण का खतरा होता है, तो ये इंश्योर करें कि सिर्फ नई और डिस्पोजेबल निडल सिरिंजेस का ही यूज कर रहे हो।
1: ये तो बड़ी अच्छी बात बताई है भाई तुमने। अभी भी और आगे भी मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि डिस्पोजेबल नीडल सिरिंजेस ही यूज हो।
3: आप भी सतर्कता अपनाएं और HIV के संक्रमण से खुद को बचाएं। अधिक जानकारी के लिए 1097 पर कॉल करें। मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
0: फरमाइशी फिल्म गीत इस समय आप आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से सुन रहे हैं। श्रोताओं इस कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है। अब हम आपको सुनवा रहे हैं विजू शाह के संगीत निर्देशन में आनंद बख्शी ने एक खूबसूरत गीत लिखा है।

आवाजें दी हैं उदित नारायण के साथ अलका याग्निक ने। फिल्म का नाम है मोहरा और इस गीत को सुनने की फरमाइश की है सदर बाजार टेकरी रोड शिवपुरी से। यशवंत जैन, सुनील जैन, अक्षत जैन, पंकज जैन, प्रदीप शुक्ला, विनोद कुमार शर्मा, सुनील शर्मा, राजेश भार्गव और उनके तमाम मित्र, गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव, मीका, बलविंदर बिरक, जीतेक बिरक और मीका बिरक, प्रिय दर्शनी कॉलोनी टीवी टावर रोड शिवपुरी से योगेंद्र प्रताप सिंह यादव, कृष्ण कुमार शर्मा, इप्सिता और स्नेहा झा और उनके तमाम मित्रगण, इन सब की फरमाइश पर लीजिए सुनिए मोहरा फिल्म का ये

0: मोहरा फिल्म में भी आप सुन रहे थे उदित नारायण के साथ अलका याग्निक को गीत, आनंद बख्शी कथा, संगीत बिजू शाह का। श्रोताओं, फरमाइशी फिल्मी गीत इस समय आप आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से सुन रहे हैं। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।
1: रितेश, तुम्हारे पापा की तबीयत कैसी है?
2: डॉक्टर कह रहे हैं कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, ब्लड भी चढ़ाना पड़ेगा शायद, लेकिन मुझे डर है कि हॉस्पिटल का ब्लड सेफ है या।
1: अगर लाइसेंस हॉस्पिटल या लाइसेंस ब्लड बैंक है तो सेफ ही होगा, क्योंकि ट्रांसफ्यूजन के लिए ब्लड स्टोर करने की अथॉरिटी सिर्फ लाइसेंस ब्लड बैंक और लाइसेंस हॉस्पिटल के पास ही है। और ये भी सुनिश्चित कर लेना कि ब्लड HIV टेस्टेड है या नहीं, क्योंकि असुरक्षित ब्लड ट्रांसफ्यूजन से HIV/AIDS जैसे कई बीमारियों की संक्रमण का भी डर रहता है।
2: अच्छा, अब तो मैं लाइसेंस ब्लड बैंक या हॉस्पिटल से ही ब्लड लूंगा।
3: हाँ, और इस बारे में और जानकारी चाहिए हो तो 1097 पर कॉल कर लेना।
4: मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
0: फरमाइशी फिल्मी गीत इस समय आप आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से सुन रहे हैं। श्रोताओं, 1990 के दशक में एक जोड़ी आई, नदीम श्रवण की संगीत में जोड़ी, और इस जोड़ी के साथ गीतकार आए समीर और गायक कलाकार आए कुमार शानू और अनुराधा पौडवाल। इन सब की जुगलबंदी में एक गीत आपको सुनवा रहे हैं, लीजिए सुनिए।

जान की कसम। श्रोताओं, इस फिल्म में अभी आप सुन रहे थे कुमार शानू के साथ अनुराधा पौडवाल को गीत समीर का था, संगीत नदीम श्रवण का। फरमाइशी फिल्मी गीत इस समय आप आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से सुन रहे हैं। कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति में हम आपको सुनवा रहे हैं रतन फिल्म में जोहरा अंबाला और साथियों का गाया ये गीत। इसे लिखा है DN मधोक ने और संगीतबद्ध किया है नौशाहत साहब ने।

0: रतन फिल्म में जोहरा अंबाला और साथियों के गाए इस गीत के साथ ही फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश अब यहीं संपन्न हुआ। इसके साथ ही अब अपने रेडियो मित्र योगेंद्र सिंह यादव को कार्यक्रम समाप्त करने की अनुमति दीजिए। नमस्कार श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश। हम आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय सुबह के 10 बजने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे कार्यक्रम जिले की चिट्ठी। इसका अनुप्रसारण हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से कर रहे हैं।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है दमोह जिले की चिट्ठी। आलेख अनिल जैन, वाचन स्वर दीपा सिंह। दमोह जिले के लिए बीता महीना विकास, संस्कृति, कृषि और जन स्वास्थ्य गतिविधियों पर आधारित समसामयिक रूप से समृद्ध रहा। पिछले दिनों हुई वर्षा के बाद गर्मी के तपन और तेज धूप से अब जिले वासियों को राहत मिली है। बारिश की बूंदों और रिमझिम बारिश ने नदियां, बांध, कुओं में न केवल जल भर दिया है बल्कि चारों तरफ हरियाली हरियाली नजर आने लगी है। पर्यटक प्रकृति की सुंदरता को देखने और लुत्फ उठाने सिंग्रामपुर, सिलापरी, मटककुंड, भदभदा और राजनगर जलाशय सहित जिले की प्रसिद्ध लघु वृहद सिंचाई परियोजनाओं की तरफ रुख कर रहे हैं। मौसम विशेषज्ञ राजेश कपसे ने आगामी समय में जिले में भारी बारिश की संभावना जताई है। जिले में सोयाबीन की बोनी के लिए 10 से 12 जुलाई तक का समय सबसे उपयुक्त माना जाता है। जिन खेतों में पानी भर गया है वहां से जल निकासी कर दें ताकि खेत जल्दी तैयार हो सके। जिले में खरीफ सीजन की बोनी शुरू हो चुकी है। कृषि विभाग ने इस साल जिले में 3,950 हेक्टेयर क्षेत्र में खरीफ फसलों की बोनी की है जो पिछले वर्ष से लगभग 1,000 हेक्टेयर से अधिक है। इसमें धान 80,500 हेक्टेयर, मक्का 40,000 हेक्टेयर, उड़द 60,000 हेक्टेयर और सोयाबीन 1.25 लाख हेक्टेयर में बोई जानी है। खरीफ सीजन के बीच किसानों को राहत देते हुए जिले में 2600 मीट्रिक टन डीएपी की खेप पहुंच गई है। जिले में आई एफको की डीएपी खेप में से 2000 एमटी विपणन संघ, 1200 मीट्रिक टन सहकारी समितियां और 800 एमटी मार्कफेड गोदाम में भेजे गए हैं। वर्तमान में समितियों में 1200 मीट्रिक टन पहुंच चुका है। इसके अलावा 1000 मीट्रिक टन डीएपी मिलने की संभावना है। वहीं 100 एमटी डीएपी पहले से स्टॉक में है। कुल मिलाकर समितियों के पास करीब 2300 मीट्रिक टन डीएपी उपलब्ध होगा। वहीं जिले में करीब 2000 मीट्रिक टन यूरिया की भी स्टॉक मौजूद है। दमोह जिले में साइबर अपराधों के प्रति जन जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से पिछले दिनों सेफ क्लिक 2.0 साइबर जागरूकता मैराथन का आयोजन किया गया जिसमें सांसद राहुल सिंह लोधी, विधायक दमोह जयंत कुमार मलैया ने भी भाग लिया। मैराथन के माध्यम से ऑनलाइन ठगी, फिशिंग, साइबर फ्रॉड और सोशल मीडिया से जुड़े खतरों के प्रति आमजन को जागरूक करते हुए सुरक्षित डिजिटल व्यवहार अपनाने का संदेश दिया गया। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के अंतर्गत जिले के 256 श्रद्धालु पिछले दिनों हरिद्वार, ऋषिकेश की तीर्थ यात्रा पर रवाना हुए। इस दौरान दमोह रेलवे स्टेशन पर प्रदेश की संस्कृति, पर्यटन, धार्मिक न्यास, धर्म राज्य मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी, पशुपालन और डेयरी विभाग राज्य मंत्री लखन पटेल, दमोह सांसद राहुल सिंह लोधी और दमोह विधायक जयंत कुमार मलैया ने तीर्थयात्रा ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और सभी श्रद्धालुओं को मंगलमय तथा सुरक्षित यात्रा की शुभकामनाएं दी। कुछ दिनों पहले दमोह नगर के प्रसिद्ध बेलाताल जलाशय में जलगंगा संवर्धन अभियान 2026 का समापन हुआ जिसमें राज्य मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी और पूर्व कैबिनेट मंत्री रामकृष्ण कुसमारिया और दमोह विधायक जयंत मलैया ने भाग लिया। इसी दौरान मंत्री ने जल संरक्षण और संवर्धन की आमजन को शपथ दिलाई। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में जल संरक्षण जन जन का अभियान बन गया है। आपको बता दें कि सिंचाई परियोजनाओं से न केवल दमोह की तस्वीर बदली है बल्कि किसानों की आय भी बढ़ी है। प्रदेश भर में 3.62 लाख से अधिक जल संरक्षण कार्य पूरे हुए हैं। 10,514 करोड़ रुपए की लागत से जल संरचनाओं के संरक्षण को नई गति मिली है। दमोह नगर टर्फ हॉकी स्टेडियम में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया गया। स्वस्थ आयु के लिए योग थीम पर सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम में पशुपालन, डेयरी राज्य मंत्री लखन पटेल और विधायक जयंत मलैया सहित गणमान्य नागरिकों ने भाग लिया। राज्य मंत्री पटेल ने सभी नागरिकों से योग को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाकर स्वस्थ और निरोगी जीवन जीने की अपील की है। इस अवसर पर पश्चिम बंगाल से प्रसारित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लाइव संबोधन को भी उपस्थित जनों द्वारा देखा और सुना गया। जिले में पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत कलेक्टर प्रताप नारायण यादव ने जिला अस्पताल में बच्चों को दवाई पिलाकर की। जन्म से लेकर 5 साल तक के बच्चों को दवा पिलाई गई। अभियान के दौरान लक्ष्य पूर्ति के लिए 1339 बूथ बनाए गए थे। दमोह जिले के हटा की धरती पर जन्मे तबला वादक रामेंद्र सिंह सोलंकी का चयन प्रतिष्ठित उस्ताद बिस्मिल्लाह खां पुरस्कार के लिए किया गया है। रामेंद्र सिंह हटा स्थित

0: में शिक्षक रहे अजय सिंह सोलंकी के सुपुत्र हैं। इन्होंने न केवल अपने देश में बल्कि विदेश में भी न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और दक्षिण कोरिया में तबला वादन की प्रस्तुतियां दी हैं। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: अभी आप सुन रहे थे दमोह जिले की चिट्ठी। आलेख अनिल जैन का था और वाचन स्वर दीपा सिंह का। ये प्रसारण आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से किया गया। हमारा अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में होगा।
2: हम आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से बोल रहे हैं FM 100.2 MHz पर। इस समय सुबह के 10:05 हुए हैं। आकाशवाणी शिवपुरी से प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। श्रोताओं, सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज हम आपको मुश्ताक हुसैन की गाई कुछ गजलें सुनवा रहे हैं। कार्यक्रम का आगाज हम जिस गजल से कर रहे हैं उसे लिखा है डॉक्टर बशीर बद्र ने।

यूं ही बेसबब न फेरा करो। श्रोताओ, डॉक्टर बशीर बद्र की लिखी यह गज़ल अभी आप सुन रहे थे मुश्ताक हुसैन की आवाज़ में। आपको बता दें, सुगम संगीत का कार्यक्रम इस समय आप आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से सुन रहे हैं। राहत इंदौरी की लिखी यह गज़ल आपको सुनवा रहे हैं मुश्ताक हुसैन की आवाज़ में। लीजिए, सुनिए।

0: खुशी से दूर गमों के करीब लगते हैं। राहत इंदौरी की लिखी यह गजल अभी आप सुन रहे थे मुश्ताक हुसैन की आवाज में। श्रोताओ, सुगम संगीत का कार्यक्रम इस समय आप आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से सुन रहे हैं। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।
1: पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।
2: अच्छे उपचार के लिए अब नहीं रहेगा कोई लाचार। देश भर में 60 करोड़ से ज्यादा लाभार्थी हैं। अब 5 लाख के मुफ्त इलाज के हकदार। अब तक 125,000 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के मुफ्त उपचार के लाभ दिए जा चुके हैं और स्वाभिमान और सेहत की सौगात का ये सिलसिला जारी है।

0: आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड करें और पात्र लाभार्थी घर बैठे अपना आयुष्मान कार्ड बनाए। अधिक जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: सुगम संगीत का कार्यक्रम इस समय आप आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से सुन रहे हैं और श्रोताओं, इस कार्यक्रम में इस समय आप मुश्ताक हुसैन की गाई कुछ गजलें सुन रहे हैं। आप आएंगे शबे गम में उजाला होगा, खुर्शीद अजय की लिखी यह गजल आपको सुनवा रहे मुश्ताक हुसैन की आवाज में।

आप आएंगे शबे गम में उजाला होगा। मुश्ताक हुसैन की आवाज़ में भी आप सुन रहे थे खुर्शीद अजय की लिखी ये गज़ल। श्रोताओं, कार्यक्रम का समापन कर रहे हैं शकील बदायूनी की लिखी इस गज़ल से, आवाज़ मुश्ताक हुसैन।

हुआ। हम आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से बोल रहे हैं FM 100.2 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय सुबह के 10:30 हुए हैं। आकाशवाणी शिवपुरी से प्रस्तुत है फिल्म संगीत। कार्यक्रम का आरंभ इस गीत से।

अधर्म फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे। मोहम्मद अजीज के साथ थी अलका याग्निक, गीत समीर का था, संगीत आनंद मिलिंद का। श्रोताओं, फिल्म संगीत इस समय आप आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से सुन रहे हैं। मोहम्मद अजीज के साथ अनुराधा पौडवाल का गाया ये गीत आपको सुनवा रहे हैं। गीत आनंद बख्शी का है, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, और फिल्म का नाम है मजबूर। लीजिए सुनिए।

मजबूर फिल्म में अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद अजीज के साथ अनुराधा पौडवाल को, गीत आनंद बख्शी, कथा संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, फिल्म संगीत इस समय आप आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से सुन रहे हैं। फर्स्ट लव लेटर, श्रोताओं यह है फिल्म का नाम और इसमें हम आपको सुनवा रहे हैं कविता कृष्णमूर्ति और साथियों को, गीत अनजान साहब का है, संगीत बप्पी लहरी का।

फर्स्ट लव लेटर। श्रोता, इस फिल्म में भी आप सुन रहे थे कविता कृष्णमूर्ति और साथियों को, गीत अंजान का था, संगीत बप्पी लहरी का। फिल्म संगीत इस समय आप आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से सुन रहे हैं। लीजिए, सुनिए ये।

दयावान फिल्म में भी आप सुन रहे थे पंकज उधास के साथ अनुराधा पौडवाल को गीत, अजीज कैसी कथा संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। श्रोताओं कार्यक्रम का समापन कर रहे हैं अलका याग्निक और उदित नारायण के गाए इस गीत से। गीत समीर का है, संगीत नदीम श्रवण का, लीजिए सुनिए।

0: कसूर फिल्म में उदित नारायण के साथ अलका याग्निक के गाए इस गीत के साथ ही कार्यक्रम फिल्म संगीत अब यहीं संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से बोल रहे हैं FM 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय दिन के 11 बजने को है। श्रोताओं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रम, जिसका अनुप्रसारण हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से कर रहे हैं। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है फोन इन प्रोग्राम फोन करें गीत सुने। आज का ये कार्यक्रम प्रस्तुत किया है श्वेता सिंगर ने।
2: चारों तरफ छा गई है काली घटाएं, बरखा की बूंद बरस रही है, ऐसा लगता है बड़ी दूर से हमसे मिलने आई हैं ये। हम भीग रहे हैं और चारों तरफ हमारी वसुंधरा भी भीग रही है। सब कुछ हरा और संपूर्ण सा लग रहा है और इस मौसम का नाम ही तो है बरखा बहार। तो चलिए इस मौसम में हम भी स्वागत करते हैं आपका कार्यक्रम फोन करें गीत सुने में, जिसके लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं 2660902 पर। बाहर के श्रोता साथी 0755 लगाकर हमसे बात कर सकते हैं। तो इंतजार है हमें आपके फोन। हेलो।
3: हेलो
2: जी, नमस्कार।
3: नमस्कार भाई,
2: आपका नाम बताएं।
3: मांगीलाल चंदेल बोल रहा हूँ, ग्राम सनोसिया के गुना।
2: मांगीलाल चंदेल जी, तो स्वागत है आपका कार्यक्रम फोन करें गीत सुने में, है ना। आप अपनी एक बार फिर से जगह का नाम बताएं।
3: जी, आपका शुभ नाम।
2: जी, मेरा नाम श्वेता है, मैं आपकी रेडियो मित्र हूँ। आपकी जगह का नाम बताएं, कहाँ से बात कर रहे हैं आप।
3: ग्राम सनोतिया
2: जी,
3: जिला गुना।
2: जी जी,
3: आपका भाई मांगीलाल चंदेल बोल रहा हूँ।
2: जी जी जी, तो बताएं क्या हालचाल है आपके, मतलब
3: आपकी दुआ और भगवान की कृपा से हालचाल बढ़िया है
2: जी।
3: और मैं इस वर्ष से यही कामना करता हूँ कि आप बढ़िया हो।
2: जी बिल्कुल। तो मौसम का क्या हालचाल है।
3: मौसम बढ़िया है, रोज बारिश हो रही है।
2: अच्छा लग रहा है ना।
3: अच्छा लग रहा, बिल्कुल सुहावना ठंडा मौसम है।
2: जी जी जी,
3: बिल्कुल अच्छा लग रहा है, ये मौसम बहुत बढ़िया है, अच्छा लग रहा है बारिश।
2: हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है ना।
3: तो आज आसमान में काले काले बादल होते हैं, ठंडी फुहारें देते हैं, हवा चलती है
2: जी,
3: तो बहुत बढ़िया सुहावना लगता है।
2: बिल्कुल है ना। और इस सुहाने मौसम में हम आपसे एक बात और जानना चाहेंगे कि आज आपका फोन लगा है फोन करें गीत सुने में, है ना, तो कौन से फिल्म का गीत सुनना चाहेंगे।
3: प्यासा सावन।
2: जी, प्यासा सावन जी।
3: गाने के बोल रहेंगे, मेघ हरे मेघा मत परदेश जाए।
2: हाँ बिल्कुल, परदेश हम यही चाहेंगे कि वो ना जाए, खूब अच्छी बारिश हो, है ना। बिल्कुल, तो आपने फोन किया है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
3: नमस्कार, मित्रों को याद कर सकते
2: हैं। बिल्कुल, नाम बताएं।
3: गजराज लोजी जी हैं
2: जी,
3: पाल जी हैं मनकारी से
2: जी,
3: और दिनकर सिंह जी हैं चित्रकूट ग्राम से, बेटा यादव जी हैं
2: जी,
3: बाबा जी हैं
2: जी,
3: सिंह राजपूत जी हैं, रामबाबू शर्मा जी हैं, भगवान सिंह परमार
2: जी,
3: इन सभी को बहन जी ये गाना दीजिए।
2: बिल्कुल, हाँ जी बिल्कुल, आपने फोन किया इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: और झामर जिला सागर मध्य प्रदेश से कटारे बात कर रहा हूँ
1: जी। तो बताएं कैसे हैं आप?
0: जी मैं अच्छा हूँ, बढ़िया हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं?
1: मैं भी अच्छी हूँ। आपका फोन लगा है कार्यक्रम फोन करें गीत सुने में। कौन से फिल्म का गीत सुनना चाहेंगे आज?
0: आज गाने तो मुझे दो तीन याद आ रहा है, लेकिन फिल्म है जंगबाज
1: जी,
0: और गाना इसी में गंगा जैसा मन तेरा, और मोहम्मद अजीज और कविता कृष्ण मूर्ति जी ने गाया है। आप सविता जी बोल रही हैं?
1: जी बिल्कुल
0: आवाज तो लग ही रही थी ऐसी।
1: जी। और एक और पिक्चर का नाम बता दीजिए, एक और फिल्म आपकी जो पसंद के गीत है एक और बता दीजिए।
0: तो दूसरी मूवी रहेगी भ्रष्टाचार, और इसी में गाना है सुरेश वाटिकर और अनुराधा पोडवाल ने गाया है
1: जी,
0: तेरे नैना मेरे नैनों से मीठी मीठी बातें करती।
1: बिल्कुल। तो क्या करते हैं आप बताएं?
0: वैसे हम किसान हैं, खेती किसानी का काम है, बाकी फिर घर में बहुत सारे काम होते हैं वो करते हैं, और इसके अलावा रेडियो सुनते हैं, और अलग अलग शौक है उनको भी पूरा करते रहते हैं।
1: बहुत अच्छी बात है, आप तो सबसे महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं खेती किसानी, है ना?
0: जी बिल्कुल।
1: हाँ, और इसके अलावा और कौन कौन से शौक हैं आपके रेडियो सुनने के अलावा?
0: तो रेडियो के अलावा ऐसा कोई चीज ही नहीं इसमें मेरा शौक ना हो। स्पोर्ट में मेरा काफी इंटरेस्ट है, क्रिकेट वगैरह है।
1: अच्छा।
0: और इसके अलावा शेरो शायरी का शौक है, गाना
1: सुनने अच्छा,
0: का
1: अच्छा,
0: बहुत
1: अच्छा,
0: शौक है,
1: जी जी जी जी
0: शेरो शायरी करता हूँ, दूसरों को फॉलो करता हूँ, इसके अलावा बहुत सारे शौक है मेरे।
1: बहुत अच्छी बात है ना? देखिए आपने फोन किया, हमसे अच्छी बातें शेयर करी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो
1: हेलो,
0: जी, नमस्कार।
1: नमस्ते।
0: आपका नाम बताएं।
1: मैं कृष्णपाल वर्मा, छाई मीना, सोनपुर तहसील रेवा जिले। कृष्णपाल
0: हाँ जी, नाम बताएं एक बार फिर से।
1: वर्मा, छाई मीना, गांव का नाम।
0: अच्छा जी, तो बताएं कैसे हैं आप।
1: बढ़िया है दीदी,
0: आपका फोन लगा
1: गाना
0: है।
1: सुनना था।
0: हाँ जी बिल्कुल, तो क्या हालचाल है आपके यहाँ, मौसम का।
1: बस बढ़िया, पानी गिर गया था अभी 2 दिन से, बारिश थोड़ी
0: अच्छा
1: रुकी है।
0: अच्छा मौसम अच्छा हो गया।
1: मौसम अच्छा है, मैम बिल्कुल, पर उमस तो है अभी, क्या
0: हाँ
1: पानी गिरा, पानी पर्याप्त तो हुआ नहीं है, तो उमस तो है।
0: चलिए, कौन सी
1: गाना
0: फिल्म।
1: सुनना था,
0: हाँ बताएं कौन सी फिल्म का गीत सुनना चाहेंगे।
1: सेना ही पिक्चर का था मैम,
0: हाँ जी,
1: सेना ही,
0: शहनाई जी।
1: ना झटको जुल्फ से पानी, ये
0: हाँ
1: मोती फूट जाएंगे।
0: बिल्कुल, और एक और मूवी बता दीजिए आप जिनका गीत सुनना चाहेंगे।
1: एक सुना दीजिए, सिंदूर पिक्चर का, पतझड़ सावन बसंत बहार,
0: बिल्कुल बिल्कुल, तो
1: दोनों
0: देखिए।
1: में
0: हाँ
1: जो मिल जाए, ये दादा
0: हाँ
1: जी का
0: बिल्कुल
1: है, दोनों
0: बिल्कुल। हाँ आपने
1: गाने पुराने हैं, अच्छे गाने हैं।
0: बहुत अच्छे गाने हैं, तो आपने फोन किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।

0: बसंत बहार पतझड़ सावन।
1: जी नमस्कार।
2: हेलो
1: हेलो। हाँ जी,
2: जी नमस्ते
1: नमस्ते। बताएं, नाम बताएं आपका।
2: रानू गुप्ता।
1: हाँ जी रानू गुप्ता, स्वागत है आपका कार्यक्रम फोन करें गीत सुने में, है ना?
2: जी जी
1: कौन से फिल्म का गीत सुनना चाहेंगे?
2: मूवी का नाम है चोरी चोरी चुपके चुपके, और उसी में एक सॉन्ग है देखने वालों ने क्या क्या देखा नहीं होगा।
1: बिल्कुल, चुपके चुपके है फिल्म का नाम, चोरी चोरी
2: चोरी चुपके चुपके।
1: जी
2: ठीक है,
1: चलिए आपने फोन किया, हमसे बातें करी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
2: धन्यवाद।

0: हेलो
1: हेलो,
0: जी, नमस्कार।
1: नमस्ते मैम। मैं
0: हाँ जी,
1: वंदना उपाध्याय बोल रही हूँ, बरेला से। मैं
0: हाँ जी, नाम बताएं।
1: बरेला से बोल रही हूँ, जबलपुर बरेला से वंदना उपाध्याय। जी
0: वंदना उपाध्याय जी। जी
1: नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। और कैसी हैं आप?
1: बढ़िया है, आप सुनाइए, आप कैसी हैं?
0: मैं भी
1: बहुत देर
0: अच्छी।
1: ट्राई कर रही हूँ, आप लगा बजा दे रहा फोन।
0: अच्छा,
1: आप
0: तो क्या हाल चाल है
1: कहाँ
0: आपके?
1: हो?
0: क्या हाल चाल है?
1: बढ़िया है। आप
0: बढ़िया।
1: दीदी कौन बोल रहे हैं?
0: मैं आपकी रेडियो मित्र श्वेता बोल रही हूँ।
1: अच्छा, हाँ बहुत अच्छा बोलती है ना। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप बोलती है ना।
0: आप क्या करती हैं? क्या क्या करती हैं
1: मैं वो सर्विस करती हूँ बैंक में,
0: आप? अच्छा, जी
1: अभी छुट्टी
0: सर्विस।
1: पर है,
0: अच्छा
1: महाराष्ट्र में है मेरा जॉब, तो
0: अच्छा
1: मैं जबलपुर में हूँ, तो अभी फिलहाल नहीं जा रही हूँ।
0: हाँ,
1: हाँ, मेरी मम्मी नहीं रही थी तब से, मैंने अभी ज्वाइन नहीं किया है, तो हाँ इस वजह से।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: हाँ,
0: तो चलिए, ये बात भी बहुत अच्छी है कि आप नौकरी भी करती हैं, साथ साथ
1: हाँ,
0: रेडियो भी सुनती
1: मेरे
0: हैं।
1: हस्बैंड भी करते हैं, वो गवर्नमेंट टीचर हैं
0: अच्छा,
1: हाई स्कूल में,
0: जी
1: और मैं जब इसमें बैंक में हूँ।
0: बिल्कुल। तो कौन
1: हाँ,
0: सी फिल्म का गीत सुनना चाहेंगी?
1: अब मेरे फोन लग गया, मेरे को किसी का ठिकाना नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या बोलना है। चलिए, बारिश के ऊपर कोई सा भी गाना, बादल यूं गरजता है।
0: जी, ये बेताब
1: जी
0: फिल्म का गाना है ना?
1: जी जी
0: बादल यूं गरजता,
1: हाँ,
0: बहुत प्यारा सा
1: आप
0: गाना
1: इतने
0: है।
1: अच्छे से बोलती हूँ आपका है
0: नहीं
1: ना।
0: नहीं आप बहुत
1: और
0: अच्छा
1: आपसे ही
0: बोलते
1: पूछ
0: हैं।
1: रही हूँ, इसमें क्या है दीदी,
0: हाँ
1: आवाज बहुत दबी आती है, लेकिन रेडियो में जो सुनते हैं ना,
0: जी
1: तो
0: जी
1: बहुत क्लियर आती है आवाज।
0: जी, और
1: हाँ
0: आपकी भी आवाज़ हमें बहुत अच्छी लग रही है। आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा
1: मुझे
0: लगा।

0: हेलो
1: हेलो
0: जी।
1: आकाशवाणी।
0: हाँ जी नमस्कार,
1: नमस्कार जी,
0: आपका नाम बताएं
1: मेरा नाम सागर सिंह है।
0: जी। कहाँ से बात कर रहे हैं, कौन सी जगह से?
1: बसई नवाब धौलपुर,
0: जबलपुर से जी। तो
1: बसई नवाब धौलपुर।
0: जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम फोन करें गीत सुने में। कौन से फिल्म का गीत सुनना चाहेंगे?
1: दामने मिल जाएगी।
0: दामिनी जी।
1: हाँ, दामिनी साबुन पे झूलों ने मुझे कुछ लाया, मैं
0: अच्छा
1: कल
0: अच्छा
1: किसी जगह वापस से आया। दामिनी
0: अच्छा अच्छा ये कौन? अच्छा ठीक है, क्या करते हैं?
1: फिल्म का है,
0: हाँ जी
1: दामिनी पिक्चर का है।
0: जी जी जी बिल्कुल। क्या करते हैं आप?
1: मैं राजमिस्त्री हूँ, बिल्कुल
0: अच्छा, काम करके साथ साथ आप रेडियो भी सुनते हैं
1: सुनते हैं।
0: जी। और हमें खुशी इस बात की कि हमारे प्रोग्राम आप सुनते हैं, है ना? कार्यक्रम में फोन
1: मैं
0: किया।
1: 90 से सुन रहा हूँ
0: जी जी
1: प्रोग्राम,
0: जी जी जी जी बिल्कुल, इसी बात की तो हमें खुशी।
1: पुराना
0: हाँ
1: श्रोता हूँ मैं बहुत।
0: जी, तो कार्यक्रम में आपने फोन किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।

0: कार्यक्रम फोन करें गीत सुने में स्वागत है आपका।
1: हसीन मुलाकात हो और रिमझिम बरसात हो
0: जी,
1: और फिर उसमें कहीं मध्य प्रदेश आकाशवाणी में बात हो,
0: बिल्कुल
1: सौगात ही सौगात हो, सौगात ही सौगात हो। नमस्कार बहन जी।
0: नमस्कार, हम जानते हैं शायद आपका नाम बताएं। मैं कुछ भूल जा रही हूँ, माफी चाहूंगी, आपका नाम बताएं।
1: जी, बिल्कुल
0: जी, नाम बताएं आपका।
1: जी बिल्कुल बताइए,
0: आप बताएं, मैं भूल जा रही हूँ, है ना।
1: अच्छा मैं बता रहा हूँ, मैं चित्रकूट दिनकर सिंह रूबरू हो रहा हूँ।
0: जी जी जी,
1: भूम से आपको सत सत बार राम राम पहुँचा रहा हूँ
0: जी। नमस्कार, तो कैसे हैं आप?
1: दीदी, आपका भी नाम जानना चाहूंगा, काफी दिनों के बाद मेरा फोन लगा है।
0: मैं आपकी रेडियो मित्र श्वेता बोल रही हूँ, है ना। कैसे हैं आप?
1: बहुत मस्त है, और रिमझिम बरसात हो रही, उसी में तो मैं जो है ये शायरी कर रहा हूँ। और तीन लोग बैठे, राजू और बब्बू वर्मा
0: जी जी,
1: और खेत में जंगल में बैठे, नर्सरी की धान की नर्सरी तैयार हो रही है, बढ़िया
0: अच्छा,
1: बरसात चल रही है।
0: अच्छा, हाँ हाँ हाँ बिल्कुल। तो अभी धान की मतलब चावल के मौसम के लिए चावल बुआई कर रहे हैं आप?
1: जी, धान की जो है एक बेल तैयार हो रही है, खेत
0: अच्छा,
1: तैयारी चल रही है, और
0: हाँ
1: 4 से 6 दिन के बाद जो है बेल लगने लगेगी।
0: बिल्कुल बिल्कुल, कि मौसम बहुत उपयुक्त है, और हम तो यही कामना करेंगे कि भरपूर बारिश हो, है ना, फसल के लिए।
1: जी, और आपसे ये भी बता दूं कि आपसे पहली, मेरे अंदाजे पहली बार बात हो रही है।
0: जी नहीं, हमने आपसे बहुत सारी बातें करी, बस मैं आपका नाम भूल गई थी, है ना जी। तो कौन,
1: कॉन्फिडेंस के साथ कहना चाहती थी कि मैं आपका नाम जानती हूँ, बताऊँ क्या, तो आपको भूल गया।
0: जी
1: तो
0: चलिए जी,
1: और हम हाँ। और रक्षा जी रही, कविता
0: जी, बिल्कुल बिल्कुल। कौन से फिल्म का गीत सुनना चाहेंगे?
1: मुझे फिल्म जो है सनम बेवफा का गीत सुना दीजिए।
0: जी,
1: चूड़ी मजा न देगी तेरे बगैर, साजन सावन मजा न देगा।
0: बिल्कुल, तो देखिए आपने फोन किया हमें।
1: प्रेम बाबा जी है, फूलचंद है, और
0: जी जी
1: पेटक सिंह जी है,
0: बिल्कुल
1: अमित तिवारी जी है, और पूजा तिवारी, इनके साथ ये गीत सुनूंगा।
0: अच्छा लगा हमें जानकर आपके सभी मित्र ये गीत सुनना चाहते हैं। आपने फोन किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।

0: तो ये था कार्यक्रम फोन करें गीत सुने। दीजिए मुझे इजाजत, आपके रेडियो मित्र श्वेता को नमस्कार।
1: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
1: सुनिए आकाशवाणी भोपाल पर स्वराज संस्थान संचालनालय का प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग, हर गुरुवार सुबह 8:30 पर।
4: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, लीजिए पेश है इस घंटे की खास खबरें।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि धैर्य किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि ये देश को सबसे कठिन चुनौतियों के बीच भी एकजुट रहने की प्रेरणा देता है। उन्होंने एक पोस्ट में संस्कृत का प्रेरक कथन साझा करते हुए कहा कि धैर्य किसी राष्ट्र को निरंतर प्रगति, समृद्धि और आत्मनिर्भरता की ओर ले जाता है। प्रधानमंत्री इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी 3 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में आज मेलबर्न पहुंचे।

वे ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। श्री मोदी व्यापारिक नेताओं की सभा को भी संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने एक पोस्ट में कहा है कि स्वच्छ मध्य प्रदेश हम सबकी जिम्मेदारी है। उन्होंने प्रदेशवासियों से स्वच्छता को जन आंदोलन बनाने और स्वच्छ सुंदर तथा स्वस्थ मध्य प्रदेश के निर्माण में सहभागी बनने की अपील की। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने श्री अमरनाथ यात्रा के लिए आज एक नया परामर्श जारी कर श्रद्धालुओं को सलाह दी है कि वे अग्रिम पंजीकरण कराएं और यात्रा केवल अपने परमिट में तय तिथि पर ही करें। भोपाल जिला शिक्षा अधिकारी अभिनव आर्य ने गैर शैक्षणिक कार्यों में संलग्न शिक्षकों पर कार्रवाई कर तत्काल प्रभाव से 47 शिक्षकों को उनकी मूल पदस्थापना वाली शाखाओं से कार्यमुक्त कर दिया है। और मौसम विभाग ने आज प्रदेश के बड़वानी, धार, गुना, सागर, विदिशा, रायसेन सहित कुछ जिलों में अति भारी बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

ये चिट्ठी आई है जय बजरंग रेडियो श्रोता संघ बस स्टैंड बंडा बेलई जिला सागर से लक्ष्मण रैकवार की, साथ ही श्रीमती विनीता रैकवार, कुमारी वैशाली, वैष्णवी अनरथ रैकवार, हल्ले लल्लू, ऋषि रैकवार, कंवर कॉलोनी बड़वा से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य, अदिति, शिवानी और मीनूराज श्रीमाली की, राजावत कॉम्प्लेक्स नई सड़क शाजापुर से मनमोहन राजावत, राज मधु राजावत, राशि रक्षित, चितरंजन, कमल, उमेश, सरोज, आरती, रेखा, रितिका, रिचा, स्वीटी, सागर, रिया, रीत, ऋषभ राजावत और उनके परिवार के सदस्य, गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बिरक, जैतेक बिरक और मीका बिरक की यह चिट्ठी है। दीवाना फिल्म का गीत सुनना पसंद किया है, कुमार सानू का गाया हुआ। नदीम श्रवण ने धुन बनाई है, समीर ने गीत लिखा है।

कार्यक्रम में अगला गीत आपको सुनवाएं उसके पहले एक सूचना आपको दे देते हैं। पुलिस आयुक्त नगरीय पुलिस भोपाल द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत जन सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था को बनाए रखने के उद्देश्य से आदेश जारी किया गया है। सभी नागरिकों से अपील की जाती है कि फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब तथा अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग पूरी जिम्मेदारी और सावधानी के साथ करें। किसी भी प्रकार की भ्रामक अफवाह फैलाने वाली धार्मिक, सामाजिक, जातीय अथवा सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काने वाली पोस्ट, फोटो, वीडियो, ऑडियो या संदेश का प्रसारण, साझा, लाइक या कमेंट अथवा फॉरवर्ड ना करें। किसी भी अपुष्ट या भ्रामक जानकारी को बिना सत्यापन के प्रसारित करना कानूनन व्यवस्था के लिए गंभीर चुनौती बन सकता है। सोशल मीडिया पर ऐसी किसी भी सामग्री का प्रचार प्रसार जिससे समाज में वैमनस्य, तनाव, भय या अशांति फैलने की संभावना हो, पूर्णतः प्रतिबंधित है। यदि किसी ग्रुप के एडमिन को इस प्रकार की सामग्री प्राप्त होती है तो उसे तत्काल हटाने एवं संबंधित सदस्य को ऐसा करने से रोकने की जिम्मेदारी भी होगी। इसके अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति या समुदाय के विरुद्ध घृणा, हिंसा या भेदभाव फैलाने वाले संदेशों का प्रसारण नहीं किया जाएगा। अफवाहों, फर्जी समाचारों अथवा तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करने वाली सामग्री को लाइक, शेयर या फॉरवर्ड करने से भी बचें। नागरिकों से अपेक्षा भी है कि वे केवल प्रामाणिक एवं विश्वसनीय स्रोतों से प्राप्त जानकारी पर ही विश्वास करें और किसी भी संदिग्ध सूचना की जानकारी तत्काल पुलिस अथवा संबंधित प्रशासनिक अधिकारी को दें। पुलिस आयुक्त द्वारा जारी यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 तथा अन्य प्रासंगिक विधिक प्रावधानों के अंतर्गत आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। भोपाल पुलिस सभी नागरिकों से शांति, सौहार्द एवं सामाजिक सद्भाव बनाए रखने तथा जिम्मेदार नागरिक होने का परिचय देने की अपील करती है। सूचना समाप्त हुई। आपकी फरमाइश कार्यक्रम में ये अगला पत्र हमें मिला है। छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और जाविंद कुमार वर्मा का। गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभय नंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज, प्रमोद, रोहित और मोहित पसंद और भेजते हैं। सपना संगीता रोड इंदौर से लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता, सुनीता, पिंकेश, साक्षी, मनन और तानिया। घंटा घर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सम्मति पंचोलिया। नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका, नुपुर, ऋषिका और रॉबिन की। सुनना चाहा है अभिमान फिल्म का गीत, लता मंगेशकर और मनहर उदास का गाया। मजरू के बोल हैं, एस टी बर्मन की धुन है।

अगले गीत के लिए फरमाइश आई है बनिया पारा छत्तीसगढ़ धमतरी से रामचंद्र माखीजा का, फिर श्रीमती सविता बेबी स्वाति माखीजा, पूजा छुटकी शरद और पूरा माखीजा परिवार। सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हदिया खान, अस्मा सालिया, शुएब खान, पोतरा मुजतबा खान, रऊफ भाई, शाहिद भाई, गांधीबाग अकोला से रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर। डोंगरगांव जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजबिये, राधिका गजबिये, बेबी अनुष्का और तन्मय गजबिये। चंबल की कसम फिल्म का गीत लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी का गाया। खयाम के संगीत निर्देशन में साहिल रुध्यानवी ने लिखा है।

और कार्यक्रम में ये अगला गीत नसीब फिल्म का कमलेश अवस्थी, अनवर और सुमन कल्याणपुर और साथियों ने इसे गाए हैं। आनंद बख्शी का लिखा गीत, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की धुन, सुनना पसंद किया है। दिल्ली शहर मोरी गेट से कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पा रानी और आकाश कुमार ने। गौतम नगर जिला नांदेड़ से प्रभाकर जुंदले और आरती जुंदले। तालुका बुरहानपुर ग्राम मोहद मध्य प्रदेश से भैया तड़वी, रीना तड़वी, सनी बाबू, रोजूबाई तड़वी, परू मुबारक बारेकर, मनोहर ठाकुर, तैमूर बारेकर। मुकाम पोस्ट भोकरी महाराष्ट्र से अरशद, आरिश अरसलान और यूनुस तड़वी। सदाबहार रेडियो श्रोता संघ मोहद जिला बुरहानपुर से मुशर्रफ खां तड़वी, जरीना मुबारक, परवेज बिटिया, रोजमीन, तैमूर और समस्त तड़वी परिवार। महादेव घाट अमलेश्वर से डुमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश तारणी, सूरज ज्योति, रियांश और गुड़िया ठाकुर।

फिल्म नसीब के इस गीत के साथ ही कार्यक्रम आपकी फरमाइश अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब समय है एक अंतराल का।

0: तुम्हें देंगे।
1: इतनी वफादारी, आजकल कौन सोचता है ये सब। जीने के हैं चार दिन तो जियो जी भर के।
2: तुम्हें पता नहीं है शायद, संक्रमित व्यक्ति के साथ असुरक्षित यौन संबंधों से एचआईवी एड्स और यौन संक्रमण का खतरा सबसे अधिक होता है। इसीलिए वफादारी बहुत जरूरी है और कंडोम का उपयोग भी स्वस्थ यौन व्यवहार के लिए जरूरी है। उससे एचआईवी एड्स के साथ ही यौन संक्रमणों और अनचाहे गर्भ से भी सुरक्षा मिलती है, समझे?
1: हाँ भाई समझा।
2: तो संयम, वफादारी और कंडोम अपनाओ, सुरक्षित यौन व्यवहार बनाएं। और हाँ, अधिक जानकारी के लिए अपने मोबाइल से 1097 डायल करें।
3: मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
5: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
1: भाई एक शेर के चेहरे का टैटू बना दो यहाँ शोल्डर पे।
2: अरे रुको रुको, पहले चेक तो कर लो कि निडल नई और डिस्पोजेबल है या नहीं।
1: मतलब?
2: मतलब ये कि संक्रमित सुई से टैटू बनवाने या किसी और तरह की निडल शेयरिंग से एचआईवी एड्स और अन्य संक्रामक बीमारियों के संक्रमण का खतरा होता है, तो ये इंश्योर करें कि सिर्फ नई और डिस्पोजेबल निडल सिरिंजेस का ही यूज कर रहे हो।
1: ये तो बड़ी अच्छी बात बताई है भाई तुमने। अभी भी और आगे भी मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि डिस्पोजेबल नीडल सिरिंजेस ही यूज हो।
6: आप भी सतर्कता अपनाएं और एचआईवी के संक्रमण से खुद को बचाएं। अधिक जानकारी के लिए 1097 पर कॉल करें। मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
7: सदी हो तुम, या यूं कहें वक्त की रफ्तार। कच्ची यादों से उम्मीदों के चिराग जगमगाने तक, यूं ही चलते चलते अचानक कुछ याद आ जाने तक, हर कदम पर रहे हो साथ साथ। मनोरंजन, समाज और इतिहास तुम्हारी जुबान से ही तो सुना है हमने। सदा बहार हो तुम, बेमिसाल हो तुम, देश की आवाज हो तुम।
8: आकाशवाणी।

0: अब देखिए, पता नहीं इन्होंने कहां क्या देख लिया, सीधे चले आए कुछ सुनाने।
1: फैक्ट्री से एक सज्जन जब चले, वो बड़े मूडी आदमी थे साहब, फैक्ट्री से जैसे ही चले तो उन्होंने देखा कि एक दूध वाला भी चला जा रहा है, वो भी साइकिल में और वो भी साइकिल में, साइकिल में ये चले जा रहे हैं। दूध वाले की कुछ पता नहीं, जल्दी जाना होगा या जो भी, तो उसने, दूध वाले ने थोड़ी साइकिल की स्पीड बढ़ाई और इनसे आगे निकला। जैसे ही इनसे आगे, अच्छा हमसे आगे, नहीं साइकिल की स्पीड बढ़ाई, हम आगे, कभी वो आगे, कभी ये आगे, कभी वो आगे। फैक्ट्री से उन्हें मान लीजिए रांची जाना था, और साहब ये आगे पीछे आगे पीछे। फिर हमने पूछा कभी ये हुआ क्या आगे पीछे आगे पीछे, कह लगे नहीं जाना तो रांची था, लेकिन गुरु कभी वो आगे कभी हम पीछे, मेडिकल में जाके हराया उसको। ऐसा आजकल देखा जा रहा है कि आजकल मीडिया, खासकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। पहले तो बहुत कम थे, और इस समय मीडिया क्रांति है। कोई अगर न्यूज दिन भर की दिखा रहा है तो कोई दिन में 6 बार दिखा रहा है, कोई दिन में 15 बार दिखा रहा है, कोई 24 घंटे न्यूज दिखा रहा है, पता नहीं कहीं 48 घंटे ना दिखाने लगे, कोई तुरंत की, कोई अब्बी के अब्बी की न्यूज दिखा रहा है। ऐसी न्यूज में एक न्यूज एक ने सुनी और क्या कहा दूसरे दोस्त से, दूसरे दोस्त ने क्या कहा, हाय बोले वो देखी, बोले कौन सी, बोले न्यूज वो अब्बी अब्बी वाली, बोले नहीं यार नहीं देखी। अरे उसमें दिखाया गुरु बहुत डेंजर वाला दिखाया। क्या दिखाया क्या उसमें दिखाया, कि एक आदमी अपने शहर का, वो गुरु 72 घंटे माने अफ्रीका के और इंडिया के और माने विदेश के, और एक से एक खतरनाक सांपों के बीच में। अच्छा कहले कितने घंटे, 72 घंटे उस्ताद, मतलब अपन 1 घंटे के साथ नहीं रह सकते सांप के सामने, सांप से कितना डर लगता है, लेकिन 72 घंटे सांपों के बीच में। अरे कहने लगे बड़ा काम नहीं, अरे अरे तुम 72 घंटे तुम बोल रहे बड़ा काम नहीं, बोले भैया ऐसा है 72 घंटे वो सांपों के बीच रहा ना, 2 घंटे हमारी पत्नी के बीच रह के दिखाए। स्टेज पर, चैनल्स में, मीडिया में, सभी तरफ हम लोगों को प्रोग्राम करने होते हैं। खासकर लाइव प्रोग्राम में जब हम लोग शहर से बाहर जाते हैं, तो एक दूर दराज के गांव में भी मैं गया, और वहां पर चूंकि हम लोग प्रोग्राम ऑर्केस्ट्रा का था, हम लोग गए हुए थे, पूरी टीम हमारे साथ थी, लेकिन वहां के जो ऑर्गेनाइजर थे उनने कहा था कि भाई हमारे जो आर्टिस्ट हैं, लोकल आर्टिस्ट, उनको भी आपको मौका देना पड़ेगा। हमने कहा अवश्य देंगे। तो ब्रेक के दौरान उनको भी मौका मिला, और उन्होंने भी कुछ अपने गीत प्रेजेंट किए, कुछ अपने आइटम्स प्रेजेंट किए, और उसका एक अलग मजा है। देखा साहब वो एक ऑब्जर्वेशन, हम लोगों की ऑर्केस्ट्रा चल रही थी, और वहां से अनाउंस हुआ कि और इसी के साथ ऑर्केस्ट्रा धमाल झमाल कमाल आपसे थोड़ी देर के लिए विराम लेती है, तब तक आपके लोकल आर्टिस्ट होंगे, आपके अपने आर्टिस्ट होंगे, आप खुद होंगे। आइए सुनते हैं आपके आर्टिस्टों को और आपके अपनों को। बहुत बढ़िया बात है, धन्यवाद, बहुत अच्छा, जबलपुर से आए आप लोगों ने सुनाया, बड़ा हम लोग का दिल जो है गदगद हो गया। और अब इसके बाद अनाउंसमेंट हम ही करेंगे, और हम ही सुनाएंगे, और हमारे बीच के लोग भी सुनाएंगे। हाँ सुनाइए सर। उनने अनाउंसमेंट किया और म्यूजिशियन को रोक लिया कि भाई आप बजाएंगे, यहाँ म्यूजिशियन तो नहीं, लेकिन मैं आइटम बता रहा हूँ कि कैसे उस आइटम को किया। और सबसे पहले बड्डू भैया, और बड्डू भैया की श्रीमती जी आ रही हैं, और वो एक गाना पेश करेंगे। आ जाने कर, अब मधुर चाल में दोनों चले आ रहे हैं बड़े प्यार के साथ मंच पे आए, बकायदा मंच के उन्होंने पैर पड़े, घुटना पड़े, और फिर उसके बाद मंच पे चढ़े। मंच पे जैसे चढ़े तो अच्छा कौन सा गाना गाएंगे भाभी जी आप बताइए। नहीं अल्लाह जी जी बोल, आप तो मुझे बता दो ना, वो क्या बताएं आपको, चांदनी पिक्चर का गाएंगे। अच्छा गाइए भाई, चांदनी का पिक्चर का गाना गाएंगी, और बहुत बढ़िया गाती हैं, और उसके पहले बलुआ में भी गा चुकी हैं, 3 इनके प्राइवेट एल्बम लॉन्च हो चुके हैं। कौन सा वगैरह, एक सोहरों का एल्बम लॉन्च हुआ, और एक दो जो है बधाई गीत का लॉन्च हो गया, और हमने 3-4 जो है दादरे कहरवा और पता नहीं कई कई चीजें हमने गाई, बहुत बढ़िया, मतलब बन्ना बन्नी गाए हैं, और मतलब बहुत अच्छा अच्छा हमने गाया है, तो चांदनी पिक्चर का गाएंगे। अच्छा ठीक है, तो शुरू करिए। नहीं पहले म्यूजिक तो लगाओ। अब साहब म्यूजिक वाले ने म्यूजिक व्यूजिक बजाया, और उन्होंने गीत गाया कैसे, दोनों ने ट्वीट गो सॉन्ग है।
2: तुम तो शुरू करो पहले, तब तो हमारा।
0: अच्छा हम शुरू कर रहे हैं, हम सोचे कि तुम शुरू।

आते, तुम्हें नहीं पता था, तुम ले आते। यहाँ तो छूछी हाँ चले आए तो साहब ये आइटम। खैर कोई बात नहीं, बहुत अच्छा प्रयास रहा, अब चलिए दूसरे और हमारे जो गाने के लिए आ रहे हैं, बहुत ही बढ़िया गाते हैं। आ जाओ, ये तुम्हारा क्या नाम? हमारा नाम है वही नहीं, हम भूल के नाम नाम बताओ। हमारा नाम है गुरगुर गुरगुर गुरगुर। क्या नाम है? गुरगुर गुरगुर गुरगुर। कैसा नाम है? शॉर्टकट में है ना, लंबा बहुत बड़ा है, वो हम नहीं बता पाएंगे, हमारे भैया बता पाते। अच्छा अच्छा ठीक है, आप कौन सा गाना गाएंगे? आज की पिक्चर का गाएंगे। देखिए बहुत बढ़िया है खुरखुर खुरखुर जी, और ये आशिकी पिक्चर का गाना गाएंगे। कौन सा वाला? टाइटल वाला गाना गाएंगे। टाइटल वाला गाना गाइए। कैसे उन्होंने गाना का सत्यानाश

0: मैं तुमको भला दे आऊंगा।
1: साकार है बेसुरा।
0: चलो इसके बाद एक बहुत बढ़िया बात है कि हमारे यहाँ जो गांव के मुखिया हैं उनकी बिटिया है और वो भी गाना गाएगी। अच्छा बिटिया नहीं आ रही है, उन्होंने अपने भैया को भेज दिया है और उनके भैया रामलीला में काफी फीमेल रोल करते हैं, कौशल्या, सुमित्रा और न जाने कितने रोल किए हैं उन्होंने, फीमेल रोल किए हैं और इसके अलावा वो सहेली सखी भी बन चुके हैं। आइए
1: कौन सा गाना गाओगे?
2: हम पिक्चर वाले गाने गाएंगे।
1: हाँ मैं रामलीला का नहीं गा पा रहा हूँ, आप गाइए पिक्चर के गाने। कौन सा गाएंगे?
2: हम वाली पिक्चर का गाएंगे जो ऋतिक रोशन की।

0: त्रिवेदी।
1: एक फिल्म की कहानी सुना रहा हूँ, ऐसी फिल्म की कहानी जिसको मैं देखने गया था। वो मेरा साथी था, मेरे साथ लल्लू। लल्लू जो था उसको पान खाने का बड़ा शौक था, तो मैं और लल्लू दोनों फिल्म देखने के लिए गए। बड़े प्यारे प्यारे गाने थे उस फिल्म में, बहुत अच्छे अच्छे कलाकार थे। तो साहब ऐसा है कि फिल्मों का शौक तो सभी को है, रेडियो के माध्यम से बहुत बढ़िया बढ़िया गाने हम सुनते हैं। कभी कभी हमारे दूरदर्शन वाले भी बड़ी प्यारी प्यारी पिक्चरें दिखाते हैं, गाने भी दिखाते हैं। खैर, तो उसी शौक को पूरा करने के लिए हम फिल्म देखने के लिए गए। साहब टिकट ली, टिकट लेने के बाद जब उस थिएटर में यानी टॉकीज का जो द्वार था, दरवाजा था, वहां जब हम पहुंचे तो हमने अपनी टिकट किसको दी? गेटकीपर को। उसने टिकट ली और हमसे कहा कि हाँ आप बैठिए, आपकी चेयर का नंबर है K4142, यानी के सीरीज में 4142। तो हमने लल्लू से बोला चल भाई अपन बैठे। तो लल्लू मुझसे बोलता है, इसके मुंह में पहले से पान था, उसके बाद मुझसे लल्लू बोलता है,
2: एक काम करो भाई साहब, आप जाकर बैठो, मैं एक आध पान खा के आता हूँ।
1: हमने कहा भाई साहब आपके मुंह में पान तो पहले से है। तो वो मुझसे बोलता है,
2: अरे नहीं ऐसा है कि अब एक आध पान और खा लेंगे, एक आध हम आपके लिए ले आएंगे।
1: हमने बिल्कुल ठीक है। मैं अकेला उस हॉल में जाकर बैठ गया, लल्लू भैया गए थे पान खाने। तो मैं जहाँ बैठा था क्या देखता हूँ क्या सुनता हूँ, एक भाई साहब बिल्कुल मेरे बाजू वाली कुर्सी में बैठ के सो रहे थे। बड़े खर्राटे ले रहे थे, बड़ी जोर जोर से। हमने कहा भाई साहब, ओ भाई साहब ये सोने की जगह नहीं है भाई साहब, यहाँ लोग सिनेमा देखने आते हैं, हैं? आप सिनेमा देखने की जगह सो रहे हो, अब घर में जाके सो। तो ये मुझसे बोलते हैं साहब ऐसा है हम घर में जाके सो नहीं सकते। मैंने कहा आप क्यों घर में जाके सो नहीं सकते? इसलिए नहीं सो सकते भाई साहब कि मेरी धर्मपत्नी मेरे को सोने नहीं देती है। कभी बोलती है बर्तन मांजो, कभी बोलती है कपड़े धो, कभी बोलती है घर में झाड़ू लगाओ, कभी बोलती है पैर में मालिश करो, ये करो वो करो, फलाना करो ठिकाना करो। हमने अरे अरे अरे अरे बड़ी दयनीय स्थिति है तुम्हारी, तुमने क्या दहेज वगैरह ज्यादा लिया था क्या शादी में? तो मुझसे बोलते नहीं साहब दहेज मैंने नहीं लिया, मैं तो बिल्कुल दहेज का विरोधी हूँ, लेकिन जो मेरे पिताजी हैं उन्होंने दहेज जरूर लिया था, वो काम उन्होंने गलत किया था, लेकिन दहेज लेने के थोड़े दिन के बाद वो चल दिए, ऊपर चले गए। वो तो खैर ऊपर चले गए, लेकिन ये सब काम काज करने को मुझको छोड़ गए। हमने कहा चलिए ठीक है, आप सो जाइए या देखिए पिक्चर, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है साहब, ये तो सो गए। अब इनके खर्राटे की आवाज मेरे दाहिने कान में आ रही थी और जो बायां कान मेरा खाली था वो

रहा था जो पर्दे के अंदर से गाना आ रहा था। कलाकार पर्दे पे आ गए, उन्होंने फटे कपड़े पहने हैं और पागल जैसा उनका सीन, मतलब दृश्य है, ड्रेसेस है, पूरा बढ़िया, बड़ा मजा आ रहा था, बड़ा आनंद आ रहा था। वो गाना आया, बाएं कान से सुना, दाहिने कान से जो भैया बाजू में बैठे थे, भगवान इनका भला करे, इनके खर्राटे। तो खर्राटे और गाना, गाना और खर्राटे कैसे सुनाई दे रहा, सुनिए।

और तुम सीधे घर जाओ। अरे हम फिल्म देखने के लिए आए हैं, गाना सुनने आए हैं, तुम तो खर्राटे लिए जा रहे हो, जमाई लिए जा रहे हो। इनको तो साहब मैंने भगा दिया, ये तो चल दिए। एक भाई साहब मेरे इस तरफ यानी बाएं की तरफ बैठे हुए थे, बाएं हाथ की तरफ, वो तालियां बजा रहे थे, बड़ी जोर जोर से तालियां बजा रहे थे। मैंने उनसे बोला, क्यों भाई ताली क्यों बजा रहे हैं? कोई अच्छा सीन पर्दे पे आए, जब कोई बहुत बढ़िया सा डायलॉग आए, उस समय आपको ताली बजाना चाहिए। तो ये मुझसे क्या बोलते हैं कि साहब हम ताली इसलिए बजा रहे हैं कि कहीं हमको नींद ना आ जाए। तो साहब उनको शांत किया, पिक्चर आगे बढ़ी, बड़ा मजा आया। फिर वो मेन पिक्चर चालू हो गई, उसमें आगे कौन वो मुख्य कलाकार हीरो थे उस फिल्म के, चले जा रहे थे, उसका एक मेन गाना आया, वादा तेरा वादा, वादे पे तेरे मारा गया बंदा में सीधा साधा। ये गीत भी मैं अच्छे से नहीं सुन पाया साहब। क्यों नहीं सुन पाया? इसलिए नहीं सुन पाया कि एक भाई साहब मेरे पीछे बैठे हुए थे, उनको खांसने की बीमारी थी। अब आप सोचेंगे उनके खांसने में क्या तकलीफ, हम जो भारत के वासी हैं उनकी और हमारी, हमारी और आपकी खांसी कैसी होती, बड़ी साधारण, किस तरह से कुछ इस तरह की खांसी। लेकिन उनकी खांसी ऐसी थी, ऐसा लग रहा था कि विदेश से बुलवाई हो, भगवान जाने कहां से बुलवाई थी, उत्तर से बुलवाई थी कि दक्षिण से बुलवाई थी कि पश्चिम से, मालूम नहीं कहां से बुलवाई थी। क्योंकि उनकी खांसी, खांसने का बड़ा अजीबोगरीब स्टाइल था, जब वो खांसते थे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई रॉकेट, हवाई जहाज आसमान की तरफ हाई स्पीड में चला जा रहा हो। किस तरह से खांसते थे जरा देखेंगे। ये उनके खांसी की आवाज। अब बताइए, ये खांस रहे हैं पीछे से, हीरो पर्दे पे है, वो गा रहा है आगे से, मैं बीचों बीच, गाना खांसना, खांसना गाना, एक साथ कैसे सुनाई दिया? पहले तो वो गाना सुन लें आप, दो तीन लाइन ओरिजिनल जो बिना खांसी का है, और उसके बाद खांसी के साथ किस तरह से सुनाई दे रहा है मुझको, मैंने कैसा सुना वो मैं सुनाता हूँ आपको ओरिजिनल गीत।

ये ओरिजिनल गीत है, ये सुनने मैं गया था जिसका मैंने शुल्क दिया था, लेकिन एक सेवा जो निशुल्क पीछे से उपलब्ध हो रही थी वो भी मेरे अपने मेरे भाग में आ गई। तो कभी गाना कभी खांसना, कभी गाना कभी खांसना, कैसा सुनाई दे रहा है सुनिए।

da terava, da terava, de pe tere, gaya banda me sida, da terava, are da terava, are da terava, are da terava, हमने उठो, उठो यहाँ से, अलग हो, हट जाओ यहाँ से। तो इनको तो खैर भगा दिया, लेकिन ये दो मिनट के बाद फिर वापस आ गए। हमने क्यों आ गए, तुम घर क्यों नहीं गए? तो ये मुझसे बोलते हैं, घर कैसे जाएंगे साहब, घर वालों ने यहाँ पे भेजा है। अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, घर वालों ने यहाँ पे भेजा है। हाँ, तो भैया दवाई क्यों नहीं करा लेते? भाई साहब दवाई कराइए, होम्योपैथिक कराइए, एलियोपैथिक कराइए, आयुर्वेदिक कराइए, यूनानी कराइए, नेचुरोपैथी कराइए। भाई साहब कुछ ना कुछ तो इलाज होगा इसका, खांसी का। आप कब से खांस रहे हैं? तो ये मुझसे बोलते हैं, भाई साहब मैं 18 साल से अखंड खांस रहा हूँ। 18 साल से आप अखंड खांस रहे हैं, बहुत अच्छे साहब, वाह, भगवान आपका भला करे। हैं, और ये खांसी लेके आप मेरे सामने आए, मेरी पूरी पिक्चर आपने गड़बड़ कर दी भाई साहब। ओहो, तो पिक्चर में यानी हॉल में अंधेरा था, ना हाथ को हाथ दिख रहा था, ना पैर को पैर दिख रहा था। मैंने अपनी जान बचाने के लिए क्या किया, अंधेरे में एक गोली उनको दे दी। किनको दे दी? वो खांसने वाले को। खांसने वाले को मैंने कहा, लो भाई साहब इसको आप चूसते रहना, जैसे बच्चे मुंह में आपके चॉकलेट वगैरह लेके, गोली बिस्कुट वगैरह लेके चूसते रहते हैं ना, वैसा आप चूसते रहिएगा। हैं, इसको गले से नीचे नहीं उतारना, नहीं तो आपके प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। तो ये मुझसे बोलता है, ये साहब काहे की दवाई है? ये आपके खांसी की दवाई है, इससे आपको बहुत आराम मिल जाएगा। चलिए ठीक है साहब। उनको मैंने अंधेरे में एक गोली दे दी, उनको तो खैर आराम 2-4 मिनट के बाद मिला। तो मुझसे क्या बोलते हैं, भाई साहब, मैंने कहा बोलिए साहब क्या बात। अरे साहब ऐसी कौन सी जादू वाली गोली दे दी साहब आपने, भगवान आपका भला करे साहब, बिल्कुल मेरी खांसी तो बिल्कुल रुक गई साहब। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ, आप तो मेरे को एक काम करिए, वो जो दवाई आपने मेरे को दी है ना, उसका आप मेरे को नाम लिख के दे दीजिए, ताकि मैं बाजार से खरीद लेता हूँ। भाई साहब मैं 18 साल से अखंड खांस रहा था, विदाउट ब्रेक खांस रहा था, मैं अखंड खांस रहा था। तो मैंने कहा ठीक है, वो क्या है कि वो जो हमने तुमको दवाई दी है वो बाजार की दवाई नहीं है, हमारा अपने घर का ओन प्रोडक्ट है, हम स्वयं उस दवाई को बनाते हैं, बाजारू दवाई हमने तुमको नहीं दी। भगवान भला करे उस खांसी वाले का, भगवान मेरा भी भला करे, उसकी खांसी बंद हो गई। लेकिन उसने जो मुझसे पूछा था कि दवाई का नाम लिख के दीजिए, तो मैं क्या दवाई का नाम लिख के देता? अरे मैंने उसको दवाई दी ही नहीं थी, मैंने तो अपने कोट का बटन तोड़ा और उसको दे दिया था। चलिए साहब पिक्चर आगे बढ़ती है, बड़ा मजा आया, बहुत आनंद आ रहा था।

अच्छा, ये भाई साहब जो पान खाने गए थे मेरे मित्र, ये आ गए हैं। हमने अच्छा, आ जाइए अंदर, आ जाइए हॉल के अंदर आ जाइए। तो ये मुझसे बोलते हैं, बाहर से आ जाइए, हमको तो अंधेरे में दिखाई नहीं दे रहा है। हमने, किसी को नहीं दिखता भाई साहब अंधेरे में, आपको कैसे दिखाई देगा अंधेरे में है? चले आइए, एक काम करिए, वो जो कुर्सियों के बीच में रास्ता है जहां और लोग बैठे हुए हैं, जो कुर्सियों की लाइन है उसके जो बीच में रास्ता है, धीरे धीरे चले आइए, धीरे धीरे चले आइए है, वहां मैं आपका आगे आके हाथ पकड़ लूंगा। जी भाई साहब। तो ये साहब अंधेरे में धीरे धीरे धीरे धीरे चले आ रहे हैं, मेरी तरफ बढ़े जा रहे हैं। लेकिन इनके कारण अंधेरे में किसको क्या क्या परेशानियां हो रही हैं, जरा मैं उनकी कहानी आपको सुनाता हूँ, बड़े संक्षिप्त में, बड़ा मजा आएगा आप लोगों को। तो ये धीरे धीरे चले आ रहे, ये अंधेरे में चले, ये चले, एक ने कहा, हे, अरे अरे ये क्या करते हो? क्यों भाई साहब, क्या हो गया? अरे क्या हो गया भाई साहब, क्यों, क्या हो गया? अरे मेरी मूंगफली पूरी आपने गिरा दी, मेरी पूरी मूंगफली गिरा दी। अरे अरे अरे ये मेरे जूते जूते कहाँ लेके जा रहे हो भाई, मेरे जूते कहाँ? अरे साहब गलती हो गई साहब, कुछ नहीं दिखाई दे रहा साहब। अरे बाप रे, ये चले आ रहे, चले आ रहे, चले आ रहे। अचानक किसी ने मजाक कर दिया बीच में, कहा बैठ जाओ, बैठ जाओ। तो ये सोचे कि मेरे पास आ गए, मैंने बोला बैठ जाओ, मैं तो बहुत दूर बैठा था, किसी ने मजाक कर दिया, कहा बैठ जाओ, तो ये बैठ गए। एक छोटा बच्चा बैठा था, उसकी गोदी में वो बैठ गए उनकी गोदी में बैठ गए। तो उनके पिताजी ने एक तमाचा उसको मारा, वो गिरते पड़ते वो लल्लू लाल हमारे पास आए। हमने उनसे बोला, क्यों लल्लू लाल, कहाँ बैठ गए थे? अरे कह रहे बहुत अच्छी जगह थी, लेकिन एक हमको भगा दिया मारपीट के। हमने, वो तो बच्चा बैठा था भाई साहब, है वहां नहीं बैठना चाहिए आपको। खैर, मैंने उनको बैठाया अपने पास, फिल्म आगे बढ़ी, बड़ा मजा आ रहा था, बहुत आनंद आ रहा था। इंटरवल हो गया मध्यांतर, जब मध्यांतर होता है, हम और आप सभी जब टॉकीज से बाहर चाय कॉफी वगैरह पान वगैरह लेने जाते हैं, तो सब अपने कपड़े अपड़े सब सही करते हैं, कोई सामान छूट ना जाए, उसकी खास ध्यान देते हैं उस बात पे। तो वो सब कुछ मैंने किया जो आप करते हैं, हम सभी करते हैं। तो मैंने अपने लल्लू भैया से बोला, चलो इंटरवल होने

पांच मिनट पहले तो आप आए हो यार, है? चलो फिर से एक पान खा लेना, मैं चाय पी लूंगा। तो हम लोग कुर्सी से जब खड़े होने लगे तो मैंने अपना जो कोट पहना था, नया कोट पहना था, उसका मैंने दाहिना हाथ देखा, बहुत बुरी तरह गीला था। हमने ओहो ये गीला कैसे हो गया भाई, किसी ने पानी फेंका क्या? पानी कौन फेंकता भाई, किसी के हाथ में थाली नहीं, लोटा नहीं, गिलास नहीं, शीशी नहीं, बॉटल नहीं, हमने फिर पानी किसने फेंका? चारों तरफ देखा, किसी के हाथ में कुछ नहीं। अचानक मैंने बालकनी की तरफ ध्यान दिया। बालकनी की तरफ मतलब ये हुआ कि मैं नीचे बैठा था, वो कम पैसे वाली जो क्लास होती है, 5 रुपए की टिकट थी या 10 रुपए की, कुछ याद सा नहीं है, ऊपर बालकनी थी, नीचे मैं बैठा था। अचानक मैंने ऊपर की तरफ देखा तो एक बहन जी बालकनी से नीचे झांक रही थी और रो रही थी बड़ी जोर जोर से। हमने कहा बहुत अच्छी बहन जी, आपने तो क्या रोया भाई, वाह वाह, मेरे पूरे कोट में आपके आंसू गिर गए हैं। फिर मैंने चिल्लाया, मैंने कहा बहन जी, ए बहन जी, इधर देखिए बहन जी। तो बहन जी ऊपर से देख के मुझको बोलती है, क्या है? अरे बहन जी, ऐसा कैसा रोया बहन जी आपने, हैं? आपके आंसुओं से तो हमारा पूरा कोट खराब हो गया है, पीछे होके रोइए। तो वो पीछे हो गई और अपने पतिदेव, जो उनके पतिदेव उनके साथ आए थे, उनसे फौरन उन्होंने बोला कि आपको कितनी बार बोला था यहाँ बालकनी की दीवार के वहां पर आप मुन्ने को मत खड़ा करो। आप समझ रहे होंगे कि उनके बच्चे ने ऊपर से क्या किया, जो भी कुछ किया वो पूरा दाहिने हाथ के, मेरे कोट के दाहिने हाथ में चला आया। वो तो अच्छा हुआ मैं जमा ही नहीं ले रहा था, नहीं तो पानी भी पीने नहीं उठना पड़ता मेरे को। फिल्म में हम लोग बाहर निकले, एक कैंटीन होती जहाँ चाय, समोसे, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक, लस्सी वगैरह सब कुछ मिलता है, वहां हम पहुंचे तो हमने क्या देखा, हमने तो खैर होटल के नौकर को बुला लिया, हमने भाई साहब यहाँ आइए, मेरे लिए दो चाय ले आइएगा, एक इनके लिए हमारे लल्लू भैया के लिए और एक मेरे लिए। तो साहब दो चाय आ गई, हम पीने लगे, हम क्या देखते हैं कि हमारी कुर्सी के सामने दो सज्जन आकर बैठ गए। वो दो सज्जन कौन थे? वो थे तो बड़े अच्छे, लेकिन उन्होंने होटल के नौकर को थोड़ा सा सताने के लिए न जाने कुछ क्या किया, कुछ कॉमेडी के मूड में थे, हंसी मजाक के मूड में थे। तो एक जो सज्जन थे उन्होंने कुछ खाने का ऑर्डर दिया, लेकिन सही तरीके से नहीं दिया। वो थे बहुत सही, लेकिन वो अटक अटक के बोल रहे थे। हाँ, उन्होंने कुछ मजाक सा किया, अटक अटक के बोलने लगे। उनके साथ जो दूसरे सज्जन थे उन्होंने भी मजाक का मूड बनाया, उन्होंने क्या किया, उन नाक से बोलने लगे। अब बताइए, एक सच्चा बढ़िया बोलने वाला आदमी अगर नाक से बोले तो कैसा बोलेगा, और सही बोलने वाला, बिल्कुल लगातार शब्दों का इस्तेमाल करने वाला, अगर अटक अटक बोले, अटक अटक के बोले तो कैसा बोलेगा। तो उन्होंने होटल के नौकर को बुलाया, सबसे पहले बुलाया अटक अटक के बोलने वाले भाई ने, मजाक के बतौर, इधर आ भाई। नौकर आ गया, उसने कर्मचारी ने, होटल के कर्मचारी ने उनसे पूछा, हाँ साहब क्या चाहिए? तो वो अटक अटक के बोलने वाला बोलता है, आपकी दुकान में के के के के के के के के के के के क्या क्या है? तो नौकर बोलता है, आलू बंडा है, समोसा है, दाल मोठ है, भाजी बड़ा है, रोटी है, पराठा है, चावल सादा है, चावल फ्राई है, नॉन वेज है, नॉन वेजिटेरियन है, सब कुछ होगा साहब, अंडा भी मिलेगा, कोल्ड ड्रिंक, लस्सी मिलेगा, चाय मिलेगा, कॉफी चाहिए, आपको क्या चाहिए? तो वो जो अटक अटक के बोल रहे थे उनने फिर मजाक किया, उन्होंने कहा ये वो सब नहीं, वो सुबह सुबह तुम लोग कढ़ाई में तेल डालकर चने के आटे में प्याज, लहसुन, पालक की भाजी, सोडा, नमक डालकर वो दे दे दे दे ला दो प्लेट। तो नौकर बोलता है, साहब हम तो, हमको समझ में नहीं आया साहब आपको चाहिए क्या है, ये दे दे दे दे हमारे समझ में नहीं आ रहा है, जरा अच्छे से बोलिए साहब, ये मिस्टर भाई साहब, ये क्या आप इनके साथ आए क्या? तो वो जो दूसरा था जो नाक से बोलने का मूड बना रहा था वो बोलता है, तो उन्होंने, नौकर ने बोला, भाई साहब फिर आप ही बताइए ना आपको क्या चाहिए और इनको क्या चाहिए। तो नौकर जो खड़ा हुआ था उसके साथ साथ कौन खड़ा हो गया, वो नाक से बोलने वाला, नाक से बोलने वाला खड़े होके क्या बोलता है, अब बताइए, इंटरवल 5-10 मिनट का वक्त का होता है, उसके बाद फिर पिक्चर चालू हो जाती है। लेकिन ये दोनों मित्र बड़े मजाक के मूड में, नौकर के समझ में नहीं आया, उन्होंने फिर से उसको बोला, अटक अटक के बोलने वाले को, किसने बोला, ये नौकर ने फिर से बोला कि भाई साहब एक काम करिए, वो जो भाई साहब सामने हैं उनकी तो बात समझ में नहीं आ रही, वैसे तो आपकी भी समझ में नहीं आई, लेकिन अगर एक बार और बता देंगे तो मेरे समझ में आ जाएगा कि आपको आलू बंडा चाहिए कि समोसा चाहिए कि क्या चाहिए। तो अटक अटक के बोलने वाला फिर मजाक के मूड में आ गया, उसने फौरन बोला।

0: समझने की कोशिश करो भाई साहब, जो सुबह सुबह आप लोग कढ़ाई में तेल गरम करते हो है ना, उसके बाद चने का आटा लेते हो, उसमें पालक की भाजी डालते हो, हरी मिर्ची डालते हो, नमक डालते हो, सोडा डालते हो और वगैरह वगैरह बहुत सारी प्यारी प्यारी चीजें डाल के वो गोल गोल घुमा के वो ऐसा करके जब तेल में दे, दे, दे, दे, दे, ला दो प्लेट। नौकर बोलता भाई साहब मेरे समझ में नहीं आ रहा है, आप जितना सब वो सब ठीक है लेकिन आप बाकी तो सब सही बोलते हो, लेकिन जिस शब्द को आपको बोलना चाहिए वहीं पे आप जाके सॉलिड हो जाते हो, ये बात गलत है, हैं? जरा फिर से आप बताइए किसको बोला इसने? वो नाक से बोलने वाले को। वो फिर खड़ा हुआ, फिर उसने वही बात सब रिपीट की, कहता है वो हमने कहा, नौकर बोलता रे बाप रे, इंटरवल तो गया भाई साहब, मेरे को बहुत नुकसान हो गया भाई साहब, आप मेरी दुकान में काहे को आए भाई साहब, काहे को आए भाई साहब।
1: संग्रहालय से कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे रेडियो धारावाहिक हंसना मना है, इसकी सातवीं कड़ी। ये आकाशवाणी मध्य

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी द्वारा इंडोनेशियाई संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित किया जाना भारत के लिए गर्व का विषय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन देशों की यात्रा के दूसरे चरण में आज मेलबर्न पहुंचेंगे। वे ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। श्री मोदी व्यापारिक नेताओं की सभा को भी संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा आज धार जिले के पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र में बहुराष्ट्रीय कंपनी लियुगोंग इंडिया के 272 करोड़ रुपए लागत के नए विनिर्माण संयंत्र का भूमि पूजन किया जा रहा है। प्रारंभिक चरण में यहां प्रतिवर्ष 6500 निर्माण उपकरणों मुख्य रूप से एक्सकेवेटर का उत्पादन होगा। प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर और सूबेदार के पदों पर भर्ती के लिए कुल 500 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसमें 436 उम्मीदवारों को चुन लिया गया है। डीजीपी कैलाश मकवाना के अनुसार पूरे 8 वर्ष बाद मध्य प्रदेश में सब इंस्पेक्टरों की यह बड़ी भर्ती हुई है। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने श्री अमरनाथ यात्रा के लिए आज एक नया परामर्श जारी किया है। श्रद्धालुओं को सलाह दी गई है कि वे अग्रिम पंजीकरण कराएं और यात्रा केवल अपने परमिट में तय तिथि पर ही करें। और अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच के तीसरे मुकाबले में कल भारत को इंग्लैंड से हार का सामना करना पड़ा। सीरीज के आखिरी दो मैच ब्रिस्टल और साउथहैम्पटन में खेले जाएंगे। इसके बाद भारत इंग्लैंड के खिलाफ तीन मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला भी खेलेगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र के योगदान से प्रस्तुत है महिला कार्यक्रम।

महिला सभा सुनने वाली मेरी प्यारी सखियों को आपकी सखी नीलम का प्यार भरा नमस्कार। सखियों, हम सभी घर के काम करने के साथ साथ बाहर के भी सारे काम बहुत अच्छे से कर लेती हैं, लेकिन सखियों अभी भी आर्थिक निर्णय लेने, निवेश करने, टैक्स से जुड़े निर्णय लेने में कई बार हम अपने हस्बैंड, अपने पापा या घर के सदस्यों पर निर्भर हो जाती हैं। सखियों, यदि हम कमा रहे हैं या हाउसवाइफ घर में पैसा बचा रही हैं, तो उससे जुड़ी हर जानकारी, हर निर्णय में हमारी सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए, क्योंकि पैसा कमाना या पैसा बचाना ही जरूरी

है। इसके साथ ही अपने पैसों को समझना, संभालना व सही उपयोग करना भी हमें आना चाहिए। सखियों, हमें फाइनेंशियल मुद्दों पर भी अपनी राय बनानी होगी। इसके लिए हमें कुछ खास बातों का ध्यान रखना होगा, जैसे बैंकिंग की मूलभूत जानकारी होनी चाहिए, बैंक खाता कैसे खोलते हैं, चेक कैसे भरा जाता है या डिजिटल भुगतान कैसे किया जाता है। आज के डिजिटल युग में नेट बैंकिंग, कार्ड से पेमेंट करना, ये सब काम हमें आना चाहिए। हम हमेशा आय और व्यय का व्यवस्थित रिकॉर्ड रखें, इससे हमें आर्थिक स्थिति समझने एवं बेहतर निर्णय लेने में आसानी होगी। और हाँ सखियो, वित्त से संबंधित सारे दस्तावेज को भी समझना और संभाल कर रखना आना चाहिए, जैसे कि बैंक स्टेटमेंट, पॉलिसी रिलेटेड डॉक्यूमेंट, भुगतान रिकॉर्ड इत्यादि। टैक्स से संबंधित जानकारी भी हमें रखनी होगी, आयकर रिटर्न कैसे भरते हैं, किन खर्चों पर टैक्स से छूट मिलती है और अपनी आय को किस प्रकार व्यवस्थित किया जा सकता है। यदि हम इन छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखेंगी ना, तब हम आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकती हैं। सखियो, समय पर हमें बिलों का भुगतान करना चाहिए ताकि हमारा क्रेडिट स्कोर अच्छा रहे, जिससे भविष्य में लोन लेने में हमें आसानी होगी। खुद के लिए और पूरे फैमिली के लिए हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस लेना भी आज की जरूरत बन गया है। और कोशिश करें कि हम अपने या अपने घर की कुल इनकम का 50% घर के जरूरी खर्चे, 30% अपनी इच्छाओं और 20% भविष्य की बचत में निवेश करें। छोटी छोटी सेविंग भी लॉन्ग टर्म में एक बड़ा फंड बनाकर देती हैं। सखियों, कमाने के साथ साथ हमें निवेश के फैसले भी लेने होंगे, ना कि घर के अन्य सदस्यों पर हम निर्भर हो जाएं। वर्तमान में निवेश के कई सुरक्षित व लाभदायक विकल्प उपलब्ध हैं, जैसे फिक्स्ड डिपॉजिट, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, बीमा, पेंशन स्कीम, SIP। इससे हम भविष्य की अपनी आर्थिक सुरक्षा को बेहतर बना सकती हैं। तो आइए सखियों, हम भी अपने वित्तीय व्यवहार को निखारें और अपने और अपने परिवार की मेहनत की कमाई को समझदारी से मैनेज करें।

0: सखियो, समय समय पर हम आपके लिए कहानी, काव्य पाठ, वार्ता लेकर आते हैं। तो आज की इस कड़ी में हम आपके लिए लेकर आए हैं काव्य पाठ। कवित्री हैं सुश्री भारती जैन। तो आइए सखियो, सुनते हैं ये काव्य पाठ।
1: नमस्कार, आज मैं आपके लिए कुछ गीत लेकर उपस्थित हुई हूँ, सुनिएगा।

घट घट में खुशियों के घट भर, ये मान सरोवर मन कर दो। हो धन्य धरा का ज्योतिर्मय, हो धन्य धरा का ज्योतिर्मय, हर दृश्य अलौकिक।

तारा। और अंतिम पद देखें कि हो प्रेम प्रतिष्ठित हर घर में, नफरत डर से कांपे थर थर। हो प्रेम प्रतिष्ठित हर घर में, नफरत डर से कांपे थर थर। हो प्रेम सुधा से ही सिंचित, चिंतन के चौराहे प्रभुवर। महिमा मंडित सम्मान रहे, माटी का अक्षत मान रहे।

0: नमस्कार, धन्यवाद।
1: सखियों, अभी आपने सुना काव्य पाठ। कवित्री थी सुश्री भारती जैन। सखियों, हर मौसम खास होता है। उसमें बारिश का मौसम राहत और खुशी की लहर लेकर आता है। बारिश हमेशा पुरानी यादें और सुकून का एहसास लेकर आती है। सखियों, अभी बारिश का मौसम है और बारिश के मौसम के अनुसार घर के साज सज्जा बदलने से न केवल घर का माहौल तरोताजा रहता है, बल्कि बदलते मौसम में आराम भी मिलता है। अभी चारों ओर हरियाली है, ऐसे में घर के बगीचे से फूलों को तोड़कर लिविंग रूम की सेंटर टेबल पर फूलदान में सजाएं। जब आप फूलों से भरे गुलदस्ते देखेंगी ना, तो इससे आपका मूड तुरंत अच्छा हो जाएगा। लिली, चमेली और गुलाब जैसे मधुर सुगंध वाले फूल किसी भी स्थान की सुंदरता बढ़ाने या उसे मनमोहक खुशबू से महकाने के लिए हमेशा ही तैयार रहते हैं। सखियों, विंड चाइम्स घरों के अंदर सकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित करती हैं। उन्हें अपने बेडरूम स्पेस या लिविंग एरिया की खिड़कियों से लटका दें। इनकी आवाज से वातावरण में शांति और सुकून का संचार होता है। सखियों, बारिश में भारी पर्दे के कपड़े नमी को अवशोषित करते हैं और फिर एक अजीब सी स्मेल बनी रहती है। इसलिए इन दिनों हल्के रंग के लाइट पर्दे, जिससे हवा एवं रोशनी आसानी से प्रवेश कर सके। शिफॉन, नायलॉन, लिनन जैसे हवादार कपड़े घर में प्राकृतिक रोशनी आने देने के लिए एकदम सही रहेंगे, क्योंकि ये ताजी हवा को अंदर आने देंगे और हवादार माहौल बना रहेगा। साथ ही अपने घर की एंट्री पर एक ऑल वेदर प्रूफ डोरमेट बिछाएं, ताकि बाहर से कोई भी आए अपने जूते चप्पल पोंछ कर ही अंदर आए। बारिश का मौसम बहुत सुहाना होता है, ये अपने साथ लीकेज, सीलन भरी बदबू भी लाता है। इसलिए समय समय पर खिड़की दीवारों की जांच करें, यदि कुछ लीकेज हो तो वाटर प्रूफ टेप से तुरंत ठीक करवा लें। सखियों, हमें यकीन है आप अपने घर को ताजा रंगों और शांति से भरपूर चीजों से भरकर एक आरामदायक जगह बना ही लेंगी। साथ ही अपने घर को मानसून के लिए तैयार करना ना भूलें और बारिश के मौसम से अपने घर के उत्साह को किसी भी प्रकार से कम होने ना दें।

सखियों, आज के समय में स्वस्थ रहने के लिए मजबूत इम्यून सिस्टम होना बेहद ज़रूरी है। हमारा इम्यून सिस्टम ही शरीर को वायरस, बैक्टीरिया और अन्य संक्रमण से बचाने का काम करता है। जब रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारी कमज़ोर होती है, तभी हम जल्दी बीमार पड़ते हैं और शरीर को संक्रमण से लड़ने में कठिनाई होती है। सखियों, आप जो खाते हैं वह आपके स्वास्थ्य और आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अच्छा खान पान आपको स्वस्थ रखने, बार बार बीमार पड़ने से बचने और हर दिन अच्छा महसूस करने में मदद करता है। कुछ आसान आदतें आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकती हैं। विभिन्न पोषक तत्वों से भरपूर भोजन आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर ढंग से काम करने में मदद करता है। सखियों, पानी शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है, पाचन क्रिया को भी बेहतर बनाता है। इसलिए दिन में 6 से 8 ग्लास पानी आप जरूर पिएं। पैकेट बंद जूस या शीतल पेय से बचें, क्योंकि इनमें आमतौर पर शरीर की आवश्यकता से अधिक चीनी होती है। समय पर खाना खाना सिर्फ एक आदत नहीं है, बल्कि नियमित अंतराल पर भोजन करने से शरीर बेहतर तरीके से काम करता है। नाश्ता छोड़ना या रात को बहुत देर से खाना खाना गलत है। ऐसा करने से पाचन संबंधी समस्याएं होती हैं। विटामिन्स और खनिजों से भरपूर विभिन्न प्रकार के पौष्टिक खाद्य पदार्थ जैसे खट्टे फल, पालक, लाल मिर्च, अदरक, लहसुन का नियमित सेवन करने से रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद मिलती है। अपने दैनिक आहार में प्रोटीन से भरपूर खाद्य पदार्थ जैसे दूध,

पनीर, दाल, अंडे, चिकन, मछली और मेवे को शामिल करें। सखियो, विटामिन ए, सी, डी और ई हमारे आहार में सुपर शक्तिशाली प्रतिरक्षा बूस्टर हैं। इसके लिए आप आम, पपीता, खरबूजे जैसे मौसमी फलों को अपने डेली रूटीन में जरूर शामिल करें। सखियो, आपको अपनी पूरी जीवन शैली को रातों रात बदलने की आवश्यकता नहीं है। एक आदत से शुरुआत करें, उसे अपने डेली रूटीन में शामिल करें और फिर आप अगली आदत की ओर बढ़ें। सखियो, अब समय हो गया है आपसे विदा लेने का, तो दीजिए अपनी सखी नीलम को अनुमति। नमस्कार।

आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र के योगदान से अभी आप सुन रहे थे महिला कार्यक्रम। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। समय है एक अंतराल का। श्रोताओं, आवश्यक सूचना। पुलिस आयुक्त नगरीय पुलिस भोपाल द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत जन सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से आदेश जारी किया गया है। सभी नागरिकों से अपील की जाती है कि फेसबुक, व्हाट्सएप, एक्स, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब तथा अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग पूरी जिम्मेदारी और सावधानी से करें। किसी भी प्रकार की भ्रामक अफवाह फैलाने वाली धार्मिक, सामाजिक, जातीय अथवा सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काने वाली पोस्ट, फोटो, वीडियो, ऑडियो या संदेश का प्रसारण, साझा, लाइक, कमेंट अथवा फॉरवर्ड न करें। किसी भी अपुष्ट या भ्रामक जानकारी को बिना सत्यापन के प्रसारित करना कानून व्यवस्था के लिए गंभीर चुनौती बन सकता है। सोशल मीडिया पर ऐसी किसी भी सामग्री का प्रचार प्रसार जिससे समाज में वैमनस्य, तनाव, भय या अशांति फैलने की संभावना हो, पूर्णतः प्रतिबंधित है। यदि किसी ग्रुप के एडमिन को इस प्रकार की सामग्री प्राप्त होती है तो उसे तत्काल हटाने एवं संबंधित सदस्य को ऐसा करने से रोकने की जिम्मेदारी भी होगी। इसके अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति या समुदाय के विरुद्ध घृणा, हिंसा या भेदभाव फैलाने वाले संदेशों का प्रसारण नहीं किया जाएगा। अफवाहों, फर्जी समाचारों अथवा तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करने वाली सामग्री को लाइक, शेयर या फॉरवर्ड करने से भी बचें। नागरिकों से अपेक्षा है कि वे केवल प्रमाणित एवं विश्वसनीय स्रोतों से प्राप्त जानकारी पर ही विश्वास करें और किसी भी संदिग्ध सूचना की जानकारी तत्काल पुलिस अथवा संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों को दें। पुलिस आयुक्त द्वारा जारी यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 तथा अन्य प्रासंगिक विधिक प्रावधानों के अंतर्गत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। भोपाल पुलिस सभी नागरिकों से शांति, सौहार्द एवं सामाजिक सद्भाव बनाए रखने तथा जिम्मेदार नागरिक होने का परिचय देने की अपील करती है। सूचना समाप्त होती है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। श्रोताओं, 1:30 होने वाले हैं।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए कार्यक्रम लोक संगीत। आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र के योगदान से आज इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे घनश्याम कुशवाहा के गाए

0: प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र के योगदान से सुगम संगीत कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं स्वाति पाराशर के गाए गीत और भजन। कार्यक्रम में सबसे पहले सुनते हैं ये भजन।

स्वाति पाराशर के गाए गीत और भजन अभी आप सुन रहे थे। सुगम संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुति आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र की थी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। समय है एक अंतराल का।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। दोपहर के 2 बज रहे हैं। श्रोताओं, प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम में सबसे पहले आपको सुनवा रहे हैं अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाजों में मजरू सुल्तानपुरी का लिखा ये गीत। संगीत आनंद मिलिंद का है और फिल्म का नाम है कयामत से कयामत तक।

फिल्म संगीत कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से, और अब सुनवाते हैं परदेश फिल्म का गीत कुमार सानू की आवाज़ में। गीत के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने और धुन बनाई है नदीम श्रवण ने।

0: कुमार सानू की आवाज़ में परदेस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे, जिसे लिखा था आनंद बख्शी ने और धुन बनाई थी ये जो गीत परदेस फिल्म का अभी आपने सुना, इस गीत की धुन बनाई थी नदीम श्रवण ने। इसी के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विभिन्न पवित्र स्थलों पर भगवान शिव से जुड़ने का उन्हें बार बार सौभाग्य मिला है। इंडोनेशिया के प्रांबानन मंदिर में सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने सोमनाथ ज्योतिर्लिंग को अपने लिए विशेष महत्व का बताया। उन्होंने कहा कि वाराणसी में काशी विश्वनाथ महादेव के आशीर्वाद से उन्हें हमेशा मार्गदर्शन मिला है। केदारनाथ और महाकालेश्वर मंदिर के पुनर्निर्माण में योगदान को भी उन्होंने अपना सौभाग्य बताया।
1: योग्यकर्ता के इस भव्य मंदिर कॉम्प्लेक्स का जब हम पुनर्निर्माण का काम करने जा रहे हैं और ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज है, दुनिया के दूर दूर क्षेत्रों में कहीं पर भी जाएं, हमें कहीं न कहीं भारत की सांस्कृतिक विरासत के दर्शन होते हैं। ये पूरे साउथ ईस्ट एशिया का दूसरा सबसे बड़ा हमारी विरासत की पहचान है।
0: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज धार जिले के पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र में लियुगोंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नए विनिर्माण संयंत्र का भूमि पूजन करेंगे। चीन की अग्रणी निर्माण उपकरण कंपनी गुमांगशी लियुगोंग मशीनरी की भारतीय इकाई 272 करोड़ रुपए के निवेश से यह संयंत्र स्थापित कर रही है। नया संयंत्र लगभग 20 एकड़ क्षेत्र में

0: विकसित किया जाएगा। प्रारंभिक चरण में यहां हर साल 6,500 निर्माण उपकरणों के उत्पादन की क्षमता होगी, जिसमें मुख्य रूप से एक्सकवेटर बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। प्रदेश सरकार के एमएसएमई मंत्री चैतन्य कश्यप ने बताया कि सरदार सरोवर योजना का 30 से 40 साल पुराना विवाद सुलझा लिया गया है, अब गुजरात 75% लागत वहन करेगा। उन्होंने बताया कि ज्ञान भारतम योजना में प्रदेश पांडुलिपि संकलन में देश में पहले नंबर पर है। टीकमगढ़ से जम्बूद्वीप का नक्शा और बुरहानपुर से 220 वर्ष पुरानी श्री भागवत गीता पांडुलिपि मिली है। वहीं जलगंगा संवर्धन अभियान में साल करीब 7 करोड़ परिवारों की भागीदारी रही और 10,600 करोड़ रुपए से अधिक का व्यय हुआ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में कल नई दिल्ली में नर्मदा अवार्ड के लंबित भुगतान पर ऐतिहासिक समझौता हुआ। महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों ने समझौते पर हस्ताक्षर किए। ये सरदार सरोवर परियोजना की लागत साझाकरण के दीर्घकालिक विवाद को समाप्त करने की दिशा में मील का पत्थर है। श्री शाह ने इसे सहकारी संघवाद का उदाहरण बताया। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकारों से राज्यों के बीच विवाद तेजी से सुलझ रहे हैं। भोपाल में 13 जुलाई को एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 3.0 का आयोजन किया जाएगा, जिसमें जीसीसी डेटा सेंटर और सेमीकंडक्टर क्षेत्र में निवेश पर फोकस रहेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उद्योग जगत के प्रतिनिधियों से संवाद करेंगे। पिछली 2 कॉन्क्लेव में कुल 32,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिल चुके हैं। कार्यक्रम में देश विदेश की कई अग्रणी कंपनियां शामिल होंगी। लखनऊ कोचिंग हादसे के बाद भोपाल नगर निगम ने फायर सेफ्टी को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए निगम ने अब तक फायर सेफ्टी नियमों के उल्लंघन पर 8 कोचिंग संस्थानों को सील कर दिया है। अन्य संस्थानों को 15 से 30 दिन में कमियां दूर करने के निर्देश दिए गए हैं। सभी भवनों में फिक्स फायर फाइटिंग सिस्टम और 2 सुरक्षित इमरजेंसी एग्जिट अनिवार्य होंगे। कड़ी सुरक्षा के बीच आज अमरनाथ यात्रा के लिए श्रद्धालुओं का 7वां जत्था जम्मू बेस कैंप से रवाना हुआ। यात्रियों में बाबा बर्फानी के दर्शनों को लेकर भारी उत्साह देखने को मिला। अब बात करते हैं मौसम की। प्रदेश में मानसून पूरी रफ्तार से सक्रिय है। पन्ना, छतरपुर, खंडवा समेत कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। मौसम विभाग ने आज श्योपुर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, सागर और टीकमगढ़ में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 4 दिनों तक भारी से अति भारी बारिश की संभावना है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। आगरमालवा जिले के नलखेड़ा स्थित मां बगलामुखी मंदिर में दान चढ़ावे की गड़बड़ियों की शिकायत पर जांच समिति बनाई गई है। कलेक्टर प्रीति यादव ने 3 सदस्यीय समिति गठित की है, जिसके अध्यक्ष सीईओ बीएस सोलंकी हैं। आगरमालवा जिला पुलिस ने कल जिले भर के स्कूलों, ग्राम पंचायतों और सार्वजनिक स्थलों पर सेफ क्लिक 2.0 जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। इसी प्रकार से रायसेन में भी सेफ क्लिक 2.0 साइबर जागरूकता अभियान का समापन कल किया गया। नर्मदापुरम के पिपरिया रेलवे चिकित्सालय और रेलवे स्टेशन पर जबलपुर रेल मंडल द्वारा टीबी जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शिवपुरी कलेक्टर अर्पित वर्मा ने शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में जर्जर और जीर्णशीर्ण भवनों में स्कूल संचालित नहीं करने के निर्देश दिए हैं और भारतीय खेल प्राधिकरण राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र NCEOE भोपाल के 2 कैनो खिलाड़ी एल नेहा देवी और हर्षवर्धन सिंह सक्तावत का चयन 2026 ICF कैनो स्प्रिंट व पैरा कैनो वर्ल्ड कप में भारतीय टीम के लिए हुआ है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग्यकर्ता में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल प्रामानन मंदिर में पूजा अर्चना की। कहा, मंदिर के संरक्षण में भारत की भागीदारी दोनों देशों की साझा सांस्कृतिक विरासत को दर्शाती है। प्रधानमंत्री मोदी की इंडोनेशिया यात्रा संपन्न। 3रे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया रवाना। महिलाओं के सशक्तिकरण और सतत विकास के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने के लिए कोची में ब्रिक्स देशों की महिला मंत्रियों की 2 दिवसीय बैठक शुरू। गृहमंत्री अमित शाह ने बाढ़ प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात कर केंद्र की ओर से हर संभव मदद का आश्वासन दिया। देश के मध्य और पूर्वी हिस्सों में मूसलाधार वर्षा और आंधी तूफान का अनुमान। अमेरिका के हमलों के बाद ईरान ने बहरीन और कुवैत में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। वैश्विक स्तर पर तेल की कीमतों में 2% से अधिक की बढ़ोतरी। और फीफा विश्व कप में स्विट्जरलैंड ने पेनल्टी शूटआउट में कोलंबिया को 4-3 से हराया। क्वार्टर फाइनल में अर्जेंटीना से मुकाबला होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ योग्याकर्ता स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल प्रांगण मंदिर का दौरा किया। प्रधानमंत्री का पारंपरिक वाद्य यंत्रों की मधुर धुन और शास्त्रीय नृत्य के साथ स्वागत किया गया। श्री मोदी ने मुख्य शिव मंदिर में पूजा अर्चना की और भारत इंडोनेशिया सहयोग के तहत चल रहे संरक्षण कार्यों का जायजा लिया। संयुक्त बयान में राष्ट्रपति प्रबोवो ने कहा कि प्रांगण भारत और इंडोनेशिया के बीच सदियों पुराने सभ्यता

0: बंधन का प्रतीक है। उन्होंने मंदिर परिसर के संरक्षण और जीर्णोद्धार में भारत के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री मोदी ने इस यात्रा को गहन आध्यात्मिक और यादगार अनुभव बताया। प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि जीर्णोद्धार परियोजना से दोनों देशों के लोगों के बीच संबंध और मजबूत होंगे।
1: योग्यकर्ता के इस भव्य मंदिर कॉम्प्लेक्स अब जब हम पुनर्निर्माण का काम करने जा रहे हैं और ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज है, दुनिया के दूर दूर क्षेत्रों में कहीं पर भी जाएं, हमें कहीं न कहीं भारत के सांस्कृतिक विरासत के दर्शन होते हैं। ये पूरे साउथ ईस्ट एशिया का दूसरा सबसे बड़ा हमारी विरासत की पहचान है।
0: इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उन्हें विभिन्न पवित्र स्थलों पर भगवान शिव से बार बार जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। प्रामबानंद मंदिर में एक सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि गुजरात स्थित सोमनाथ ज्योतिर्लिंग उनके लिए विशेष महत्व रखता है और इसके विकास की प्रत्यक्ष जिम्मेदारी उन्हीं पर है। श्री मोदी ने कहा कि उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी में स्थित काशी विश्वनाथ महादेव के आशीर्वाद से उन्हें हमेशा मार्गदर्शन मिला है। उत्तराखंड में केदारनाथ मंदिर और उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर के पुनर्निर्माण का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें इन परियोजनाओं में योगदान का सौभाग्य प्राप्त हुआ है।
1: एक हमारी सांस्कृतिक विरासत का पुनरुद्धार और उसका रिनोवेशन का काम, उसका प्रारंभ करने का सौभाग्य भी मुझे मिला। मैं अपने आप में बहुत बड़ा भाग्यशाली मानता हूँ। यहाँ के जीवन में, यहाँ की बातों में, यहाँ की हवा में एक संस्कृति की खुशबू है, वो खुशबू जो हम भारत की धरती पर पल पल अनुभव करते हैं। ये खुशबू हमारी सांस्कृतिक विरासत भी अपने आप में अपनत्व से जोड़ती है।
0: भारत और इंडोनेशिया ने उच्च शिक्षा में सहयोग को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल घोषणा की कि भारतीय प्रबंधन संस्थान बेंगलुरु इंडोनेशिया में अपना पहला विदेशी परिसर स्थापित करेगा।

और मजबूती प्रदान करना है। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में मेलबर्न स्थित प्रख्यात फार्मासिस्ट और ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया के सदस्य दीपक संघवी ने द्विपक्षीय संबंधों के बारे में अपने विचार साझा किए। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। ब्रिक्स महिला मंत्री स्तरीय सम्मेलन आज से केरलम के कोच्चि में आज सवेरे शुरू हुआ। महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी तथा मंत्रालय में सचिव अनिल मलिक सहित अन्य मंत्री सम्मेलन के मुख्य सत्र में शामिल हुए। मुख्य सत्र के दौरान संयुक्त वक्तव्य जारी किया जाएगा। सम्मेलन में भाग ले रहे मंत्री ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के सिलसिले में आयोजित एक प्रदर्शनी का दौरा करेंगे और शिक्षा मंत्री जैसे विभिन्न क्षेत्रों में महिला नेतृत्व आधारित विकास में भारत की उपलब्धियों को दर्शाने वाली प्रदर्शनियां भी लगाई गई हैं। भारत वस्तु समझौते से संबंधित 13वीं आसियान भारत व्यापार संयुक्त समिति की नई दिल्ली में बैठक की मेजबानी कर रहा है। इसका उद्देश्य आसियान भारत व्यापार समझौते की समीक्षा को आगे बढ़ाना है। संयुक्त समिति की बैठक और उससे जुड़ी बैठकें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से 10 जुलाई तक जारी रहेंगी। इन बैठकों से भारत और आसियान के बीच सहयोग और आपसी समझौता होगा। वस्त्र मंत्रालय ने राष्ट्रीय नवाचार चुनौती हथकरघा हैकाथॉन 2026 का शुभारंभ किया है। इसका उद्देश्य देश के हथकरघा क्षेत्र को मजबूती देने के लिए प्रौद्योगिकी डिजाइन और उद्यमशीलता का उपयोग करना तथा सतत समाधान प्रदान करना है। इस पहल का आयोजन राष्ट्रीय हथकरघा दिवस समारोह के हिस्से के रूप में किया जा रहा है। ऑनलाइन पंजीकरण 20 जुलाई तक खुले हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन समुद्री जैव विविधता का संरक्षण करते हुए खुले समुद्र में सतत मत्स्य पालन के लिए प्राधिकार पत्र तथा उड़ीसा गहरे समुद्री मत्स्य पालन मिशन का दस्तावेज कल उड़ीसा के भुवनेश्वर में जारी करेंगे। मत्स्य पालन विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में लगभग 1000 मत्स्य किसान और मछुआरे भाग लेंगे। प्राधिकार पत्र वर्ष 2026 के भारतीय ध्वज वाले मत्स्य पोतों द्वारा खुले समुद्र में मत्स्य संसाधनों के सतत दोहन संबंधी दिशा देशों के तहत एक अनिवार्य प्रावधान है। प्रवर्तन निदेशालय दिल्ली एनसीआर में 5 परिसरों पर तलाशी अभियान चला रहा है। ये छापेमारी सब्सिडी पर मकान खरीदारों को ठगने के 3 मामलों की चल रही जांच के सिलसिले में चलाया जा रहा है। इससे पहले केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा की गई जांच में पता चला है कि बिल्डरों ने सब्सिडी योजनाओं के नाम पर मकान खरीदारों और निवेशकों को धोखा दिया है। इससे ये भी पता चला है कि बिल्डरों ने पोजीशन तक कोई ईएमआई नहीं योजना शुरू की है, जिनके तहत घर खरीदारों ने आवास ऋण लेकर फ्लैट बुक किए। हालांकि कई साल बीत जाने के बाद भी उन्हें फ्लैटों का पोजीशन नहीं दिया गया है। पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले के बरोईपुर में दुष्कर्म और हत्या मामले का मुख्य आरोपी प्रभास मंडल मुठभेड़ में मारा गया है। मंगलवार और बुधवार की रात लगभग 12:45 पर घटना के नाटकीय रूपांतरण के दौरान प्रभास ने पुलिस अधिकारी की बंदूक छीनकर भागने की कोशिश की और एक राउंड गोली चलाई। मुठभेड़ में प्रभास गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे अस्पताल में मृत घोषित किया गया। इस मामले में गिरफ्तार 3 अन्य आरोपी फिलहाल पुलिस हिरासत में हैं। जम्मू कश्मीर के शोपिया के चनापोरा इलाके में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में एक आतंकवादी मारा गया है। ये सेना और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का संयुक्त अभियान था। आकाशवाणी से बातचीत में पुलिस महानिरीक्षक वीके बर्डी ने बताया कि घटनास्थल से हथियारों और गोला बारूद के साथ एक शव बरामद हुआ और उसकी पहचान की जा रही है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज अल नीनो के संभावित प्रभाव की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की। पत्रकारों से बातचीत में श्री चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार ने इस वर्ष अप्रैल में ही अल नीनो की चुनौती से निपटने की तैयारी शुरू कर दी थी। उन्होंने ये भी बताया कि अल नीनो निगरानी प्रकोष्ठ और नोडल अधिकारियों के माध्यम से बुवाई, फसल और बाजार की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। श्री चौहान ने कहा कि मॉनसून में देरी के कारण तुअर, सोयाबीन, कपास और अन्य फसलों की बुवाई प्रभावित हुई है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज तेज बारिश, बाढ़ जैसी स्थिति और भूस्खलन से प्रभावित कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात कर उन्हें केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। श्री शाह ने आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से राज्य में तेज बारिश और बाढ़ को लेकर बात की। श्री शाह ने मुख्यमंत्री को आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार संकट से निपटने में महाराष्ट्र सरकार की हर संभव सहायता करेगी। पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र के कई हिस्से तेज वर्षा से प्रभावित हैं। गृहमंत्री ने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से राज्य में तेज बारिश और जलभराव से उत्पन्न स्थिति के बारे में भी बातचीत की और केंद्र सरकार की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। इस बीच केरलम के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वायनाड

आपदा के संबंध में उनसे फोन पर बात की। श्री सतीशन ने कहा कि श्री शाह ने स्थिति का जायजा लिया और राहत और पुनर्वास प्रयासों के लिए केंद्र सरकार के पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। केरलम के मुख्यमंत्री

0: राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की दो टीम अभी भी दुर्घटना स्थल पर मौजूद है। 5 लोग अभी भी लापता हैं और तलाशी अभियान जारी है। लद्दाख में स्थानीय मौसम विभाग ने नालों में तेज और अचानक जलधाराओं के खतरे और बाढ़ की आशंका की चेतावनी जारी की है। राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड ने सिक्किम को पश्चिम बंगाल से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 10 के एक खंड को 11 से 13 जुलाई तक अस्थायी रूप से एक दिन में 5 घंटे के लिए बंद करने की घोषणा की है। एक रिपोर्ट।
1: राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड NHIDCL ने आपातकालीन मरम्मत कार्य और वाहन चालकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 20वें माइल बरदांग स्थित NH10 के एक हिस्से को अस्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की है। ये मार्ग 11 से 13 जुलाई तक प्रतिदिन सुबह 5 बजे से 10 बजे तक सभी प्रकार के वाहनों के लिए बंद रहेगा। यह बंदी चल रहे आपातकालीन मरम्मत कार्य के कारण आवश्यक है। अधिकारियों ने इस दौरान यातायात जाम और सुरक्षा संबंधी जोखिम की आशंका जताई है। यात्रियों के असुविधा कम करने के लिए NHIDCL ने वाहन चालकों के लिए वैकल्पिक मार्गों की व्यवस्था भी की है। मानुष प्रतिम शर्मा के साथ मोइनक चैटर्जी, आकाशवाणी समाचार, गांतोक।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ईरान ने होर्मुज गान प्रांत और माशहर बंदरगाह पर अमरीकी हमलों के जवाब में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर हमले किए। ईरानी मीडिया के अनुसार इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने मिसाइल और ड्रोन हमले करते हुए अमरीका के 85 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। इनमें बहरीन स्थित सलमान बंदरगाह और अमरीका के 5वें बेड़े का मुख्यालय तथा कुवैत में अली अल सलेम वायुसेना अड्डा शामिल है। एक रिपोर्ट।
2: ईरान के बुशहर प्रांत में अमेरिका के MQ-9 ड्रोन को भी मार गिराया गया। इस बीच बहरीन के गृह मंत्रालय ने चेतावनी सायरन बजने पर लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने को कहा है। इससे पहले होर्मुज जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हाल के हमलों के जवाब में अमेरिका ने ईरान के 80 से अधिक ठिकानों पर फिर हवाई हमले किए। ईरान की केंद्रीय सैन्य कमान ने इसे आक्रामकता और आतंकवाद का कृत्य बताते हुए जवाबी हमले की चेतावनी दी है। ईरान ने यह भी कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य में किसी भी तरह के हस्तक्षेप की अनुमति नहीं दी जाएगी और न ही किसी को इस पर नियंत्रण करने दिया जाएगा। इस बीच अमेरिका ने अंतरिम समझौते के तहत ईरान को दी गई तेल बेचने की छूट रद्द कर दी है। ईरान के उप विदेश मंत्री काजिम गरीबाबादी ने इसकी कड़ी निंदा करते हुए सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अमरीकी हमले और कार्रवाई द्विपक्षीय समझौतों का गंभीर उल्लंघन है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: और अब मौसम का भी रुख कर लेते हैं। मौसम विभाग ने देश के मध्य और पूर्वी हिस्सों में तेज वर्षा और बिजली चमकने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश में मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 2 से 3 दिन में उत्तरी अरब सागर, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के शेष भागों सहित पूरे देश में आगे बढ़ने की संभावना है। पश्चिम बंगाल के निचले इलाके, सिक्किम, महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, कोंकण और गोवा तथा दक्षिण कर्नाटक के भीतरी भागों में आज मूसलाधार बारिश हो रही है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज सुबह से हल्की बारिश हो रही है, जिससे गर्मी से राहत मिली है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के दोपहर के कारोबार में आज लगभग 0.8% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 590 अंक फिसलकर 77,591 पर, जबकि निफ्टी 185 अंक गिरकर 24,213 पर था। और अब खेलों में, अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। वैंकूवर में स्विट्जरलैंड और कोलंबिया अंतरिक्त समय के समाप्त होने तक कोई गोल नहीं कर सका। इसके बाद पेनल्टी शूटआउट में स्विट्जरलैंड ने 4-3 से जीत दर्ज की। वहीं क्वार्टर फाइनल में अर्जेंटीना का मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने श्री अमरनाथ यात्रा के लिए आज एक नया परामर्श जारी किया है। इसके अंतर्गत तीर्थयात्रियों से पंजीकरण प्रक्रिया और सुरक्षा दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने को कहा गया है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार निर्धारित दैनिक तीर्थयात्री सीमा लागू रहेगी। श्रद्धालुओं को सलाह दी गई है कि वे अग्रिम पंजीकरण कराएं और यात्रा केवल अपने परमिट में तय तिथि पर ही करें। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग्याकर्ता में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल प्रांगण मंदिर में पूजा अर्चना की। कहा, मंदिर के संरक्षण में भारत की भागीदारी दोनों देशों की साझा सांस्कृतिक विरासत को दर्शाती है। प्रधानमंत्री मोदी की इंडोनेशिया यात्रा संपन्न। 3rd भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया रवाना। महिलाओं के सशक्तिकरण और सतत विकास

0: के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने के लिए कोची में ब्रिक्स देशों की महिला मंत्रियों की 2 दिवसीय बैठक शुरू। गृहमंत्री अमित शाह ने बाढ़ प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात कर केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। देश के मध्य और पूर्वी हिस्सों में मूसलाधार वर्षा और आंधी तूफान का अनुमान। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। कार्यक्रम लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी अपनी रेडियो संगीनी प्रियंका। श्रोताओं नमस्कार। कार्यक्रम में सबसे पहले आपको सुनवा रहे हैं दिलवाले फिल्म का गीत अरिजीत सिंह और अंतरा मिश्रा की आवाजों में। गीत लिखा है अमिताभ भट्टाचार्य ने और संगीत प्रीतम का है। इस गीत को पसंद किया है कंवर कॉलोनी बड़वाह से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य अदिति, शिवानी श्रीमाली और मीनूराज श्रीमाली। साथ ही साथ ये फरमाइश हमें मिली है ग्राम अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारनी, सूरज, ज्योति, रियांश ठाकुर और छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और झावेंद्र कुमार वर्मा की।

दिल तो पागल है इस फिल्म का गीत सुनना चाहा है। ये हमारे श्रोता है अनिल फड़वाड़े, सीमा, स्मिता, श्वेता, सारथी, पूजा, आरती, अमृत, तृप्ति, रूपाली और अमृता। ये है हमारे गुमाश्ता नगर इंदौर से हमें फरमाइश मिली है। साथ ही साथ दिल तो पागल है फिल्म के इसी गीत को पसंद किया है गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बीरक, जतिन बीरक और मीका बीरक के साथ ही साथ। ये पत्र है सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से और पसंद करने वाले हमारे ये श्रोता है कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हदिया खान, अस्मा, सालिया, शोएब खान, पोत्रा, मुस्तवा खान, रऊफ भाई, शाहिद भाई और गांधी बाग अकोला से रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर। दिल तो पागल है फिल्म का ये गीत हमारे इन सभी श्रोताओं की पसंद पर सुनते हैं। इसे आवाज से सजाया है लता मंगेशकर और उदित नारायण ने, बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने और संगीत उत्तम सिंह का है।

0: छनक छनक छुम छुम।
1: कोई लड़का है जब वो गाता है सावन आता है घुमड़ घुमड़ घुम घुम।
2: आपकी फरमाइश कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से और आज इस कार्यक्रम के साथ हूँ मैं आपकी अपनी रेडियो संगीनी प्रियंका। श्रोताओं आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं मैंने प्यार किया फिल्म का गीत। असद भोपाली ने इसे लिखा है, राम लक्ष्मण ने इसकी धुन बनाई है और आवाज़ SP बालासुब्रमण्यम की है। इस गीत को पसंद किया है सपना संगीता रोड इंदौर से लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता, सुनीता, पिंकेश, साक्षी, मनन, तानिया और बनिया पारा धमतरी छत्तीसगढ़ से रामचंद माखीजा, काफिर भाई, श्रीमती सविता, बेबी रचाती माखीजा और पूरा माखीजा परिवार। इन सभी की पसंद पर सुनते हैं मैंने प्यार किया फिल्म का ये गीत।

कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजों में कुछ कुछ होता है फिल्म का गीत, जिसे लिखा है समीर ने, संगीत जतिन ललित का है। इस गीत को पसंद किया है घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत हेमेंद्र और सम्मति पंचोलिया ने। ये फरमाइश है छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साहब।

0: अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाज़ों में अभी आप सुन रहे थे कुछ कुछ होता है फिल्म का ये गीत, जिसकी धुन बनाई थी जतिन ललित ने और गीत लिखा था समीर ने। इसी के साथ आपकी फरमाइश कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। ये कार्यक्रम आप सुन रहे थे आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। और अब इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इंडोनेशिया के प्रम्बानन मंदिर में सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि विभिन्न पवित्र स्थलों पर भगवान शिव से जुड़ने का उन्हें बार बार सौभाग्य मिला है। प्रधानमंत्री ने सोमनाथ ज्योतिर्लिंग को अपने लिए विशेष महत्व का बताया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज धार जिले के पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र में लियुगोंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नए विनिर्माण संयंत्र का भूमि पूजन करेंगे। चीन की अग्रणी निर्माण उपकरण कंपनी गुआंगशी लियुगोंग मशीनरी की भारतीय इकाई 272 करोड़ रुपए के निवेश से यह संयंत्र स्थापित कर रही है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। प्रदेश सरकार के एमएसएमई मंत्री चैतन्य कश्यप ने बताया कि सरदार सरोवर योजना का 30 से 40 साल पुराना विवाद सुलझा लिया गया है। अब गुजरात 75% लागत वहन करेगा। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की मौजूदगी में कल नई दिल्ली में नर्मदा अवार्ड के लंबित भुगतान पर ऐतिहासिक समझौता हुआ। महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों ने समझौते पर हस्ताक्षर किए। ये सरदार सरोवर परियोजना की लागत साझाकरण के दीर्घकालिक विवाद को समाप्त करने की दिशा में मील का पत्थर है। भोपाल में 13 जुलाई को एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 3.0 का आयोजन किया जाएगा, जिसमें जीसीसी, डेटा सेंटर और सेमीकंडक्टर क्षेत्र में निवेश पर फोकस रहेगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव उद्योग जगत के प्रतिनिधियों से संवाद करेंगे। पिछली दो कॉन्क्लेव में कुल 32,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिल चुके हैं। और लखनऊ कोचिंग हादसे के बाद भोपाल नगर निगम ने फायर सेफ्टी को लेकर सख्त रुख अपनाया है। निगम

0: अब तक फायर सेफ्टी नियमों के उल्लंघन पर 8 कोचिंग संस्थानों को सील कर चुका है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।

मीडिया में पर सभा समाप्त करने से पूर्व लीजिए सुनिए हमारी सांध्यकालीन सभा में प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। मीडियम वेव पर सांध्यकालीन सभा आरंभ होगी 5 बजे से। 5:02 पर आप सुनेंगे आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र की प्रस्तुति कार्यक्रम युववाणी।

एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम सुनिएगा शाम 6 बजे। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। मीडिया में पर सभा समाप्त करने से पूर्व लीजिए सुनिए हमारी सांध्यकालीन सभा में प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। मीडियम वेव पर सांध्यकालीन सभा आरंभ होगी 5 बजे से। 5:02 पर आप सुनेंगे आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र की प्रस्तुति कार्यक्रम युववाणी। 30 मिनट पर शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रजनी होगा, जिसमें आप सुनेंगे पंडित कुमार गंधर्व का राग हमीर में ख्याल गायन। 3 जानकारी हमारे सांध्यकालीन सभा में प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की। मीडियम वेव 188.32 मीटर्स यानी 1593 किलोहर्ट्स, डीटीएच के ऑडियो चैनल, न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन और वेव्स ओटीटी ऐप पर ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। दोपहर के 3:02 और 25 सेकेंड्स हुए हैं। मीडियम वेव पर अब हमारी ये सभा यहीं समाप्त होती है। शाम 5 बजे आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। इस दौरान डीटीएच के ऑडियो चैनल पर प्रसारण जारी रहेगा। डीटीएच के ऑडियो चैनल पर ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। डीटीएच के श्रोताओं का हम हार्दिक स्वागत करते हैं।

0: मीडियम वेव 188.32 मीटर अर्थात 1593 किलोहर्ट्ज़, साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल पर ये आकाशवाणी भोपाल है। अब हमारी ये सभा मीडियम वेव पर आरंभ होती है, कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा करें। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, शाम के 5 बजे हैं और लीजिए प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
1: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने धार जिले के पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र में आयोजित लियुगोंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नवीन विनिर्माण संयंत्र के भूमि पूजन कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन कर किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 6 दिवसीय विदेश दौरे के पहले चरण के तहत इंडोनेशिया की सफल यात्रा पूरी कर दूसरे चरण के लिए ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हो गए हैं। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो ने खुद एयरपोर्ट पर जाकर उन्हें विदाई दी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। प्रदेश सरकार के एमएसएमई मंत्री चैतन्य कश्यप ने बताया कि शीघ्र ही लगभग 800 करोड़ की लागत से डेटा सेंटर में एआई, अत्याधुनिक तकनीकी एवं अन्य आधुनिक सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। वस्त्र मंत्रालय ने राष्ट्रीय नवाचार चुनौती हथकरघा हैकेथॉन 2026 का शुभारंभ किया है, जिसका उद्देश्य देश के हथकरघा क्षेत्र को मजबूती देने के लिए प्रौद्योगिकी, डिजाइन और उद्यमशीलता का उपयोग करना तथा सतत समाधान प्रदान करना है। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने मंत्रालय में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन एबीडीएम के अंतर्गत संचालित प्रगतिरत कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ प्रदेश के अंतिम छोर तक रहने वाले प्रत्येक नागरिक तक पहुंचाया जाए और प्रदेश के सभी शासकीय, अशासकीय और निजी महाविद्यालयों में रिक्त सीटों पर ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों को प्रवेश दिलाने के लिए उच्च शिक्षा विभाग 8 से 15 जुलाई तक प्रवेश मेला आयोजित कर रहा है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका अपना दोस्त उत्कर्ष भार्गव और आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी। स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आजकल परीक्षाओं का दौर चल रहा है, आप भी किसी न किसी परीक्षा से गुजर रहे होंगे। उम्मीद है कि आप मन लगाकर तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के दौर में हमारी पढ़ाई में एक बड़ा हिस्सा इंटरनेट की मदद से पूरा होता है, लेकिन दोस्तों इंटरनेट उपयोग करने की भी अपनी अलग चुनौतियां हैं। कई तरह के स्पैम, वायरस, गलत लिंक या मालवेयर सॉफ्टवेयर का भी सामना हमें इंटरनेट के उपयोग से करना पड़ता है। तो आज क्यों ना इसी टॉपिक पर बात करते हैं। आगे बात करने से पहले क्यों ना एक प्यारा सा गीत

दोस्तों, तकनीकी युग में मानव जीवन को नई गति दी है। इंटरनेट, मोबाइल फोन और सोशल मीडिया ने संवाद, शिक्षा और अभिव्यक्ति के अनगिनत अवसर उपलब्ध कराए हैं। किंतु इन सुविधाओं के साथ कुछ चुनौतियां भी सामने आई हैं। उन्हीं में से एक है साइबर बुलिंग। दोस्तों, आज का युवा डिजिटल दुनिया का नागरिक है। उसकी पढ़ाई, दोस्ती, मनोरंजन और बातचीत काफी हद तक इंटरनेट के माध्यम से होती है। ऐसे में यह आवश्यक हो जाता है कि तकनीक का उपयोग जिम्मेदारी से किया जाए। तो दोस्तों, आइए समझते हैं साइबर बुलिंग क्या है। साधारण शब्दों में इंटरनेट या डिजिटल माध्यमों का उपयोग करके किसी व्यक्ति को बार बार अपमानित करना, धमकाना, उसका मजाक उड़ाना या उसकी निजी जानकारी का दुरुपयोग करना साइबर बुलिंग कहलाता है। दोस्तों, इसके कई तरीके हैं, जैसे फर्जी प्रोफाइल बनाना, अपमानजनक टिप्पणियां करना, निजी तस्वीरें साझा करना, धमकी भरे संदेश भेजना, झूठी अफवाहें फैलाना और किसी व्यक्ति का उपहास करना। दोस्तों, पहले जहां उत्पीड़न केवल स्कूल या कॉलेज तक सीमित रहता था, वहीं आज इंटरनेट के कारण यह 24 घंटे कहीं भी संभव हो गया है। यही कारण है कि साइबर बुलिंग का प्रभाव अधिक गहरा होता है। हमारे शास्त्रों में सदैव संयमित वाणी और मर्यादित आचरण का संदेश दिया है। संत कबीर का यह दोहा आज भी उतना ही सार्थक है। ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आप हूं शीतल होए। डिजिटल युग में भी यह शिक्षा हमारे लिए मार्गदर्शक है। दोस्तों, साइबर बुलिंग केवल तकनीकी समस्या नहीं, यह सामाजिक, मानसिक और नैतिक चुनौती भी है। इसके प्रभाव व्यक्ति के आत्मविश्वास, शिक्षा और पारिवारिक जीवन तक पहुंचते हैं। तो दोस्तों, आइए समझते हैं कि साइबर बुलिंग का युवाओं के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, किसी के कठोर शब्दों का घाव दिखाई नहीं देता, लेकिन उसका दर्द बहुत गहरा होता है। जब यही व्यवहार इंटरनेट के माध्यम से बार बार होता है, तो उसका प्रभाव और भी गंभीर होता है। आज साइबर बुलिंग के कारण युवाओं में कई सारी समस्याएं देखी जा रही हैं, और इसके कारण है तनाव और चिंता बढ़ सकती है, आत्मविश्वास की कमी आ सकती है, पढ़ाई और एकाग्रता प्रभावित हो सकती है तथा सामाजिक अलगाव की भावना भी हो सकती है। कई युवा अपनी परेशानी किसी से साझा नहीं करते। वे सोचते हैं कि शायद यह केवल मजाक है या फिर शिकायत करने से स्थिति और बिगड़ जाएगी। लेकिन याद रखिए, चुप्पी समाधान नहीं, जागरूकता ही सुरक्षा है। समस्या को स्वीकार करना और सहायता मांगना साहस का प्रतीक है, कमजोरी का नहीं। दोस्तों, भारत में साइबर अपराधों से निपटने के लिए अनेक कानूनी प्रावधान उपलब्ध हैं। सबसे महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 है, जो डिजिटल माध्यमों में होने वाले अपराधों पर नियंत्रण करता है। इसके अंतर्गत व्यक्तिगत पहचान को छिपाना, धोखाधड़ी करना, अश्लील या आपत्तिजनक सामग्री का प्रसार। यदि कोई युवा साइबर बुलिंग का शिकार हो जाए तो क्या करें? तो दोस्तों, सबसे पहले घबराए नहीं। दूसरा, सभी डिजिटल प्रमाण सुरक्षित रखें, जैसे स्क्रीनशॉट, संदेश, ईमेल या प्रोफाइल लिंक। तीसरा, संबंधित प्लेटफॉर्म पर रिपोर्ट और ब्लॉक करें। चौथा, अपने माता पिता, शिक्षक या विश्वसनीय व्यक्ति को जानकारी दें और आवश्यकता पड़ने पर साइबर अपराध या साइबर सेल और पुलिस से संपर्क करें। दोस्तों, भारत सरकार द्वारा संचालित राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल नागरिकों को

ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराने की सुविधा भी प्रदान करता है। तकनीक का सही उपयोग विकास का मार्ग बनता है और उसका दुरुपयोग समाज को पीड़ा देता है। इसीलिए आवश्यक है कि हम अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों को भी समझें। कानून हमें सुरक्षा देता है, लेकिन समाज और परिवार हमें संस्कार देते हैं। जब दोनों साथ चलते हैं, तभी सुरक्षित डिजिटल वातावरण का निर्माण होता है। दोस्तों, इस तरह के साइबर अपराधों से लड़ने के तरीकों और इसके निराकरण पर आगे बात करेंगे, लेकिन अभी समय है एक प्यारे

दोस्तों, अब बात करते हैं कि इस चुनौती का समाधान केवल कानून से नहीं, बल्कि परिवार, विद्यालय और समाज के सामूहिक प्रयास से संभव है। परिवार बच्चे का पहला विद्यालय होता है। माता-पिता यदि बच्चों के साथ खुलकर संवाद करें, उनकी ऑनलाइन गतिविधियों में रुचि लें और उन्हें सही गलत का विवेक सिखाएं, तो अनेक समस्याओं को प्रारंभ में ही रोका जा सकता है। बच्चों को यह विश्वास होना चाहिए कि किसी भी कठिन परिस्थिति में उनका परिवार उनके साथ है। विश्वास और संवाद, यही है सुरक्षित परिवार का आधार। दोस्तों, कोविड काल के बाद इंटरनेट का उपयोग बच्चों को भी करना पड़ता है। दोस्तों, इसलिए आज आवश्यकता है कि विद्यालयों को साइबर सुरक्षा पर कार्यशालाएं आयोजित करना चाहिए। डिजिटल नैतिकताओं को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। विद्यार्थियों को उनके कानूनी अधिकारों की जानकारी दी जाना चाहिए तथा संवेदनशील और सम्मानजनक ऑनलाइन व्यवहार को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। दोस्तों, हमें खुद भी यह याद रखना चाहिए कि हम किसी की निजता का सम्मान करें, बिना अनुमति के किसी की तस्वीर या वीडियो साझा न करें, अपमानजनक टिप्पणियों से बचें, फर्जी समाचारों को आगे न बढ़ाएं और यदि कोई साइबर बुलिंग का शिकार हो तो उसका सहयोग करें। दोस्तों, महात्मा गांधी ने कहा था, किसी समाज की महानता इस बात से आंकी जाती है कि वह अपने सबसे कमजोर और पीड़ित लोगों के साथ कैसा व्यवहार करता। डिजिटल समाज भी इस सिद्धांत से अलग नहीं है। यदि हम इंटरनेट को सम्मान, सहानुभूति और जिम्मेदारी के साथ उपयोग करें, तो तकनीक मानवता के विश्वास का सबसे बड़ा साधन बन सकती है। इसीलिए क्लिक करने से पहले सोचें, पोस्ट करने से पहले समझें और किसी को आहत करने से पहले स्वयं को उसकी जगह रख कर देखें। दोस्तों, तकनीक के इस युग में ज्ञान के साथ विवेक, अधिकारों के साथ कर्तव्य और स्वतंत्रता के साथ संवेदनशीलता का उपयोग अत्यंत आवश्यक है। दोस्तों, हम सब मिलकर एक ऐसा डिजिटल भारत बनाएं जहां प्रत्येक युवा सुरक्षित, सम्मानित और सशक्त महसूस करे।

दोस्तों, आशा है कि आज के इस कार्यक्रम से आपको साइबर बुलिंग की समस्या, उससे जुड़े कानूनी प्रावधानों और सुरक्षित डिजिटल व्यवहार के महत्व के बारे में उपयोगी जानकारी प्राप्त हुई होगी। दोस्तों, आज के कार्यक्रम से विदा लेने का समय आ गया है। आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और डिजिटल दुनिया में जिम्मेदारी एवं संवेदनशीलता के साथ आगे बढ़ते रहें। हम कल नई बातों को और गीतों के साथ फिर उपस्थित होंगे। नमस्कार।

0: युवा साथी सुन रहे थे कार्यक्रम युवानी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी ग्वालियर की प्रस्तुति थी। हमारा अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में होगा, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: भोर की चौखट पर भक्ति की धारा।

0: ऑफिस जाने की जल्दी मगर देश दुनिया की खबर भी जरूरी।
1: ये आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए।
2: ऑफिस या घर से निकलते ही उफ़, ये ट्रैफिक।
0: आकाशवाणी है ना,
3: बातों ही बातों में हर सुबह 10 से 11 बना लो पूरी दुनिया को अपना दोस्त।
0: ऑफिस में थोड़ा रिलैक्सिंग म्यूजिकल ब्रेक,
2: शाम सुहानी हो,
4: आकाशवाणी के साथ जुड़िए ना।
0: घर पहुंचते ही थकान, कैसे हो मनोरंजन,
2: आकाशवाणी है ना।
5: बदलो बदलो, आदत बदलो।
6: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
5: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए प्रस्तुत है फिल्मी गीतों पर आधारित।
1: दूरदर्शन की डायरेक्ट टू होम सेवा
2: डीडी डायरेक्ट
1: निशुल्क, न केबल का झंझट, न बार बार हर महीने भुगतान की समस्या।
2: डायरेक्ट टू होम सेवा बिल्कुल मुफ्त है।
1: स्पष्ट आवाज, सुंदर तस्वीर,
2: साथ में आकाशवाणी के 10 लोकप्रिय चैनल।
1: आज ही करें कनेक्ट
2: दूरदर्शन की डीटीएस सेवा डीडी डायरेक्ट।
3: कृषकों की खेती को उन्नतशील बनाने के लिए प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी सुनिए शाम 7:30 पर आकाशवाणी शिवपुरी से 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। इसमें हमारे कृषक भाई सुन पाएंगे नित नई बातचीत। तो सुनते रहिए किसान वाणी शाम 7:30 आकाशवाणी शिवपुरी से।

आकाशवाणी शिवपुरी का प्रातःकालीन सूचना पर दैनिक कार्यक्रम नमस्कार शिवपुरी सुनिए रोजाना सुबह 7:45 पर। इसमें आपको मिलेंगी समसामयिक जानकारी प्रतिदिन। तो सुनते रहिए हर सुबह 7:45 पर सूचना परक कार्यक्रम नमस्कार शिवपुरी आकाशवाणी शिवपुरी से। खुशखबरी, जी हां, आकाशवाणी शिवपुरी हुई अब हाईटेक। जी हाँ, आप अब हमें सुन सकते हैं अपने एंड्रॉइड और आईफोन दोनों प्लेटफॉर्म पर एक साथ कहीं भी। प्रसारण के समय जब जी चाहे तब सुनिएगा। प्ले स्टोर से न्यूज ऑन AIR ऐप को डाउनलोड करें और रेडियो ऑप्शन में जाएं, मध्य प्रदेश में आकाशवाणी शिवपुरी यानी कि AIR शिवपुरी को सिलेक्ट करें और सुने अपने एंड्रॉइड पर पूरी दुनिया में जब चाहे उस वक्त।

0: जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: दूरदर्शन की डायरेक्ट टू होम सेवा।

प्रीतम का संगीत अमिताभ भट्टाचार्य के लिखे बोल अरिजीत सिंह और शिल्पा राव की आवाज में गीत सुना आपने फिल्म लाल सिंह चड्ढा से। कार्यक्रम का अगला गीत आपके लिए प्रस्तुत है फिल्म थैंक गॉड से। आवाज है योहानी, जुबिन नौटियाल और सूर्या रघुनाथन की।

तनिष्क बागची और शामत संगीत का संगीत रश्मि विराग दुल्हन एरेक्स और मेलोडी का के लिखे बोल योहानी जुबिन नौटियाल और सूर्या रघुनाथन की आवाज में गीत सुनाते फिल्म थैंक गॉड से। कार्यक्रम का अगला गीत आपके लिए प्रस्तुत है फिल्म सीतारामम से, आवाज है अरुणिता और शाश्वत सिंह की।

विशाल चंद्रशेखर का संगीत, कुमार के लिखे बोल, अरुणिता और शाश्वत सिंह की आवाज में गीत सुना आपने फिल्म सीतारामम से। कार्यक्रम का अगला गीत आपके लिए प्रस्तुत है कविता और कनिष्क सेठ की आवाज में फिल्म जुगजुगतियों से।

कविता सेठ, कनिष्क सेठ का संगीत और आवाज भी उन्हीं की थी। फिल्म थी जुग जुग जियो। कार्यक्रम का अगला और अंतिम गीत आपके लिए प्रस्तुत है फिल्म जयेश भाई जोरदार से। आवाज है शेखर रविजानी और

कृषकों की खेती को उन्नतशील बनाने के लिए प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी सुनिए शाम 7:30 पर आकाशवाणी शिवपुरी से 100.2 MHz पर। इसमें हमारे कृषक भाई सुन पाएंगे नित नई बातचीत। तो सुनते रहिए किसान वाणी शाम 7:30 आकाशवाणी शिवपुरी से।

आकाशवाणी शिवपुरी का प्रातःकालीन सूचना पर दैनिक कार्यक्रम नमस्कार शिवपुरी सुनिए रोजाना सुबह 7:45 पर। इसमें आपको मिलेंगी समसामयिक जानकारी प्रतिदिन। तो सुनते रहिए हर सुबह 7:45 पर सूचना परक कार्यक्रम नमस्कार शिवपुरी आकाशवाणी शिवपुरी से। खुशखबरी, जी हां, आकाशवाणी शिवपुरी हुई अब हाईटेक। जी हाँ, आप अब हमें सुन सकते हैं अपने एंड्रॉइड और आईफोन दोनों प्लेटफॉर्म पर एक साथ कहीं भी। प्रसारण के समय जब जी चाहे तब सुनिएगा। प्ले स्टोर से न्यूज ऑन AIR ऐप को डाउनलोड करें और रेडियो ऑप्शन में जाएं, मध्य प्रदेश में आकाशवाणी शिवपुरी यानी कि AIR शिवपुरी को सिलेक्ट करें और सुने अपने एंड्रॉइड पर पूरी दुनिया में जब चाहे उस वक्त।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: दूरदर्शन की डायरेक्ट टू होम सेवा
3: डीडी डायरेक्ट,
2: निशुल्क, न केबल का झंझट, न बार बार हर महीने भुगतान की समस्या,
3: डायरेक्ट टू होम सेवा बिल्कुल मुफ्त है।
2: स्पष्ट आवाज, सुंदर तस्वीर,
3: साथ में आकाशवाणी के 10 लोकप्रिय चैनल,
2: आज ही करें कनेक्ट
3: दूरदर्शन की डीटीएस सेवा डीडी डायरेक्ट।
4: कृषकों की खेती को उन्नतशील बनाने के लिए प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी सुनिए शाम 7:30 पर आकाशवाणी शिवपुरी से 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। इसमें हमारे कृषक भाई सुन पाएंगे नित नई बातचीत, तो सुनते रहिए किसान वाणी शाम 7:30 आकाशवाणी शिवपुरी से।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
1: केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने बताया कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ इस महीने की 15 तारीख तक लगभग 34 करोड़ ईपीएफ खातों में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 8.25% ब्याज जमा करने का काम पूरा कर लेगा। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने बताया है कि अब तक देश भर के 23 करोड़ से अधिक लोग नशा मुक्त भारत अभियान से जुड़े हैं। इसमें 7 करोड़ 81 लाख से अधिक युवा, 5 करोड़ 24 लाख महिलाएं और 17 लाख से अधिक शैक्षणिक संस्थान शामिल हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र जिला धार में आयोजित लियुगोंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नवीन विनिर्माण संयंत्र के भूमि पूजन कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। वस्त्र मंत्रालय ने राष्ट्रीय नवाचार चुनौती हथकरघा हैकेथॉन 2026 का शुभारंभ किया है, जिसका उद्देश्य देश के हथकरघा क्षेत्र को मजबूती देने के लिए प्रौद्योगिकी, डिजाइन और उद्यमशीलता का उपयोग करना तथा सतत समाधान प्रदान करना है। इस पहल का आयोजन राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 2026 के समारोह के हिस्से के रूप में किया जा रहा है। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने मंत्रालय में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन एबीडीएम के अंतर्गत संचालित प्रगतिरत कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ प्रदेश के अंतिम छोर तक रहने वाले प्रत्येक नागरिक तक पहुंचाया जाए और प्रदेश के सभी शासकीय, अशासकीय और निजी महाविद्यालयों में रिक्त सीटों पर ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों को प्रवेश दिलाने के लिए उच्च शिक्षा विभाग 8 से 15 जुलाई तक प्रवेश मेले का आयोजन कर रहा है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो के साथ योग्यकार्ता स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल प्रांबनन मंदिर का दौरा किया। श्री मोदी ने मुख्य शिव मंदिर में पूजा अर्चना की और भारत इंडोनेशिया सहयोग के अंतर्गत चल रहे संरक्षण कार्यों का जायजा भी लिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें विभिन्न पवित्र स्थलों पर भगवान शिव से बार बार जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। श्री मोदी ने इस यात्रा को गहन आध्यात्मिक और यादगार अनुभव बताया। प्रधानमंत्री ने यह विश्वास व्यक्त किया कि जीर्णोद्धार परियोजना से दोनों देशों के लोगों के बीच संबंध और मजबूत हो जाएंगे।
1: योग्यकार्ता के इस भव्य मंदिर कॉम्प्लेक्स, अब जब हम पुनर्निर्माण का काम करने जा रहे हैं और ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज है, दुनिया के दूर दूर क्षेत्रों में कहीं पर भी जाएं, हमें कहीं न कहीं भारत की सांस्कृतिक विरासत के दर्शन होते हैं। ये पूरे साउथ ईस्ट एशिया का दूसरा सबसे बड़ा हमारी विरासत की पहचान है।
0: इस अवसर पर राष्ट्रपति प्रोबोवो ने मंदिर परिसर के संरक्षण और जीर्णोद्धार में भारत के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री मोदी तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए ऑस्ट्रेलिया रवाना हो गए हैं। तीन देशों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौरे के दूसरे चरण में श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया में प्रवासी भारतीयों को भी संबोधित करेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज कुवैत के क्राउन प्रिंस शेख सबा अल खालिद अल सबा से मुलाकात की। श्री जयशंकर ने द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए क्राउन प्रिंस की प्रतिबद्धता की सराहना की। दोनों नेताओं ने खाड़ी क्षेत्र में हो रहे घटनाक्रम पर अपने विचार साझा किए। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि पिछले कुछ दिनों में देश के विभिन्न हिस्सों में अच्छी वर्षा हुई है। इससे वर्षा की कमी वाले जिलों की संख्या 262 से घटकर अब 178 रह गई है। नई दिल्ली में अलनीनो के संभावित प्रभाव की समीक्षा के लिए आयोजित उच्च स्तरीय बैठक की श्री चौहान ने कहा कि जून में 33% वर्षा की कमी दर्ज की गई थी, लेकिन जुलाई में ये घटकर 24% रह गई। इस बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों से आज बात कर उन्हें केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। श्री शाह ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और केरलम के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन से बात की। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ इस महीने की 15 तारीख तक लगभग 34 करोड़ ईपीएफओ खातों में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 8.25% ब्याज जमा करने का काम पूरा कर लेगा। श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने बताया कि नई केंद्रीकृत आईटी सक्षम सेवा प्रणाली के माध्यम से ग्राहकों के खातों में 1,44,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जमा कर दी जाएगी। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने 19 सीटों वाले सारस MK2 के डिजाइन को सफलतापूर्वक पूरा करने पर राष्ट्रीय एयरोस्पेस प्रयोगशालाओं को बधाई दी है। श्री नायडू ने कहा कि सारस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के विजन को आगे बढ़ाता है और देश का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया हल्का परिवहन विमान है।

0: सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय ने बताया कि अब तक देश भर के 23 करोड़ से ज्यादा लोग नशा मुक्त भारत अभियान से जुड़ चुके हैं। इनमें 7 करोड़ 81 लाख से अधिक युवा, 5 करोड़ 24 लाख महिलाएं और 17 लाख से अधिक शैक्षणिक संस्थान भी शामिल हैं। बंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 1677 अंक गिरकर 76,504 पर बंद हुआ। निफ्टी 517 अंक की गिरावट के साथ 23,882 पर दर्ज हुआ। तेलंगाना 8वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी करेगा। खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि ये पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश भर में जमीनी स्तर पर खिलाड़ियों को मंच प्रदान करने के दृष्टिकोण से प्रेरित है। और इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Prime Minister Narendra Modi is en route to Australia after concluding his three-day successful visit to Indonesia. During his three-day visit to Australia, Mr. Modi will participate in the third India-Australia annual summit with his counterpart Anthony Albanese in Melbourne. Discussion between the two leaders will cover cooperation in areas including critical minerals, the cybersecurity domain, supply chain resilience, emerging technologies and others. Prime Minister Modi will also participate in the India-Australia CEOs Forum, where he will address a gathering of top business leaders from both countries. Earlier in the day, Prime Minister Modi visited the UNESCO World Heritage Site of Prambanan Temple in Yogyakarta, along with Indonesian President Prabowo Subianto. The two leaders toured the 9th century temple complex, with Prime Minister Modi offering prayers at the main Shiva temple. In a joint press statement at the temple premises, President Prabowo said Prambanan stands as a symbol of the centuries-old civilizational bond between India and Indonesia. He thanked India for its support towards the conservation and restoration of the temple complex. Speaking on the occasion, Prime Minister Modi described the visit as a deeply spiritual and memorable experience.
2: योग्यकार्ता के इस भव्य मंदिर कॉम्प्लेक्स, अब जब हम पुनर्निर्माण का काम करने जा रहे हैं और ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज है, दुनिया के दूर दूर क्षेत्रों में कहीं पर भी जाएं, हमें कहीं न कहीं भारत की सांस्कृतिक विरासत के दर्शन होते हैं। ये पूरे साउथ ईस्ट एशिया का दूसरा सबसे बड़ा हमारी विरासत की पहचान है।
1: Yesterday, the two leaders held delegation-level talks in Jakarta to strengthen cooperation in defense, security, maritime and other sectors. Prime Minister Modi also addressed the joint session of the Indonesian Parliament and the Indian community in Jakarta. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar today called on Crown Prince Sheikh Sabah Al Khalid Al Sabah of Kuwait. In a social media post, the minister shared that he conveyed the greetings of Prime Minister Narendra Modi to the Crown Prince. Dr. Jayashankar appreciated the Crown Prince's commitment to take forward the bilateral cooperation of India and Kuwait. The minister also thanked him for his sharing of perspectives on developments in the Gulf. Agriculture and Farmers Welfare Minister Shivraj Singh Chauhan today said several parts of the country have received good rainfall in recent days, reducing the number of rainfall deficient districts from 262 to 178. The minister said this while chairing a high-level review meeting in New Delhi over the possible impact of El Nino. He said that after recording a 33% rainfall deficit in June, the monsoon situation has shown improvement in July, with the overall deficit narrowing to 24%. Union Home Minister Amit Shah today spoke to the chief ministers of several states affected by heavy rainfall, flood-like situation and landslides, and assured them of all possible assistance from the centre. Mr. Shah spoke to Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis, Gujarat Chief Minister Bhupendra Patel and Kerala Chief Minister V.D. Satheesan. Meanwhile, the IMD has issued an orange alert for heavy rainfall and thunderstorms over central and eastern parts of the country. U.S. President Donald Trump has said the memorandum of understanding signed with Iran to end the conflict is over, adding that he did not want to engage with Tehran. Trump's statement came during the press conference at the NATO summit in the Turkish capital Ankara, as the U.S. and Iran traded strikes after three tankers were hit by projectiles in the Strait of Hormuz. Iran has not directly claimed responsibility. The interim ceasefire agreement signed between Washington and Tehran was intended to provide a 60-day window for negotiations on a permanent agreement, but indirect talks in Qatar ended with no sign of headway, and the U.S. military unleashed a new wave of strikes against Iran yesterday. Benchmark domestic equity indices plunged more than 2% today as renewed geopolitical tensions weighed heavily on the markets. The Sensex tumbled 1,677 points to close at 76,504. The Nifty also dipped 517 points to settle at 23,882. The 8th Khelo India Youth Games 2026 will be hosted by Telangana. Union Youth Affairs and Sports Minister Dr. Mansukh Mandavia made the announcement today. The quarterfinal lineup for the FIFA World Cup has been finalized. France, Morocco, Norway, England, Spain, Belgium, Argentina, and Switzerland have booked their places in the last 8. And with that, we end this news bulletin.
3: आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति विश्लेषण.
4: आकाशवाणी समाचार के कार्यक्रम विश्लेषण के नए अंक में आपका स्वागत है. मैं हूं आपके साथ फरहत नाज. आज के कार्यक्रम में हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया यात्रा और दोनों देशों के बीच हुए प्रमुख समझौतों का विश्लेषण करेंगे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 से 11 जुलाई तक इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 3 देशों की यात्रा पर हैं. इस यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री ने 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया का दौरा किया. इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर हुई इस राजकीय यात्रा के दौरान दोनों नेताओं के बीच व्यापक द्विपक्षीय वार्ता हुई. आज के कार्यक्रम में हम जानेंगे कि भारत और इंडोनेशिया के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता के प्रमुख परिणाम क्या रहे और क्यों इंडोनेशिया भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी, महासागर विजन तथा इंडो पैसिफिक रीजन में एक महत्वपूर्ण साझेदार है. भारत और इंडोनेशिया के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता में दोनों देशों ने रक्षा, समुद्री सुरक्षा, व्यापार, प्रौद्योगिकी, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा और सांस्कृतिक सहयोग सहित कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में साझेदारी को और मजबूत बनाने पर सहमति व्यक्त की. इस दौरान दोनों देशों के बीच कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर भी हुए और भविष्य के सहयोग के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की गयी. आइए सुनते हैं ये विस्तृत रिपोर्ट.
5: रक्षा और समुद्री सुरक्षा के क्षेत्र में दोनों देशों ने सहयोग को नई मजबूती दी है. समुद्री सुरक्षा से जुड़े समझौते को आगे बढ़ाने के साथ साथ ब्रह्मोस मिसाइल प्रणाली और वायु से वायु मिसाइल सहयोग पर भी महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए. इसके अलावा हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा और सूचनाओं के बेहतर आदान प्रदान के लिए गुरुग्राम स्थित सूचना संलयन केंद्र हिंद महासागर क्षेत्र यानी IFC IOR में इंडोनेशिया के एक संपर्क अधिकारी की तैनाती की घोषणा की गयी. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और औद्योगिक सहयोग को भी इस यात्रा के दौरान नई गति मिली. शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए अंतरिक्ष के उपयोग से जुड़े ढांचागत समझौते का विस्तार किया गया. दूरसंचार प्रौद्योगिकी, अनुसंधान, नवाचार तथा महत्वपूर्ण खनिज और इस्पात आपूर्ति श्रृंखला के क्षेत्र में भी समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर हुए. औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया और इंडोनेशिया की क्राकाटाओ स्टील के बीच इंडोनेशिया में स्टेनलेस स्टील स्लैब निर्माण संयंत्र स्थापित करने के लिए रणनीतिक संयुक्त उद्यम पर सहमति बनी. वहीं रेयर अर्थ मैग्नेट के विकास से जुड़े समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए. कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति बनी. भारत इंडोनेशिया को उच्च गुणवत्ता वाले DWR 162 गेहूं के 100 टन बीज उपलब्ध कराएगा. स्वास्थ्य क्षेत्र में चिकित्सा उत्पादों के विनियमन और स्वास्थ्य कार्यबल के सहयोग से जुड़े समझौतों पर भी हस्ताक्षर हुए. वहीं भारत के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और इंडोनेशिया की राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन एजेंसी के बीच भी सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए. दोनों देशों ने शिक्षा, संस्कृति और डिजिटल सहयोग को भी नई प्राथमिकता दी. ऐतिहासिक प्रम्बानन मंदिर परिसर के संरक्षण और जीर्णोद्धार में भारत सहयोग करेगा. 2027 में रविंद्रनाथ टैगोर की इंडोनेशिया यात्रा के 100 वर्ष पूरे होने पर टैगोर देवंतारा सांस्कृतिक और शैक्षिक कूटनीति वर्ष मनाने की घोषणा की गई.
4: श्रोताओं, इन समझौतों और घोषणाओं से स्पष्ट है कि भारत और इंडोनेशिया की साझेदारी रक्षा और समुद्री सुरक्षा से लेकर प्रौद्योगिकी, महत्वपूर्ण खनिज और डिजिटल अर्थव्यवस्था तक भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप आगे बढ़ रही है. इन्हीं विषयों पर आकाशवाणी ने पूर्व राजदूत स्कंद रंजन तायल से बातचीत की. आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा.
6: करीब 12 से अधिक समझौते पर हस्ताक्षर हुए और जो सुरक्षा के क्षेत्र में है, विकास के क्षेत्र में है, तकनीकी सहयोग के क्षेत्र में और शिक्षा, और इसमें मैं समझता हूँ कि सबसे मुख्य सुरक्षा के क्षेत्र में है। भारत के ब्रह्मोस मिसाइल्स ने जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर में बहुत ही अच्छा कार्य किया, दुनिया ने उसको देखा, और भारत डायनेमिक्स का जो अस्त्र मिसाइल है, एयर टू एयर मिसाइल, उसने भी ऑपरेशन सिंदूर में बहुत ही अच्छा काम किया, और इन दोनों का इंडोनेशिया के साथ एग्रीमेंट हुए हैं उनको सप्लाई करने के। उसके अलावा सबांग पोर्ट है एक, जो हमारे अंडमान निकोबार से केवल 100 मील दूर है, उनके बीच में भी सहयोग की बात की जा रही है।
4: भारत की एक्ट ईस्ट नीति में इंडोनेशिया का विशेष स्थान है। दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा देश होने के साथ साथ इंडोनेशिया आसियान का भी बड़ा सदस्य है। ऐसे में भारत और आसियान के बीच आर्थिक, रणनीतिक और क्षेत्रीय सहयोग को आगे बढ़ाने में इंडोनेशिया एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। यही कारण है कि पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों के संबंध लगातार मजबूत हुए हैं और व्यापक रणनीतिक साझेदारी का दायरा भी लगातार बढ़ा है। आइए विस्तार से समझते हैं।
5: भारत और इंडोनेशिया केवल पड़ोसी समुद्र देश ही नहीं है, बल्कि दोनों हिंद महासागर और हिंद प्रशांत क्षेत्र में महत्वपूर्ण साझेदार भी हैं। दोनों देशों के बीच लगभग 1200 किलोमीटर लंबी समुद्री सीमा है। भारत और इंडोनेशिया का सहयोग केवल दोनों देशों के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे हिंद प्रशांत क्षेत्र की समुद्री सुरक्षा और निर्बाध व्यापार के लिए भी महत्वपूर्ण माना जाता है। इसी सोच के अनुरूप भारत ने हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए सागर दृष्टिकोण प्रस्तुत किया था। अब इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए महासागर दृष्टिकोण के माध्यम से भारत समुद्री सुरक्षा, संपर्क, आपदा प्रबंधन, क्षमता निर्माण, ब्लू इकोनॉमी और सतत विकास के क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा दे रहा है। सबांग बंदरगाह के विकास, समुद्री संपर्क और तटरक्षक बलों के बीच बढ़ते सहयोग को इसी व्यापक दृष्टिकोण का हिस्सा माना जाता है। वर्ष 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया यात्रा के दौरान दोनों देशों ने अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी से आगे बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी का दर्जा दिया था। इसी यात्रा के दौरान सबांग बंदरगाह के विकास और उससे जुड़े बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए दोनों देशों ने संयुक्त कार्यबल बनाने का निर्णय लिया। सबांग बंदरगाह मलक्का जलडमरू मध्य के प्रवेश द्वार के निकट स्थित है। ये दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री व्यापार मार्गों में से एक है, जहां से वैश्विक व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति का बड़ा हिस्सा गुजरता है। ऐसे में सबांग बंदरगाह का विकास केवल भारत और इंडोनेशिया के बीच संपर्क बढ़ाने तक सीमित नहीं है, बल्कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सहयोग और क्षेत्रीय सुरक्षा की दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। रक्षा और समुद्री सहयोग भी दोनों देशों की साझेदारी का एक मजबूत आधार है। भारत और इंडोनेशिया के बीच रक्षा सहयोग का औपचारिक समझौता 2 दशक से अधिक समय से लागू है। दोनों देशों के बीच समन्वित समुद्री गश्त, नौसैनिक और थल सेना के संयुक्त सैन्य अभ्यास, तटरक्षक बलों के बीच सहयोग, सैन्य प्रशिक्षण और रक्षा उद्योग से जुड़े कार्यक्रम नियमित रूप से आयोजित किए जाते हैं।
4: भारत और इंडोनेशिया के संबंध अब केवल द्विपक्षीय सहयोग तक सीमित नहीं है। लोकतांत्रिक मूल्यों की बात की जाए या फिर साझा समुद्री हितों की, ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूत करने की समान सोच ने दोनों देशों को क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर एक महत्वपूर्ण साझेदार बना दिया है, और यही कारण है कि भारत की एक्ट ईस्ट नीति और महासागर दृष्टि में इंडोनेशिया की भूमिका आने वाले वर्षों में और अधिक महत्वपूर्ण मानी जा रही है। आकाशवाणी से भारत इंडोनेशिया संबंधों पर विशेष बातचीत में अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ प्रोफेसर राहुल मिश्रा ने भी इन्हीं बिंदुओं पर चर्चा की। तो आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
7: इंडोनेशिया आसियान क्षेत्र का, दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा देश है, जनसंख्या के मामले में भी, अपनी आर्थिक शक्ति के मामले में भी, और उसकी जो सामरिक महत्व है उसका दक्षिण पूर्व एशिया के क्षेत्र में, वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस सभी बातों को मद्देनजर रखते हुए इंडोनेशिया केंद्रीय स्थान रखता है भारत की एक्ट ईस्ट नीति में। इंडोनेशिया की जहां तक आर्थिक रूप से महत्ता है, वो ये है कि 25 बिलियन का व्यापार दोनों देशों के बीच में है, जिसे इनफॉर्मल अगर हम ट्रेड जोड़े तो वो उससे भी ज्यादा होता है। दोनों ही देशों की इंडो पैसिफिक को लेकर के जो नीति है उसमें समानताएं बहुत सारी हैं। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को लेकर के इंडोनेशिया भारत से सीखना चाहता है। भारत की ब्रिक्स प्रेसिडेंसी में इंडोनेशिया ब्रिक्स में शामिल होकर के अपना योगदान देना चाहता है। इसके पहले हमने देखा कि इंडोनेशिया और भारत दोनों ही देशों ने G20 की अध्यक्षता की और किस तरह उन्होंने तमाम जो देश हैं जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को लेकर के ग्लोबल साउथ के विकासशील जो देश हैं वो कैसे अपनी विदेश नीति और सामरिक नीति को आगे बढ़ा रहे हैं।
4: श्रोताओं, अपनी इंडोनेशिया यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया की संसद को भी संबोधित किया। वे इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करने

0: आदौ मुख्याः वार्ताः। प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः इण्डोनेशिया देशस्य योग्यकर्ता नगरे युनेस्को वैश्विक सांस्कृतिक अभिलेख स्थलस्य प्रम्बानन मन्दिरस्य ऐतिहासिकं भ्रमणम्। प्रतिपादितं यत् मन्दिरस्य संरक्षणे भारतस्य सहभागिता द्वयोः देशयोः सांस्कृतिकन्यासं प्रकटीकरोति। केन्द्रीयगृहमन्त्री अमितशाहः जलाप्लावितेन प्रभावितानां राज्यानां मुख्यमन्त्रिभिः साकं दूरभाषेण सम्भाषणं विधाय केन्द्रसर्वकारपक्षतः सम्भाव्य सर्वविधसाहाय्यस्य आश्वासनम् अयच्छत्। भारतीय ऋतुविज्ञान विभागानुसारं देशस्य मध्य पूर्वीय भागेषु अतिवृष्टेः मेघगर्जनस्य च सम्भावना वर्तते। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पः उदघोषयत् यत् ईरान देशेन साकं युद्धविरामाय कृतं सन्धिज्ञापनं सम्प्रति समाप्तिपदम् एति। वैश्विक भूराजनैतिक चिन्तन प्रभावात् भारतीय शेयर विपणौ भीषणः ह्रासः। सेन्सेक्स निफ्टी सूचकांकौ सार्धद्विशतात्मिका अपचितिः दृश्यते। अपि च फीफा विश्वकप पादकन्दुक प्रतिस्पर्धायां स्विट्जरलैंड दलेन कोलंबिया दलं पराभूय प्रागुपान्त्य चरणे अर्जेंटीना दलेन सह क्रीडा सुनिश्चिता कृता। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य इण्डोनेशिया देशस्य योग्यकर्ता नगरे संस्थिते युनेस्को विश्व न्यास स्थले प्रम्बानन मन्दिर परिसरे इण्डोनेशिया राष्ट्रपतिना प्रबोवो सुबियान्तो इत्यमुना साकं भ्रमणम् अकरोत्। तत्र पारम्परिक गैमेलिन संगीत ध्वनिभिः शास्त्रीय नृत्यैश्च प्रधानमन्त्रिणः अभूतपूर्वम् अभिनन्दनं विहितम्। नवमशताब्द्याः अस्य मन्दिरपरिसरस्य अवलोकनावसरे प्रधानमन्त्रिणा मुख्यशिवमन्दिरे विशेषपूजार्चना कृता। सहैव भारत इण्डोनेशिया देशयोः सहयोगेन मन्दिरस्य संरक्षणप्रयासाः दृष्टाः। एकस्मिन् संयुक्त वक्तव्ये राष्ट्रपतिना प्रबोवो इत्यमुना प्रतिपादितं यत् प्रम्बानन मन्दिरं भारत इण्डोनेशिया देशयोः शतशः वर्षाणां प्राचीन सभ्यतायाः प्रतीकभूतं वर्तते। मन्दिरस्य पुनरुद्धाराय च तेन भारताय कार्तज्ञ्यम् आविष्कृतम्। अत्रावसरे प्रधानमन्त्रिणा निगदितं यदियं यात्रा अतीव आध्यात्मिकी अविस्मरणीया च अजायत। द्वादशशताब्देः अस्य न्यासस्य संरक्षणाय श्रीमोदी इण्डोनेशिया जनेभ्यः धन्यवादं विज्ञापितवान्।
1: योग्यकर्ता के इस भव्य मंदिर कॉम्प्लेक्स अब जब हम पुनर्निर्माण का काम करने जा रहे हैं और ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज है, दुनिया के दूर दूर क्षेत्रों में कहीं पर भी जाएं हमें कहीं न कहीं भारत के सांस्कृतिक विरासत के दर्शन होते हैं। ये पूरे साउथ ईस्ट एशिया का दूसरा सबसे बड़ा हमारी विरासत की पहचान है।
0: जकार्तायां द्विपक्षीय वार्तानंतरम प्रेषिते संयुक्ते घोषणापत्रे भारत इण्डोनेशिया देशाभ्यां सर्वविध आतंकवादस्य तीव्रा निन्दा विहिता। द्वयोर देशयोः नेतृभ्यां अन्ताराष्ट्रिय नियमानुसारेण आतंकवादस्य सम्मुखं दृढ वैश्विक प्रयासस्य आह्वानं विहितम्। उभाभ्यां प्रमुखाभ्यां

0: वह परामृष्टाः यत् यात्रा प्रारम्भात् पूर्वमेव अग्रिम पञ्जीकरणं करणीयम् अथ अनुमतिपत्रे उल्लिखिते दिनाङ्के एव यात्रा आरम्भणीया प्रशासनेन स्पष्टीकृतं यत् अनुपदमेव पञ्जीकरणस्य सुविधा अत्यन्तं सीमितसंख्यासु एव उपलब्धा वर्तते फीफा विश्वकप फुटबॉल प्रतिस्पर्धायां फ्रांस मोरक्को नॉर्वे इंग्लैंड स्पेन बेल्जियम अर्जेंटीना स्विट्जरलैंड देशैः राउंड ऑफ 16 इत्याख्ये द्वंद्वे विजित्य अंतिमाष्टमेषु स्वस्थानं सुरक्षितम् शुक्रवासरे तावत् प्रथमे प्रागुपान्त्यचक्रे रात्रौ सार्धैकवादने फ्रांस देशस्य स्पर्धा मोरक्को देशेन सह भविष्यति इति वार्ताः
1: संगीत पर आधारित कार्यक्रम चित्रपट संगीत जहां पहला गीत आपके लिए प्रस्तुत है उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज में फिल्म तल से

यार रहमान का संगीत आनंद बख्शी के लिखे बोल, उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज में गीत सुना आपने फिल्म ताल से। कार्यक्रम का अगला गीत आपके लिए प्रस्तुत है फिल्म दिल्ली 6 से, आवाज है मोहित चौहान की।

या रहमान का संगीत प्रसून जोशी के लिखे बोल मोहित चौहान की आवाज में गीत सुना आपने फिल्म दिल्ली 6 से। कार्यक्रम का अगला गीत आपके लिए प्रस्तुत है सुनिधि चौहान की आवाज में। फिल्म का नाम है चमेली।

संदेश शांडिल्य का संगीत अरशाद कामिल के लिखे बोल, सुनीति चौहान की आवाज में गीत सुना आपने फिल्म चमेली से। कार्यक्रम का अगला गीत चित्रा और उस्ताद सुल्तान खां की आवाज में फिल्म ट्रैफिक सिग्नल से।

संदेश शांडिल्य, संगीत खिलेश शर्मा के लिखे बोल, चित्रा और उस्ताद सुल्तान खान की आवाज में गीत सुना आपने फिल्म ट्रैफिक सिग्नल से। कार्यक्रम का अगला और अंतिम गीत है फिल्म गुरु से श्रेया घोषाल और उदय मजूमदार की आवाज में।

ए आर रहमान का संगीत गुलजार के लिखे बोल, श्रेया घोषाल और उदय मजुमदार की आवाज में गीत सुना आपने फिल्म गुरु से। और इसी के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। हमारा अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में होगा, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: दूरदर्शन की डायरेक्ट टू होम सेवा
1: डीडी डायरेक्ट
0: निशुल्क, न केबल का झंझट, न बार बार हर महीने भुगतान की समस्या।
1: डायरेक्ट टू होम सेवा बिल्कुल मुफ्त है।
0: स्पष्ट आवाज, सुंदर तस्वीर,
1: साथ में आकाशवाणी के 10 लोकप्रिय चैनल।
0: आज ही करें कनेक्ट
1: दूरदर्शन की डीटीएस सेवा डीडी डायरेक्ट।
2: कृषकों की खेती को उन्नतशील बनाने के लिए प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी सुनिए शाम 7:30 पर आकाशवाणी शिवपुरी से 100.2 मेगाहर्ट्ज पर। इसमें हमारे कृषक भाई सुन पाएंगे नित नई बातचीत। तो सुनते रहिए किसान वाणी शाम 7:30 आकाशवाणी शिवपुरी से।

0: खुशखबरी, जी हाँ, आकाशवाणी शिवपुरी हुई अब हाईटेक। जी हाँ, आप अब हमें सुन सकते हैं अपने एंड्रॉइड और आईफोन दोनों प्लेटफॉर्म पर एक साथ कहीं भी, प्रसारण के समय जब जी चाहे तब सुनिएगा। प्ले स्टोर से न्यूज ऑन AIR ऐप को डाउनलोड करें और रेडियो ऑप्शन में जाएं, मध्य प्रदेश में आकाशवाणी शिवपुरी यानी कि AIR शिवपुरी को सिलेक्ट करें और सुने अपने एंड्रॉइड पर पूरी दुनिया में जब चाहे उस वक्त।
1: एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल। डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: दूरदर्शन की डायरेक्ट टू होम सेवा
1: डीडी डायरेक्ट।
0: निशुल्क न केबल का झंझट न बार बार हर महीने भुगतान की समस्या।
1: डायरेक्ट टू होम सेवा बिल्कुल मुफ्त है।
0: स्पष्ट आवाज, सुंदर तस्वीर,
1: साथ में आकाशवाणी के 10 लोकप्रिय चैनल।
0: आज ही करें कनेक्ट
1: दूरदर्शन की डीटीएस सेवा डीडी डायरेक्ट।
2: कृषकों की खेती को उन्नतशील बनाने के लिए प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी सुनिए शाम 7:30 पर आकाशवाणी शिवपुरी से 100.2 मेगाहर्ट्ज पर। इसमें हमारे कृषक भाई सुन पाएंगे नित नई बातचीत। तो सुनते रहिए किसान वाणी शाम 7:30 आकाशवाणी शिवपुरी से।

0: दूरदर्शन की डायरेक्ट टू होम सेवा
1: डीडी डायरेक्ट
0: निशुल्क, न केबल का झंझट, न बार बार हर महीने भुगतान की समस्या।
1: डायरेक्ट टू होम सेवा बिल्कुल मुफ्त है।
0: स्पष्ट आवाज, सुंदर तस्वीर,
1: साथ में आकाशवाणी के 10 लोकप्रिय चैनल।
0: आज ही करें कनेक्ट
1: दूरदर्शन की डीटीएस सेवा डीडी डायरेक्ट।

0: कृषकों की खेती को उन्नतशील बनाने के लिए प्रायोजित कार्यक्रम किसानवाणी सुनिए शाम 7:30 पर आकाशवाणी शिवपुरी से 100.2 मेगाहर्ट्ज पर। इसमें हमारे कृषक भाई सुन पाएंगे नित नई बातचीत। तो सुनते रहिए किसानवाणी शाम 7:30।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ योग्यकार्ता स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल प्रांबानन मंदिर का दौरा किया। श्री मोदी ने मुख्य शिव मंदिर में पूजा अर्चना और भारत इंडोनेशिया सहयोग के अंतर्गत चल रहे संरक्षण कार्यों का जायजा लिया। प्रधानमंत्री ने उन्हें विभिन्न पवित्र स्थलों पर भगवान शिव से बार बार जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। श्री मोदी ने इस यात्रा को गहन आध्यात्मिक और यादगार अनुभव बताया। प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि जीर्णोद्धार परियोजना से दोनों देशों के लोगों के बीच संबंध और मजबूत होंगे।
2: योग्यकार्ता के इस भव्य मंदिर कॉम्प्लेक्स अब जब हम पुनर्निर्माण का काम करने जा रहे हैं और ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज है, दुनिया के दूर दूर क्षेत्रों में कहीं पर भी जाएं, हमें कहीं न कहीं भारत की सांस्कृतिक विरासत के दर्शन होते हैं। ये पूरे साउथ ईस्ट एशिया का दूसरा सबसे बड़ा हमारी विरासत की पहचान है।
1: प्रधानमंत्री मोदी तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए ऑस्ट्रेलिया रवाना हो गए हैं। तीन देशों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौरे के दूसरे चरण में श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया में प्रवासी भारतीयों को भी संबोधित करेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज कुवैत के क्राउन प्रिंस शेख सबा अल खालिद अल सबा से मुलाकात की। श्री जयशंकर ने द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए क्राउन प्रिंस की प्रतिबद्धता की सराहना की। दोनों नेताओं ने खाड़ी क्षेत्र में हो रहे घटनाक्रम पर अपने विचार साझा किए। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पिछले कुछ दिनों में देश के विभिन्न हिस्सों में अच्छी वर्षा हुई है, जिससे वर्षा की कमी वाले जिलों की संख्या 262 से घटकर 178 रह गई है। नई दिल्ली में अल नीनो के संभावित प्रभाव की समीक्षा के लिए आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में श्री चौहान ने कहा कि जून में 33% वर्षा की कमी दर्ज की गई थी, लेकिन जुलाई में यह घटकर 24% रह गई। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ इस महीने की 15 तारीख तक लगभग 34 करोड़ ईपीएफ खातों में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 8.25% ब्याज जमा करने का काम पूरा कर लेगा। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने बताया कि नई केंद्रीकृत आईटी सक्षम सेवा CITES प्रणाली के माध्यम से ग्राहकों के खातों में 1,44,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जमा की जाएगी। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने कहा कि नियामक प्रोत्साहनों के माध्यम से गिफ्ट सिटी एक वैश्विक विमान लीजिंग और वित्त पोषण केंद्र के रूप में उभर रही है। श्री नायडू ने कहा कि 2026 के बजट में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र इकाइयों के लिए कर छूट की अवधि बढ़ाकर 20 वर्ष कर दी गई है। प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस के बैंक खातों में जमा 440 करोड़ रुपए फ्रीज कर दिए हैं। यह मामला वित्तीय लेनदेन और संदिग्ध धन के हेराफेरी से जुड़ा हुआ है। जांच में पता चला कि अप्रैल 2023 से जून 2026 के बीच पार्टी के बैंक खातों से लगभग 160 करोड़ रुपए निजी कंपनी और उसके संबंध इकाइयों में स्थानांतरित किए गए थे। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE की 27 मार्च की मूल्यांकन योजना को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करने की सहमति दे दी है। यह योजना खाड़ी देशों के उन नियमित विद्यार्थियों के लिए थी जिनकी 12वीं की बोर्ड परीक्षा ईरान अमेरिका संघर्ष के कारण रद्द हो गई थी। न्यायालय ने केंद्र सरकार और CBSE से जवाब मांगा है। दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 16 में आज शाम एक इमारत ढह गई। दिल्ली अग्निशमन सेवा के अनुसार मलबे में 4 से 5 लोगों के फंसे होने की आशंका है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की 2 टीमें भी राहत और बचाव कार्य में लगी हुई हैं। तेलंगाना 8वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी करेगा और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देशभर में जमीनी स्तर पर खिलाड़ियों को मंच प्रदान करने के दृष्टिकोण से प्रेरित है।

0: इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। आइए अब हम आपको आज के शेष और कल के प्रमुख कार्यक्रमों का विवरण दे दें।

कार्यक्रम सुर्खियों में सुनिएगा रात 8 बजे। चर्चा का विषय है, प्रसारित होगा रात 9:30 पर। इस कार्यक्रम को हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। मुरलीधर बलवानी द्वारा लिखित नाटक बटवारा सुनवाया जाएगा आज रात 10 बजे। प्रस्तुत करता है राकेश ढौंडियाल। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में पंडित कुमार गंधर्व का ख्याल गायन सुन सकेंगे रात 10:30 पर। राग हमीर।

सजीव फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे माफ कीजिएगा फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे प्रसारित होगा कल दोपहर 11 बजे। कार्यक्रम आपकी फरमाइश सुन सकेंगे कल दोपहर 12 बजे। कार्यक्रम संग्रहालय सिंह के अंतर्गत रेडियो धारावाहिक हंसना मना है की 8वीं कड़ी सुनवाई जाएगी कल दोपहर 12:30 पर। महिला कार्यक्रम सुन सकेंगे दोपहर 1 बजे। लोक संगीत का कार्यक्रम सुनवाया जाएगा दोपहर 1:30 पर और कल दोपहर 1:45 पर सुने सुगम संगीत का कार्यक्रम। ये तीनों कार्यक्रम आकाशवाणी जबलपुर की प्रस्तुति होंगे। कार्यक्रम आपकी फरमाइश सुन सकेंगे कल दोपहर 2:30 पर। युवा साथियों का कार्यक्रम युववाणी प्रसारित होगा कल शाम 5:02 पर। ये कार्यक्रम आकाशवाणी जबलपुर की प्रस्तुति होगा। प्रायोजित कार्यक्रम NCRT सुनवाया जाएगा कल शाम 6 बजे। सुर्खियों में सुनिएगा कल रात 8 बजे। कार्यक्रम आपकी फरमाइश प्रसारित किया जाएगा रात 10 बजे। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम नागरजनी में कल रात 10:30 पर सुन सकेंगे वसंत रानाड़ी का वायलन वादन राग कमोद।

आकाशवाणी भोपाल से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम इस प्रकार हैं। रात 7:21 पर सुनेगा कार्यक्रम ग्राम सभा। कार्यक्रम नमस्कार भोपाल सुन सकेंगे कल सुबह 7:20 पर। प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग सुनवाया जाएगा कल सुबह 8:30 पर। कल सुबह 9:15 पर सोम संगीत के कार्यक्रम में सुनेगा भाग्यश्री सहस्त्रबुद्धि द्वारा गाए भजन। निकोलाई गोगोल द्वारा लिखित नाटक इंस्पेक्टर जनरल सुनवाया जाएगा कल सुबह 9:30 पर। प्रस्तुत करता है राकेश ढौंडियाल। कार्यक्रम जिले की चिट्ठी सुनिएगा सुबह 10:00। कार्यक्रम गीत सागर प्रसारित होगा कल सुबह 10:05 पर और कल रात 7:21 पर सुनिएगा कार्यक्रम ग्राम लक्ष्मी।

0: ये थे आज के शेष और कल प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रम। हमारा अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में होगा, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: सुनिए आकाशवाणी भोपाल पर स्वराज संस्थान संचालनालय का प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग हर गुरुवार सुबह 8:30 पर। सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, कुछ ही पलों में प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: आकाशवाणी का साकार हुआ सपना, जन जन सब गाएं मिल मधुर गा।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया यात्रा पूरी कर ऑस्ट्रेलिया के लिए प्रस्थान किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक, कई महत्वपूर्ण फैसलों पर लगी मुहर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने धार जिले के पीथमपुर में लियुगोंग इंडिया के नए विनिर्माण संयंत्र का भूमि पूजन किया। और दिल्ली में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अलनीनो को लेकर की समीक्षा, कहा अच्छी बारिश से वर्षा की कमी वाले जिलों की संख्या घटी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 6 दिवसीय विदेश दौरे के पहले चरण के तहत इंडोनेशिया की सफल यात्रा पूरी कर दूसरे चरण के लिए ऑस्ट्रेलिया रवाना हो गए हैं। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियंतो ने खुद एयरपोर्ट पर उन्हें विदाई दी। इस दौरे में ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइल प्रणालियों से जुड़े रक्षा समझौते हुए, जिससे दोनों देशों के बीच सामरिक और रक्षा सहयोग को नई मजबूती मिली है। ऑस्ट्रेलिया रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री श्री मोदी ने योग्याकार्ता स्थित करीब 1000 साल पुराने प्रम्बानन मंदिर में पूजा अर्चना की और राष्ट्रपति प्रबोवो के साथ मिलकर मंदिर के पुनर्स्थापन प्रोजेक्ट का उद्घाटन भी किया। इस दौरान उन्होंने भगवान शिव से अपने आध्यात्मिक जुड़ाव का जिक्र करते हुए वडनगर, सोमनाथ और काशी विश्वनाथ का उल्लेख किया। श्री मोदी ने कहा कि केदारनाथ धाम, उज्जैन महाकाल लोक के बाद अब प्रम्बानन मंदिर के पुनर्निर्माण से जुड़ना उनके लिए सौभाग्य की बात है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन कल ओडिशा के दौरे पर रहेंगे। वे भुवनेश्वर में समुद्री मत्स्य संसाधनों से जुड़ी योजनाओं का शुभारंभ करेंगे। ओयूटी में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने से जुड़े दस्तावेज का लोकार्पण भी होगा। इसके बाद वे नाइसर के 15वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। यह समारोह खोरधा में आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसलों को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद प्रदेश के एमएसएमई मंत्री चैतन्य कश्यप ने बताया कि सरदार सरोवर बांध परियोजना की लागत को लेकर 3 दशक से लंबित विवाद सुलझ गया है, जिसके तहत अब मध्य प्रदेश गुजरात को 217 करोड़ रुपए का भुगतान करेगा। इसके अलावा कैबिनेट ने प्रदेश के सभी जिलों में छोटे आईटी पार्क विकसित करने के साथ ही डेटा सेंटर उन्नयन के लिए 800 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी है। वहीं उज्जैन के निकट डोंगला वेदशाला के विकास कार्यों के लिए 39 करोड़ रुपए और नमो हरित नगर योजना के तहत 5 वर्षों में 100 करोड़ रुपए से नगर वन विकसित करने का निर्णय भी लिया गया है।
1: पर्यावरण से संबंधित नई योजना बनाई जा रही है, वह योजना है नमो हरित नगर योजना, जो हर नगर के अंदर नगर वन बनाने हैं पर्यावरण संतुलन के लिए। उसके लिए नमो हरित योजना में अगले 5 सालों के लिए 100 करोड़ का प्रावधान किया गया है। वन बने, नगर वन जो बने, उन वनों में स्थापना के समय भी सीएसआर या स्थानीय जन भागीदारी की राशि जो मिलेगी उसका बराबरी का राशि राज्य सरकार वहन करेगी। प्रति वर्ष 5 सालों तक उनको मेंटेनेंस की राशि भी राज्य सरकार देगी।
0: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज धार जिले के पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र में लियुगोंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नए विनिर्माण संयंत्र का भूमि पूजन किया। चीन की अग्रणी निर्माण उपकरण कंपनी गुआंगशी लियुगोंग मशीनरी की भारतीय इकाई 272 करोड़ रुपए के निवेश से यह संयंत्र स्थापित कर रही है।
2: इंडस्ट्रियों का एक तरह से ग्रोथ इंजन पूरे प्रदेश में माने तो वो धार जिला है। आज हेलियन ग्रुप की नई यूनिट 272 करोड़ की लागत से नई यूनिट का लोकार्पण, दुनिया का सबसे युवा देश अगर कोई है तो भारत है, और भारत के अंदर ये सभी संभावना है जिसके आधार पर उसकी विकास दर बता रही, और उसी के आधार पर मध्य प्रदेश भी कदम से कदम मिला करके वो सभी संभावनाओं पे काम कर रहा।

0: जिसकी आज दरकार है।
1: मुख्यमंत्री ने बताया कि नया संयंत्र लगभग 20 एकड़ क्षेत्र में विकसित किया जाएगा। प्रारंभिक चरण में यहां हर साल 6,500 निर्माण उपकरणों के उत्पादन की क्षमता होगी, जिसमें मुख्य रूप से एक्सकेवेटर बनाए जाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज हवाई अड्डों की सुविधाओं की समीक्षा की। उन्होंने नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू के साथ ये बैठक की। श्री शाह ने सभी हवाई अड्डों पर स्वचालित एक्सरे ट्रे सिस्टम लगाने के निर्देश दिए। एरो ब्रिज और बैगेज ड्रॉप सुविधा बढ़ाने पर भी चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि 2027 तक सभी राज्यों में विदेशी पंजीकरण कार्यालय शुरू होंगे। अगरतला और जेवर हवाई अड्डों पर जल्द आवर्जन जांच चौकी शुरू करने को भी कहा गया है। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या newsonair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
1: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने देश में वर्षा की स्थिति पर जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि हाल के दिनों में अच्छी बारिश हुई है, जिससे वर्षा की कमी वाले जिलों की संख्या 262 से घटकर 178 रह गई है। नई दिल्ली में अलनीनो के प्रभाव पर हुई समीक्षा बैठक में श्री चौहान ने बताया कि जून में 33% बारिश की कमी थी, जो जुलाई में घटकर 24% रह गई है। उन्होंने कहा कि अब तक लगभग 350 लाख हेक्टेयर में खरीफ की बुआई हो चुकी है, जो पिछले साल से कम है। मंत्री ने किसानों को मक्का, बाजरा और मूंग जैसी कम पानी वाली फसलें बोने की सलाह दी है।
3: अल नीनो के कारण जो कृषि की परिस्थितियां पैदा हो रही है, उस पर लगातार हमारी नजर है। अभी हाल में 3-4 दिनों में देश के कई हिस्सों में बारिश हुई है, कई राज्यों में बारिश हुई है, और पहले जो 262 जिले कम बारिश वाले थे, उनकी संख्या घटकर 178 रह गई है। कल तक 350,85,000 हेक्टर में बोनी हुई है। अब किसानों को यह सलाह दी जा रही है कि इनकी जगह, क्योंकि अब देर हो जाएगी, तो मक्का, बाजरा और मूंग जैसी कम अवधि की फसल जो कम समय में आ जाती है, उनकी बुआई को प्राथमिकता दें।
1: धार वन मंडल ने जनवरी से मई 2026 के बीच वन भूमि संरक्षण अभियान चलाकर करीब 590 हेक्टेयर वन भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया है। सबसे ज्यादा जमीन बाघ परिक्षेत्र में छुड़ाई गई है, जिसके बाद धार, टांडा, मांडव, सरदारपुर, कुक्षी और धामनोद का नंबर आता है। इस मुक्त कराई गई जमीन पर अब सागौन के पौधे लगाकर पुनर्वनीकरण किया जा रहा है, जिसके लिए कर्मचारियों को खास ट्रेनिंग भी दी गई है। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने आज मंत्रालय में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के कामकाज की समीक्षा की। सीईओ आयुष्मान अरविंद कुमार शाह ने बताया कि प्रदेश में अब तक करीब 5,86,00,000 आभा आईडी बनाई जा चुकी हैं, जबकि लगभग 20,000 अस्पताल और 18,000 डॉक्टर नर्स डिजिटल रजिस्ट्री से जुड़ चुके हैं। प्रदेश के 533 अस्पतालों में स्कैन एंड शेयर सुविधा से अब तक 1 करोड़ से ज्यादा ओपीडी टोकन जारी किए जा चुके हैं। प्रदेश के सभी शासकीय, अशासकीय और निजी महाविद्यालयों में रिक्त सीटों पर ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों को प्रवेश दिलाने के लिए उच्च शिक्षा विभाग 8 से 15 जुलाई तक प्रवेश मेला आयोजित कर रहा है। यह हर दिन सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगा, जिसमें विद्यार्थियों को एक ही जगह पर पंजीयन, च्वाइस फिलिंग, दस्तावेज सत्यापन और शुल्क भुगतान

18 जुलाई तक कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में होगी। कैनो स्प्रिंट एक रोमांचक और प्रतिस्पर्धी जल क्रीड़ा है जिसमें एथलीट शांत या समतल पानी पर विशेष रूप से डिजाइन की गई नावों में एक सीधी रेखा में कम दूरी की रेस लगाते हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। श्योपुर कलेक्टर शीला दाहिमा ने जिला अस्पताल के पोषण पुनर्वास केंद्र का निरीक्षण कर सभी बेड पर बच्चों को भर्ती करने और फायर सेफ्टी दुरुस्त करने के निर्देश दिए। खंडवा के प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में भारतीय शिक्षा दिवस पर भारतीय ज्ञान परंपरा एवं चरित्र निर्माण विषय पर व्याख्यान का आयोजन किया गया। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय भोपाल परिसर में राष्ट्रीय कार्यशाला के दूसरे दिन नागानंद नाटक की पृष्ठभूमि और रस सिद्धांत पर व्याख्यान हुआ। देवास जिला चिकित्सालय में विश्व क्लब फुट माह के तहत जनजात पैर के तिरछेपन से पीड़ित बच्चों की पहचान कर उनका मुफ्त इलाज किया जाएगा। आगरमालवा कलेक्टर ने 14 जुलाई से शुरू होने वाले दस्तक सह स्टॉप डायरिया अभियान को गंभीरता और आपसी समन्वय से संचालित करने के निर्देश दिए। सीहोर में सेफ क्लिक अभियान 2.0 के तहत आज भैरुंदा में साइबर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अशोकनगर में स्टॉप डायरिया अभियान चलाया जा रहा है। शिवपुरी में विद्यार्थियों को रोजगार परक और उच्च गुणवत्ता की शिक्षा के लिए कई नवाचारी योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। और झाबुआ में शासकीय विद्यालय पिपलिया पारा रोड और आंगनवाड़ी केंद्र का कलेक्टर ने औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

0: जय जवान जय किसान चौपाल कार्यक्रम में बैठे और सुनन बारे अपने सवे भैया बनन काजी शिल्पा बहन की राम राम। और सुनाओ भैया, कैसे हो आप सब? और देखो भैया, हम तो उम्मीद यही कह रहे थे कि आप सब अच्छे रहें, स्वस्थ रहें और खुशहाल रहें। भैया इसी क्रम में हम आपसे आप ये कहेंगे कि देखो भैया, हर कोई यही चाहते हैं कि उसको अपनों आवास हो, उसके ऊपर छत हो और सबको अपनों निजी मकान हो, है ना भैया? और यही बात को अपे जो प्रधानमंत्री जी हैं ना, उन्होंने अपने इस कार्यक्रम के द्वारा ये प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना जो है, एक बहुत ही अच्छी योजना जो है वह चालू करी है, जिस इसमें देखो सभी भैयन को जो है अपने आवास को सपना जो है वह पूरा होते हैं। भैया भारत सरकार की एक प्रमुख, बहुत ही प्रमुख योजना है जिसको उद्देश्य सभी ग्रामीण भाई बहनों को पास अपनी छत हो, ये सपना उन सभी के लिए ये साकार करते हैं। भैया ये योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 2016 को भई, ये भारत सरकार की उस योजना को मुख्य उद्देश्य यही है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो भैया बहन के पास उन अपनों घर नहीं है, बेघर हैं, बच्चे जीर्ण शीर्ण मकानों में रह रहे हैं, ऐसे परिवारों को बुनियादी सुविधाओं से मुक्त पक्को घर उन्हें उपलब्ध हो। और इस योजना के तहत मैदानी क्षेत्रों में मकान बना उनके लिए 1,20,000 और दुर्गम और पहाड़ी क्षेत्रों के लिए 1,30,000 तक की वित्तीय सहायता अपने भैयन को दी जाते हैं। ये राशि भैया लाभार्थियों के बैंक खाते में 3 किश्तों में सीधे ट्रांसफ़र करी जाते हैं। तो भैया ये योजना बहुत अच्छी योजना है जिससे ग्रामीण भैयों को अपनों स्वयं को मकान को सपना जो है वह पूरा करते हैं। तो भैया इस चर्चा को देते हैं हम यहीं पर विराम और सुनते हैं ये संदेश।
1: बदलो बदलो

0: आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: भैया देखो, बारिश को मौसम जो है वह शुरू हो चुको है और बारिश तो अच्छी लगती ही है, लेकिन साथ ही साथ ये अपने साथ बहुत सारी परेशानियां भी लेकर आते हैं। जैसे कि देखो, बारिश के मौसम होते तो तमाम सारे कीड़े मकोड़े जो हैं वह अपने घरों से, अपने बिलों से निकल करके ऊपर आ जाते हैं। तो एक तो उनसे अपने को बचाव रखने हैं, साफ सफाई पे पूरी तरीक़ा से ध्यान रखने हैं, है ना। घर के दरवाज़ों को जहाँ पर थोड़ी घरों में दरवाज़ों पे ऊंचाई हो उसमें कुछ ना कुछ लगा के रखें ताकि कोई कीट जो है अंदर नहीं आ सके। और साथ ही साथ बारिश के मौसम में देखो भैया, क्या होता है कि जो अपनो पीवे को पानी है उसमें जो है ये बारिश को पानी को जो जो होते हैं उसमें जो स्रोत होते हैं उसमें जाकर के जब ये मिलते हैं तो जो ये प्रदूषित हो जाते हैं। इससे अपने को जो पीवे को जल है उसको पीने में अपने को तमाम सारी जो है अपने शरीर में गंदगी पहुँचाते हैं, और जब गंदगी पहुँचाते हैं तो अपना शरीर जो है वह रोगग्रस्त हो जाते हैं। जैसे कि अपन जो कह सकते हैं कि जल जनित जो रोग होते हैं वह होने की संभावना रहते हैं। इसलिए भैया पानी के स्रोतों को साफ रखें, उबलो हुआ पानी या RO को पानी ही पिएं, खुला पानी बिल्कुल भी नहीं पिएं, हमेशा पानी को ढक कर के रखें। और जब भी भैया देखो बाहर जाएं तो अपने साथ घर से ही पानी लेकर के जाएं, क्योंकि भैया पानी से ही तमाम सारी जो है बीमारियां जो हैं वह पनपते हैं, जिसमें हैजा है, डायरिया है, तमाम सारे पेट के रोग हैं वह पानी से ही पनपते हैं। बाहर की खुली रखी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं खाएं। देखो बारिश के मौसम में देखो भैया, मन तो बहुत करते हैं कि तली भुनी चीज़ें खाएं। बाजार में जब अपन निकलते हैं तो कहीं समोसे दिख रहे हैं, तो कहीं चाट दिख रही है, कहीं पकौड़ा दिख रहे हैं, कहीं मंगौड़ा दिख रहे हैं, तो बड़ो मन करते हैं। लेकिन ये बात को ध्यान रखें कि जब भी जहाँ खाएं खुली हुई चाट पकौड़े बिल्कुल भी नहीं खाएं। जहाँ पर साफ सुथरी दुकान हो, सामान ढको भाव हो, वहीं पर ही खाएं। बल्कि हम तो यही कहेंगे कि अगर ज़्यादा ही मन करे तो अपने घर में आकर के बना लें और खा लें। तो इससे ये तो नहीं है कि भैया देखो अपे किसी तरीके की अपने को बीमारी को सामना करने पड़े, तनिक सी अपने को मेहनत ही तो करनी पड़े। तो मैं ये मेहनत तो कर लो, क्योंकि देखो भैया अपने को स्वस्थ रहने हैं तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, है ना। तो इसलिए भैया देखो ये बारिश को मौसम बहुत सुहानो होते हैं और अच्छो भी लगते हैं। तो इस मौसम में अपने स्वास्थ्य के प्रति भी बहुत सावधानी रखें। संगे भैया देखो इस मौसम में मच्छर भी बहुत पनपते हैं, है ना। तो ये बात को ध्यान रखें कि देखो भैया अपने घरों में जहाँ पर भी बर्तन जो हैं, जैसे बहुत से ऐसे अपन बर्तन जो हैं अपने मटका हैं, टूटे भए बर्तन हैं, उनको ऐसे ही रख देते हैं तो उनमें पानी भर जाते हैं। तो ये बात को ध्यान रखें कि देखो उनमें पानी नहीं भरे, उनको उल्टे कर दें या उन्हें छतों पर से हटा दें। और भैया पानी उसमें भरेगा तो भैया देखो उसमें ज़रूर उसमें कीड़े मकोड़े मच्छर पनपेंगे और वही मच्छर फिर अपने घरों में घुसेंगे। तो ये बात को ध्यान रखें कि पानी जो है नहीं भरन दें, साथ ही घर के आसपास अगर गड्ढे हों तो उनमें भी भराव करें, उन्हें भी उनमें पानी नहीं भरन दें। और सबसे ज़रूरी बात कि घर के आसपास सब जगह साफ़ सफाई को ध्यान बहुत रखें। और देखो भैया बारिश को मौसम है तो देखो जब अपन साफ़ सफाई के साथ साथ इस समय देखो एक बहुत ज़रूरी जो इस समय ज़रूर है कि पेड़ पौधा ज़रूर लगाएं। अपने ये समय बिल्कुल अनुकूल रहते हैं कि अपने घर के आसपास खुले मैदानों पे जहाँ भी अपने को जगह दिखे वहाँ छोटे छोटे पौधा लाएं और ज़रूर उनको रोप दें। इससे क्या होगा, इस बारिश के मौसम में आपको पानी भी नहीं देने पड़ेंगे और पौधा जो है वह अच्छे से, उनकी बढ़वार जो है वह अच्छे से हो सकेगी। तो ये बात को ध्यान रखें कि भैया देखो पौधा ज़रूर लगाएं, क्योंकि देखो भैया इस समय हम देख रहे हैं कि बारिश में तो बारिश हो जाते हैं, थोड़ी बहुत मिल जाते हैं अपने को नमी, लेकिन जैसे जैसे मौसम बदलत है तो तमाम सारे पर्यावरण प्रदूषण है, पानी की कमी है, मौसम चक्र परिवर्तन है, बहुत सारी समस्याओं को

0: सामना जो है हमें और आपको करने पड़ते हैं। तो ये बात को ध्यान रखें कि भैया पौधे जो हैं ज़रूर लगाएं, और जब भी खुले स्थान पर पौधा लगाएं तो ये भी ध्यान रखें कि उसके ऊपर जाली ज़रूर लगाएं, ताकि सड़क वाले जो आवारा पशु हैं वह उन पौधों को खा नहीं पाए। तभी हमारी जो ये संकल्प है वह पूरे होगा। ये नहीं है कि अपने पौधा लगाएं और उसके बाद अपने छोड़ दें फिर वो कोई भी खा ले, तो ऐसा नहीं करने हैं। आपकी मेहनत तभी सफल होगी कि आप उस पेड़ पौधे को, जब तक कि वह पौधे से पेड़ नहीं बन जाए, उसको ध्यान रखें और उसको उसकी सही बढ़वार उसकी होने दें। तो भैया इस बात को, इस चर्चा को देते हैं यहीं पर विराम और सुनते हैं ये जरूरी संदेश।
1: बदलो बदलो आदत बदलो।
2: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
1: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: और अब भैया हम आपके लाने सुनवाने जा रहे हैं कि एक प्यारो सो लोकगीत। तो चलो सुन लेते हैं, देवी सिंह राजपूत को गाओ ये प्यारो सो लोकगीत।

0: भैया अभी सुन रहे थे देवी सिंह राजपूत को गाओ ये प्यारो सो लांगुरिया, और अब बात कर रहे थे भैया आज की भेंटवार्ता का। भैया आज हम आपको जो भेंटवार्ता सुनवाने जा रहे हैं उसको विषय है सर्पदंश भ्रांतियां एवं निदान, और इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर विवेक विमल, और इनसे बातचीत कर रहे हैं अपने भैया समर्थ अग्रवाल। तो चलो सुनते हैं ये पुनः प्रसारित ये भेंटवार्ता।
1: श्रोताओं नमस्कार, जैसा कि आप जानते हैं आपके इस कार्यक्रम में हम समय समय पर कई बातचीत सुनवाते हैं। ग्रामीण परिवेश में जो हमारा ग्रामीण श्रोता है या ग्रामीण जन है उनका मूल काम खेती होता है, यानी कि कृषि संबंधी कार्य होता है। कृषि के कार्य में स्वाभाविक है उन्हें खेतों में भी जाना होता है, कई बार खलिहान पार करके खेतों में वो पहुँचते हैं। ये भी कभी कभी देखने में मिलता है खलिहान में चलते वक्त जो जहरीला कीड़ा है जिसे सर्प कहते हैं, ये भी सब प्रकृति द्वारा जन्य है और कभी अनायास हमारा भूले से उनके ऊपर पैर पड़ जाता है या उन्हें जब खतरा लगता है तो फिर सर्पदंश की घटनाएं भी देखने को मिलती है। तो सर्पदंश से कैसे बचे और उससे बचने के क्या तरीके हैं, इन सब विषयों पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ जिला चिकित्सालय शिवपुरी में मेडिसिन स्पेशलिस्ट डॉक्टर विवेक विमल जी हमारे साथ हैं, और इनसे हम बातचीत कर रहे हैं जिस बातचीत का विषय है सर्पदंश भ्रांतियां एवं निदान। तो सबसे पहले तो डॉक्टर साहब आपका स्वागत है, आपको हम नमस्कार भी नमस्कार करते हैं। डॉक्टर साहब पहला प्रश्न ये आता है कि सर्पदंश की जो घटनाएं होती हैं अमूमन या ज्यादा हिस्सा कर सकते हैं ग्रामीण अंचल में, चूंकि जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि किसान को खेत में जाना है खलिहान में जाना है तो खेतों में ये सब सर्प भी पाए जाते हैं, सर्प या सर्प से मिलते जुलते अन्य जहरीले कीड़े, तो ये सब कभी कभी इंसान को नुकसान पहुंचा देते हैं और सर्पदंश की घटनाएं आपको भी देखने को मिलती हैं, आपके जिला चिकित्सालय में भी आती हैं। तो सर्पदंश से बचने के तरीके क्या हो सकते हैं ये तो एक प्रश्न है ही, लेकिन इसके बारे में कई भ्रम भी हैं, लोग झाड़ फूंक की तरफ बहुत ज्यादा बढ़ते हैं, तो पहले तो हम भ्रांतियों पर थोड़ी सी बात करेंगे और फिर निदान की ओर चलेंगे।
2: नमस्कार। सर्पदंश से बचने के लिए अपन ग्रामीण परिवेश में जहाँ तक है वहाँ तक लोग नंगे पैर ज़्यादा खेतों में काम करते हैं, आजकल सेफ्टी शूज भी आने लगे हैं जिनको पहनकर अपन काम करने से सर्पदंश से बच सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो 70% सर्पदंश की जो घटना होती है वो उसके पैर के नीचे हिस्से में ही होती है,
1: घुटने के नीचे।
2: हाँ, तो 70% केस में ऐसा होता है, तो अगर सेफ्टी शूज के माध्यम से अपन खेतों में काम करेंगे तो वहाँ से बच सकते हैं। दूसरा, लोग ग्रामीण परिवेश में कभी कभी ज़मीन पर भी सो जाते हैं या बहुत से लोगों को सोने की आदत भी होती है तो उससे भी एक खतरा बना रहता है। तीसरा, लोग अपने घरों के आसपास कूड़ा कचरा इकट्ठा ना होने दें जिससे उसको वहाँ पर ना रहने का या बिल बनाने का मौका ना मिले। लोग जहाँ तक है वहाँ तक अपने घर में जो छोटे मोटे कीड़े रहते हैं जिनको सांप के द्वारा खाया जाता है या उसका भोजन होता है उसको साफ सफाई से रखेंगे तो वहाँ आने के उसके चांस कम हो जाएंगे।
1: तो ये तो आपने बहुत अच्छी चीज बताई कि ये चार सावधानियां रखें तो उसे हम दूर कर सकते हैं, सर्प को अपने यहाँ से दूर कर सकते हैं। अब किसी को सांप ने काट लिया, अब जो भ्रांतियों वाला सेक्शन है वो अप्लाई हो जाता है और कई सारे लोग फिर अपने घरेलू टोटके जो आस पड़ोस के पड़ोसियों की जो सलाह होती है वो सलाह अप्लाई कर देते हैं, तो वो सलाह सही है, झाड़ फूक की जा सकती है या सिर्फ इसका इलाज मेडिकल साइंस में है?
2: इसका इलाज अंधविश्वास से तो बिल्कुल नहीं किया जा सकता। लोग अंधविश्वास में आ जाते हैं, लोगों को दूसरों की बातों में आ जाते हैं और ऐसा पहले से करते भी आए हैं जिसकी वजह से बहुत सारी मौतें भी हुई हैं जो कि बचाया जा सकता था, जिनको समय से रहते हुए अस्पताल में लाया जाता तो शायद उनकी जान बच जाती। दूसरे की भ्रांतियों में ना आए, सर्पदंश होने घटना होने पर तुरंत जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी अस्पताल लाएं, क्योंकि उसका जहर अगर जहरीला है 15 मिनट के अंदर उसका असर शुरू होना शुरू हो जाता है।

0: है, और बहुत सी बार 1 से 2 घंटे के अंदर भी डेथ हो जाती है इतना जहरीला होने के बाद। और जहाँ तक है वहाँ तक जिस हिस्से में उसको मनुष्य को काटा है उस हिस्से को जहाँ तक है उसको ज़्यादा बहुत ज़्यादा ना हिलाएं डुलाएं ना उससे कोई बहुत सा बंद लगवाते, बंद टाइप की एक प्रणाली अपने यहाँ चलती है उसको टाइट बांध देते हैं जिससे कि उसके शरीर के उस हिस्से का खून का संचार है ना वो बंद हो जाता है। उस हिस्से की जिस हिस्से में ब्लड सप्लाई कम है वहाँ खून का संचार कम होने से वो हिस्से शरीर से कट हो जाता है जिससे वहाँ की डेथ होने का संभव है। अगर पेशेंट की जान धीरे से अगर जल्दी पेशेंट जहरीला नहीं हुआ सांप वहाँ जान बच भी गई लेकिन वो हिस्सा इतना डैमेज हो सकता है कि उसको हो सकता है शरीर से काट के ही अलग करना पड़ सकता है।
1: दो बातें आपने बताई कि एक तो जो हमने भी इस चीज़ को सुना था और सोचते थे कि शायद शायद ये चीज़ सही है कि अगर जिस हिस्से पर काटा है तो उसके ऊपरी हिस्से को थोड़ा सा टाइट बांध दिया जाए जिससे पॉइजन ऊपर की ओर ना बढ़े, यानी कि हार्ट की ओर ना बढ़े। तो ये प्रणाली भी गलत है, नीचे का हिस्सा ब्लड सर्कुलेशन न होने के कारण डैमेज हो जाएगा और उसे फिर अंग विच्छेद भी करना पड़ सकता है। दूसरा आपने बताया कि देर कर देते हैं, और एक आपने लक्षण बताया, लक्षण शब्द आपने यूज किया, तो लक्षण अगर वाकई में जहरीला सांप है तो कौन कौन से सिम्टम्स उसे दिखाई देंगे जिससे वो थोड़ा सा पहचाने और फिर वो तुरंत आपके यहाँ मतलब हॉस्पिटल की ओर मूव करे, तो घर में वो क्या समझे, उसे क्या समझ में आएगा कि वाकई में ये जहरीला है।
0: जितना डर मनुष्य को सांप से लगता है उतना ही डर सांप को भी मनुष्य से लगता है, ऐसी सांपों की स्टडी हुई है उसमें बताया गया है। तो लक्षण उसको सबसे पहले अगर जैसे ही सांप ने काटा है उसको ऐसा अगर उसने देखा है तो फिर तो बात वहीं खत्म हो जाती, फिर तो बिना कुछ सोचे समझे सीधा अस्पताल पहुंचना है
1: अगर देख लिया है,
0: देख लिया है तो। अगर नहीं देखा है, अगर उसके मन में कन्फ्यूजन है या बोले डाउट है कि बोले काटा है कि नहीं काटा है तो भी सबसे पहले अस्पताल तो आना ही आना है। लक्षण में उसको उस जगह पे स्वेलिंग आना शुरू हो जाएगी। अब अपने यहाँ बहुत से प्रजाति ऐसी हैं जिनमें कोई ज्यादा जहरीला होता है कोई कम जहरीला रहता है, लेकिन कोबरा जो है रहता है
1: जैसे
0: उसके,
1: पाइथर है,
0: हाँ
1: कोबरा है,
0: कोबरा
1: ये थोड़े ज्यादा जहरीले माने जाते हैं।
0: कोबरा में जो उसके काटने के 15 मिनट के अंदर ही उसको स्वेलिंग आना शुरू हो जाती है पैर में जिस जगह काटा है उस जगह, और उसमें पेन भी होने लगता है। बहुत से मरीजों को उल्टी आने लगती है, चक्कर आने लगते हैं, जी मचलाने लगता है और आंखों से धुंधला दिखने लगता है। ये प्राइमरी लक्षण ज्यादातर लोगों में रहते हैं।
1: अगर ये आदमी समझ रहा है कि उसे ये दिक्कतें बढ़ रही हैं, उसके परिवार जन की ये ड्यूटी है कि तुरंत वो हॉस्पिटल की तरफ मूव करे और जिला चिकित्सालय या नजदीकी औषधालय तक कम से कम वो पहुंचे। तो अगर वो अस्पताल आता है तो क्या मेडिकल साइंस में सर्जरी के द्वारा या दवाओं के द्वारा या कोई एंटीडोज के द्वारा हम इसको रिकवर कर सकते हैं?
0: पहले अपना प्राइमरी काम रहता है उसको ये देखना अस्पताल में आने के बाद उसको लक्षण है भी कि नहीं। अगर लक्षण है तो अपन तुरंत बिना देर के हुए एंटीडोज स्टार्ट करते हैं उसको, और एंटीडोज का पहले टेस्टिंग डोज देते हैं कि बहुत से पेशेंटों को क्या है उससे एलर्जी भी होती है तो एलर्जी का भी ट्रीटमेंट अपन तैयार करके रखते हैं पहले से जिससे कि उसको एलर्जी ना हो, हो भी गई है तो उसको तुरंत बचाया जा सके। और एंटीडोज देने के बाद ज़्यादातर पेशेंटों की जान बच ही जाती है, ये बहुत अच्छा विकल्प है अपने पास। सर्जरी की ज़रूरत तो बहुत कम पेशेंटों में पड़ती है, उन पेशेंटों में पड़ती है जो सांप बहुत ज़्यादा जहरीला है, लाने में देर हो गई है और जिस हिस्से में काटा उस हिस्से में गैंग्रीन या खून का संचार कम हुआ है जो बंद लगाने से हुआ होगा उनमें पड़ती है, बाकी ज़्यादातर मेडिकल से ही ठीक हो जाते हैं।
1: विज्ञान कहता है कि धरती पर जितनी सांपों की प्रजातियां हैं उसमें से लगभग 80 से 90% सांप जहरीले नहीं हैं। अब ऐसी स्थिति में इंसान क्या करे अगर वो काट ले 80 से 90 वाले, तो सांप का भय तो उस व्यक्ति को है और कई बार भय होने के कारण पॉइजन से तो मौत नहीं होगी लेकिन भय के कारण अटैक आने की संभावना बढ़ जाती है, तो इसमें क्या प्रक्रिया करनी चाहिए?
0: मनुष्य को तो इसके इस चीज़ का बहुत कम ज्ञान रहता है कि बोले कौन सा जहरीला है कौन सा नहीं जहरीला है कौन कितना जहरीला है। उसकी प्राइमरी ड्यूटी तो यही है कि जैसे ही सांप ने काटा है तुरंत अस्पताल पहुंचे,
1: डॉक्टर तय करेगा कि
0: डॉक्टर
1: पॉइजन वाला है या नहीं, नहीं।
0: 80-90% केसेस में जो सांप होते हैं वो जहरीले नहीं होते हैं, तो इस चीज़ का फायदा ही जो अंधविश्वासी लोग हैं उठाते हैं, क्योंकि बहुत से मरीजों को जब गांव वाले या उनके परिवार वाले ले जाते हैं तो वो तो हमको पैसे ही पता था कि वो पेशेंट को बचना ही था, लेकिन अगर इस चीज़ का वो अपने प्रचार करने में फायदा उठाते हैं बोले हमारे यहाँ आने से वो बच गया, तो इस चीज़ से उनको सबसे पहले बचना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बोले उसकी वजह से बच गया, वो तो पहले से ही बिना जहर भी वाला सांप था तो वो उसका फायदा उठाते हैं। ये दूसरा एक और सबसे बड़ा इसमें जो डिलेमा है कि जो मोस्ट ऑफ द जो डेथ होती है सांप काटने से उसमें जो अच्छी अच्छी किताबों हैं उनमें साफ लिखा हुआ है कि मोस्ट ऑफ द डेथ ड्यू टू फियर, डर की वजह से मौत हो जाती है।
1: वही बात जो मैंने कही कि डर एक बहुत बड़ा कारण है, उसके कारण भी मौत होती है, हार्ट पर प्रेशर पड़ता है और कैलॉप्स आदमी हो जाता है। सांप दो तीन तरह के होते हैं, मतलब अभी मेडिकल साइंस में अंग्रेजी टर्म है, तो वो कौन से होते हैं कि एक विशेष के कारण काटने से उल्टी की संभावना है, एक के काटने से सूजन की संभावना है, एक के काटने से कुछ और संभावना है?
0: ऐसे तो इनका बहुत बड़ा क्लासिफिकेशन है, लेकिन अपन ने अपनी सुविधा की दृष्टि से तीन कैटेगरी में इसको डिवाइड कर दिया। एक न्यूरोटॉक्सिक होते हैं, हीमाटोटॉक्सिक होते हैं, मायोटॉक्सिक रहते हैं। इससे अपन को इलाज करने भी आसानी मिलती है। न्यूरोटॉक्सिक में दिमाग से संबंधित लक्षण आते हैं, हीमाटोटॉक्सिक में ब्लड से संबंधित लक्षण आते हैं, और मायोटॉक्सिक में मांस से मसल से संबंधित लक्षण आते हैं। न्यूरोटॉक्सिक में पेशेंट को चक्कर आने लगेंगे, घबराहट होने लगेगी, उल्टी होगी और उसको आंखों से धुंधला दिखने लगेगा, उसकी पलकें कम खुलेंगी, झटके आने लगते हैं, इस टाइप की लक्षण आते हैं। हीमाटोटॉक्सिक में उसको पेशाब में खून आने लगेगा या लाल पेशाब आने लगेगी, शरीर पर सबका लाल चकते आने लगेंगे, उसको ब्लड की उल्टी भी हो सकती है, दांतों से खून आने लगेगा, मसूड़ों से, ये हीमाटोटॉक्सिक का रहता है। मायोटॉक्सिक का उसकी मसल्स का बहुत तेज पेन होगा, उसको तरीके के लक्षण देखने को मिलते हैं, लेकिन ये मरीज को तो ज़्यादा समझ में नहीं आएंगे, लेकिन अस्पताल आएंगे तो हम लोगों को इलाज करने में आसानी मिल जाती है।
1: कोशिश करनी चाहिए कि आप मरीज को डॉक्टर के लिए, डॉक्टर की सुविधा के लिए वो आकर अगर सांप ने ही काटा है तो सांप को डिस्क्राइब कर सके तो आपको इलाज में मदद मिलेगी।
0: हाँ, मिलती है मदद। इस चीज से ये फायदा रहता है, अपन हमें आइडिया लग जाता है ये ज्यादा जहरीला सांप है या कम जहरीला सांप है। अपने यहाँ कोबरा रहता है, किंग क्रेट रहता है, बाइपर रहता है, ये थोड़े ज्यादा जहरीले रहते हैं, बाकी जो प्रजाति वाले रहते हैं वो कम जहरीले रहते हैं। और इसमें भी एक और कैटेगरी है, उसको ये देखना पड़ता है अपन को, अगर सांप डिस्क्राइब कर देगा तो कितने एंटी वीनम डोज की आवश्यकता है, ये भी एक आइडिया लग जाता है।
1: अब थोड़ा सा हम आंकड़ों की दृष्टि से अगर बात करें कि पिछले कुछ समय का अगर हम जिला चिकित्सालय का या अस्पताल का अगर आंकड़ा जैसा देखें कि 100 मरीज यदि अनुमानित आए हैं तो कितने रिकवर हुए हैं और कितने कैलॉप्स हुए हैं?
0: मेरी ड्यूटी में जितने भी पेशेंट स्नैक बाइट वाले आए हैं या फिर मेरे अंडर में जितने भी एडमिट हुए हैं, आज तक एक साल के अंदर मेरे अंदर कोई डेथ नहीं हुई उनकी।
1: अच्छी बात है, ये बहुत अच्छा आंकड़ा है, संतुष्टिजनक है और सुनने वालों को थोड़ा सा अच्छा लगेगा और इस चीज के लिए भी प्रेरित करेगा कि आप जिला चिकित्सालय या हॉस्पिटल जाएंगे तो आप सुरक्षित रहेंगे। वनस्पत उन झाड़फूंक वालों से, टोटके वालों से आप दूर रहकर आप हॉस्पिटल में विशेषज्ञ डॉक्टर के अंडर में जाकर इलाज कराएं तो आप सुरक्षित रहेंगे और अपने जीवन को आगे लंबा कर पाएंगे। बातचीत तो हमारी हुई और हम लगभग हर बिंदु को आपने स्पर्श किया और आपने ये भी बता दिया कि इसका एंटीडोज है, टाइम सबसे बड़ी जरूरत है, टाइम टाइम बिल्कुल नहीं गंवाना है, मतलब समय बेकार बिल्कुल नहीं करना है और आपको शीघ्र अतिशीघ्र के हॉस्पिटल जाना है। एक बात और पूछना चाहते हैं कि कई बार ये मरीज नहीं समझ पाता है कि उसे किसी कीड़े ने काटा है या सांप ने और वो भ्रम की स्थिति में रहता है, तो अन्य कीड़े की काटने की स्थिति में उसे वही दो निशान दिख रहे हैं जैसे दो छेद दिखाई देते हैं कि भाई सांप ने काटा और दूसरे कीड़े ने भी काटा तो दांत के निशान दिख रहे हैं और वो इफ और बट में कंफ्यूजन हो रहा है, तब वो क्या करे?
0: कुछ नहीं, उसको सबसे पहले अस्पताल आए, अस्पताल आने के बाद हम लोग हिस्ट्री लेते हैं उससे, अगर वो ठीक से बता पाता है तो ठीक है, नहीं बता पाता है तो उसको 24 आवर्स के लिए अपने ऑब्जर्वेशन में रखते हैं,
1: अंडर ऑब्जर्वेशन।
0: जब अपन को लक्षण आना लगता है, ऐसा कोई लक्षण आया है तो अपन उसका एंटीडोज देते हैं, नहीं लक्षण कोई आया है तो कोई अच्छी बात है, अपन प्राइमरी ट्रीटमेंट करके उसको फिट करके
1: छोड़ देते हैं। बातचीत तो हमारी बहुत अच्छी हुई और हम लगभग हर मुद्दे पर पहुंचे, लेकिन इस बातचीत में आपको लगता है कि इस हिस्से को हम स्पर्श नहीं कर पाए और इस हिस्से को जानना आम जनता को, आम श्रोताओं को, ग्रामीण जनों को होना चाहिए, उसका जरूर जिक्र करें।
0: मरीजों को सबसे पहले ये सोचना चाहिए गाँव में, एक तो ये जो अंधविश्वास है उससे दूर रहें, अपने इतना बड़ा देश है, शहर से दूर गाँव बने हुए हैं तो लोगों को जहाँ तक है वहाँ तक सरकारी सुविधाओं का या जो मेडिकल फैसिलिटी उनका फ़ायदा उठाना चाहिए। आजकल तो हर जगह गवर्नमेंट ने छोटे छोटे अस्पताल भी बना रखे हैं, वहाँ भी सबसे पहले जाओगे तो भी आपको एक सही सलाह मिल जाएगी, जिससे कि वो भी प्राइमरी मैनेजमेंट करते हैं, उसके बाद उनको लगता है तो वो भी टाइमली रेफ़र करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले वहाँ पर जाके अपना परामर्श लें, ना कि अपने पड़ोसियों से।
1: बहुत अच्छी बात कही कि चिकित्सक से परामर्श लें, ना कि पड़ोसियों से परामर्श लें, और सबसे इम्पोर्टेंट बात है देर बिल्कुल नहीं करें, सीधे पेशेंट आपको लगता है कि ऐसा केस हो गया है तो सीधे आप पेशेंट को जो भी आप पे संसाधन है गाड़ी ट्रैक्टर वगैरह उससे तुरंत जल्दी से शीघ्र नज़दीकी औषधालय या चिकित्सालय पहुँचे तो आप सुरक्षित रहेंगे। तो डॉक्टर साहब, सर्पदंश भ्रांतियां एवं निदान इस विषय पर एक सारगर्भित बातचीत हुई, हम उम्मीद करते हैं हमारे सुनने वाले ग्रामीण ही नहीं जो भी इस बातचीत को सुन रहा है वो अवश्य फायदा हो लेगा, क्योंकि बारिश के दिनों में सर्पदंश की घटनाएं थोड़ी ज्यादा होती हैं, लेकिन सर्प प्रकृति

0: अच्छे उपचार के लिए अब नहीं रहेगा कोई लाचार। देश भर में 60 करोड़ से ज्यादा लाभार्थी हैं। अब 5 लाख के मुफ्त इलाज के हकदार। अब तक 25 लाख करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के मुफ्त उपचार के लाभ दिए जा चुके हैं और स्वाभिमान और सेहत की सौगात का ये सिलसिला जारी है।
1: आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड करें और पात्र लाभार्थी घर बैठे अपना आयुष्मान कार्ड बनाएं। अधिक जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।

भैया अभी अपन सुन रहे थे संजीव शर्मा को गाओ ये लोकगीत। और अब भैया आज के मौसम की बात कर लें। भैया आज शिवपुरी जिला को अधिकतम तापमान रहो 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम रहो 25 डिग्री सेल्सियस। मौसम में आर्द्रता यानी नमी रही 80% और हवा की भैया बात करें तो वह रही 14 किलोमीटर प्रति घंटा। और अब बात कर रहे थे कल के कार्यक्रम चौपाल में चर्चा की। कल चौपाल में चर्चा रहेगी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन और बरसात के मौसम में मच्छरों से करें बचाव। और किसानवाड़ी में चर्चा रहेगी किसान क्रेडिट कार्ड और प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान। और संघ भेंट वार्ता का विषय रहेगा पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान क्यों और कैसे। और इस विषय पर जानकारी देंगे डॉक्टर बाल कृष्ण शर्मा और इनसे बातचीत करेंगे अपे भैया समर्थ अग्रवाल। तो भैया देखो ये तो भई बात अपे आज की और कल की। और अब अपे घड़ी अपे इशारा कर रही है कि अपे कार्यक्रम को समय धीरे धीरे हो रहा है, लेकिन चलन से पहले अपे बता दें कि भैया देखो बारिश को मौसम है, इस मौसम में अपे बहुत सावधानी रखें क्योंकि देखो भैया खेती बाड़ी को काम अपे भैया करते हैं तो उस समय भी अपने को बहुत सावधानी रखनी चाहिए। और इसी के संगे अपे बहन शिल्पा को दो आज्ञा, राम राम, जय जवान जय किसान।

0: इंडोनेशिया के बीच विभिन्न क्षेत्रों में साझेदारी के प्रमुख निष्कर्षों पर चर्चा। इसमें भाग ले रही हैं अंतर्राष्ट्रीय मामलों की जानकार प्रोफेसर अंशु जोशी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तीन देशों की यात्रा का पहला चरण इंडोनेशिया की यात्रा के साथ आज समाप्त हुआ है और भारत और इंडोनेशिया के बीच जो कई महत्वपूर्ण द्विपक्षीय समझौते हुए हैं जो कई क्षेत्रों में हुए हैं, चाहे वो रक्षा हो, उद्योग हो, तकनीक हो, स्वास्थ्य, शिक्षा या फिर संस्कृति, इससे ये स्पष्ट होता है कि जिस तरह से महत्वपूर्ण समझौते दोनों देशों के बीच हुए हैं वो भारत और इंडोनेशिया के संबंधों को और प्रगाढ़ करने में अपनी भूमिका निभाएंगे। तो आज हम प्रधानमंत्री की इंडोनेशिया यात्रा के प्रमुख निष्कर्षों पर कार्यक्रम में चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ प्रोफेसर अंशु जोशी कार्यक्रम में जुड़ी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका।
2: कमल जी, आपका इस महत्वपूर्ण चर्चा हेतु मुझे आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत आभार और सभी श्रोताओं को नमस्कार।
1: सबसे पहला मेरा मूल जो सवाल है वो यही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के बीच जो द्विपक्षीय वार्ताएं हुई वो कैसे भारत के और इंडोनेशिया के संबंधों को आगे आने वाले समय में और मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा महत्वपूर्ण कदम है और कैसे दोनों देशों के बीच बढ़ता सहयोग, जो खासतौर पर जो इंडो पैसिफिक एक क्षेत्र है उसके लिहाज से भी महत्वपूर्ण कहा जा सकता है।
2: यदि हम इंडोनेशिया और भारत को देखें तो बहुत लंबे सभ्यतागत रिश्ते दोनों देशों के बीच में रहे हैं। हिंदू और बौद्ध धर्म की संस्कृति का ध्वजावाहक इंडोनेशिया भी है और 2018 तक 1949 से जो राजनयिक कूटनीतिक संबंध दोनों देशों के बीच स्थापित हुए थे बहुत अच्छे चले। 2018 में जब हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने इंडोनेशिया की यात्रा की तो इन संबंधों को एलिवेट करते हुए एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की हमने शुरुआत की और इसके बाद से हमने देखा कि कैसे जो एक

0: साबित हो।
1: प्रोफेसर अंशु जोशी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि भारत और इंडोनेशिया का जो एक, अगर रक्षा सहयोग की हम बात करें तो दशकों पुराना एक साझेदारी जरूर रही है, लेकिन पहले ये खाली एक संयुक्त, एक तरह से ज्वाइंट वेंचर जो होते थे, एक संयुक्त जिसमें कि हम कह सकते हैं एक मैरिटाइम पेट्रोलिंग तक ही सीमित था, लेकिन अब इसे उद्योग तक बढ़ाने की एक पूरी पहल हुई है। तो कैसे जो समझौते हुए हैं ये भारत और इंडोनेशिया के, जो रक्षा सहयोग है, खासतौर पर जो उद्योग है और आदान प्रदान है, उसमें और ज्यादा इससे बढ़ोतरी होगी?
0: कमल जी, पहले तो हम ये समझें कि भारत की जो छवि थी वो आज से 11 वर्षों पहले तक रक्षा के क्षेत्र में एक इंपोर्टर देश की छवि थी। हम जो अपने
1: जी
0: रक्षा के इक्विपमेंट थे वो दूसरे देशों से इंपोर्ट करते थे, लेकिन अब 11 वर्षों में ये देखना बहुत सुखद है कि रक्षा के क्षेत्र में हमारी छवि एक एक्सपोर्टर देश की छवि बनी है और हमने अपने यहाँ पर इतने बढ़िया रक्षा प्रणालियों को, अलग अलग अस्त्रों शस्त्रों को विकसित किया है। ऑपरेशन सिंदूर में उसकी चमक और धमक पूरी दुनिया ने देखी। तो अब इंडोनेशिया के साथ भी जब हम रक्षा योग की बात करते हैं तो बात द्विपक्षीय या आसियान जैसे बहुपक्षीय मंचों पर एक ज्वाइंट मिलिट्रल एक्सरसाइजेस की और सामुद्रिक सुरक्षा तक सीमित नहीं रह जाती। एक तो जो ब्रह्मोस मिसाइल्स को लेकर के बड़ी डील हुई है, उसको लेकर के भी आगे ये बिंदु देखने को मिलते हैं कि इंडोनेशिया, आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया का जो ये पूरा हमारा आह्वान है, मिशन है, इसके तहत जो हम अपने रक्षा क्षेत्र में इक्विपमेंट डेवलप कर रहे हैं उसमें इंडोनेशिया हमारा बड़ा साझेदार बनेगा। इसके साथ आपसी निवेश की भी बात है और जो ये मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, इसको सरल बनाते हुए इसमें जो दूसरे औद्योगिक जगत से जुड़े हुए स्टेक होल्डर्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, स्टार्टअप्स हैं, उनको शामिल करने की बात है। तो हम दोनों देशों की ओर देखें तो बड़ी आबादी वाले देश हैं भारत और इंडोनेशिया, तो इससे फिर जो है प्रोफेशनल मोबिलिटी को और एम्प्लॉयमेंट को भी हम मजबूत होते हुए देख सकते हैं। तो ये रक्षा क्षेत्र में जिस तरह से अलग अलग प्रकार के तकनीकी साझा करने को लेकर, मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के, इक्विपमेंट के आदान प्रदान

0: को लेकर के, और इसके अलावा अलग अलग जो हमारे मिनिस्ट्रियल लेवल के डायलॉग शुरू हुए हैं दोनों देशों के बीच में, और जो कार्यक्रम होंगे ये भी हम जोड़ करके देख सकते हैं। जी का
1: तो आर्थिक क्षेत्र को मजबूत करने वाले पक्ष हैं, वो कितना महत्वपूर्ण रोल निभाएंगे आने वाले समय में दोनों देशों की आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने की दिशा में?
0: कमल जी, ये तो हम सभी जानते हैं कि किसी भी देश के लिए आज किस तारीख में यदि उसकी शक्ति के संचालक तत्वों को हम देखें तो उसमें उसकी आर्थिक शक्ति का एक बड़ा महत्व होता है। तो जब हम भारत और इंडोनेशिया के द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को व्यापार की ओर दृष्टि डालें तो विगत कुछ वर्षों में बहुत मजबूत हुए हैं ये संबंध। आज 38 बिलियन USD का लगभग व्यापार है दोनों देशों के बीच में। भारत बड़ी मात्रा में क्रूड पाम ऑयल को इंडोनेशिया से मंगाता है, वहीं हम इंडोनेशिया की ओर देखें तो फार्मास्यूटिकल से लेकर के एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स तक जो है हम यहाँ से अपने यहाँ से इंडोनेशिया को भेज रहे हैं। लेकिन क्रिटिकल मिनरल्स के क्षेत्र में तो विशेषकर जैसे स्टील के क्षेत्र में ये देखना सुखद रहा कि हमारी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि सेल और इंडोनेशिया की जो क्रकाताऊ स्टील है उन्होंने स्टेनलेस स्टील के स्लैब मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को बढ़ाने के लिए और किस प्रकार से रेयर अर्थ मैग्नेट्स को साथ में को डिवेलप कर सकते हैं इसको लेकर के एक बड़ा समझौता किया है। इसके अलावा आप देखें कि इसमें अलग अलग प्रकार के इकोनॉमिक और फाइनेंशियल डायलॉग्स को भी शुरू किया गया है। और इसके साथ साथ हम यदि देखें तो व्यापार के क्षेत्र में कैसे क्रिटिकल मिनरल्स पर बढ़ावा देते हुए फार्मास्यूटिकल्स के क्षेत्र में और कृषि के क्षेत्र में हम कैसे उत्पादों के आदान प्रदान को बढ़ा सकते हैं इसको लेकर के भी समझौते देखने को मिले हैं। तो व्यापार की दृष्टि से निश्चित तौर पर रिश्ते नई उड़ान ले रहे हैं। और द्विपक्षीय के साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि आसियान का एक बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है इंडोनेशिया हमारे साथ। तो फिर जब ऐसे देश हमारे साथ द्विपक्षीय स्तर पर मजबूती से खड़े रहते हैं तो फिर आर्थिक दृष्टि से चाहे हम ऐसे व्यापार समझौतों की बात करें या कनेक्टिविटी को आगे बढ़ाने की बात करें, कैपेसिटी बिल्डिंग की बात करें, तो वहां फिर आसियान जैसे मंचों पर भी भारत की स्थिति मजबूत होती है।
1: आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐतिहासिक परमानंद मंदिर का दौरा किया और वहां पूजा अर्चना की, तो प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में इस मंदिर के संरक्षण और जीर्णोद्धार के बीच हुए सहयोग के बारे में क्या कहा, आइए सुनते हैं।
2: मुझे पूरा विश्वास है मेरे मित्र राष्ट्रपति जी जिस प्रकार से किसी काम को हाथ में लेते हैं तो एक फौजी के नाते बहुत वेल प्लान करते हैं और समय से पहले पक्का पूरा करेंगे। और आज उन्होंने मुझसे प्रॉमिस लिया है कि 29 के पहले इस काम को हम कर लेंगे और आपको दोबारा आना है। मैं आपको वादा करता हूँ कि मैं इसके पुनर्निर्माण के बाद जरूर यहाँ आऊंगा और आपके साथ इस उत्सव को मनाऊंगा।
1: तो जो मजबूत ऐतिहासिक संबंध है उनको नई दिशा देने में किस तरह से ये सहयोग भी बड़ा महत्वपूर्ण होगा, और आज जो प्रधानमंत्री की यात्रा रही परमानंद मंदिर की उस पर भी आप क्या कहेंगी?
0: कमल जी, ये आपने चर्चा में बहुत ही सुंदर आयाम जोड़ा है। और यदि हम भारत के इंडोनेशिया के साथ सांस्कृतिक संबंधों की बात करें तो मैंने आपसे चर्चा की शुरुआत में ही कहा था कि हमारे सभ्यतागत रिश्ते रहे हैं। हिंदू और बौद्ध धर्म की संस्कृति को देखें तो वो हमें इंडोनेशिया में भरपूर दिखाई पड़ती है। उसका ध्वजा वहाँ के अलग अलग प्रकार के मंदिर हैं, जिस प्रकार से संस्कृत का यहाँ सम्मान है, भारत की अलग अलग भाषाओं का सम्मान है। और इसके साथ हम रामायण और महाभारत की धरोहर को जिस तरह से इंडोनेशिया द्वारा संभाले जाते देखते हैं वो अपने आप में अनोखी है। मुद्रा पर यहाँ की गरुड़ अंकित है, गणेश की पूजा होती है। तो ऐसे में जो ये बहुत महत्वपूर्ण शिव मंदिर है, पुराना शिव मंदिर है, यहाँ पर हमारे प्रधानमंत्री का जाना और भारत द्वारा इस बात का बीड़ा उठाया गया है कि इस पूरा प्राचीन मंदिर का जीर्णोद्धार, इसकी तकनीकी सहायता, आर्थिक सहायता भारत करेगा, तो किस प्रकार से नवाचार के माध्यम से नई तकनीकों को अपनाते हुए अपनी सांस्कृतिक धरोहरों को सुरक्षित रखते हुए भारत आगे बढ़ रहा है, ये एक इसी बात का द्योतक है। तो आज जो प्रधानमंत्री इस प्रसिद्ध शिव मंदिर गए, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के साथ वहाँ पर जीर्णोद्धार के कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया, तो ये उसी बात को कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करता है, उसका ये एक प्रतीक है। कमल,
1: दोनों देशों ने आतंकवाद को लेकर साझा रुख स्पष्ट किया है, तो क्या कहेंगे इस पर?
0: बिल्कुल कमल जी, भारत का अलग अलग मंचों से ये वर्षों से प्रयास है कि आतंकवाद को पूरा पूरा विश्व मिलकर एक मुंह तोड़ जवाब दे। और न सिर्फ भारत, आज विश्व के कई देश, सशक्त देश जैसे कि अमेरिका आतंकवाद का शिकार बने हुए हैं। और ऐसे में जब भारत, हमारे प्रधानमंत्री अलग अलग मंचों से आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई की बात करते हैं तो उसमें इंडोनेशिया जैसे देश बहुत सशक्त साझेदार के रूप में खड़े दिखाई पड़ते हैं, द्विपक्षीय स्तर पर भी और बहुपक्षीय स्तर पर हम देखें तो ब्रिक्स के मंच पर, G20 के मंच पर, आसियान के मंच पर। और ये भारत की महासागर डॉक्ट्रिन में जो ये म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांस ग्रोथ, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजन की बात हमारे प्रधानमंत्री ने मॉरिशस की धरती से की थी, इसके पहले सागर की बात की थी, तो इसमें ये सिर्फ हिंद प्रशांत क्षेत्र या हिंद महासागर को सुरक्षित रखने की बात नहीं है, प्रॉस्परस बनाए रखने की ही बात नहीं है, इसमें कहीं ना कहीं आतंक

0: वाद निरोधी हम कैसे अलग अलग तकनीकें हैं या फ्रेमवर्क्स हैं उसको हम बढ़ावा दे सकते हैं, इसकी भी बात है। और कल हमारे प्रधानमंत्री ने पश्चिम एशिया में घिरे संकट का समाधान भी सुझाया। उन्होंने बताया कि जैसे भारत टू स्टेट सोल्यूशन की बात करता है, इसको पूरे विश्व को ध्यान से समझना चाहिए और पश्चिम एशिया के देशों को इसे अपनाना चाहिए। इसके साथ साथ जब आतंकवाद निरोधी जो उपाय है उनको जब उन्होंने अपनाने की बात की, तो यहाँ पर तकनीकी कहीं ना कहीं सहयोग के स्तर पर, नियमन के सहयोग के स्तर पर, और फिर एक जनता की दृष्टि से भी देखिए जिस प्रकार का लोगों का यहाँ से साथ हमको मिलता है, इस बात को मिलता है, इस लड़ाई को मिलता है, तो भरपूर सहयोग इंडोनेशिया का जो है भारत को मिलते हुए दिखाई पड़ता है। भारत के साथ साथ इंडोनेशिया भी इस बात का पक्षधर है कि विश्व में शांति होनी चाहिए, सुरक्षा होनी चाहिए, और इसी की बात हमारे प्रधानमंत्री ने इंडोनेशिया की संसद में।
1: इंडोनेशिया में बसे भारतीय प्रवासियों को संबोधित करते हुए इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने क्या कहा, आइए सुनते हैं।
2: Our language, I would say, Falizon, Minister of Culture, our language was 50% from Sanskrit. Many of our names are Sanskrit names. And therefore, there is this closeness, and we welcome more close cooperation.
1: आखिर में प्रश्न मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगा कि जैसे दोनों देशों के बीच 1200 किलोमीटर की एक लंबी समुद्री जो सीमा है वो साझा होती है, तो किस तरह से महासागर विजन और इस तरह के जो समुद्री सहयोग हैं उसमें दोनों देशों की एक मजबूत साझेदारी एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले कर सकती है आने वाले समय में।
0: इंडोनेशिया की और दृष्टि करें तो भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का भी एक महत्वपूर्ण या सहयोगी देश है, और महासागर विजन की दृष्टि से भी देखें तो इंडोनेशिया की जब हम लोकेशन को देखते हैं, उसके महत्व को देखते हैं, तो बहुत ही महत्वपूर्ण देश है। इसके पहले हमारे प्रधानमंत्री सेशल्स की यात्रा पर थे, और ये तमाम हिंद महासागर और हिंद प्रशांत क्षेत्र के जितने ये देश हैं इनकी ओर भारत का ध्यान है, ताकि चीन ने जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल स्ट्रेटजी अपनाई, एक नेगेटिव कूटनीति भारत को घेरने के लिए या इन सामुद्रिक क्षेत्रों में अपना असर्शन दिखाने के लिए, उसका कहीं ना कहीं मुकाबला किया जा सके और इन सामुद्रिक क्षेत्रों को किसी भी देश के प्रभुत्व से मुक्त रखा जा सके। इंडोनेशिया इसमें भारत का बिल्कुल साझेदार सहयोगी है इसके रूप में नजर आता है, और इस नीति के तहत कैपेसिटी बिल्डिंग को लेकर के, डिजिटल इंटीग्रेशन को लेकर के, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट को लेकर के और रक्षा सहयोग को लेकर के बातें भारत करता है, और इंडोनेशिया, सेशल्स, मॉरिशस ऐसे देशों को बड़ा अपना लॉजिस्टिक्स सपोर्ट भी प्रदान करता है। तो ये देखना सुखद रहा कि इंडोनेशिया का जो महत्वपूर्ण सबांग बंदरगाह है जो अंडमान निकोबार से बहुत करीब है, और यहाँ भारत जो है इस पोर्ट के विकास के लिए अपना आर्थिक और तकनीकी सहयोग देगा, इससे लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज में भी सहायता मिलेगी, और भारत को जो जियो स्ट्रेटेजिकली ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का है जो इंडोनेशिया से लगी है, इसका अर्ली और टाइमली एक्सेस जो है वो भारत को मिलेगा। वहीं इंडोनेशिया को भारत के सबांग एयरपोर्ट को विकसित करने से व्यापारिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, सामरिक दृष्टि से बड़ा लाभ मिलेगा। तो भारत की जो महासागर नीति है वो ये तमाम लाइक माइंडेड देशों को साथ में लेकर इन समुद्री क्षेत्रों को सुरक्षित रखते हुए, यहाँ की संस्कृति को सुरक्षित रखते हुए, व्यापार बढ़ाते हुए आगे बढ़ने की है। तो इसमें इंडोनेशिया के साथ एक भविष्य की जो रूपरेखा है वो भारत ने तय कर ली है, और अब दोनों देश आगे बढ़ने को तैयार हैं।
1: जी निश्चित तौर पर, और जो भारत इंडो पैसिफिक क्षेत्र है और इसके अलावा जो एक वैश्विक साझा विकास है, इस दिशा में दोनों देशों की साझेदारी निश्चित तौर पर एक महत्वपूर्ण रोल निभाने वाली है, और इन समझौतों से इस साझेदारी में और मजबूती मिलेगी। आगे आने वाले समय में जो प्रधानमंत्री की ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड यात्रा है उस पर भी हमारी नजर रहेगी और उस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। प्रोफेसर अंशु जोशी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप कार्यक्रम में जुड़ी और भारत इंडोनेशिया के द्विपक्षीय संबंधों पर आपने विस्तार से अपना विश्लेषण हमारे श्रोताओं के समक्ष रखा, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत आभार कमल जी, सभी श्रोताओं को नमस्कार।
3: अभी आप सुन रहे थे भारत और इंडोनेशिया के बीच विभिन्न क्षेत्रों में साझेदारी के प्रमुख निष्कर्षों पर चर्चा। इसमें भाग ले रही थी अंतर्राष्ट्रीय मामलों की जानकार प्रोफेसर अंशु जोशी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
4: सुर्खियों में
5: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुर्खियों में, ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए प्रस्तुत है फिल्मी गीतों पर आधारित हमारा कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत आपके लिए प्रस्तुत है मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाज में। फिल्म का नाम है

0: हो रहना किसी के,
1: क्या करना है जीजी?
0: अरे हो रहना किसी के,

एसडी बर्मन का संगीत मजरूह के लिखे बोल मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाज में गीत सुना आपने फिल्म काला पानी से। कार्यक्रम का अगला गीत आपके लिए प्रस्तुत है मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म काला बाजार से।

एसटी बर्मन का संगीत शैलेंद्र के लिखे बोल मोहम्मद रफी की आवाज में गीत सुना आपने फिल्म काला बाजार से। कार्यक्रम का अगला गीत मोहम्मद रफी और गीता दत्त की आवाज में, फिल्म का नाम प्यासा।

इस जीवन का संगीत साहिर लुधियानवी के लिखे बोल गीता दत्त और मोहम्मद रफी की आवाज में गीत सुना आपने फिल्म प्यासा से। और कार्यक्रम में अब वक्त हो चला है एक छोटे से अंतराल का।

0: लता मंगेशकर जी की आवाज में गीत सुना आपने फिल्म गाइड से। संगीत था एस डी बर्मन का और बोल लिखे थे शैलेंद्र ने। कार्यक्रम का अगला गीत आपके लिए प्रस्तुत है एस डी बर्मन की आवाज में फिल्म वंदनी से।
1: पूरे माजी

एस डी बर्मन का संगीत शैलेंद्र के लिखे बोल, एस डी बर्मन की है आवाज में गीत सुना आपने फिल्म बंदनी से। कार्यक्रम का अगला और अंतिम गीत किशोर कुमार की आवाज में फिल्म आराधना से।

0: ना।
1: ऐसी फिल्म का संगीत आनंद बख्शी के लिखे बोल किशोर कुमार की आवाज में गीत सुना आपने फिल्म आराधना से, और इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। हमारा अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में होगा, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: मन्नू भाई मोटर चली पाम पाम पाम
1: मन्नू भाई मोटर चली पाम पाम पाम।
2: जब भी हम सड़क पर निकालें वाहन तो रखें इन बातों का ध्यान।
3: स्कूटर मोटरसाइकिल जैसे दो पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट अवश्य पहनें
2: और चार पहिया वाले वाहन चलाते समय सीट बेल्ट जरूर बांधें।
3: चौराहे पर हमेशा वाहन को जेब्रा क्रॉसिंग से पहले रोकें और ट्रैफिक सिग्नल का पालन अवश्य करें।
2: वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात न करें।
3: वाहन हमेशा निर्धारित गति सीमा के अंदर ही चलाएं।
2: नशे की हालत में कभी वाहन न चलाएं।
3: 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों और किशोरों को वाहन चलाने के लिए प्रोत्साहित न करें।
2: दो पहिया वाहन में दो से अधिक व्यक्ति न बैठें।
3: चार पहिया वाहन में भी सीट की संख्या के अनुरूप ही लोग बैठें।
2: वाहन के इंडिकेटर, हेडलाइट, ब्रेक, पहिए इत्यादि को हमेशा दुरुस्त हालत में रखें।
3: वाहन के सभी कागजात अपने साथ जरूर रखें।
2: थोड़ी सी सावधानी
3: दूर करे सभी परेशानी।
4: बाजू।

0: कहते हैं प्यारे पम पम पम।
1: सुनिए आकाशवाणी भोपाल पर स्वराज संस्थान संचालनालय का प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग हर गुरुवार सुबह 8:30 पर।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। हमारा अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीष शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए मेलबर्न पहुंचे। भारत और रूस ने बहुपक्षीय मंचों पर आतंकवाद रोधी सहयोग को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्धता दोहराई। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने ओडिशा के चांदीपुर में लंबी दूरी के गाइडेड रॉकेट पिनाका का सफल फ्लाइट टेस्ट किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, मॉनसून में सुधार से राहत मिली है, जुलाई में बारिश और तेज होने से खरीफ की बुआई में और तेजी आएगी। केंद्र सरकार ने बाढ़ प्रभावित राज्यों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ संघर्ष विराम समाप्त होने की घोषणा की और विंबलडन टेनिस में यूक्रेन की मार्ता कोस्ट्यूक और चेक गणराज्य की लिंडा नोस्कोवा महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंची। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तीन देशों की यात्रा के दूसरे चरण में ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न पहुंचे। हवाई अड्डे पर ऑस्ट्रेलिया की मंत्री क्लेयर ओनील ने प्रधानमंत्री की अगवानी की, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। मेलबर्न में सामुदायिक स्वागत समारोह में बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीयों ने श्री मोदी का स्वागत किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: मेलबर्न में आज प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए भारतीय समुदाय में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीयों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। कार्यक्रम से पहले प्रधानमंत्री ने भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की और उनका अभिवादन स्वीकार किया। सांस्कृतिक प्रस्तुति की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया के पारंपरिक वाद्य यंत्र डिडजेरिडू और भारतीय तबले की अनूठी जुगलबंदी से हुई। दोनों वाद्य यंत्रों की सुर और ताल ने भारत और ऑस्ट्रेलिया की सांस्कृतिक साझेदारी को सजीव रूप में प्रस्तुत किया। इसके बाद मेलबर्न की प्रसिद्ध कथक नृत्य ंगना संचिता ओबरोल के नेतृत्व में कथक नृत्य की आकर्षक प्रस्तुति दी गई। कार्यक्रम का समापन ऑस्ट्रेलिया इंडिया ऑर्केस्ट्रा की प्रस्तुति से हुआ। कलाकारों ने एआर रहमान के प्रसिद्ध गीत माँ तुझे सलाम की सिम्फनी प्रस्तुति देकर दर्शकों का मन मोह लिया।

0: मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: श्री मोदी ने कहा कि ये यात्रा भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति देगी। वो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ वार्ता को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें भारतीय समुदाय से मिलने का भी अवसर मिलेगा, जो भारत ऑस्ट्रेलिया साझेदारी का महत्वपूर्ण आधार है। प्रधानमंत्री तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम को भी संबोधित करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ योग्यकार्ता स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल प्रांबनन मंदिर का दौरा किया। श्री मोदी ने मुख्य शिव मंदिर में पूजा अर्चना की और भारत इंडोनेशिया सहयोग के अंतर्गत चल रहे संरक्षण कार्यों का जायजा भी लिया। श्री मोदी ने इस यात्रा को गहन आध्यात्मिक और यादगार अनुभव बताया। प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि जीर्णोद्धार परियोजना से दोनों देशों के लोगों के बीच संबंध और मजबूत होंगे।
2: योग्यकार्ता के इस भव्य मंदिर कॉम्प्लेक्स अब जब हम पुनर्निर्माण का काम करने जा रहे हैं और ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज है, दुनिया के दूर दूर क्षेत्रों में कहीं पर भी जाएं, हमें कहीं न कहीं भारत के सांस्कृतिक विरासत के दर्शन होते हैं। ये पूरे साउथ ईस्ट एशिया का दूसरा सबसे बड़ा हमारी विरासत की पहचान है।
1: इस अवसर पर राष्ट्रपति प्रबोवो ने मंदिर परिसर के संरक्षण और जीर्णोद्धार में भारत के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। भारत और रूस ने आज संयुक्त राष्ट्र, ब्रिक्स, यूरेशियन समूह और शंघाई सहयोग संगठन सहित बहुपक्षीय मंचों पर आतंकवाद रोधी सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। भारत रूस आतंकवाद निरोधक संयुक्त कार्य समूह की 14वीं बैठक आज नई दिल्ली में आयोजित हुई। दोनों देशों ने सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की। दोनों देशों ने क्षेत्रीय और वैश्विक आतंकवाद की स्थिति पर विचार विमर्श किया और कट्टरपंथ आतंकवाद के वित्त पोषण जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए सहयोग को बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज कुवैत के क्राउन प्रिंस शेख सबा अल खालिद अल सबा से मुलाकात की। श्री जयशंकर ने द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए क्राउन प्रिंस की प्रतिबद्धता की सराहना की। दोनों नेताओं ने खाड़ी क्षेत्र के घटनाक्रम पर अपने विचार साझा किए। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने आज ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज में लंबी दूरी के गाइडेड रॉकेट पिनाका का सफल फ्लाइट टेस्ट किया। रॉकेट का परीक्षण निर्धारित न्यूनतम 60 किलोमीटर की दूरी के लिए किया गया। पिनाका को आयुध अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान ने उच्च ऊर्जा सामग्री अनुसंधान प्रयोगशाला के सहयोग से

0: डिजाइन किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ, सेना और उद्योग जगत को इस उपलब्धि के लिए बधाई दी है। श्री सिंह ने इसे लंबी दूरी के गाइडेड रॉकेट के स्वदेशी डिजाइन और विकास क्षमता में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि पिछले कुछ दिनों में देश के विभिन्न हिस्सों में अच्छी बारिश हुई है, जिससे वर्षा की कमी वाले जिलों की संख्या 262 से घटकर 178 रह गई है। नई दिल्ली में अल नीनो के संभावित प्रभाव की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक में श्री चौहान ने कहा कि जून में 33% वर्षा की कमी दर्ज की गई थी, लेकिन जुलाई में ये घटकर 24% रह गई है।
1: जुलाई की अच्छी बारिश से बोनी की संभावनाएं बढ़ गई है। अब बोनी और तेजी से होगी। कल तक 350,85,000 हेक्टर में बोनी हुई है। मानसून में देरी के कारण तुअर, सोयाबीन और कपास पर थोड़ा प्रतिकूल बोनी पर प्रभाव पड़ा है। अब किसानों को यह सलाह दी जा रही है कि इनकी जगह मक्का, बाजरा और मूंग जैसी फसल जो कम समय में आ जाती है, उनकी बुआई को प्राथमिकता दें।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने तेज बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों से आज बात कर उन्हें केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। श्री शाह ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और केरलम के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन से बातचीत की। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2 से 3 दिनों में दक्षिण पश्चिमी मानसून के उत्तरी अरब सागर के शेष हिस्सों, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में आगे बढ़ जाने की संभावना है।
2: मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, पूर्वी उत्तर प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में भारी बारिश का अनुमान जताया है। विभाग के अनुसार शुक्रवार तक कर्नाटक, केरल, माहे, कोंकण, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में भी ऐसी स्थिति बनी रहने की संभावना है। आज दिल्ली NCR में हुई हल्की बारिश से गर्मी और उमस से लोगों को राहत मिली। बारिश के बाद मौसम सुहावना हो गया। विभाग के अनुसार राजधानी में दक्षिण पश्चिम मानसून सक्रिय है और आने वाले दिनों में भी बारिश होने की संभावना है। विभाग ने कल तक दिल्ली के लिए बिजली गरजने के साथ साथ हल्की से मध्यम बारिश का येलो अलर्ट भी जारी किया है। रिशु जायसवाल के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: मुंबई से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में लगातार मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है।
3: नासिक और इगतपुरी के कैचमेंट एरियाज में भारी बारिश जारी है, जहां पिछले 24 घंटों में कई इलाकों में 300 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। भरे हुए डैम से पानी छोड़े जाने के बाद गोदावरी नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिसके बाद प्रशासन ने नदी के किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। रायगढ़ और रत्नागिरी जिलों में भी भारी बारिश हुई है, जिससे कई रिहायशी इलाकों में पानी भर गया है। पालघर जिले में पिछले 8 दिनों से लगातार तेज बारिश हो रही है, इसके चलते डैम से सूर्या नदी में पानी छोड़ा गया, जिससे नदी किनारे के निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। वहीं सांगली जिले में शाम के वक्त तेज बारिश शुरू हुई, जबकि कृष्णा और वरना नदियां फिलहाल पूरी कैपेसिटी के साथ बह रही है। देवप्रिय भट्टाचार्य जी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO इस महीने की 15 तारीख तक लगभग 34 करोड़ EPFO खातों में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 8.25% ब्याज जमा करने का काम पूरा कर लेगा। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने बताया कि नई केंद्रीकृत IT सक्षम सेवा CITES प्रणाली के माध्यम से ग्राहकों के खातों में 1,44,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जमा की जाएगी। प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस के बैंक खातों में जमा 440 करोड़ रुपए फ्रीज कर दिए हैं। ये मामला वित्तीय लेनदेन और संदिग्ध धन की हेराफेरी से संबंधित है। जांच में पता चला है कि अप्रैल 2023 से जून 2026 के बीच पार्टी के बैंक खातों से लगभग 160 करोड़ रुपए एक निजी कंपनी और उसकी संबद्ध इकाई में स्थानांतरित किए गए। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ संघर्ष विराम समाप्त होने की घोषणा कर दी है। तुर्की की राजधानी अंकारा में नाटो शिखर सम्मेलन के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप ने

0: कहा कि वे ईरान के साथ बातचीत में अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहते। हालांकि उन्होंने कहा कि अमरीकी प्रतिनिधि वार्ता जारी रख सकते हैं, लेकिन इसके सफल होने को लेकर उन्होंने संदेह जताया।
1: मुझे लगता है कि अब सब खत्म हो गया है। मैं अब उनसे कोई वास्ता नहीं रखना चाहता। उनका नेतृत्व बीमार मानसिकता वाले लोग कर रहे हैं। वे क्रूर और हिंसक लोग हैं, और अगर उनके पास परमाणु हथियार होता तो वो लोग उसका इस्तेमाल कर देते।
0: और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
2: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 1677 अंक गिरकर 76,504 पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 517 अंक फिसलकर 23,882 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज एक डॉलर की तुलना में 60 पैसे कमजोर होकर 95 रुपए और 56 पैसे पर बंद हुआ।
0: खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज घोषणा की कि तेलंगाना 8वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी करेगा। श्री मांडविया ने कहा कि ये पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश भर में जमीनी स्तर पर खिलाड़ियों को मंच प्रदान करने के दृष्टिकोण से प्रेरित है। पिछले वर्ष मई में बिहार ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 7वें संस्करण की मेजबानी की थी। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में लिंडा नोस्कोवा और मार्ता कोत्सुक ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल मुकाबले में आज चेक गणराज्य की लिंडा नोस्कोवा ने एलिस मर्टेंस और यूक्रेन की मार्ता कोस्त्युको ने जैस्मीन पाओलिनी को हरा दिया। पुरुष सिंगल्स में टेलर फ्रिट्स का सामना अलेक्जेंडर ज्वेरेव से और फ्लेवियो कोबोली का मुकाबला आर्थर फेरी से जारी है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले तय हो गए हैं। पहले क्वार्टर फाइनल में शुक्रवार तड़के 1:30 बजे फ्रांस और मोरक्को आमने सामने होंगे। दूसरे क्वार्टर फाइनल में शनिवार तड़के 12:30 बजे स्पेन का सामना बेल्जियम से और तीसरे क्वार्टर फाइनल में रविवार तड़के 2:30 बजे नॉर्वे का मुकाबला होगा इंग्लैंड से। अंतिम क्वार्टर फाइनल में रविवार सुबह 6:30 बजे वर्तमान चैंपियन अर्जेंटीना का सामना स्विट्जरलैंड से होगा। भारत के वैज्ञानिकों ने पहली बार भारतीय क्षेत्र के ऊपरी आयनमंडल का सटीक मानचित्र तैयार करने की नई तकनीक विकसित की है। ये तकनीक जमीन और अंतरिक्ष से प्राप्त आंकड़ों को जोड़कर विकसित की गई है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा है कि इससे उपग्रह संचालन, संचार प्रणाली और नेविगेशन सेवाओं को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए मेलबर्न पहुंचे। भारत और रूस ने बहुपक्षीय मंचों पर आतंकवाद रोधी सहयोग को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्धता दोहराई। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने ओडिशा के चांदीपुर में लंबी दूरी के गाइडेड रॉकेट पिनाका का सफल फ्लाइट टेस्ट किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा मॉनसून में सुधार से राहत मिली है, जुलाई में बारिश और तेज होने से खरीफ की बुआई में और तेजी आएगी। केंद्र सरकार ने बाढ़ प्रभावित राज्यों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ संघर्ष विराम समाप्त होने की घोषणा की। और विंबलडन टेनिस में यूक्रेन की मार्ता कोस्त्युक और चेक गणराज्य की लिंडा नोस्कोवा महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंची। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार,
3: गुड इवनिंग। दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वल्सा विलियम्स विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi arrives in Melbourne to take part in the third India-Australia annual summit. India and Russia reaffirm commitment to strengthen counter-terrorism cooperation at multilateral fora. DRDO conducts successful flight test of Pinaka long-range guided rocket at Chandipur in Odisha. Monsoon recovery brings relief. Agriculture Minister Shivraj Singh Chauhan expresses confidence that rainfall to gain further momentum this month, leading to acceleration in Kharif sowing. Center

0: अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ जंगबंदी खत्म हो गई है और विंबलडन टेनिस में यूक्रेन की मार्ता कोस्तियुक और चेक जमहूरिया की लिंडा नोस्कोवा खवातीन सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी तीन मुल्कों के अपने दौरे के दूसरे मरहले के तहत आज शाम ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न पहुंच गए हैं। मकानात, बेघर अफराद और शहरों की ऑस्ट्रेलिया की वजीर क्लेयर ओनील ने उनका वहां पहुंचने पर पुरजोश इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि उनके इस दौरे से भारत ऑस्ट्रेलिया जामे कलीदी शराकतदारी को मजीद तकवीत मिलेगी। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि वो ऑस्ट्रेलिया के अपने हम मनसब एंथनी एल्बनीज के साथ बातचीत के मुंतजर हैं। वजीर आजम ने कहा कि उन्हें वहां आबाद भारतीय बिरादरी से बातचीत का भी मौका मिलेगा, जो भारत ऑस्ट्रेलिया शराकतदारी की अहम बुनियाद है। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
1: आज मेलबोर्न की पूरी फजा जोशो खरोश से भर गई जब ऑस्ट्रेलिया में मुकीम भारतीय बिरादरी वजीर आजम नरेंद्र मोदी के इस्तकबाल के लिए बड़ी तादाद में जमा हुई। इस पुरवकार तकरीब में एक शानदार सकाफती प्रोग्राम पेश किया गया, जिसमें मौसीकी और रक्स के जरिए भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान बढ़ती हुई दोस्ती को बड़ी खूबसूरती से उजागर किया गया। सकाफती प्रोग्राम के आगाज से कबल वजीर आजम ने भारतीय बिरादरी के अफराद से मुख्तसर मुलाकात की और उनके साथ गुफ्तगु भी की। तकरीब का आगाज एक मुनफरिद और अलामती मौसीकी से हुआ। इसके बाद मेलबोर्न में मुकीम मारूफ कथक डांसर संचिता एब्रोल ने दिलकश कथक रक्स पेश किया, जिसे हाजरीन ने खूब सराहा। तकरीब का अख्ताम ऑस्ट्रेलिया इंडिया ऑर्केस्ट्रा के 10 रुकनी ग्रुप की शानदार मौसीकी से हुआ, जिसने एआर रहमान के मारूफ नगमे माँ तुझे सलाम को शानदार अंदाज में पेश किया, जिससे वहां मौजूद तमाम लोग जज्बात से सरशार हो गए। मेलबोर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मेहताब आलम।
0: अपने दौरे के दौरान जनाब मोदी तीसरी भारत ऑस्ट्रेलिया सालाना समिट में शिरकत करेंगे। वो भारत ऑस्ट्रेलिया के सीईओस के फोरम में भी शिरकत करेंगे, जहां वो दोनों मुल्कों के सरकर्दा कारोबारियों के इज्तम से खिताब करेंगे। इससे कबल दिन में वजीर आजम मोदी ने इंडोनेशिया के सदर प्रबोवो सुबियांतो के साथ योग्यकर्ता में यूनेस्को के आलमी विरसे के मकाम प्रम्बानन मंदिर का दौरा किया। दोनों रहनुमा नवी सदी के मंदिर गए, जहां वजीर आजम मोदी ने असल शिव मंदिर में पूजा अर्चना की। मंदिर के इहाते में एक मुश्तरका प्रेस बयान में इंडोनेशिया के सदर प्रबोवो ने मंदिर इहाते के तहफ्फुज और अहिया में भारत की मदद के लिए तशक्कुर का इजहार किया। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए वजीर आजम मोदी ने अपने दौरे को इंतहाई रूहानी और यादगार तजुर्बा करार दिया।
2: योग्यकर्ता के इस भव्य मंदिर कॉम्प्लेक्स अब जब हम पुनर्निर्माण का काम करने जा रहे हैं और ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज है, दुनिया के दूर दूर क्षेत्रों में कहीं पर भी जाएं, हमें कहीं न कहीं भारत के सांस्कृतिक विरासत के दर्शन होते हैं। ये पूरे साउथ ईस्ट एशिया का दूसरा सबसे बड़ा हमारी विरासत की पहचान है।
0: भारत और रूस ने आज अक़्वाम-ए-मुत्तहिदा ब्रिक्स ईएजी और शंघाई ताउन तंजीम समेत मुख्तलिफ कसीर जहती फोरम्स पर दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए ताउन को मजीद मजबूत बनाने के अपने अज़्म का इआदा किया। वज़ारत ख़ारिजा के मुताबिक दहशतगर्दी की रोकथाम से मुतालिक भारत रूस मुश्तरका वर्किंग ग्रुप की 14वीं मीटिंग नई दिल्ली में मुनक़िद हुई। मीटिंग की मुश्तरका सदारत वज़ारत ख़ारिजा में मगरबी उमूर के सेक्रेटरी सिबी जॉर्ज और रूस के नायब वजीर खारजा दिमित्री ल्यूबिंस्की ने की। दोनों ममालिक ने हर किस्म की दहशतगर्दी और इसकी तमाम शक्लों, खासतौर पर सरहद पार दहशतगर्दी की सख्त मजम्मत की। उन्होंने दहशतगर्दों, दहशतगर्द तंजीमों, उनके दरपर्दा ग्रुपों और नेटवर्क्स के खिलाफ ठोस कार्रवाई पर जोर दिया। सरफैन ने इलाकाई और आलमी दहशतगर्दी की सूरत हाल पर अपने ख्यालात का तबादला किया और इंतहा पसंदी, दहशतगर्दी की माली मुआवनत और दहशतगर्दी के मकासद के लिए नई और उभरती हुई टेक्नोलॉजीज के गलत इस्तेमाल जैसे चैलेंजों से निपटने के लिए बाहमी तआवुन बढ़ाने पर इत्तेफाक किया। वजीर खारजा डॉ जयशंकर ने आज कुवैत के वली अहद शेख सबह अल खालिद अल हमद अस सबह से मुलाकात की। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर उन्होंने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जानिब से वली अहद को नेक तमन्नाएं पहुंचाई। डॉक्टर जयशंकर ने भारत और कुवैत के दरमियान दो तरफा तआवुन को मजीद मजबूत बनाने के लिए वली अहद के अज़्म को सराहा।

0: उन्होंने खलीजी खित्ते के ताज़ा हालात वाक़ियात से आगाह करने पर उनका शुक्रिया अदा किया। दिफाई तहकीको तरक्की के इदारे DRDO ने आज उड़ीसा के चांदीपुर में वाक़े मरबूत आजमाइशी रेंज से तवील फासले के गाइडेड रॉकेट पिनाका का कामयाब तजुर्बा किया। वजारत दिफा ने कहा कि रॉकेट का कामयाब तजुर्बा सारिफ की जानिब से मुकर्रर करदा 60 किलोमीटर की कम अज कम रेंज पर किया गया। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने इस कामयाब आजमाइश पर DRDO, भारतीय फौज और दिफाई पैदावारी सनत को मुबारकबाद दी। उन्होंने इसे घरेलू सतह पर तवील फासले तक मार करने वाले गाइडेड रॉकेटों के डिजाइन और तैयारी की सलाहियत में एक अहम संग मील करार दिया। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। ज़राअत और किसानों की बहबूद के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि हालिया दिनों में मुल्क के कई हिस्सों में अच्छी बारिश हुई है, जिसके बायस बारिश की कमी वाले अजला की तादाद 262 से कम होकर 178 रह गई है। नई दिल्ली में एलनीनो के मुमकिन असरात पर मुनक़िदा आला सतही जायजा मीटिंग की सदारत करते हुए उन्होंने कहा कि जून में 33% बारिश की कमी रिकॉर्ड की गई थी, ताहम जुलाई में मानसून की सूरत हाल बेहतर हुई है और मानसून की मजमूई बारिश में कमी घटकर 24% रह गई है।
1: जुलाई की अच्छी बारिश से बोनी की संभावनाएं बढ़ गई है, अब बोनी और तेजी से होगी। कल तक 350,85,000 हेक्टर में बोनी हुई है। मानसून में देरी के कारण तुअर, सोयाबीन और कपास पर थोड़ा प्रतिकूल बोनी पर प्रभाव पड़ा है। अब किसानों को यह सलाह दी जा रही है कि इनकी जगह मक्का, बाजरा और मूंग जैसी फसल जो कम समय में आ जाती है, उनकी बुआई को प्राथमिकता दें।
0: उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि जुलाई में मजीद बारिश होगी, जिससे खरीफ फसलों की बुआई में तेजी आएगी। वजीर मौसूफ ने बताया कि अब तक 350 लाख हेक्टेयर से ज्यादा रकबे पर खरीफ फसल की बुआई मुकम्मल हो चुकी है, जो पिछले साल की इसी मुद्दत के मुकाबले में तकरीबन 91 लाख हेक्टेयर कम है। उन्होंने मजीद कहा कि किसानों को मशवरा दिया कि वो बारिश में ताखीर के असरात कम करने के लिए कम मुद्दत में तैयार होने वाली और कम पानी वाली फसलों जैसे मकई, बाजरा और मूंग की काश्त करें। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने शदीद बारिश, सैलाब जैसी सूरत हाल और चट्टानों के टुकड़े गिरने से मुतासिरा मुख्तलिफ रियासतों के वज़राए आला से आज बातचीत की और उन्हें मरकज की जानिब से हर मुमकिन मदद का यकीन दिलाया। जनाब शाह ने महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस, गुजरात के वजीर आला भूपेंद्र पटेल और केरलम के वजीर आला VD सतीशन से बात की। इस दौरान भारतीय मौसमियात महकमे ने मुल्क के वसी और मशरकी हिस्सों में शदीद बारिश और गरज चमक के साथ छींटे पड़ने के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। भारतीय मौसमियात महकमे ने कहा है कि शिमाली बुहरे अरब, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के बकाया हिस्सों की जानिब आइंदा 2 दिन से 3 रोज के दौरान जुनूब मगरबी मानसून के मजीद आगे बढ़ने की खातिर मौसम साजगार है। IMD ने कल अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, मशरकी राजस्थान, मध्य प्रदेश और मगरबी उत्तर प्रदेश में शदीद से बहुत शदीद बारिश की पेशगोई की है। मौसमियात के महकमे ने आइंदा 2 दिन में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, मशरकी उत्तर प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में भी शदीद बारिश की पेशगोई की है। दिल्ली NCR में आज कुछ बारिश हुई, जिससे गर्मी और हब्स के बाद लोगों को राहत मिली। शहरी हवाबाजी के वजीर राम मोहन नायडू ने 19 सीटों वाले सारस MK2 के डिजाइन के मरहले को कामयाब के साथ मुकम्मल कर लिया करने पर कौमी एरोस्पेस लेबोरेटरीज को मुबारकबाद दी है। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर जनाब नायडू ने कहा कि सारस वजीर आजम नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत मिशन से मुताबकत रखते हुए अंदरूनी मुल्क डिजाइन करदा मुल्क का पहला हल्का ट्रांसपोर्ट तैयारा है। वजीर मौसूफ ने कहा कि ये घरेलू सतह पर तैयारे बनाने के इस संग मील से उड़ान नजरिए को मजीद तकवीत हासिल होगी, जिसका मकसद मेड इन इंडिया तैयारों में दूर दराज और ज्यादा ऊंचाई वाले इलाकों को मजबूत करना है। आज शाम कौमी राजधानी के रोहिणी सेक्टर 16 के इलाके में एक इमारत ढह गई। दिल्ली फायर सर्विस के मुताबिक मलबे के नीचे 4 से 5 अफराद के दबे होने का खदशा है और बचाव कार्रवाइयां जारी हैं। NDRF की 2 टीमें भी बचाव और राहत कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। दिल्ली फायर सर्विस ने कहा है कि आज सुपहर 4:20 पर उन्हें इस हादसे की एक कॉल मौसूल हुई, जिसके बाद जाय हादसे पर 6 गाड़ियां रवाना की गईं। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक हादसे के वक्त इमारत के कुछ फ्लैट्स में

तामीर नौ का काम जारी था। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के बैंक खातों में जमा 440 करोड़ रुपए मुंजमित कर दिए हैं। ये मामला गैर ईमानदाराना माली लेन देन और रुकूमात के मुश्तबा इस्तेमाल से मुतालिक है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने काले धन को जायज बनाने से मुतालिक कानून 2002 के जाब्तों के तहत कल कोलकाता में 5 मकामात पर तलाशी की कार्रवाई अंजाम दी थी। ये तलाशी की कार्रवाई शहरी हवाबाजी के शोबे में काम करने वाली एक निजी कंपनी से वाबस्ता मकामात पर अंजाम दी गई थी। तहकीकात में इस बात का इंकशाफ हुआ कि अप्रैल 2023 से जून 2026 के दरमियान AITC के बैंक खातों से निजी कंपनी और इससे वाबस्ता इदारे को तकरीबन 160 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए थे। घरेलू हिस्से बाजार में आज जबरदस्त फरोख्त हुई और सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में 2% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई। खाम तेल की कीमतों में इजाफा, कमजोर आलमी रुझानात और एक बार फिर पैदा होने वाली जोग्राफियाई और सियासी कशीदगी का बाजार पर काफी असर हुआ। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आज ऐलान किया कि ईरान के साथ जंगबंदी खत्म हो चुकी है। अनकरा में मुनाकिदा नेटो समिट के मौके पर सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि वो ईरान के साथ मुजाकिरात में मजीद वक्त जाया नहीं करना चाहते। ताहम उन्होंने ये भी कहा कि अमरीकी नुमाइंदे मुजाकिरात जारी रख सकते हैं, लेकिन उन्हें इन मुजाकिरात के कामयाब होने के इम्कानात पर शुबा है। ये बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब अमरीका ने ईरान के खिलाफ एक नई फौजी कार्रवाई करते हुए 80 से ज्यादा ठिकानों को निशाना बनाया। अमरीका का कहना है कि ये हमले आबनाए हुर्मुज में तजारती जहाजों पर ईरान के हमलों के जवाब में किए गए। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक इन हमलों में जदीद और इंतहाई दुरुस्त निशाना लगाने वाले हथियार इस्तेमाल किए गए, जिनका मकसद बैन अलाक्वामी बहरी तिजारत को खतरे में डालने की ईरान की सलाहियत को कमजोर करना था। ईरानी फौज के मुताबिक हॉर्मुज़गान और महशार सूबों में साहिली फौजी अड्डों और शहरी तंसीबात को निशाना बनाया गया। यूक्रेन के मुख्तलिफ इलाकों में रूस के रात भर जारी हमलों में 3 अफराद हलाक हो गए, जिनमें एक शख्स की मौत राजधानी कीव में हुई। खारकीव में 2 अफराद हलाक जबकि 20 दीगर जख्मी हुए। विंबलडन टेनिस में यूक्रेन की मार्ता कोस्तयुक और चेक जमहूरिया की लिंडा नोस्कोवा खवातीन के सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। 12वीं सीट की खिलाड़ी मार्ता कोस्तयुक ने आज सेंटर कोर्ट में इटली की जैस्मिन पाउलिनी को 6-3, 6-2 से शिकस्त दी और पहली मर्तबा विंबलडन के सेमीफाइनल में पहुंची। इसी तरह 9वीं सीट की खिलाड़ी लिंडा नोस्कोवा ने बेल्जियम की खिलाड़ी एलिस मार्टिन्स को 6-3, 7-5 से हराया और पहली मर्तबा विंबलडन के सेमीफाइनल में पहुंची। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी 3री भारत ऑस्ट्रेलिया सालाना समिट में शिरकत के लिए मेलबोर्न पहुंच गए हैं। भारत और रूस ने कसीर रुखी प्लेटफॉर्म पर इनजाद दहशतगर्दी के सिलसिले में इश्तराक को मुस्तहकम करने के अपने अज़्म का इरादा किया। वो दिफाई तहकीक तरक्की की तंजीम DRDO ने उड़ीसा के चांदीपुर में तवील दूरी के गाइडेड रॉकेट पिनाका की कामयाब आजमाइशी परवाज की। मानसून में बेहतरी से राहत मिली है। ज़राअत के वज़ीर शिवराज सिंह चौहान ने इत्मीनान जाहिर किया है कि इस महीने बारिश में मजीद बेहतरी आएगी, जिससे खरीफ की बुआई में भी तेजी आएगी। मरकज ने सैलाब से मुतासिरा रियासतों को हर मुमकिन इमदाद का यकीन दिलाया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ जंगबंदी खत्म हो गई है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

0: चर्चा का विषय है।
1: ये आकाशवाणी है, चर्चा का विषय है। कार्यक्रम में प्रस्तुत है, अल नीनो के प्रभाव से निपटने के लिए कृषि और जलवायु को लेकर सुरक्षात्मक उपायों पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्व अपर महानिदेशक आनंद शर्मा और कृषि विशेषज्ञ हरवीर सिंह। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
2: जब आसमान से आग बरसती है और नदियां रास्ता भूल जाती हैं, जब धरती की छाती प्यास से चटकने लगती है और समंदर की लहरों का मिजाज पूरी दुनिया का भूगोल बदलने लगता है, तब जन्म लेता है एक नाम, एल नीनो। ये सिर्फ मौसम का एक चक्र नहीं है, ये इम्तिहान है हमारी धरती का, हमारी फसलों का।

0: और हमारी थाली का। आज जब ग्लोबल वार्मिंग के साए में खेती का भविष्य धुंधला रहा है, तब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या हमारे अन्नदाता किसान इस परिवर्तन के लिए तैयार हैं? क्या हमारी कृषि प्रणाली में वो लचीलापन, वो क्लाइमेट रेजिलियंस है जो इस महासंकट का सामना कर सके? इन्हीं सवालों पर आधारित है आज आकाशवाणी का विशेष कार्यक्रम चर्चा का विषय है। और हमारे साथ स्टूडियो में हैं दो बड़े विशेषज्ञ, मौसम के हर परिवर्तन पर पैनी नजर रखने वाले मौसम विज्ञान विभाग के वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक आनंद शर्मा और देश की मिट्टी और किसानों की नब्ज पहचानने वाले जाने माने कृषि विशेषज्ञ हरवीर सिंह जी। आप दोनों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
1: नमस्कार,
2: धन्यवाद।
0: आनंद जी, सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं और हमारे श्रोताओं और किसानों के लिए आसान भाषा में अगर आप समझाएं कि एलनीनो वास्तव में होता क्या है और प्रशांत महासागर में होने वाली ये हलचल भारत के मॉनसून को किस तरह प्रभावित करती है।
1: एलनीनो का बेसिकली क्या है कि जो आपका पेरू है, पेरू के जो तट है वहां पर सामान्यतः जो सी का जो समुद्र का तापमान होता है सरफेस का, वो सामान्यतः ठंडा रहता है। बट कई बार ऐसा होता है कि जो आपकी ट्रेड विंड्स होती हैं, जो कि यहाँ के जो सरफेस वाटर को पेरू के तट से दूर धकेलती हैं और उसके चलते जो नीचे से पानी आता है समुद्र का, वो इसको ठंडा बनाए रखता है सतह को, और वो नॉर्मल कंडीशंस कहलाती हैं। जब ठंडा है सी सरफेस टेम्परेचर, लानीना कंडीशंस। बट कई बार ऐसा देखा गया है कि ये जो ट्रेड विंड्स हैं ये स्लैकन कर जाती हैं, वीक पड़ जाती हैं। जब ये वीक हो जाती हैं तो क्या होता है, जो पानी था वहां जिसका सी सरफेस टेम्परेचर था थोड़ा ज्यादा था, वो हटा नहीं पाती और वो वहीं खट्टा रह जाता है। तो सामान्यतः जहां समुद्र का सतह का तापमान कम होना चाहिए था वो बढ़ जाता है। तो इसको कहते हैं एबनॉर्मल वार्मिंग ऑफ पैसिफिक सी ऑफ द कोस्ट ऑफ पेरू, यानी सामान्य से ज्यादा हो जाना सी सरफेस का टेम्परेचर का। और जब ये ऐसा होता है तो ये काफी सारे बदलाव लेके आता है कि जहां कहीं बारिश होती है पहले वहां सूखा पड़ने लगता है, और जहां सूखा पड़ता है वहां बारिश होने लग जाती है। तो पूरे पैटर्न को, और दूसरी बात है ये एक तरह का टेली कनेक्शन है। टेली कनेक्शन का मतलब है कि किसी तरह की समुद्र में या वायुमंडल में होने वाली हलचल एक जगह पे बहुत दूर, हजार किलोमीटर दूर के मौसम को और वहां की प्रेशर को, टेम्परेचर को इन्फ्लुएंस करती है। तो एक तरह का ये टेली कनेक्शन है और 4 से 5 साल के बीच में आता है, पहले भी आ चुके हैं। और जब जब ये आता है तो जैसे जैसे अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में तो वाइल्ड फायर्स हो जाती हैं, हमारे यहाँ पे भी कभी कभार ये मौसम को, मतलब ये मॉनसून को प्रभावित कर देता है। क्योंकि ऐसे साल भी हुए हैं कि जब एलनीनो था मॉनसून खराब हुआ, और ऐसे साल भी हैं कि एलनीनो था और मॉनसून फिर भी ठीक था। और इस बार चर्चा हो रही है कि भाई ये जो है सुपर एलनीनो होने वाला है, हालांकि अभी जो है इतने ज्यादा तापमान नहीं बढ़े, 1 डिग्री के आसपास ही हैं, तो ये ठीक है। मगर बोला जा रहा है, ऐसा प्रिडिक्शन किया जा रहा है कि शायद ये 3 डिग्री तक पार कर जाए, तो ऐसा होता है तो ये सुपर एलनीनो होगा, और जब ऐसा हुआ तो शायद ये उसके नेगेटिव इंपैक्ट मानसून पे ज्यादा होंगे। और इस सब को मौसम विभाग ने, एक बड़ी अच्छी बात है कि क्योंकि आजकल ये सारी प्रिडिक्शंस ग्लोबल स्तर पे होती हैं, WMO इसको वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन कोऑर्डिनेट करता है, तो ये सब सिग्नल पहले से दे दिए गए थे और मौसम विभाग ने भी इसको फैक्टर इन करा। और उसी को देखते हुए उनकी जो लॉन्ग रेंज फोरकास्ट है, उन्होंने इस बार कहा कि जो हमारा मॉनसून सीजन में हमें करीब करीब 115 सेंटीमीटर जो वर्षा मिलती है, लॉन्ग टर्म नॉर्मल जिसे कहते हैं, वो उसका सिर्फ 90% हमें मिलने वाला है, यानी कि 10% की कोई कमी जो है मौसम विभाग ने इसको फैक्टर इन कर लिया। इसको देखते हुए ने देखा भी कि थोड़ा सा, हालांकि केरल में 1 तारीख को जून को आता है मानसून, ये 4 तारीख को आया। हाँ, मुंबई और महाराष्ट्र में और जो आसपास के इलाके हैं वहां इसकी मानसून ऑनसेट की थोड़ी देरी जरूर हुई, और शायद उसने कुछ एरियाज में सोइंग को प्रभावित किया होगा।
0: हरवीर जी, जब मौसम वैज्ञानिक एलनीनो की चेतावनी देते हैं तो एक आम किसान के खेत में इसका सीधा असर किस रूप में देखने को मिलता है? और आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि एलनीनो की चेतावनी के बाद वो कौन कौन सी फसलें होती हैं जिन पर सबसे ज्यादा खतरा मंडराने लगता है?
2: असल में देखिए, जो खरीफ सीजन है वो हमारे एग्रीकल्चर का एक तो पहला सीजन होता है, जब कृषि का साल शुरुआत हम मानते हैं, खरीफ देन रबी। खरीफ का मानसून पर बहुत बड़ी निर्भरता है। हमारे देश में बहुत बड़ा क्षेत्रफल ऐसा है जो एक फसलीय खेती जहां होती है, और वो इसलिए जो वर्षा सिंचित जो क्षेत्र हैं वो भी खरीफ में कवर होते हैं, वो रबी में वहां बहुत जगह ऐसी होती है खेती नहीं होती है। और अब भी हमारा ये देखिए कि करीब 50% के आसपास ही हमारा जो हम कहते हैं कि अश्योर इरिगेशन कवरेज जो है, जहां पर निश्चित रूप से सिंचाई की सुविधाएं जहां पर हैं अस्थायी रूप से, कि बारिश हो या ना हो पानी का इंतजाम फसल के लिए हो जाएगा। ऐसे में करीब करीब 50% जो हिस्सा है वो सबसे ज्यादा वल्नरेबल इसमें है। और ये भी है कि जब इसके बारे में चर्चाएं इस बार

शुरू हो गई, पहले से तैयारियां, मीटिंग्स हो रही हैं मिनिस्ट्री में, एग्रीकल्चर में, एनडीएमए की मीटिंग हो रही है, होम मिनिस्ट्री में भी हो रही है। तो वो चिन्हित किए गए कौन से ऐसे जिले हैं जहां डिस्ट्रेस बढ़ेगा। तो जाहिर सी बात है कि वो जो किसान इंतजार कर रहे थे कि हमें फसल बोनी है जब बारिश होगी, तो उनको

0: अब उसमें जब ये सब हिस्से आपके जो वेस्टर्न पार्ट है हमारा और इवन कुछ सेंट्रल है, वहां पर ये जो बारिश पर आधारित जो खेती है उसका काफी बड़ा हिस्सा है। तो अब नतीजा ये हुआ कि वहां पर जो किसान समझता था कि मुझे बुआई करनी है तो वो डिले हो। अभी जो लेटेस्ट डाटा अभी 5 तारीख तक के आए हैं उसमें खरीफ में जो एवरेज हमारा जो सोन एरिया होता है वो करीब 21% से पिछड़ा हुआ है, और इसमें जो मार पड़ी है उन फसलों पर पड़ी है जो थोड़ा सा जिनको मार्जिनल क्रॉप बोलते हैं, कि जो एश्योर्ड इरिगेशन में फार्मर उनको नहीं बोता और ये लगता है कि बारिश होगी तो बो देंगे, जिसमें दालें हैं, तिलहन बड़े पैमाने पर है। तो ये जो नुकसान है हमें ये बड़ा है, इसकी वजह से मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अलग तरीके से देखेगी, एग्रीकल्चर अलग तरीके से देखेगा, रिजर्व बैंक अलग तरीके से देखेगा। एक तो पहला तो स्टेप यही है कि एडवाइजरीज जो जारी हैं कि भाई किस तरीके से कौन सा फसल आपको अभी उगानी चाहिए, क्या शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप पे जाना चाहिए, क्या आपको जो कम अवधि की जो फसलें हैं थोड़ा देर से आप बोएं, जून में नहीं बो पाए, जुलाई 15 तक नहीं बो पाए, लेकिन फिर भी आप इस वैरायटी का इस्तेमाल करेंगे तो आप अच्छी उपज ले सकते हैं, या फिर आप फसल चक्र बदल दीजिए, ये फसल इसमें कम बारिश में हो सकती है। तो ये इस तरह की एडवाइजरीज पहले स्तर पर किसानों तक पहुंचती है, वो जो समाचार माध्यम है या सरकारी जो माध्यम है उनके जरिए जाता है, आपके जो कृषि विज्ञान केंद्र है उनके जरिए जाता है, तो वो सब एडवाइजरीज उस तरीके से, अब तो तमाम सारा प्राइवेट सेक्टर भी एक्टिव है एग्रीकल्चर में, उनके जरिए भी जाता है। तो ये तो एक तरीके से किसान को सूचना पहुंचाने का काम है कि आप अपना फैसला आप ले सकते हैं, इस परिस्थिति में आपको के लिए क्या उचित फैसला है। तो ये किसान के स्तर पर है और ये सरकार दोनों के बीच में ये एक तरीके का इंफॉर्मेशन का एक जो फ्लो है उसका बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि उस पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। मतलब बारिश नहीं होगी, कम होगी तो उसको तो नहीं कर सकते। हाँ, उसको मिटिगेट करने के लिए और कई सारे स्टेप्स जो हैं जो सरकार लेती है या जो कंसर्न मिनिस्ट्रीज लेती हैं, वो फिर अगले कदम इसके बाद नेक्स्ट जो अगली स्टेज में शुरू होते हैं।
1: आनंद जी, आपसे ये भी समझना चाहेंगे और देश के बहुत सारे श्रोता और किसान भी समझना चाहेंगे कि क्या क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग, जो दो फैक्टर पिछले 20-25 वर्षों में बहुत अहम भूमिका निभा रहे हैं, क्या उनका भी एल नीनो की घटनाओं से सीधा संबंध है? जो डेटा है वो इस बारे में क्या कहानी कहता है?
2: ग्लोबल वार्मिंग है, क्लाइमेट चेंज भी है, और एक चीज पे हमें और ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे यहाँ जो क्लाइमेट वेरिएबिलिटी है ना वो इतनी ज्यादा है, और ये जो क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट है ये थोड़ा एडेड प्रेशर है। मैं ये कहूंगा कि सारा नहीं, जो लोग मानते हैं सारा क्लाइमेट चेंज नहीं, 95% तो आपकी क्लाइमेट वेरिबिलिटी, और क्लाइमेट वेरिबिलिटी इतनी है, मैंने जैसे बताया कि 2002 में कितनी जबरदस्त पूरा जून में बारिश ही नहीं मिली आपको। सो नेचुरल वेरिबिलिटी हमारी बहुत ज्यादा है, और ऊपर से ये अब एक्स्ट्रा प्रेशर हमारे ऊपर आ गया है। और लोगों का मानना है कि भाई जिस तरह से कि मतलब एटमोसफेयर की वार्मिंग हो रही है, हीट वेव्स हो रही है, वैसे ओशन भी वार्म कर रहे हैं, सो नेचुरली वहां पे भी वार्मिंग होगी तो शायद और एल नीनो स्ट्रांग हो जाए, वो उनका मानना है। बट मेरा फिर भी मानना है कि हमने इससे भी बहुत सिचुएशन को झेला है, तो हमारी यदि तैयारी अच्छी होगी, हमारी वार्निंग अच्छी होगी, जिसे हम कहते हैं ना फोर वॉर्न्ड इज फोर आर्म्ड, आपने वार्निंग पहले से दे दी और आपने तैयारी करी है, कंटीजेंसी प्लान की आप महावीर जी बात कर रहे हैं तो बिल्कुल सही बात है। हमारी यदि 200 डिस्ट्रिक्ट जो है हमने चिन्हित कर दिए हैं जो कि एग्रीकल्चरली स्ट्रेस प्रोन है,
1: प्रभावित होंगे,
2: वो पहले से चिन्हित है। ICAR के बाद निकरा प्रोजेक्ट है, न्यू इनोवेशन इन क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर, वो हमारे पहले से तैयारी है। 2500 के करीब हम लोगों के पास कहते हैं ड्राउट स्ट्रेस रिलेटेड जो है, फ्लड रिलेटेड जो है वेराइटीज हैं जो फ्लड में भी काम कर जाएंगी, ड्राउट हुआ तो ड्राउट में काम कर जाएंगी, और एल नीनो में जरूरी नहीं कि ड्राउट ही होगा, एक्सट्रीम वेदर भी हो जाता है और फ्लडिंग भी हो जाएगी, तो उसकी सब वेराइटीज तैयार हैं। आपने बड़े अच्छा बताया महावीर जी ने, यदि थोड़ा डिले हो जाएगा, पर इतना ज्यादा भी डिले नहीं हुआ, और डिले हो गया जहां तो आप 4 महीने की जगह छोटी क्रॉप लगाइए, शॉर्ट ड्यूरेशन की क्रॉप चले जाइए, और क्रॉप्स भी ऐसी हों जो कि मिलेट टाइप की होती हैं, जिनको कि मतलब कि आपको कहने के बाद पानी कम चाहिए, यदि 3 हफ्ते ड्राई स्पेल रही तो वो सर्वाइव कर जाती है। और मजे की बात यह है कि आज की डेट में क्रॉप वेदर वॉच ग्रुप बना हुआ है कृषि मंत्रालय में, और मैं उसका पार्ट था, IMD को काफी सालों मैंने रिप्रेजेंट किया, तो वहां हम लोग ये डिस्कशन होता है कि भाई पिछले हफ्ते ऐसा मौसम रहा, अगले हफ्ते ऐसा होने वाला है, लॉन्ग रेंज फोरकास्ट ये है, तो अब सारे एक्सपर्ट बताएंगे फर्टिलाइजर अवेलेबल है, शॉर्ट ड्यूरेशन यदि बोना है तो क्या उसके बीज भी उपलब्ध है कि नहीं है, तो ये सब तैयारी रहती है, फर्टिलाइजर पेस्टिस सब कुछ सबकी तैयारी, पानी है रिजर्वायर में कितना है। एक समय आ गया था कि मुंबई में पीने का पानी की किल्लत होने वाली थी, मगर वो और एक डेफिसिट 20-21% पहुंच गया था मानसून का, वो शायद अब 10 के आसपास आ गया है, तो वो भी काफी कवरेज तो हुई है। तो मगर मेरा कहने मतलब है कि तैयारी सरकार की अच्छी है, आपके पास हर तरह की वैरायटी है, और साथ साथ जो मौसम पे आधारित खेती करनी है, जो हमारे क्रॉपिंग पैटर्न हो वो हमेशा ऐसे होने चाहिए कि जहां का एग्रो क्लाइमेट है अकॉर्डिंग नहीं है, ऐसा ना हो जैसे कि शुगर केन महाराष्ट्र लगा रहा है सेमी एरिड।

0: एरिया है।
1: जी
0: पैडी लगा रहा है कौन? पंजाब। सेमी एरिड एरिया, ये क्रॉप ह्यूमिड एरिया की क्रॉप है, क्योंकि वहां पानी फ्री मिल रहा है उनको, बिजली फ्री है, तो वो इसलिए वो लगा रहे हैं और उसको प्राइस अच्छा मिलता है। मगर ऐसी जगहों पे लगाने हैं मिलेट्स, एक चीज। और दूसरी बात जो मौसम विभाग समय समय पे बताता है आपको, गुड वेदर प्रैक्टिसेस एंड बैड वेदर प्रैक्टिसेस। यदि आपका पानी बरस रहा है तो भैया इस समय हार्वेस्टिंग कर लो ना, बरसात से पहले से आपके सारे तालाब वालाब साफ करके उसकी कैपेसिटी बढ़ानी है हमको
1: जी।
0: तो वो करके तैयारी रखें अपनी। अच्छा, फिर उसके साथ ये भी करें, बैड वेदर है जब मतलब कि भाई अलिनो है इस बार, मॉनसून थोड़ा खराब होने का चांसेस है, तो हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए?
1: बिल्कुल,
0: तो ये गुड वेदर कोड बैड वेदर कोड बिल्कुल बनी पड़ी है। तो उसके लिए कृषि मंत्रालय, मौसम विभाग, एनडीए में सारे जो हैं बिल्कुल आपस में उसमें रहते हैं, और समय समय पर क्रॉप वेदर वॉच ग्रुप मीटिंग्स होके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से और सबको ये जानकारी दी जा रही है इस समय क्या करना है आपको। और सबसे बड़ी उसमें बात मैं कहूंगा कि सरकारों को थोड़ा सा ये मेरे को और स्ट्रेस ये देना पड़ेगा, हमें इरीगेशन जो है ना, कैनाल इरीगेशन और दूसरे इरीगेशन को और बढ़ाना है। देखिए, जो स्टेट्स पंजाब हरियाणा और वेस्टर्न यूपी जिनमें इरीगेशन फैसिलिटी है या फिर ग्राउंड वाटर उनको मिल जाता है, वहां कभी फसल नहीं खराब होती। आप देख लीजिए वहां पे यदि बारिश कम हो जाए ना, बल्कि फसल और अच्छी होती है, क्योंकि धूप अच्छी मिल रही है, बीमारी नहीं होती वहां पर, फंगस नहीं आती है, और पानी जब चाहिए वो निकाल के सोइंग कर देते हैं। और ये भी ध्यान रख लीजिए, क्रॉप को जैसे मान ली 4 महीने की है तो 4 महीने पानी नहीं चाहिए
1: जी।
0: सिर्फ 4 और 5 क्रिटिकल स्टेजेस होती हैं, उन 5 क्रिटिकल स्टेजेस पे ही पानी चाहिए। और कई बार ऐसा भी देखा गया है, वर्षा तो सामान्य है, सामान्य से ज्यादा है, मगर वो क्या हुआ कि महीने के शुरू में मिल गई, एंड में मिल गई, और बीच में 3 हफ्ते नहीं मिली,
1: जब जरूरत थी तो नहीं मिली,
0: नहीं मिली। तो इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अब मौसम विभाग आज की इसमें आपको फोरकास्ट तो दे रहा है कि भाई मानसून की वर्षा कम होगी, मगर मेरा ये मानना है ऐसा भी तो हो सकता है कि 90% के 85 भी हो गई, और 85 भी इतनी है कि आपकी जो फसलें ज्यादातर जो धान और शुगरकेन को छोड़ दीजिए, बाकी को सिर्फ 500 मिलीमीटर वर्षा चाहिए, और यदि आपके समय समय पर मिल गई ये वर्षा तो आपकी फसल निकल जाएगी। मगर उसके साथ साथ किसानों को क्या करना है, किसान क्या कर रहा है, उसके पास एक लाइफ सेविंग इरीगेशन भी नहीं है, तो वो तो जुआ खेल रहा है। एटलीस्ट 1 या 2 लाइफ सेविंग इरीगेशन तो रखे, जैसे 3 हफ्ते का पीरियड आया नहीं मिली वर्षा तो 1 लाइफ सेविंग इरीगेशन यूज कर लिया, थोड़ी देर बाद उसको जरूर वर्षा मिलेगी। कभी ऐसा नहीं होता कि आपको 5 हफ्ते वर्षा मिलेगी, नहीं ऐसा नहीं होता कभी भी। तो ये तैयारी हमारी होगी तो हम किसी भी सिचुएशन को झेल सकते हैं। इससे भी वर्स्ट सिचुएशन हमने झेल ली है और इसको भी हम अच्छे से झेलेंगे।
1: हरवीर जी, जलवायु अनुकूलन क्षमता यानी क्लाइमेट रेजिलियंस की बात करते हैं, और आज जो हमारा चर्चा का विषय का टॉपिक है वो भी इसी पर आधारित है। सबसे पहले तो आपसे ये समझना चाहेंगे ये होता क्या है, और व्यवहारिक रूप से किसान अपने खेत को जलवायु अनुकूल कैसे बना सकता है?
2: जो वेदर का जो एक पैटर्न है और क्लाइमेट, वो उसमें बड़े तेजी से बदलाव आ रहे हैं। एक तो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स बहुत बढ़ गए हैं, एक्सट्रीम हीट, सडनली वेरी हैवी रेनफॉल और ड्राई स्पेल, तो ये जो इंसिडेंट्स हैं ये सीधा क्लाइमेट चेंज का इंडिकेशन है, और उसी से ये होता है जब अनयूजुअल इस तरह की घटनाएं होती हैं। अब इसमें एक तो पक्ष ये है कि जो हमारे साइंटिस्ट हैं वो काम कर रहे हैं कि हम क्लाइमेट रिजिलिएंट क्रॉप, यानी कि ऐसी प्रजातियां जिसमें ऐसा लचीलापन है सर्वाइव करने के लिए कि अगर दोनों चीजों में, फ्लड में भी सर्वाइव कर जाए उस तरह की भी किस्में, और अगर उसको स्ट्रेस आता है उसमें भी वो सर्वाइव कर जाए कम पानी में, कम न्यूट्रिशन में। ये इस तरह की प्रजातियां वैसे तो बहुत बड़े पैमाने पर ICAR और हमारे जो एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट्स हैं उन्होंने डेवलप की हैं, बट इसमें अब ये देखना पड़ेगा कि वो किसानों की पहुंच में कितना है। आप कहें कि हमने 2200 वैरायटी रिलीज कर दी, बट अगर किसान को यही नहीं पता कि इनमें से कौन सी वैरायटी ऐसी है जो आज की परिस्थिति में मेरे लिए उपयोगी है, और उससे भी आगे क्या उसका सीड उसे अवेलेबल है, वो कहाँ से अवेलेबल है, वो क्या किसी पब्लिक सिस्टम का जो सीड डिस्ट्रीब्यूशन का जो सिस्टम है वो नेशनल सीड कॉरपोरेशन हो या कुछ कोऑपरेटिव के संस्थान है वो हो, या फिर प्राइवेट जो कंपनीज है उनके जरिए या उस तरीके से उपलब्ध है क्या, और उसका एग्जैक्टली देखिए होता क्या है कि अभी भी ये टेंडेंसी है, और इसमें क्योंकि जब आप इनकम पैरिटी की बात करते हैं क्रॉप की, अल्टीमेटली वट इज एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर इज ऑल्सो बिजनेस, किसान के लिए वो एक व्यवसाय है अपने सर्वाइवल का, अपने वेलबींग का। शर्मा जी कह रहे हैं कि पंजाब में जो है आपको धान बहुत ज्यादा नहीं उगाना चाहिए, बासमती उगाना चाहिए, गैर बासमती में हाई वैल्यू क्रॉप है, गैर बासमती आप ईस्टर्न इंडिया के लिए छोड़ दीजिए, वहां बहुत पानी है। लेकिन अब क्या है कि अगर वो वहां पर कॉटन ग्रो करता है कॉटन में कम पानी चाहिए, लेकिन क्या है कि पिछले 10 साल 15 साल से हम लोग देख रहे हैं कि कॉटन की क्रॉप बहुत वल्नरेबल हो गई है पेस्ट एंड डिजीज के लिए। हम नई किस्में नहीं ला पा रहे हैं जो किसान को एश्योर करें कि इस बार इसको लगाइए, पानी भी बचेगा, आपकी आमदनी भी ज्यादा होगी। तो जब तक आप उसको एक कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं देंगे फार्मर को, और उसका पहला प्रायोरिटी

0: ये है मेरी आमदनी कैसे हो। जैसे मिलेट्स की बात कही है, अगर आप मिलेट ग्रो करेंगे और उसके लिए मार्केट नहीं होगा, उसके लिए प्रोक्यूरमेंट का सिस्टम नहीं होगा, हमारे जो कंज्यूम करने वाले लोग हैं बड़े पैमाने पर उसको कंज्यूम नहीं करेंगे, तो फिर वो मिलेट के लिए उसको दाम कैसे मिलेगा। ये मल्टीपल चीज, जैसे मैंने कहा दालों का प्रॉब्लम है बट फिर भी नहीं ग्रो कर पा रहे फार्मर्स, तो यहाँ पर बहुत बड़ा रोल टेक्नोलॉजी का आता है। और बहुत सारी ऐसी क्रॉप हमारी है जहां पर अभी तक हमें टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू नहीं मिल पा रहा है, डिस्पाइट वर्ल्ड्स मोस्ट वन ऑफ द बिगेस्ट रिसर्च सिस्टम इन एग्रीकल्चर। तो अब उसमें हमारे साइंटिस्ट की भी जिम्मेदारी बनती है। देखिए, किसान साइंटिस्ट नहीं हो सकता। दूसरे, हमारा जो एक्सटेंशन सिस्टम है, एक्सटेंशन का जो बड़ा रोल है वो बहुत बड़ा रोल है। एक्सटेंशन सिस्टम को लगातार रिफॉर्म करने की बात हो रही है। इस बजट में भी विस्तार की बात आई है, AI की बात हम लोग कर रहे हैं कि कैसे किसानों को बेहतर, ये सारा एक्सटेंशन वर्क है, उसको कैसे एक बेहतर जानकारी उपलब्ध हो। और ये राज्यों का विषय ज्यादा है एग्रीकल्चर, तो जो राज्य सरकारें हैं उनकी भूमिका इसमें बहुत ज्यादा हो जाती है। और वहां पर जो डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर है या जो बाकी जो लोग हैं जो एक्सटेंशन में काम करते हैं, उनको मेरे ख्याल से ज्यादा सशक्त करने की और उनका नंबर बढ़ाने की जरूरत है। तो ये तैयारियां तभी किसान समझ पाएगा। दूसरे क्या है कि जैसे हमारा रेनफेड एरिया अथॉरिटी है वो वाटरशेड सिस्टम चलाता है और उसके लिए एक अच्छा खासा बजट है। हमारा जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है उसमें वाटरशेड के लिए, तो ये उन इलाकों के लिए है जो ये ड्राउट प्रोन इलाके हैं। जैसे आपने कहा कि अगर बारिश नहीं हुई और एक सिंचाई भी उस वक्त उसको मिल गई तो क्रॉप सर्वाइव कर जाएगी, तो वहां पर जो वाटर बॉडीज हैं या पॉन्ड्स हैं या लेक्स हैं उनमें चेक डैम बना के और पानी को रोका जाता है और फिर वो इक्विटेबली जो फार्मर्स है वहां के, बहुत जगह तो क्या है कि फार्मर्स के अपने कलेक्टिव्स और यूनियंस बनी हुई है, ऑर्गेनाइजेशन बने हुए हैं, वो आपस में तय कर लेते हैं प्रायोरिटी के आधार पर कब हमें इसका इस्तेमाल करना है। तो जो इस तरीके जो स्टेप्स हैं वो जिस तरह की परिस्थिति ड्राउट के टाइम पे आती है उसमें बहुत कारगर होते हैं, क्योंकि आपकी फसल को एक पानी चाहिए और आपके पास ऐसा ट्यूबवेल नहीं है, बोरवेल नहीं है कि आप इमीडिएटली सिंचाई कर सके। आप छोटे किसान हैं, हमारे 89% जो फार्मर हैं वो मार्जिनल स्मॉल फार्मर्स हैं, उनका जो इन्वेस्टमेंट की जो कैपेसिटी है अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में वो बहुत सीमित है, तो ऐसे में पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर उनके लिए काम करता है। हाँ, ये है कि पिछले कुछ वर्षों में कई चीजें हुई हैं, जैसे कि सोलर पंप का हुआ है, फिर हमने माइक्रो इरिगेशन पे फोकस किया है, माइनर इरिगेशन पे फोकस किया, वो सब इस तरीके के इलाकों के लिए है। और आप जो है कि कम पानी में टेक्नोलॉजी का जब इस्तेमाल करते हैं, जो ड्रिप है या स्प्रिंकलर इरिगेशन है, राजस्थान में बड़े पैमाने पर स्प्रिंकलर का इस्तेमाल होता है, फ्लड इरिगेशन नहीं होता हरियाणा पंजाब वेस्टर्न यूपी की तरह, क्योंकि उनको पता है कि पानी की एक एक बूंद की वैल्यू क्या है। तो ये जो चीजें हैं ये सारा सिस्टम आपको इस तरह की परिस्थिति से लड़ने में मदद करता है। और इसमें यह भी बात है कि जैसे मैंने कहा कि किसानों को सही जानकारी, प्रशिक्षण और जो अवेलेबिलिटी है वो न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी हो, फर्टिलाइजर की जब हम बात करते हैं, या बीमारी आ जाए तो जो एग्रोकेमिकल्स हैं उनकी हम बात करते हैं, और पानी। लेकिन पानी सबसे किसी भी फसल को आगे तक ले जाने के लिए, उसको तैयारी और उसके उत्पादन के लिए वाटर इज द फर्स्ट रिसोर्स और फॉरमोस्ट, सबसे महत्वपूर्ण रिसोर्स है वो पानी है।
1: आनंद जी, आपसे ये भी समझना चाहेंगे, अगर हम आकाशवाणी की बात करें तो आकाशवाणी की लोकप्रियता इसलिए भी है क्योंकि जहां सुविधाएं नहीं है वहां लोग आकाशवाणी को सुनते हैं। मेरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि कुछ किसान ऐसे हैं जिनके पास स्मार्टफोन है, जो AI के थ्रू ऐप को भी समझते हैं, मौसम वैज्ञानिक जो सूचनाएं देते हैं वो भी उन तक पहुंच रही है। जैसा कि हरवीर जी ने कहा कि 89% के आसपास छोटे किसान हैं और उसमें एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो अब भी तकनीक से दूर है, वहां तक मौसम विभाग मौसम की चेतावनी जानकारी पहुंचाने के लिए क्या कुछ नए कार्यक्रम शुरू कर रहा है या किया है, उसके बारे में थोड़े हमारे श्रोताओं को जानकारी दें।
2: बिल्कुल, इसमें हमारे मौसम विभाग ने एक ऐप बनाया है मेघदूत। उस मेघदूत में जो है मौसम की पूर्वानुमान होता है और मौसम पे आधारित कृषि सलाह होती है। क्योंकि देखिए, दो तरह की सलाह होती है, एक होता है पैकेज एंड प्रैक्टिस ऑफ खरीफ क्रॉप, रवि क्रॉप, कि इतनी खाद लगाना है, इतना इरिगेशन लगाना, वो एक नॉर्मल एडवाइजरी है। पर हम जो देते हैं एडवाइजरी, वो है वेदर बेस्ड एडवाइजरी, मौसम पे आधारित, यानी कि बारिश आने वाली है तो भैया इरिगेशन पोस्टपोन कर दीजिए, आपका पानी बच जाएगा, बिजली बच गई। मान लीजिए आपकी फसल में बीमारी लगी है, आपको कहते हैं स्प्रे करना है केमिकल, बारिश आने वाली है, मैं कहूंगा नहीं, अभी पोस्टपोन करिए, बारिश के बाद करना, नहीं तो आपका केमिकल बह जाएगा और आपका पैसा भी बेच जाएगा और वो जाके ग्राउंड वाटर को पोल्यूट करेगा या आपके पॉन्ड को करेगा, फिश में जाएगा, आप फिश खाओगे, आपकी हेल्थ को कैंसर होगा, एनवायरमेंट को खराब करेगा। तो वो एक बड़ी अच्छी बात हो। तो इसमें मेघदूत एक बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके साथ हमारे पास वेबसाइट है, वेबसाइट पे भी सारी जानकारी रहती है। और आपने कहा फोन, फोन उससे भी मिलता है, और उसमें भी आजकल ऐसा है कि आप यदि पढ़ नहीं सकते हैं तो आप सुन सकते हैं उसको, वॉइस में ला सकते हैं। और उसके और इम्पोर्टेंट बड़ी चीज है कि आप हर जैसे कि विलेज के कह लीजिए पंचायत लेवल पर कियोस्क खोल दें, जहां पे भाई एक एक्सपर्ट रहेगा, उसके पास कंप्यूटर है, वो आप कंप्यूटर पे किसान वहां चले जाएगा, वो देख के फटाफट उसको बता देगा जी मेरे यहाँ का वेदर क्या है बता दीजिए फटाफट देख देख के, वो एक्सेस करके उसको सिंपल भाषा में बता देगा, कौन सी फसल एडवाइस करेगी वो भी बता देगा, कहाँ अच्छे दाम मिलेंगे वो भी बता देगा। तो ये जो एक्सटेंशन कियोस्क है ये मुझे लगता है जिसे कहते हैं ना जैसे कि एक एक सेंटर जरूर रहने चाहिए इन एरिया में जहां पे किसान आके ये सब चीजों को वो कर ले एक। और उसके अलावा हमें और क्या करना है कि जो भी मौसम की जानकारी है और सलाह है वो हर गांव के अंदर एक जो वहां का सरपंच होता है उसको जरूर भेजे, जीते हुए को, और एक हारा हुआ सरपंच उसको भी भेज दे, क्योंकि जीता वो अपने बंदों को देगा शायद दूसरे को ना दे, तो उसको भी दे दीजिए। तो इन दो के पास पहुंच गया तो सोच ले आपके गांव के सब लोगों के तो जानकारी पहुंच गई। तो यदि ये हम करते हैं, वेबसाइट भी है, रेडियो टीवी अखबार भी है, और साथ साथ ऐप भी है, वेबसाइट भी है, फोन भी है, और ये कियोस्क भी है। और सबसे बड़ा रोल जो है मैं आज जो मानता वो है रेडियो का। एक समय ऐसा था जब हम बचपन में बड़े हो रहे थे तो रेडियो बहुत पॉपुलर था, टीवी अभी आया नहीं था, या आया भी था तो किसी के पास होता नहीं था, और फिर जब टीवी आया तो रेडियो की इंपॉर्टेंस कम हो गई। मगर मैं अब ये कह रहा हूं ये अब ये युग है जो रेडियो का युग है, कम्युनिटी रेडियो। तो छोटे छोटे कम्युनिटी रेडियो स्टेशन खोलने होंगे पूरे हमें हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, बल्कि अब तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने विलेज लेवल पे यूनिवर्सिटी लेवल पे अलाउ कर दिया है। तो कम्युनिटी रेडियो खोलिए, और रेडियो भी कैसे आ गए हैं आज की डेट में जिसमें बिजली नहीं चाहिए, बैटरी नहीं चाहिए, हैंड वाइंडिंग है, आप पीछे हैंडल लगाए 60 बार घुमाइए एक घंटा चलेगा, और उसमें टोन अलर्ट भी है, यदि मौसम विभाग ने कोई वार्निंग दी है तो वो वार्निंग भी वो टू की आवाज करेगा कि भाई इसको ऑन करना है। तो इस तरह की जो आज का आ गई, तो मुझे लगता है कम्युनिटी रेडियो को पॉपुलराइज कराना है, लोगों को सरकारें फ्री बांटे रेडियो इनको, जिसमें बिजली नहीं चाहिए पानी नहीं चाहिए, ऑल वेदर कम्युनिकेशन हो जाएगा आपका, कोई भी डिजास्टर हो उस समय भी ये रेडियो आपके काम आएंगे। तो मुझे लगता है ये सब चीजें हम करें तो हमें जो लास्ट माइल मतलब आखिरी आदमी तक हमें पहुंचना है वो तो एक है ही है, उसके साथ साथ है क्रूशियल माइल कनेक्टिविटी। यानी कि इस समय यदि डिले हुआ मानसून तो कहां हुआ, महाराष्ट्र वाले इलाके में, आसपास के इलाकों में, तो उनको पहले से सूचित करना भाई मानसून आपके यहाँ डिले है और इतने दिन का डिले होने वाला है, तो आप अभी रुक जाइए थोड़ा, एकदम स्विंग पे मत जाइए, या फिर वर्षा अभी थोड़ी सी मिली है तो कई बार क्या होता है कि मॉइस्चर आया मगर इतना नहीं है कि आपको वो सर्वाइव करेगा लॉन्ग पीरियड में, आपने सोइंग तो कर दी और बाद में एक हफ्ते में उड़ गया वो मॉइस्चर, तो आपका जर्मिनेशन प्रभावित हो जाएगा। तो सोइंग रेन कब होंगी तो वो भी मौसम विभाग बताते हैं, जो हम मौसम आधारित एडवाइस देते हैं, वेन टू सो, वेन टू हार्वेस्ट, वेन टू इरीगेट, हाउ मच टू इरीगेट, वेन टू स्प्रे केमिकल्स, ये सारी चीजें मौसम आधारित जो कृषि सलाह दी जाती है मौसम विभाग और कृषि मंत्रालय दोनों से मिलकर वो बहुत पॉपुलर हो रही है। तो मुझे लगता है वो सरकार को इसमें पूरा जोर देना चाहिए और इस सर्विस को हमें हर किसान तक पहुंचाना है, कैसे भी पहुंचाना है, और यदि हम ये पहुंचाते हैं तो डेफिनेटली हम प्रिपेयर होंगे, किसान प्रिपेयर है, और जैसा आपने कहा एक उसके लिए पूरा एक इकोसिस्टम तैयार करना है। एक्सटेंशन सर्विस बेहतरीन होनी चाहिए, कहां से फर्टिलाइजर मिलेगा, कहां से केमिकल मिलेंगी, कहां से सीड मिलेगा, कहीं वो डुप्लीकेट तो नहीं ले जा रहा, उसको गलत बीज तो नहीं मिल रहा, कहीं वो सुनिश्चित करना होगा, और उसके प्राइस भी ऐसा करना, ये ना हो किसी वो ऐसे दुकानदार से ले जाए जो उसको 36% रेट ऑफ इंटरेस्ट ले रहा है, तो लो इंटरेस्ट पे ये सारी चीजें उन्हें मिले। और साथ साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि एश्योर्ड इरिगेशन, और वो चार नहीं पांच नहीं, एटलीस्ट एक या दो भी आपके पास लाइफ सेविंग इरिगेशन होंगे तो फसल आपके निकल जाएगी।
1: हरवीर जी, कार्यक्रम के अंत की तरफ हम बढ़ रहे हैं, कुछ व्यवहारिक सवाल पर चर्चा कर लेते हैं। एलनीनो की बात हम कर रहे हैं, अगर एलनीनो के कारण भारत के कुछ हिस्सों में मॉनसून से कम वर्षा होती है तो आपकी क्या सलाह है किसानों को कि वो सिंचाई के किन वैकल्पिक माध्यमों को अपनाएं, अगर कुछ राज्यवार आप बता सकें तो।
0: देखिए, जो आपका जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया है उसमें राजस्थान को आप छोड़ दें, पंजाब है, हरियाणा है, यूपी का बड़ा हिस्सा है, सिर्फ वेस्टर्न यूपी नहीं, अब ईस्टर्न यूपी और उधर भी कैनाल इरिगेशन है। मध्य प्रदेश में बड़े पैमाने पर इरिगेशन में काम हुआ है, और हमारा जो ईस्टर्न इंडिया है वहां पर बोरवेल्स जो है, तो अब यह देखना पड़ेगा कि वो जो आपके सिंचाई के जो संसाधन है वो दुरुस्त हो, जब भी जरूरत हो आप उसका इस्तेमाल कर सकें, ये एक इम्पोर्टेंट बात है। दूसरे देखिए क्या है कि ऐसी परिस्थिति में सरकारें किसानों की मदद करती रही हैं, उसमें ये है कि क्या अगर इवन आपका जो पावर सप्लाई है उसका कंस्ट्रेन भी है तो भी आप इरिगेशन के लिए एक्स्ट्रा पावर उपलब्ध कराते हैं और उसका एलोकेशन किया जाए, पहले से प्लानिंग करके रखना चाहिए। उसी तरीके से कई जगह जहां कमजोर किसान है वो सरकार देखे किस तरीके से उसका उनको डिसीजन लेना है, लेकिन जब अगर बारिश कम होगी तो किसान की लागत बढ़ती है क्योंकि उसको सिंचाई के ऊपर अधिक खर्च करना पड़ता है। तो ऐसे में क्या उनको सिंचाई के लिए कुछ आर्थिक मदद स्पेशली उस टाइम के लिए दी जा सकती है? पहले भी दी जाती रही है, डीजल वगैरह के ऊपर सब्सिडी दी जाती रही है, और मेरा मानना है कि सरकार ने अब समझ लिया है और काफी कुछ निर्भर करेगा, जैसे शर्मा जी ने बताया कि मानसून का क्या होता है, कि मानसून अगर 10% कम भी रहता है उसकी अहमियत क्या है, कि उसका जो हमारा मानसून का पीरियड है जून टू सितंबर, उस पूरी अवधि में डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहा है और ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहा है। अगर ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा है तो कोई मुश्किल नहीं है, और अगर पता लगा आपको जुलाई में बहुत बारिश हो गई उसके बाद अगस्त में आपके पास बारिश नहीं है, तो ये सारी चीजें देखनी पड़ेगी और समय के हिसाब से जो हमारा विभाग है, कृषि विभाग है या सरकारों के जो सिंचाई विभाग है और जो ये तमाम सारे इन सबको विभागों को आपस में तालमेल बैठा कर कि किसान को कहाँ जरूरत है वहाँ उसको मदद करने की जरूरत है। और किसान भी अब ऐसा नहीं है, बहुत सारे अब बहुत चीजें बदली हैं, बदलाव कृषि में भी आया है, वो समझदार हैं, पढ़े लिखे भी हैं, चीजों को समझते हैं, टेक्नोलॉजी को भी समझते हैं और फैसले भी बेहतर तरीके से ले सकते हैं, तो एक अच्छा तालमेल बैठा है तो इस मुश्किल को पार कर सकते हैं।
1: जी हाँ, मौसम बदलेगा, चुनौतियां आएंगी और एलनीनो जैसी महाशक्तियां हमारी तैयारियों को परखेंगी भी, लेकिन इतिहास गवाह है कि भारत के किसान ने कभी हारना नहीं सीखा। विज्ञान की सटीक भविष्यवाणियां और कृषि के आधुनिक तौर तरीके अगर हमारे अनुभव के साथ मिल जाएं तो सूखी मिट्टी से भी सोना उपजाया जा सकता है। जरूरत सिर्फ इस बात की है कि हम मौसम के बदलावों से डरे नहीं बल्कि अपनी रणनीति से उसे मात दें। आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा में शामिल होने के लिए हरवीर जी आपका, आनंद जी आपका बहुत बहुत आभार।
2: धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: हम अपने तमाम श्रोताओं से बस यही कहना चाहते हैं कि बदलते दौर में सजग रहिए, वैज्ञानिक सलाह अपनाइए और अपनी खेती को सुरक्षित बनाइए। नमस्कार।
3: अभी आप सुन रहे थे अल नीनो के प्रभाव से निपटने के लिए कृषि और जलवायु को लेकर सुरक्षात्मक उपायों पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्व अपर महानिदेशक आनंद शर्मा और कृषि विशेषज्ञ हरवीर सिंह। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsttalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
4: चर्चा का विषय है ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए प्रस्तुत है नाटक बंटवारा, जिसके लेखक है मुरलीधर बलवानी और प्रस्तुतकर्ता है राकेश ढौंडियाल। कुछ ही पलों में सुनवाएंगे हम ये नाटक आपको, कृपया प्रतीक्षा करें।
5: प्रस्तुत है नाटक बंटवारा, लेखक मुरलीधर बलवानी, प्रस्तुतकर्ता राकेश ढौंडियाल।

0: हाँ भाई राम प्रसाद, अब तबीयत कैसी है?
1: अब जिंदगी की इस आखिरी घड़ी में तबीयत कैसी डॉक्टर साहब?
0: ऐसा मत कहो भाई, वो भी एक डॉक्टर के सामने। जब तक सांस है तब तक आस है, जब तक जियो आशा के साथ जियो। विद्याराम
2: जी
0: आज मैं एक दवाई बढ़ा रहा हूं, इसे रात को सोने से पहले देना।
2: जी डॉक्टर साहब।
0: अच्छा मैं चलता हूं।
2: जी
1: बेटा विद्या।
2: जी पिताजी।
1: मुझे लगता है बेटा कि अब बिस्तर से मैं शायद ही उठ पाऊंगा।
2: ऐसा मत कहिए पिताजी, आप जरूर ये बिस्तर छोड़ देंगे और दुकान पर भी बैठेंगे।
1: तेरा प्यार और उम्मीद अपनी जगह सही है बेटा, पर मेरी मेरी सेहत को मैं जानता हूं, इसीलिए मैं कह रहा था कि
2: कहने सुनने को बहुत वक्त पड़ा है, अब पहले आप थोड़ा आराम करिए।
3: चरण स्पर्श पिताजी।
1: सदा खुश रहो बच्चों, मैं भी कितना बदनसीब हूं, उठकर अपने हाथों से तुम्हें आशीर्वाद भी नहीं दे सकता।
3: अरे इसमें क्या समस्या है पिताजी, लीजिए हम अपना सर आपके हाथों से छुआ देते हैं।
4: चलिए पिताजी आप सूप पी लीजिए। और सुनिए आप जरा पिताजी को दो तकिए और लगा दीजिए, ये पलंग को थोड़ा और ऊपर उठा दीजिए।
3: ऐसे बैठिए बैठिए बैठिए,
4: आप पीजिए।
1: जीते रहो बहू, ईश्वर तुम्हारी हर इच्छा पूरी करे। बेटी भगवान करे विद्या के आने वाली बहू भी तुम जैसी ही हो। बेटा ज्ञान प्रकाश, अरे उसकी शादी के मुहूर्त का क्या हुआ बेटा?
3: पिताजी पहले आप ठीक हो जाइए, फिर सोचेंगे उसकी शादी का।
1: नहीं नहीं बिल्कुल नहीं बेटा, मैंने पहले भी कहा है कि मेरे कारण इस शुभ काम में देरी मत करो, मैं जीते जी अपनी इस आखिरी जिम्मेदारी से मुक्ति पाना चाहता हूँ बेटा। और फिर ऊपर जाकर तुम्हारी माँ को भी तो जवाब देना है बच्चों, मुझे ठीक होना होगा तो हो जाऊंगा, पर इस शादी को समय पर हो जाने दो बेटा, अकेली महिमा कब तक मेरा और घर का बोझ उठाएगी?
3: पिताजी आते सोमवार का मुहूर्त निकला है।
1: अच्छा अच्छा है बस तो तुम अब तैयारी शुरू कर दो बेटा। अरे भाई हमें कौन सा राजाओं या सेठों जैसा तामझाम करना है?
3: ठीक है पिताजी, जैसा आपका आदेश।

0: पिताजी अपने बेटे और नई बहू को आशीर्वाद दीजिए।
1: प्रणाम पिताजी।
2: ईश्वर तुम्हारा विवाहित जीवन सदा खुशियों से भरा रखे बेटा। मैं तो बस कुछ दिनों का मेहमान हूँ इस घर में। अपने भैया भाभी को ही माँ बाप की तरह प्यार करना बेटा, और सेवा करना उनकी जैसे इन दोनों ने मेरी सेवा की है।
1: पिताजी आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, मुझे तो भाभी ने ही पाला पोसा है।
2: अब तुम जाओ बेटा और सब बड़े बुजुर्गों और रिश्तेदारों का आशीर्वाद ले लो। मुझे ज्ञान प्रकाश से कुछ बात करनी है बेटा। बेटा ज्ञान प्रकाश
0: जी कहिए पिताजी।
2: मुझे नहीं लगता कि अब मैं अधिक समय इस बिस्तर पर पड़ा रहूंगा। सच पूछो तो मैं खुद इस लाचारी के जीवन से अब मुक्त होना चाहता हूँ।
0: भगवान के लिए आप ऐसी बात ना करें पिताजी।
2: बेटा मैं मानता हूँ कि माँ बाप की सेवा एक पुण्य का काम है, पर यह भी उतना ही सच है कि किसी की सेवा लेना भी एक कर्ज के समान है जिसे इंसान को अगले जन्म में चुकाना होता है।
0: ये कहकर आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं पिताजी।
2: नहीं बेटा नहीं नहीं। बहरहाल मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ बेटा कि हमारी संस्कृति में घर को एक मंदिर कहा गया है, जहाँ परिवार वाले यदि सुख शांति और एकता के साथ मिलजुल कर जीवन बिताएं तो लक्ष्मी जी वहाँ विराजमान रहती हैं।
0: आप सही कह रहे हैं पिताजी।
2: मेरे बाद तुम ही विद्या के पिता रहोगे और महिमा उसकी माँ।
0: आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, विद्या मेरे अपने बेटे रघु समान है।
2: मुझे तुमसे यही उम्मीद थी बेटा।
3: पिताजी पिताजी पिताजी पिताजी आप मुझे हराश करके नहीं जा सकते। बोलिए बोलिए पिताजी बोलिए।
4: रघु बेटा बहुत खेल लिया, अंदर चलो और होमवर्क करो अब अपना। तुम्हारे पापा भी आने वाले होंगे, और हाँ अब मैं कोई बहाना नहीं मानूंगी तुम्हारा, सीधे अंदर आओ।
5: दीदी दाल सब्जी बना दूं, चावल चढ़ा दूं अभी?
6: अरे नहीं नहीं रानी, तू रहने दे। और ये बता विद्या कहाँ है?
5: वो तो दुकान चले गए दीदी, मैं खाना बनाती हूँ ना।
6: अरे नहीं, तेरे हाथों की तो अभी मेहंदी भी नहीं सूखी, और वो कहाँ छोड़ के चला गया तुझे? वापस आए तो मजा चखाती हूँ उसे। और हाँ रानी, पिताजी के देहांत की वजह से तुम लोग कहीं घूमने भी नहीं जा सके, कम से कम कुछ वक्त तो उसको घर में गुजारना था तुम्हारे साथ।
5: वो कह रहे थे दीदी कि घर पर पिताजी की याद आती रहती है।
6: अब उन्हें याद करने के लिए तो पूरी जिंदगी पड़ी है, मुझे तो तेरा दुख हो रहा है। तेरे हाथ पीले होते ही सर पर दुख की घड़ी आन पड़ी।
5: ये मेरी ही किस्मत का दोष है दीदी, अभी चांद ठीक से देखा भी नहीं था कि ग्रहण लग गया।
6: दिल छोटा न कर, और मेरी मान अब तू दो चार दिन के लिए अपने मायके चली जा, और हाँ विद्या

0: को भी साथ ले जा, दोनों का मन बहल जाएगा।
1: आप ही मनाइएगा दीदी अपने देवर को।
0: ठीक है, मैं ही तैयार करती हूँ उसे, ठीक है?
2: अरे भाई, क्या गपशप हो रही है देवरानी जेठानी में?
0: जी, मैं कह रही थी कि घर में गमी की वजह से विद्या नई बहू को कहीं घुमाने तो ले नहीं जा पाया, तो अब कम से कम 2-4 दिन उसे उसके मायके ही ले जाए।
2: कभी कभी भाई तुम भी अकल की बात कर लेती हो।
0: हाँ, मैं कम से कम कभी कभी तो कर लेती हूँ।
2: बहरहाल तुम्हारी सलाह 16 आने सही है। विद्या,
3: जी भैया।
2: तुम कल ही ससुराल निकल जाओ। अरे भाई, थोड़ी सेवा तो करवाओ ससुराल वालों से।
4: नहीं भैया, अभी मेरा मन नहीं है।
2: अरे भाई, हर चीज मन के हिसाब से नहीं की जाती है? जरा नई दुल्हन का भी तो सोचो।
4: ठीक है भैया, आप इतना जोर दे रहे हैं तो चला जाता हूँ।

0: माँ कैसी हो तुम?
1: अरे अरे रानी मेरी बच्ची, तू यहाँ? तूने तो आज दिल खुश कर दिया मेरे बच्चों।
2: अरे बेटी, अरे वाह वाह, दामाद जी कहाँ हैं?
0: वो आ रहे हैं पिताजी, मैं तो दौड़ कर चली आई।
3: चरण स्पर्श,
2: जीते रहो।
1: तुम्हारा बहुत आभार है।
0: माँ ये तो बताओ, भैया और लता कहाँ हैं?
2: दोनों कॉलेज गए हैं। अरे भाई दुलारी
1: जी,
2: जरा दामाद जी के लिए चाय नाश्ते का इंतजाम करो।
1: जी जी।
2: वो कमरा तैयार करो।
1: जी जी।
2: बेटा तुम्हारे भैया भाभी तो कुशल पूर्वक है ना, और उनका बेटा?
3: सब आनंद में है।
2: चाय नाश्ता करके मुंह हाथ धो लो, तो तुम्हें भी मैं दुकान ले चलता हूँ।
1: अरे अब छोड़ो भी, आज तुझे माई जी को पूरा आराम करने दो।
2: ये भी ठीक है। शाम को अर्जुन से कह देना शहर घुमाने ले जाएगा।
4: बेटी तेरी ससुराल में सब ठीक तो है ना?
0: हाँ माँ, बस ठीक ही है।
4: अरे मुझे तो तेरी बड़ी फिक्र होती है।
0: क्यों, ऐसे क्यों कह रही हो तुम?
4: बेटी तेरे ससुर की मृत्यु के बाद उनकी सारी संपत्ति तो बड़े बेटे के हाथ आ गई। पता नहीं तेरे पति को पूरी जायदाद की जानकारी है भी कि नहीं। हे तू जरा पूछती रहा कर, क्योंकि जमीन जायदाद में आधा हिस्सा तेरे पति का भी है।
0: वो तो मैं पूछ लूंगी माँ, पर अभी से क्यों?
4: अरे इससे पहले कि तेरे जेठ का वो छुटकू बेटा है ना वो हिस्सेदार बने, तू अपना हिस्सा लेकर अलग हो जा, बाद में बड़े झंझट होते हैं।
0: ये बात तो तुमने बड़े ही पते की है।
4: अरे वही तो। और देखना, तू तो अभी बच्ची है मगर मैंने दुनिया देखी है। मैंने सुना है तेरे ससुर का लगाव भी बड़े बेटे से ज्यादा था। कहीं ऐसा न हो कि पूरी जमीन जायदाद बड़े बेटे के नाम ही कर गए हो वो।

0: अब मुझे और रानी को वापस घर जाने की इजाजत दें।
1: जल्दी क्या है?
0: भैया दुकान पे अकेले हैं, मेरे ना होने से उनकी दिनचर्या बिगड़ जाती है, जरा भी आराम नहीं कर पाते। ऊपर से भाभी भी घर का काम अकेले कर करके थक जाती होंगी।
1: देखा रानी, मैं ना कह रही थी कि दामाद जी को तुझसे ज्यादा भैया भाभी की चिंता है।
0: ये बात नहीं है, अब बड़ों का मान तो रखना ही चाहिए ना।
1: बेटा, हम भी तो तुम्हारे माँ बाप समान हैं। अरे, 2-4 दिन और रुक जाते तो हमें भी अच्छा लगता।
0: देखिए माता जी, अब ये उस घर की बेटी ज्यादा है, ज्यादा वक्त तो उसे वहीं गुजारना है ना।
1: ठीक है बेटा,

0: क्या बात है, आज तुम्हें नींद क्यों नहीं आ रही है? मायके वालों की याद आ रही है क्या?
1: नहीं, मैं कुछ और सोच रही हूँ।
0: और क्या सोच रही हो भाई?
1: मैं देख रही हूँ कि तुम दुकान पे जाते भी जल्दी हो और रात को भी अक्सर देर से आते हो। जेठ जी का लाया दुकान पे ठंडा नाश्ता और खाना खाते हो, जबकि जेठ जी वो तो तीनों वक्त का खाना घर पर खाते हैं।

0: गर्मा गर्म, और वो भी आराम से।
1: बड़े होने के यही तो फायदे हैं। जब पिताजी थे तो वो मेरे वाला काम बड़े भैया करते थे और मैं पढ़ाई करता था।
0: अच्छा सुनो, मैंने सुना है कि बड़े भैया दुकान पे कम बैठते हैं।
1: अरे भाई, बाहर के भी कई काम होते हैं जो सिर्फ भैया ही करते हैं। खरीदारी, सामाजिक काम, बिजली, टेलीफोन बिल भरना। अब इसके बीच अगर वो घर पे आकर खाना खाते हैं तो क्या?
0: केवल खाना खाने की बात नहीं, एक घंटा आराम भी करते हैं घर पर, और तुम्हारा खाना इतना लेट लाते हैं।
1: तो क्या हुआ, मैं नाश्ता भी तो लेट करता हूँ।
0: इसीलिए कि जेठ जी तुम्हारा नाश्ता लेट लाते हैं। तुम दिन रात दुकान भी संभालो और खाना भी वक्त पर न खाओ। नई शादी तुम्हारी है और घर पर ज्यादा वक्त बड़े भैया बिताते हैं।
1: देखो रानी, कल को जब रघु बड़ा होगा वो भी मुझे आराम देगा। आखिर मेरी उम्र ही क्या है जो अभी से आराम का सोचूं। इसलिए तुम मेरी चिंता करना छोड़ दो।
0: तुम अपनी चिंता खुद करते तो मुझे क्या पड़ी थी जो तुम्हारे बारे में सोचती। अच्छा एक बात तो बताओ, दुकान का हिसाब किताब, जमीन जायदाद का लेखा जोखा, ये कौन रखता है?
1: बड़े भैया, आज तुम ये क्यों बात कर रही हो?
0: मैं भी तो जरा समझूं कि तुम्हारी कमाई क्या है और मेरे हिस्से में क्या रहेगा।
1: हे भगवान, अभी से ये चिंता? तुम्हें जो चाहिए मुझे बताओ, मैं भैया से लेके दे दूंगा। घर खर्च के अलावा 200 रुपए काफी रहेंगे।
0: इतने में तो मेरा मेकअप का सामान भी नहीं आएगा।
1: तो 500 रुपए ले लेना बस। अब जरा सोने भी तो।
0: ये तो पूरी तरह से अपने भाई पर आश्रित है। यही हाल रहा ना तो मुझे भी दीदी की गुलामी करनी पड़ेगी। कुछ तो करना पड़ेगा रानी, कोई तो चक्कर चलाना पड़ेगा।

0: भाभी ये क्या, अब तो रानी घर में है, वो भी एक महीना पुरानी, फिर भी चाय तुम ला रही हो।
1: वो भी सो रही है।
0: अरे भाभी मैं उसे उठा के आया था अभी।
1: फिर आंख लग गई होगी, देर रात तक मायके वालों से बतियाती रही। अब मुझे लगता है तुम उसका ख्याल नहीं रखते विद्या।
0: लो उल्टा उसे तुम्हारा और हम सबका ख्याल रखना चाहिए।
2: ऐसा नहीं है विद्या, हम सबको भी तो उसका और उसकी भावनाओं का ख्याल रखना चाहिए ना, आखिर वो तो छोटी है ना।
0: उसकी बातों से तो वो छोटी नहीं लगती भैया।
2: क्या मतलब?
0: मेरा मतलब उम्र से क्या होता है, उसकी सोच और सियानापन तो बड़े बूढ़ों वाला है।
1: विद्या ऐसा नहीं कहते अपनी पत्नी के लिए।
0: बहरहाल भाभी तुम उससे ज्यादा नरमी और लाड़ मत करो, घर के काम में पूरी पूरी मदद लो। अब मैं चलता हूँ, दुकान के लिए तैयार होता हूँ।
2: ये विद्या आज ऐसी बातें क्यों कर रहा है?
1: पता नहीं क्या हुआ है आज इस लड़के को।
3: ये लो तुम्हारा दूध।
0: क्या बात है, आज ये तुम्हारी आवाज में गुस्सा क्यों है?
3: दिन भर कोल्हू के बैल की तरह काम करूंगी तो कहीं तो गुस्सा निकलेगा ही ना।
0: घर के काम में भी कोई थकावट होती है?
3: अब तुम्हें तो दुकान के काम में नौकर की वजह से थकावट नहीं होती, तो जरूरी नहीं कि औरों को भी ना हो। घर में तो नौकर भी नहीं।
0: अच्छा चलो तुम सो जाओ बस।
3: मैं सोऊं या जागूं तुम्हें से क्या, तुम्हें तो मेरी बातें सुनने का भी समय नहीं।
0: हे भगवान अब क्या हुआ?
3: जब तुम्हें मेरी बात समझ में ही नहीं आती तो क्या बात करूं तुमसे, कुछ पूछो तो तुम्हें तो कुछ मालूम ही नहीं रहता।
0: क्या मालूम नहीं है?
3: तुम्हारी दुकान की कमाई कितनी है?
0: ये तो सचमुच नहीं मालूम, मैंने बताया तो सब हिसाब किताब भैया रखते हैं, पर तुम्हें उससे क्या, तुम्हें 500 रुपए दे दिया करूंगा।
3: सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं होता, आजादी भी कोई चीज होती है। तुम दुकान की गुलामी करो और मैं घर की। हम कब घूमेंगे, सिनेमा देखेंगे, बाहर खाना खाएंगे, जब बूढ़े हो जाएंगे तब? अरे इतनी उम्र हो गई, शादी हो गई, एक गाड़ी तक तो है नहीं तुम्हारे घर में। कल को तुम्हें अगर अपना धंधा करना पड़े तो तुम्हें क्या जानकारी है धंधे की, सरकारी कामों की, कोर्ट कचहरी की, कमाई खर्चे की।
0: पर भैया के रहते मैं क्यों अलग धंधा करने लगा?
3: अगर कल को भैया ही नहीं रहे तो?
0: रानी ये क्या बकवास कर रही हो तुम?
3: सच्चाई बोलो तो तुम्हें बकवास ही लगती है। कल को हमारे बच्चे होंगे तो क्या वो भी अपने ताऊ जी के सामने हाथ फैलाए अपने लिए खर्चा मांगेंगे? किसी पे इतना आश्रित होना भी ठीक नहीं है।
0: मेरा दिमाग खराब ना करो, चुप हो जाओ प्लीज।
2: अरे अभी तक तुम बहू को सुबह नहीं उठा रही हो, तुम्हें विद्या ने उस दिन कहा तो था ना, कम से कम अपनी तबीयत का तो ख्याल करो। वो सारा दिन टीवी देखती है या मायके बात करती रहती है। अरे भाई नई दुल्हन 9 दिन की, अब तो 4 महीना होने को आए, तुम कब तक यूं अकेली खपती रहोगी?
1: अब आप कब से मेरी चिंता करने लगे हाँ?
2: अरे भाई जब तक अकेली थी तब तक कोई चारा नहीं था, खामखा बहू को क्यों आलसी बना रही हो?
1: अब ठीक है, विद्या तो तुम्हें कम से कम आराम देता है ना, तुम तो दोनों तरफ से सुखी हो, घर हो या दुकान, अब मेरे सुख की तो तुम छोड़ ही दो।
2: अरे बीमार हो गई तो मेरे ही पल्ले पड़ोगी ना।
1: घर का काम करने से भी कोई बीमार पड़ा है क्या भला?
2: ठीक है भाई, तुम औरतों की चिंता करो तो मुसीबत, ना करो तो मुसीबत।
0: रानी तुम आज भी जल्दी नहीं उठी?
3: अब तुम ही तो रात को देर तक जगाते हो।
0: ये बहाने छोड़ो और बिस्तर छोड़ो, मेरे दुकान जाने का वक्त हो रहा है और तुम हो कि?
3: तुम्हें ध्यान रहता है, रात को 11 बजे सोई थी।
0: सुबह के 8 बज रहे हैं, सेहत के लिए केवल 6 घंटे की नींद काफी होती है, शादी को पूरे 4 महीने हो चले हैं, अब तो भाभी का हाथ बटाओ।
3: अरे वाह भाभी की बड़ी फिक्र है।
0: तुम जानती हो मेरी माँ की जगह है मेरी भाभी, वो तुम्हारी तरह नहीं है, नाम से रानी और काम में महारानी।
3: अरे वो तो मुझसे पूरा काम करवाती भी नहीं।
0: अरे वाह तुम्हें खुद भी तो अपनी जवाबदारी का एहसास होना चाहिए, ये घर तुम्हारा नहीं है क्या?
3: मेरा घर तो वो होगा जो तुम बनवाओगे मेरे लिए।
0: मेरा हिस्सा भी है इस घर में।
3: सच भी घर तुम्हारा हिस्सा है तो उसे लेके अपना एक अलग घर बनाओ, वैसे भी आजकल अलग जीने का जमाना है और इसका मजा भी कुछ और ही है। वैसे भी तुम्हें यूं घर के लिए पिसता देखकर ना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता।
0: मेरा पिसना दिख रहा है, भाभी का पिसना तुम्हें दिखाई नहीं देता। 8 साल का था जब अम्मा चल बसी, तब से हम 3 मर्दों को पालती आ रही हैं।
3: मेरी तो समझ में ये नहीं आता कि ग्रेजुएट होकर भी तुमने कोई नौकरी क्यों नहीं की।
0: ये मेरी बात का जवाब नहीं है।
3: मैं ये फालतू के सवाल जवाब नहीं जानती, तुम्हें मेरे साथ सुखी जीवन गुजारना है तो इस घर से निकलो और खुद की अपनी कहने लायक जमीन जायदाद और दुकान लो, नहीं तो नौकरी ही कर लो। मुझे खुद से ज्यादा तुम्हारी और तुम्हारे भविष्य की चिंता है। मेरा क्या, मैं तो मजे से जी रही हूँ।
0: शायद तुम सही कह रही हो। जब तक तुम्हारे सर पे नहीं पड़ेगी तुम अपना महारानी पन नहीं छोड़ोगी, और मेरी माँ समान भाभी सारी उम्र यूं ही नौकरानी बनकर मरती खपती रहेगी।
3: अब आई ना बात भेजी में, मुझे भी तुम्हारी कमाई का पूरा पैसा चाहिए, ना कि उस आधी कमाई का जिसको कि कमाते तुम अकेले हो।
0: ठीक है, मैं चलता हूँ, समय देख के भैया से बात करूंगा। प्रणाम भैया।
2: आओ आओ विद्या, चाय आने ही वाली है।
0: भैया अगर बुरा ना माने तो आपसे कुछ पूछना चाहता था।
2: अरे इसमें बुरा लगने वाली क्या बात है, दिल खोल के और बिना किसी झिझक के पूछो।
0: मैं सोचा था कि मैंने खर्चे के 500 रुपए ले तो लेता हूँ, पर ये कहीं दुकान की कमाई के हिसाब से ज्यादा तो नहीं?
2: अरे नहीं नहीं, अच्छा हुआ जो तूने आज दुकान की कमाई की बात निकाल दी। अब तुझे भी दुकान और जमीन जायदाद के बारे में जान लेना चाहिए, आखिर तो मेरे बाद तू ही संभालेगा ये सब। तुझे तो पिताजी ने नौकरी नहीं करने दी, मैं तो खुद चाहूंगा कि रघु अच्छी पढ़ाई करके अच्छी नौकरी करे। दुकानदारी तो तू देख रहा है कितनी मगजमारी है इसमें। बहरहाल हमारी दुकान की कमाई है करीब 25,000 रुपये महीना, सो धीरे धीरे करके करीब 50,000 की बैंक से FDR बनवा के रखे हैं। अब तक करीब 10 लाख रुपए की FDR हो गई होगी, खेती वाली जमीन भी करीब 10 लाख रुपए की होगी, बाकी ये घर और दुकान का स्टॉक वगैरह ये है हमारी कुल संपत्ति जिस पर हम दोनों में बराबर बराबर का हिस्सा है।
3: आपने अपने पिता समान भाई से आज सुबह कोई बात की?
0: की थी।
3: तो क्या बताया उन्होंने?
0: यही कि दुकान की कमाई करीब 25,000 रुपए महीना है और घर जमीन मिला के कोई 40-45 लाख की कुल संपत्ति होगी।
3: अब बताओ, लखपति होकर भी तुम इस 8x8 के कमरे में सड़ रहे हो। सुनो, क्यों ना हम अपना घर ले ले, आज नहीं तो कल हमारे भी बच्चे होंगे ना।
0: वो तो इसके ऊपर भी कमरे बन सकते हैं।
3: चलो ये ही सही, तुम अपना घर ऊपर बनवा लो या फिर भैया ऊपर रह ले।
0: पर अभी कहाँ उसकी जरूरत है।
3: अरे दिन ब दिन मटेरियल की कीमत भी तो बढ़ती जा रही है।
0: हाँ ठीक है, मैं भैया से बात करूंगा, पर रसोई एक जगह ही होगी है?
3: अच्छा बाबा अच्छा, तुम बात तो करो। ये लीजिए भैया, चाय लीजिए।
2: अरे वाह, आज चाय तुम लाई हो। महिमा की तबीयत तो ठीक है ना?
3: हाँ भैया, दीदी की तबीयत बिल्कुल ठीक है।
2: अरे वाह, चाय तो बड़ी अच्छी बनाई है तुमने।
0: अब आपको रोज यही मिलेगी भैया। अच्छा भैया, मेरे मन में ख्याल आया है, क्यों ना हम 2-3 FDR कैश करवा के ऊपर 2 कमरे बनवा लें। साल दर साल मटेरियल और लेबर की कीमत बढ़ती जा रही है, हम अपना कमरा रघु के लिए खाली करके ऊपर के कमरों में शिफ्ट हो जाएंगे।
2: तुम्हारा आइडिया तो बहुत अच्छा है, पर
0: क्या भैया,
2: घर के 2 टुकड़े हो जाएंगे।
0: नहीं होंगे भैया, हम दोनों सिर्फ रात को ऊपर सोने जाएंगे और रसोई भी तो नीचे रहेगी ना।
2: पर इसमें तो तुम दोनों को ही परेशानी आ सकती है, कभी ऊपर कभी नीचे।
0: हम कौन से बूढ़े हैं भैया, आप अभी से ये सब कुछ सोच रहे हैं?
2: हाँ, नहीं नहीं, तुम ठीक कह रहे हो, ये काम निपटा ही देते हैं।
0: लो भाई, तुम्हारे अपने घर का सपना इतनी जल्दी पूरा कर दिया। आज तो गृह प्रवेश के कार्यक्रम में पूरी तरह थका दिया।
3: लाओ, मैं तुम्हारे पैर दबा देती हूँ, और हाँ, घर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, अभी तो तुमने मेरा बस 50% सपना ही पूरा किया है।
0: हे भगवान, ये बाकी का 50% सपना क्या है तुम्हारा?
3: बाकी के 50% सपने पूरे होने की खुशी मुझे कम और तुम्हें ज्यादा होगी डार्लिंग।
0: अब ये पहेलियां छोड़ो और साफ साफ बताओ कि तुम और क्या चाहती हो।
3: मैं चाहती हूँ कि अपने घर की तरह तुम्हारी अपनी दुकान भी हो जाए, दिन रात जी तोड़ मेहनत तुम करो और कमाई 50%। इतनी मेहनत तुम अपनी दुकान पर करोगे तो पूरी की पूरी 100% कमाई तुम्हारी, और फिर हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए भैया से पूछने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। कल को हमारे बच्चे होंगे तो क्या वो भी अपने ताऊजी पर आश्रित होंगे?
0: ये क्या कह रही हो तुम? पहले घर अलग, अब दुकान भी अलग।
3: अलग कहाँ, एक आवाज भर तो दूर है हम घर में।
0: मगर ये बात शायद भैया ना माने।
3: तुम बात तो करके देखो, घर के वक्त भी तुमने यही कहा था।
2: वाह भाई वाह, आज तो हल्का खा के मजा आ गया। आओ विद्या आओ बैठो, आओ बहू। अरे रघु सो गया हो तो तुम भी आ जाओ महिमा। वाह भाई वाह, आज तो हल्का खा के मजा आ गया। आओ विद्या आओ बैठो, आओ बहू। अरे रघु सो गया हो तो तुम भी आ जाओ महिमा।
1: लो जी मैं भी आ गई। आज क्या खास बात है जी, पूरा का पूरा कुनबा इकट्ठा किया है आपने? हाँ
2: मैंने सोचा है विद्या, आज से दुकान पर मैं बैठूंगा और तुम बाहर के काम देखोगे। इसी बहाने तुम्हें पता भी चलेगा कि दुकानदारी के अलावा क्या क्या काम तुम्हें देखना और समझना है।
0: पर ये सब अचानक क्यों भैया?
2: देखो विद्या, अब मैं इतना जवान तो रहा नहीं कि भागा दौड़ी करूं। तुम्ही ने मुझसे कहा था ना कि मैं दुकान संभालूंगा, आप आराम से दुकान पे आना। सो अब मुझे भी लगता है कि मुझे ज्यादा आराम दुकान पर बैठने से मिलेगा बजाय ये भागा दौड़ी करने में। और दूसरा, मैं चाहता हूं कि कल से घर का खर्चा, जमीन जायदाद के कागज, शेयर, ये सब रानी संभाले।
3: ये क्या कह रहे हैं भैया आप?
2: देखो बहू, अब तुम भी इस घर का ही हिस्सा हो। मैं समझ सकता हूं कि तुम्हें भी विद्या और अपने भविष्य को लेकर कुछ आशाएं और कुछ उम्मीदें होंगी। कल को तुम लोगों के बच्चे होंगे, मुझे केवल महीने के 1000 रुपए दे दिया करो बस।
0: पर भैया ये आज आप कैसी बातें कर रहे हैं?
2: मुझे अपनी बात पूरी करने दो विद्या, बाद में इसी संपत्ति को लेकर बंटवारा हो जाए, इसलिए बेहतर है कि ये सब अब तुम संभालो।
0: भैया मैं आपसे कभी अलग नहीं होऊंगा, लक्ष्मण भी कभी राम से अलग हुआ है।
2: अरे तू किस युग की बात कर रहा है, अगर ऐसा नहीं था तो तूने घर को क्यों अलग करने की सोची? कल को तू दुकान अलग करने की सोचेगा तो मैं ये सहन नहीं कर पाऊंगा। पिताजी को मैंने मरते वक्त वचन दिया था कि विद्या मेरे बेटे समान है, जीते जी मैं से कभी अपने से जुदा नहीं करूंगा। अब अगर तू कल को दुकान अलग खोलेगा तो फिर रसोई कब तक साझा रहेगी? और जब रसोई साझा नहीं रही तो दिल कैसे मिले रहेंगे? इससे पहले कि हम लोग भी एक दूसरे के लिए बेगाने हो जाएं, तुम दोनों मिलकर घर दुकान और जमीन जायदाद की जिम्मेदारी उठा लो, मुझे कोई तकलीफ नहीं है इससे। अरे क्या हुआ बहू, तुम रो क्यों रही हो?
3: मुझे माफ कर दीजिए भैया, ये सब मेरी ही गलती है। मैंने ही दो भाइयों के बीच दरार पैदा करने की सोची। मैं आपको नहीं जान पाई थी, शायद मैंने आपको बहुत गलत समझा भैया, मगर आप।
2: अरे अरे अरे अरे रो मत, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। कोई भी नई बहू ऐसा सोच सकती है। अगर तुमने मुझे सीधे से ये बात कही होती तो भी मेरा फैसला यही होता, क्योंकि विद्या मेरा भाई नहीं बेटा है।
3: भैया मैं ही स्वार्थी हो चली थी, मेरे स्वार्थ के लिए आप मुझे माफ कर दीजिए।
2: मुझे खुशी है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया
3: जी।
2: अब कभी मत भूलना कि स्त्री तो घर की धुरी होती है
3: जी,
2: जिसके दम पर घर का चक्र चलता है।
0: मुझे माफ कर दीजिए भैया, मैं अपनी पत्नी के प्यार में छुपे स्वार्थ को नहीं देख पाया।
2: चलो शुक्र है, वक्त रहते घर पर आने वाला संकट टल गया। पश्चाताप के आंसुओं के प्रताप से तो बड़े बड़े पाप माफ हो जाते हैं। पता नहीं तुम लोग कैसे भूल गए कि जो शांति, प्यार और एकता एक परिवार में है, अकेले में कहां।
0: भैया आपने हमें सच में माफ कर दिया है ना?
2: वैसे कहते हैं गलती इंसान करता है और माफ ईश्वर करता है, फिर भी मैं अपनी तरफ से तुम्हें खुले दिल से माफ करता हूं अपने स्वार्थ के लिए।
1: अब इसका क्या मतलब हुआ जी?
2: ऐसा कहा जाता है कि जो इंसान दूसरों की गलतियों को माफ करता है, ईश्वर फिर उसकी गलतियों को माफ करता है। समझी मेरी समझदार पत्नी?

0: अभी आप सुन रहे थे मुरलीधर बलवानी का लिखा ये नाटक बंटवारा। भूमिका सहित भाग लेने वाले कलाकारों का विवरण इस प्रकार है। डॉक्टर थे देशबंधु शुक्ला, रामप्रसाद, विजय दिंडोरकर, विद्या राम, अमित रिछारिया, ज्ञान प्रकाश, संजय मेहता, महिमा थी भारती ठाकुर, रानी की भूमिका निभा रही थी कंचन राजानी, दुलारी शिवांगी पवार और तीर्थ प्रकाश थे श्याम मुंशी। इस नाटक के प्रस्तुतकर्ता थे राकेश ढोंडियाल।
1: अभी आपने सुना मुरलीधर बलवानी द्वारा लिखित नाटक बंटवारा। प्रस्तुतकर्ता थे राकेश ढोंडियाल। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में हमारा अगला कार्यक्रम होगा, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में अभी आप सुन रहे थे पंडित कुमार गंधर्व का ख्याल गायन राग हमीर। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। हिंदी में समाचार कुछ ही पलों में आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तीन देशों की यात्रा के दूसरे चरण में ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न पहुंचे। हवाई अड्डे पर ऑस्ट्रेलिया की मंत्री क्लेयर ओनिल ने प्रधानमंत्री की अगवानी की, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। मेलबर्न में सामुदायिक स्वागत समारोह में बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीयों ने श्री मोदी का स्वागत किया। अधिक ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: मेलबर्न में आज प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए भारतीय समुदाय में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। कार्यक्रम से पहले प्रधानमंत्री ने भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की और उनका अभिवादन स्वीकार किया। सांस्कृतिक प्रस्तुति की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया के पारंपरिक वाद्य यंत्र डिडजेरिडू और भारतीय तबले की अनूठी जुगलबंदी से हुई। कार्यक्रम का समापन ऑस्ट्रेलिया इंडिया ऑर्केस्ट्रा की प्रस्तुति से हुआ। कलाकारों ने AR रहमान के प्रसिद्ध गीत माँ तुझे सलाम की सिम्फनी प्रस्तुति देकर दर्शकों का मन मोह लिया।

0: मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये यात्रा भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति देगी। वे ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज के साथ वार्ता को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें भारतीय समुदाय से मिलने का भी अवसर मिलेगा, जो भारतीय ऑस्ट्रेलिया साझेदारी का महत्वपूर्ण आधार है। प्रधानमंत्री तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम को भी संबोधित करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबावो सुबियांतो के साथ योग्यकार्ता में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल प्रांबानन मंदिर का दौरा किया। श्री मोदी ने मुख्य शिव मंदिर में पूजा अर्चना की और भारत इंडोनेशिया सहयोग के अंतर्गत चल रहे संरक्षण कार्यों का जायजा लिया। इस अवसर पर राष्ट्रपति प्राबावो ने मंदिर परिसर के संरक्षण और जीर्णोद्धार में भारत के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। भारत और रूस ने आज संयुक्त राष्ट्र, ब्रिक्स, यूरेशियन समूह और शंघाई सहयोग संगठन सहित बहुपक्षीय मंचों पर आतंकवाद रोधी सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारत रूस आतंकवाद निरोधक संयुक्त कार्य समूह की 14वीं बैठक आज नई दिल्ली में आयोजित हुई। दोनों देशों ने सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज कुवैत के क्राउन प्रिंस शेख सभा अल खालिद अल सभा से मुलाकात की। श्री जयशंकर ने द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए क्राउन प्रिंस की प्रतिबद्धता की सराहना की। दोनों नेताओं ने खाड़ी क्षेत्र के घटनाक्रमों पर अपने विचार साझा किए। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु में किसानों के हितों की रक्षा के लिए खोपरा और तोतापुरी आम की खरीद को मंजूरी दे दी है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा कि इससे किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिलेगा और उन्हें कम कीमत पर फसल बेचने की मजबूरी से राहत मिलेगी। सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 87,000 मीट्रिक टन से अधिक खोपरा खरीदने को मंजूरी दी है। इसके अलावा बाजार हस्तक्षेप योजना के अंतर्गत 96,000 मीट्रिक टन से अधिक तोतापुरी आम की खरीद भी की जाएगी। मंत्रालय के अनुसार इस निर्णय से किसानों की आय बढ़ाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देश की कृषि अर्थव्यवस्था को नई गति दे सकती है। उन्होंने कहा कि एआई के उपयोग से प्रत्येक किसान सालाना लगभग 5,000 रुपए की बचत कर सकता है। नई दिल्ली में आज 17वें कृषि नेतृत्व सम्मेलन 2026 को संबोधित करते हुए डॉ. सिंह ने कहा कि कृषि स्टार्टअप भारत के कृषि क्षेत्र का भविष्य है। उन्होंने सरकार, उद्योग, अनुसंधान संस्थानों और किसानों के बीच बेहतर सहयोग पर बल दिया। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट की महिला सिंगल्स में लिंडा नोस्कोवा और मार्ता कोस्त्युक ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल मुकाबले में आज चेक गणराज्य की लिंडा नोस्कोवा ने एलिस मर्टिन्स को और यूक्रेन की मार्ता कोस्त्युक ने जैस्मिन पाउलिनी को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

फिल्म सफर के इसी नगमे के साथ मुझे यानी फेरोज को अब दीजिए इजाजत। अरुणिमा से अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार, और समाचारों के बाद एक बार फिर मैं आपके साथ रहूंगा लेकर आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम भोर सुहानी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में कल ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न पहुंचे। हवाई अड्डे पर ऑस्ट्रेलिया के मंत्री क्लेयर ओनील ने प्रधानमंत्री की अगवानी की। इस दौरान प्रधानमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। बाद में मेलबर्न में आयोजित सामुदायिक स्वागत समारोह में बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीयों ने श्री मोदी का स्वागत किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए भारतीय समुदाय में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। कार्यक्रम से पहले प्रधानमंत्री ने भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की और उनका अभिवादन स्वीकार किया। सांस्कृतिक प्रस्तुति की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया के पारंपरिक वाद्य यंत्र डिडजेरिडू और भारतीय तबले की अनूठी जुगलबंदी से हुई। कार्यक्रम का समापन ऑस्ट्रेलिया इंडिया ऑर्केस्ट्रा की प्रस्तुति से हुआ। कलाकारों ने AR रहमान के प्रसिद्ध गीत माँ तुझे सलाम की सिम्फनी प्रस्तुति देकर दर्शकों का मन मोह लिया।

0: मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि यात्रा भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति देगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज उड़ीसा के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति भुवनेश्वर स्थित उड़ीसा कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में खुले समुद्र में मत्स्य पालन के लिए प्राधिकरण पत्र जारी करने के लिए कार्यक्रम में शामिल होंगे। श्री राधाकृष्णन उड़ीसा दीप सी फिशिंग मिशन दस्तावेज का भी विमोचन करेंगे। इसके बाद उपराष्ट्रपति भुवनेश्वर स्थित राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान खुदरा के 15वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज अगरतला में त्रिपुरा व्यापार सम्मेलन 2026 में शामिल होंगे। इस अवसर पर श्री सिंधिया पूर्वोत्तर क्षेत्र में निवेश, संपर्क, रसद और औद्योगिक विकास को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार की प्राथमिकताओं और भविष्य की कार्य योजना की रूपरेखा प्रस्तुत करेंगे। इसका उद्देश्य क्षेत्र की आर्थिक क्षमता को उजागर करना है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का लगभग 80% काम पूरा हो चुका है और शेष कार्य तेजी से चल रहा है। राजस्थान के कोटा में श्री गडकरी ने एक्सप्रेसवे का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि अगले 2 वर्षों में दिल्ली से मुंबई के नरीमन प्वाइंट और जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह तक की यात्रा केवल 12 घंटे में पूरी की जा सकेगी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देश में कृषि अर्थव्यवस्था को नई गति दे सकता है। नई दिल्ली में 17वें कृषि नेतृत्व सम्मेलन 2026 को संबोधित करते हुए डॉक्टर सिंह ने कहा कि कृषि स्टार्टअप भारत के कृषि क्षेत्र का भविष्य है। केंद्र सरकार ने किसानों के हितों की रक्षा के लिए तमिलनाडु के किसानों से खोपरा और तोतापुरी आमों की खरीद को मंजूरी दी है। इसके अंतर्गत राज्य में 87,000 मीट्रिक टन से अधिक खोपरा की खरीद की जाएगी, जिसमें 87,000 मीट्रिक टन मिलिंग खोपरा और 226 मीट्रिक टन बाल खोपरा शामिल है। खोपरा की पूरी खरीद मूल्य समर्थन योजना के तहत

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर वक्त हो चुका है ठीक 5:11 और 8 सेकंड और ये वक्त है आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम भोर सुहानी का। और भोर सुहानी की इस बेहद खूबसूरत महफिल को लेकर हाजिर हूँ मैं यानी आपका दोस्त फिरोज। तो आप तमाम सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, पुरखलूस आदाब। और दोस्तों कहते हैं कि रात कितनी भी गहरी हो सवेरा जरूर आता है, मुश्किलों के बाद ही इंसान को नया रास्ता नजर आता है। क्योंकि जब आप मुश्किल हालात में होते हैं तभी आप सबसे बड़े विद्वान साबित होते हैं, जब आप उन मुश्किल हालात को बड़ी ही खूबसूरती से अपनी मेहनत अपनी लगन और अपनी चतुराई से उसे बाहर निकालते हैं। आप जिंदगी में बहुत सारी मुश्किलात आती हैं, बहुत सारी परेशानियां आती हैं, मंजिल पाने में बहुत सारी कठिनाइयां रास्ते में आती है, लेकिन उसका डटकर जो मुकाबला करता है वही सच्चा योद्धा होता है। और दोस्तों हर सुबह हर दिन हम इस नई उम्मीद के साथ आगे बढ़ते हैं कि आने वाला दिन हमारा अच्छा हो, आने वाला वक्त हमारे लिए बेहतर हो। इसी उम्मीद के साथ हम जिंदगी की शुरुआत करते हैं हर दिन हर नई सूरज की रोशनी के साथ। और हर दिन का आगाज हम उस खुदा के नाम से, उस ईश्वर के नाम से करते हैं जो सर्वशक्तिमान है। वही सब कुछ करने वाला है, वही हमें देने वाला है, वही हमें जिताने वाला है, वही हमें आगे बढ़ाने वाला है। इसलिए हम जो भी काम करते हैं उस ईश्वर उस खुदा उस गॉड के नाम से करते हैं जो सर्वशक्तिमान है। और उन्हीं से दुआ करते हैं कि हमारी मुश्किलों को आसान कर दे और हमें तमाम परेशानियों से बाहर निकाल दे। ऐसा ही एक बहुत ही खूबसूरत नगमा है फिल्म पैगाम का, मोहम्मद रफ़ी साहब की दिलकश आवाज़ में आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। इसी नगमे के साथ हम आगे बढ़ेंगे भोर सुहानी की दिलकश महफिल में।

मुश्किलें आसान कर दे ऐ खुदा। जी हाँ, जिंदगी का सफर हमेशा आसान नहीं होता, कभी रास्तों में मुश्किलें आती हैं तो कभी हालात हमारे हौसले को परखते हैं, लेकिन यही चुनौतियां हमें मजबूत बनाती है और आगे बढ़ने का जज्बा देती है। इसीलिए हम हर सुबह कोई भी काम करते हैं तो उस खुदा के नाम से, उस ईश्वर के नाम से शुरू करते हैं। हर दिन का आगाज हम ऐसे ही करते हैं, लेकिन कहते हैं ना, समय बहुत ही बलवान होता है। समय वक्त एक ऐसा आईना है जिसमें हमारी जिंदगी के हर पल की तस्वीर दिखाई देती है। कुछ लम्हे हमें मुस्कुराहट देते हैं, कुछ हमें सीख देते हैं और कुछ हमें पहले से बेहतर इंसान बना जाते हैं। इसलिए गुजरे हुए कल का अफसोस करने के बजाय आज को बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। इसी खूबसूरत सोच के साथ हम भी आगे बढ़ेंगे एक और बहुत ही खूबसूरत नगमे के साथ। आवाजें हैं आशा भोसले जी और सुरेश वाडेकर की। कहते हैं, समय सबसे बड़ा शिक्षक है। जो इंसान हर अनुभव से सीखता है वो हर दिन अपनी जिंदगी को और खूबसूरत बना सकता है। बीते हुए पल यादों का हिस्सा है, लेकिन आने वाले पल हमारी उम्मीद की कहानी लिख सकते हैं। तो आइए आप भी महसूस कीजिए इस पल को और इस जिंदगी के बेहद खूबसूरत सफर को आगे बढ़ाइए भोर सुहानी के साथ।

दोस्तों कहते हैं कि जिंदगी सिर्फ अपने लिए जीने का नाम नहीं बल्कि दूसरों के चेहरों पर मुस्कान लाने का भी नाम है। जब हमारी छोटी सी कोशिश किसी के जीवन में खुशी भर देती है तो वही पल हमारी जिंदगी को और भी खास बना देता है। कहते हैं इंसान की असली पहचान उसके पास मौजूद चीजों से नहीं बल्कि उसके दिल की नेकी और उसके व्यवहार से होती है। प्यार, मदद और अपनापन बांटने से जिंदगी में एक अलग ही सुकून मिलता है। जिंदगी का असली आनंद तब मिलता है जब हमारी खुशियों में दूसरों की मुस्कान भी शामिल हो। अपने सपनों को पूरा कीजिए लेकिन साथ ही अपने आसपास के लोगों के लिए भी प्यार और खुशियों की वजह बनिए। ऐसा ही एक बेहद खूबसूरत नगमा है बादल फिल्म का, अपने लिए जिए तो क्या जिए। मन्नाडे साहब की बहुत ही खूबसूरत आवाज में आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर भोर सुहानी की इस दिलकश महफिल में आपके लिए।